सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहा हम मूरख मूरख मन माहे हों मैं विच सब कार कमाहे गुर प्रसादी हों मैं जाए आपे बख्शे ले मिलाए बिख्या का कान बहुत अभिमान है।

जो हर से मैं संत भगत तिन के सब पाप निवारी। हम ऊपर कृपा कर स्वामी, रख संगत तुम जो प्यारी। हर गुण कहे नौ सको बनवारी, हम पापी पाथर नीर डुबत कर कृपा पाखण हम तारी। रहाओ जन्म जन्म के लागे बिख मोर्चा, लग संगत साध सवारी। जो कंचन बै संतर पायो, मल काटी कटत उतारी। हर हर जपन जपो दिन राती, जप हर हर हर उर्धारी। हर हर हर औषध जग पूरा, जप हर हर हो मैं मारी। हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरुष अपारी। जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पै सवारी। त्रैश्री मैला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ पागी। अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी। हर के नाम रता बैवागी, हर हर कथा सुनी मन पाई। गुरमत हर लिग लागी। रहाओ संत जना की जात हर स्वामी, तुम ठाकुर हम सांगी। जैसी मत देवो हर स्वामी, हम कैसे बुलग बुलागी। क्या हम किरम नान निक की रहे, तुम वड पुरख वड।

लागी। नानक दासन दास करो प्रभु हम हर कथा कथागी। तनाश्री मेरा चौथा हर का संत सतगुरु सतपुरखा जो बोले हर हर वाणी जो जो कहे सुने सो मुक्ता हम तिसके सद कुर्बानी। हर के संत सुनो जस्तानी हर हर कथा सुनो एक निमक पल सब के लिए पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पा

स्वामी हम हर लोच लुचाने हम हर सफल्यो बिरत प्रभ स्वामी जिन जप्यो से तृप्ताने हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाती पूछ पुकाने जिनके बड़े पाग वड ऊंचे तिन हर जप्यो जपानी तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दास दसानी। श्री मैला चौथा

सुन पाली। गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई पर मानो, हर हर कथा निराली राव। हर के संत सुनो जन पाई, गुर सेवियो बेग बेगाली, सतगुर सेव खर्च हर बांधो, मत जानो आज के काली। हर के संत जपो हर जपना, हर संत चले हर नाली, जिन हर जपिया से हर होए, हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप नोच लुचानी, हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो, हम साध जना पगराली। तनाती मैला चौथा। हर हर बूंद पे हर स्वामी, हम चात्रिक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी, मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सकूं एक राती, जो बिन अमले अमली मर जाई है, त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत आगा, हम ले न सके अंत माती। तू परे परे अपरंपर स्वामी, मित जानो आपन गाती। हर के संत जना हर जपियो, गुर रंग चलू लहराती। हर हर

नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज पगाती। तनाश्री मेला चौथा कल जुगता कर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जप्यो तरह तरह की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी। रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी। हर के संत जप्यो मन हर हर लग संगत साथ जना की। दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरुष वड अगम अगोचर तुम आपे आप अपा की। जन नानक को प्रभु कृपा की जय कर दासन दास दशा की। तनाश्री मेला चौथा कर पंजवा दो कदे इको अंकार सतगुरु प्रसाद। उर्धार विचार मुरार रमोरम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपूरे प्रकट कर दीने। राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरी सब संग भय हर कंचन चंदन कीने। रहाओ नव छह खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नापति ने। जन नानक हर हृदय सब प्यावो क्यों हर प्रभ मेरा पीने। तनाश्री मेला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ति आई। हर दरगे पावे फिर जन्म न आवे हर हर हर जोत समाई। जप मन नाम हरी हो है सर्व सुखी हर जस ऊंच सगुना ते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई। रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई। बहुत चिंत विसारी हर नाम उर्धारी नानक हर पय है सखाई। तनाश्री मेला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी। मन बचन हृदय से आए हर होए संतुष्ट इन पान हर नाम मुरारी। मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीरत कर दिनवारी। रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी। जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी। तनाश्री मेला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध ते तीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाम। गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको लिलाट लिखिया तुर पाओ। जब मन राम में नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी। हों तिनके शब्द लिहारे जाऊं। रहाओ शरणागत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम दियो सोई हो पाओ। दीन दयाल कृपा कर दीजे नानक हर सिमरन का है चाओ। तनाश्री मेला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बानी। गावया सुनिया तिनका हर थाए पावे जिन सतगुर की आज्ञा सत सत परमानी। बोलो पाई हर कीरत हर कर जल तीरथ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी। रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी। जन नानक आप मिलाए सोई हर मिल से अवर सब त्याग को है हर पानी। तनाश्री मेला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जाओ कैवस है काम देना। सो ऐसा हर त्याय मेरे जीड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना। जप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याय हर पुरुष निरंजना। राव जय हर सिमरन भया ते उपाद गत कीनी
ਵਡ ਪਾਗੀ ਹਰ ਜਪਨਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ।

पावखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वचन निरंकारे कोट पराग मिटे किन पीतर जा गुरुमुख नाम सुमारे। मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वस कीने पंच दुतारे राव। तेरा खान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सोए दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लेहो उबारे। तेरा वर्ण न जापे रूप ना लखिए तेरी कुदरत कौन बिचारे जल फल नैयल रविया सर्व ठाई अगम रूप गिरधारे। कीरत करे सगल जन तेरी तू अदनासी पुरख मुरारे ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी जन नानक शरण द्वारे। धनाश्री मेला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल स्यों हेत बढ़ायो

किसके बहराई, ब्रह्म पसार पसारो पीतर सतगुर ते सो जी पाई। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर करायो मन का बिरहा, मेल कियो मेरे राजन। बिनसियो टीठा अमृत बूठा, सबद लगो गुर मीठा, जल थल नैयल सरद।

जो प्रवास सदा सुख मन में है, सब गुरु पूरा पायो रहाओ। गुण निदान रिद पीतर वसिया, ता दुख परम को पागा, परि प्राप्त वस्त अगोचर, राम नाम रंग लागा, चिंत अचिंत।

डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो, पूरन होए तृप्तानी। ओए जो बीच हम तुम कछ होते, तिनकी बात बिनानी, अलंकार मिल फैली हुई है, तांते कनक वखानी। प्रगट्यो ज्योत सहज सुख शोभा, बाजे अनहत बानी, कहो नानक ने चल कर बांधियो, गुर की ओ बंदानी। तनासरी मैला पंजवा, वडे वडे राजन अर्पूमन, ताकि तृष्ण न बूझी, लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। दिखिया मैं किन्ही तृप्त न पाई, जो पावक ईदन नहीं तापे, बिन हर कहां अगाई रहाओ। दिन दिन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा, उद्यम करे स्वान की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम वंत कामी बहु नारी, पर ग्रह जो न चूके, दिन प्रप करे करे पछतापे, सोग लोभ महसूके। हर हर नाम अपार अमोला, अमृत एक निधाना, सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। तनासरी मैला पंजवा, लवे ना लागन कौ है कछुए, जाको फिर ए तावे, जाको गुर दीनो ए अमृत, किसी को बने आवे। जाको आयो एक रसा, खान पान आन नहीं खुदिया, ताके चितना बसा रहाओ। मौल्यो मन तन होयो हरिया, एक बूंद जिन पाई, वर्ण न साको उस्तत ताकी, कीमत कहन न जाई। काल न मिलियो सेव न मिलियो, मिलियो आए अचिंता, जाको दया करी मेरे ठाकुर, तिन गुरे कमानो ममता। दीन दयाल सदा कृपाला, सर्व जिया प्रतपाला, ओत पोत नानक संग रविया, जो माता बाल गोपाला। तनासरी मैला पंजवा, बार जाऊं गुर अपने ऊपर, जिन हर हर नाम दृढ़ाया, महा उद्यान अंधकार में, जिन सीधा मार्ग दिखाया। हमरे प्राण गोपाल गोविंद, ईहा ऊहा सर्व थोक की, जिसे हमारी चिंद रहाओ। जाके सिमरन सर्व निधाना, मान महत पत पूरी, नाम लैत कोट अगना से, पवित बांछे सब तूरी। सर्व मनोरथ जे को चाहे, सेवे एक निधाना, पार ब्रह्म अपरम कर स्वामी, सिमरत पार कराना। शीतल शांत महा सुख पाया, संत संग रहो ओला, हर तन संचन हर नाम पूजन, ए नानक कीनो चोला।

जन्म पदार्थ काच बाद जीत जन्म जन्म के किल विख दुख पागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत साध संग इन दुख से निक्षो नानक एक परीत रात्रि मैला पानी पक

साईं ऐसी मत दी जय मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ ते आई रहाओ तुमरी कृपा ते मोह मान छूटे बिनस जाए परमाई अनद रूप रव्यो सब मध्य जब कत पे सो जाए तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख से निमुख बुलाए जाप पाप तगत खा पूरी जो प्रभ कह मन पाई नाम जपत तिस्मा सब बुझी है नानक तृप्त अभाई तनासी मैला पंजवा जिनकी ने बस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग स्नान ताप थान खंडे क्या ए जंत विचारा प्रभ की ओट गई तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखे ब्याज सब हूटो रहाओ न सुनिए न मुक्ते बकिए न मोह ओडी थी ऐसी ठगोरी पाए पुलावे मन सब कह लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन कर कर मेलियो दुआ किसी वाद काट किसी पै सगले लर लर मुआ हूँ बलिहारी सतगुर आपने जिन ए चलत दिखाया गुजी पाए जले संसारा भगत ना व्यापे माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक तन पाया अपने कर ले आया खाटे तनासी मैला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खत्म हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे धारे जेवा एक कवन गुण कही है बेसुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत ना किन्हीं लही है रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझा।

तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला। नानक करके बोले तनात्री मैला पंजवा, पूजा वर्त तिलक इसनाना, पुन दान बहु देन, कहू न पीजे संजम स्वामी, बोले मीठे बैन। प्रभ जी को नाम जगत मन चैन, बहु प्रकार खोजे सबका को, बिखन न जाई लैन राव। जात ताप प्रमन बसबा कर, उर्द ताप ले गैन, ए विद नै पतियानो ठाकुर, जोग जुगत कर जैन। अमृत नाम निर्मोलक हर जस, तिन पायो जिस किरपैन, साध संग रंग प्रभ पेते, नानक सुख जन रैन।

गुण निधान दयाल पुरख प्रभ सब सुख दयाला मांगे दान नाम तेरो नानक जो माता बाल गोपाला त्रासरी मैला पन्यवा हर हर लीने संतो बार हर के दास की।

नानक शरण परयो दुख पंजन, गुण गावे सदा अकार, निंदक का मुख काला हुआ, दीन दुनिया के दरबार। त्रासरी मैला पंजवा, अधर राखन हा चितारिया, पतित पुनीत किए खिन पीतर, सगला रोग बिदारिया रहाओ, गोष्ट पई साध के संगम, काम क्रोध लोभ मारिया, सिमर सिमर पूरन नारायण, संगी सगले तारिया, औखद मंत्र मूल मन एक है, मन विश्वास प्रभ तारिया, चरण रेन बांछे नित नानक, पुनः पुनः बलिहारिया। त्रासरी मैला पंजवा, मेरा लागो राम स्यों हेत, सतगुर मेरा सदा सहाई, जिन दुख का काटिया केत रहाओ, हाथ दे राख्यो

गुरु समझाया, आम सगल विद कामना आवे हर हर नाम के आया। तांते मोह तारी ओत गोपाल, शरण परयो पूरन परमेश्वर, बिन से सगल जंजाल रहाओ, सुर्ग मृत कयाल पू मंडल, सगल व्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल कारण, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाये, पाये सर्व निधाना, कर कृपा जिस

कामना आवे से जंजाल, संग ना चाले तिन स्यों हीत, जो गहराई से ही मीत। ऐसे परम पुले संसारा, जन्म पदार्थ कोई गवारा रहा, साथ तरम नहीं पावे दीठा, चूठ तो स्यों रच्यो मीठा, दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म तर्म सगलाई खोवे, हुक्म ना बूझे आवन जाने, पाप करे ता पछोताने, जो खुद पावे सो परवान, तेरे पाने नो कुर्बान, नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनाश्री मैला पंजवा, मोह मस्कीन प्रभ नाम आधार, खाटन को हर हर रोजगार, संचन को हर एको नाम, हलत पलत ताके आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार, साध गावे गुण एक निरंकार रहाओ, साध की शोभा अत मस्कीनी, संत वडाई हर जस्तीनी, अनद संतन के पगत गोविंद, सुख संतन के दिन सी चिंद, जह साध संतन होवे इकत्र, तह हर जस गावे नाद कवित, साध सभा में अनद विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक क्राम, दे कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुण पास, प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवे संतां दूर। तनाश्री मैला पंजवा, सो कट डरे जे खत्म समारे, डर डर पचे मन मुख विचारे, रहाओ सिर ऊपर मात पिता गुरुदेव, सफल मूरत जाकी निर्मल सेव, एक निरंजन जाकी रात, मिल साध संगत होवत परगास, जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए, जन्म मरण सगला दुख नासे, गुरमुख जाके मन तन बासे, जिसनो आप लए लड़ लाए, दरगह मिले तिसे ही जाए, सेई पगत जे साचे भाने, जम काल ते पए निकाने, साचा साहिब सच दरबार, कीमत कौन कहे विचार, कट कट अंतर सगल आधार, नानक जाचे संतरेनार। तनाश्री मैला पंजवा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कर बाहर तेरा दरवासा, तू जन कहे संग, कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग, जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करे करावे स्वामी, सामसलत परवान रहाओ। पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल गुण साकी, चरण शरण नानक दास हर हर, संति ए विद जाती। तनाश्री मैला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ से पाए, कंठ लाए गुरु राखे, संसार सागर में

शोभा अनुज सदा उलास रहाओ चरण शरण पूरन परमेश्वर अंतर्जामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो त्रासरी मैला पंजवा जय जय पेखो तै हजूर दूर कथो न जाई रव रया सर्वत्र में मन सदा ते आई ईत ऊत नहीं बीछड़े सो संगी गनिये दिन सजाए जो निमक में सो अलप सुख पनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कट ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रभु सोई अचल अछेद अपार प्रभु ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज अनूप सामत देओ दयाल प्रभु जित तुम्हें अरादा नानक मंगे दान प्रभ रेन पग सादा तनाश्री मैला पंजवा जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख सहज सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सहज तुन नेकल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दुखी हर आप निवारे अपदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नाचन पाजन खाके पर मंगल वाजे नित वाजे अपने खत्म निवाजे अस्थिर रहो डोलो मत कभू गुर के बचन आधार जय जयकार सगल पू मंडल मुख उजल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वडियाई।

सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो, हर दिन मुक्त न काहू जियो रहाओ। मन निर्मल कर्म कर तारण करण हर, अवर जंजाल तेरे काहू ना काम जियो। जीवन देवा पार ब्रह्म सेवा, के उपदेश मोको गुरु दीना जियो। किस त्यों ना लाई हीत, जा को किश ना ही बीत। संत की बार ओ संग न चाले, मन पर तू आराध हर के प्रीतम साथ। जाके संग तेरे बंधन छूटे, गहो पार ब्रह्म शरण हृदय कमल चरण। अवर आस कट पटल न की जय, सोई भगत ज्ञानी त्यानी तपा सोई। नानक जाको कृपा की जय, तना श्री मेला पंजवा। मेरे लाल पलो रे पलो रे पलो हर मंगना, देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन। प्राण पत चित राख सगल है मरना रहाओ। चंदन चोआ रस भोग करत अनेक, बिखिया विकार देख सगल है सीके। एक है गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन। तन तन आपन सा प्यो, हर जपना निमक जा प्यो। अर्थ दर्ब देख कछ संग नाही चलना। जा को रे कर्म पला, तिन ओट गही संत पला। तिन नाही रे जम संतावे, साधु की संगना। पायो रे परम निधान, मिट्यो है अभिमान। एक है निरंकार, नानक मन लगना। तनाश्री मेला पंजवा, कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद हर एक सिमर, एक सिमर एक सिमर प्यारे। कल चले लोभ मोह, माँ पौ जल तारे रहाओ। सास सास निमक निमक, दिन सुरैन चितारे। साध संग जप निसंग, मन निधान धारे। चरण कमल नमस्कार, गुण गोविंद बिचारे। साध जना की रेन नानक, मंगल सुख सदारे। तनाश्री मेला पंजवा, कर अठवा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। सास सास संभाले, ए लोक परलोक संग सहाई। जप सत मोहि रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए न साके जा ले रहाओ। निरसन को तन अंधले कौटिक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोहित पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले। सनासरी मैला पंजवा, पै कृपाल दयाल गोविंदा। अमृत हृदय सिंचाई, नव निध सिद्ध हर लाग रही जन पाई। संतन को अनग सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का। रब रहा सर्व ठाई राव, पाको कोई न पहुंचन हारा। जाके अंग गुसाई, जम की त्रास मिटे जिस सिमरत। नानक नाम से आई, सनासरी मेला पंजवा। दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पोमवंत अभिमानी। राजा जाने सगल राज हमरा, क्यों हर जन टेक स्वामी। जे को अपनी ओट संवार, जैसा बित तैसा हुए वर्त है। अपना बल नहीं हार रहाओ। आन त्याग पे इक आसर, शरण शरण करे आए। संत अनग्रह पे मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। सनासी मेला पंजवा, जांको हर रंग लागो इस जुग में। सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै। जांका सतगुरु पूरा, ठाकुर गा ये आत्म रंग। शरणी पावन नाम से आवन, सहज समावन संग रहाओ। जन के चरण वसे मेरे ही रे, संग पुनीता देही। जन की तूर देहो कृपा निद, नानक कै सुखे ही। सनासरी मेला पंजवा,
जतन करे मानुख डहकावे को अंतर जामी जाने पाप करे कर्म कर पावे पेख करे निर्वाने जानत दूर तुम्हें प्रभनेर उठ ताके उठते उठते है आवे लोभी फेर रहाओ जब लग तुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त न कोई कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई तनासरी मेला पंजवा नाम गुरु दियो है अपने जाके मस्तक करमा नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा जन को नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की माने जो जो होग रहाओ नाम तन जिस जन के पाले सोई पूरा शाह नाम व्योहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा तनाश्री मेला पंजवा नेत्र पुनीत पय दर्श देखे माथे परों रवाल रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल तुम तो राखनहार दयाल सुंदर सुवर बेअंत पिता प्रभु हो प्रभु के पाल रहाओ महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांधे पाल तनासरी मेला पंजवा अपनी उकत खिलावे पोजन अपनी उकत खिलावे सर्व सुख भोग रस देवे मन ही नाल समावे हमरे पिता गोपाल दयाल जो राखे मैं तारी बार तो तैसे ही प्रपाल रहाओ नीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा तनाश्री मेला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध दिख जा रे राज माल जोबन तन जियरा इन ऊपर ले बारे मन तन राम नाम हितकारे सुख सहज आनंद मंगल सहत पवनित पारे तारे रहाओ तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानक की श्रद्धा पूरो ठाकुर भगत तेरे नमस्कारे तनाश्री मेला पंजवा छाए लियो महाबली पे अपने चरण परात एक नाम दियो मन मंता दिल्स न कतहू जात सत गुरु पूरे की नीदात हर हर नाम दियो कीर्तन को पई हमारी गात रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने पगतन की राखी पात नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात नासरी मेला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इन्हीं करत गुदारी मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी के टेक मने सदारी साकत की आवरदा जाए बिरसारी जैसे कागज के पार मूसा तूक गवावत काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ते बंधन छुटकारी बूढ़त अंध नानक प्रभ कादत साध जना संगारी तनासरी मेला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म मोरे जाती रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कह चरण कमल निधाती रहाओ जिसका साथिन ही रख लिया पूरन प्रभ की पांति मेल लियो आपे सुखदाते नानक हर राखी पाती तनासरी मेला पंजवा दूत दुश्मन सब तुझते निवरे प्रगट प्रताप तुम्हारा जो जो तेरे भगत दुखाए ओ तत्काल तुम मारा निरखो तुमरी और हर नीत मुरार सहाय हो दास को कर गए उदरो मीत रहाओ सुनी बेनती ठाकुर मेरे खसमाना करे आप नानक आनंद भये दुख पागे सदा सदा हर जाप तनासरी मेला पंजवा
चतुर दिशा की नो बले अपना सिर ऊपर कर पा रहे हो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारे हो। हर जन राखे गुरु गोविंद कंस लाए अवगुण सब मेते दयाल पुरख बख्शंद।

राम राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवे जाम मुक्त वैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का ताम चरण कमल हर जन की खाती कोट सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रहन नानक सद कुर्बान तनासरी मैला पंजवा मांगो राम से एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वासे संतन का संग पावो शोक अगन में मन ना व्यापे आठ पहर गुण गावो स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मधंत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बाहुड़ जन्म न छापन तनासरी मैला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ कोखे मुन जन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा चंद सेव सच पाई है दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे मिल साधु बिन से शोक तनासरी मैला पंजवा कृष्णा बुझे हर के नाम महा संतोष होवे गुरु बचनी प्रभ से लागे पूरन ध्यान रहाओ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूरन होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सब खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करता है नानक जन के पूरन काम सनासरी मैला पंजवा जन की नी पार ब्रह्मसार निंदक टिकन न पावन मूले।

तैं तैं स्वामी कोई न पहुँचन हार, जो जो करे अवज्ञा जन की होए गया तत्चार, करण हार रखवाला हुआ जाता अंत न पारा वार, नानक दास रखे।

हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना दास अपने को नाम देवो। दृष्ट प्रवतारो कृपा कर पारो पूजा कह फूफ से पाड़ ले वो राव। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन साध पूरे। प्रभ बिना आन न राखन हारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पतित उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उचार नहीं अंत पायो। गुण है सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा भगत वचल नानक गायो। श्री मैला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरो नाम गोविंद का सदा लीजै। मिटे कमाने पाप चिराने साध संगत मिल मुआ जीजै। रहाओ राज जोबन विश्रंत हर माया माँ दुख एहो महांत कहे। आस प्यास रमन हर कीर्तन एहो पदार्थ भागवंत लहे। शरण समरथ अकथ अगोचरा पतित उदाहरण नाम तेरा अंतर जामी नाम।

बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय रहाओ। वड़े भाग पेटे गुरुदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा। चरण कमल जा का मन रापे सोग अगन किस जन न व्यापे। सागर करे आ साधु संगे निरपो नाम जपो हर रंगे। पारतन दोख किस पाप न फेड़े जम जंदार ना वे नेड़े। तृष्णा अगन प्रभ आप बुझाए नानक उदरे प्रभ शरणाए। रात्रि मैला पंजवा तृप्त पई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया। जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग्रहा। अनित प्रकारी बस्तर उधाए अन दिन कीर्तन हर गुण गाए। शस्ती रथ अस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी। मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया। सनातनी मैला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा। समुद्र सागर जिन खिन में तारा रहाओ। कोई हो आ कर्म रत कोई तीरथ नाया। दासी हर का नाम से आया। बंधन का तन हार स्वामी जन नानक सिमरया।

काहे रे बन खोजन जाई। सर्व निवासी सदा अलेपा ओही संग समाई। रहाओ कोप मद ज्यो बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, सट ही खोजो पाई। बाहर पीतरे को जानो के गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न प्रम की काई। तनासरी मेला नामा साधो ए जग परम तुलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना। रहा मात पिता पाई सुख बनता, ताके रस लपटाना, जो बन तन प्रभता के मद में, एन सरह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख पंजन, सासो मन न लगाना, जन नानक को तन में किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासी मेला नावा तिन जोगी को जुगत न जानो, लोभ मोह माया ममता सुन, जे कट माए पछानो। रहाओ पर निंदा पुस्तक नह जाके, कंचन लो समानो, हर शोक ते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन देह दिसको तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक ए बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। सनातनी मेला नावा अब मैं कौन उपाय करो, जे बिद मन को संसा चूके, पौनिद पार करो। रहाओ जन्म पाए कछ पलो न कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच डरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजो, पत्यो दर परो, कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हो पत करो।

अमृत संत चुगे नहीं दूरे, हर रस चोग चुगे प्रभु पावे, सरवर में हंस प्राण पत्तावे, क्या बग बपुड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल न जाए, रहाओ रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पे निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाके, खावन जान रहे गुरु राखे, सरवर हंसा छोड़ न जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए, सरवर में हंस हंस में सागर, अकथ कथा गुरु बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैठे, नारे ना पुरख कहो कहो कैसे, त्रिभुवन ज्योत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ के शरणाई, आनंद मूल अनाथ आधारी, गुरुमुख भगत सहज विचारी, भगत वचल तय काटन हारे, होमे मार मिले भगतारे, अनिक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल में आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप न चीन सो प्रम प्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीरज तरम तरनी पर टेक, जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल न लागे, गुर के शब्द परम पौ पागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचे साच स्वरूप, सुना श्री मैला पहला, सहज मिले मिलिया परवान, नाथ स्मरण ना आवन जान, ठाकुर में दास दास में सोए, जह देखा तह अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाये, बिन गुरु पे ते मर आये जाये, रहाओ सो गुर करो जे साच दृढ़ावे, अकथ कथावे शब्द मिलावे, हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकुर साच प्यारा, तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा, सेवक प्रभ के लागे पाए, सतगुरु पूरा मिले मिलाए, आप दिखावे आपे देखे, हथ ना पतीजे ना बहुते खे, कर पांडे जिन अमृत पाया, प्रेम भगत प्रभ मन पति आया, पर पड़ फूले चोटा खाए, बहुत स्यान पावे जाए, नाम जपे पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए, पूज सिला तीर्थ बनवासा, परमत डोलत पे उदासा, मन मैले सूचा क्यों हुए, साथ मिले पावे पत सोए, आचारा विचार शरीर, आज जुगाद सहज मन तीर, पल पंकज में कोट उदारे, कर कृपा गुर मेल प्यारे, किस आगे प्रभ तुझ सालाही, तुझ बिन दूजा मैं को नाही, ज्यों तुझ पावे त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए।

जायो मानस जन्म संयोग पाया ताकि है ओत साध राखो दे कर हाथ कर कृपा मेलो हर राया अनक जन्म प्रमचित नहीं पाई करो सेवा गुरु लागो चरण गोविंद जी का मार्ग देहो जी बताई रहाओ अनक उपाव करो माया को बचित करो मेरी मेरी करत सद ही विहावे कोई ऐसे रे पेट है संत मेरी लाहे सगल चिंत ठाकुर सो मेरा रंग लावे परे रे सगल वेद नह चूके मन तेद एक खिन न तीरे मेरे करके पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए अंग बुद्ध मैल लाए कर को ठाकुर एक तिल न माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन स्नान है सगल आश्रम की ने मनुआ ने पति ने विवेकहीन देही तोए कोई पाये रे पुरख विधाता पार ब्रह्म के रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म तर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पड़े कहीं ना लेखे जिस पेटिय सफल मूर्त करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों के खै मन हट जो कमावे तिल ना लेखे पावे बगल जो ध्यान लावे माया रे धारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रब की कथा सुनाई तिस पेटे गत हुए हमारी को प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर के शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद पेत्यो निरपय गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल पई सफल जातरा हावन जान रहे।

तीरथ नामन जाओ तीरथ नाम है, तीरथ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीरथ दस पूर्व सदा दशहरा, हौ नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ करनी तरा, संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना, गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना, साच ना लागे मैल क्या मल धोइए, गुणे हार परोए किसको रोइए, विचार मारे तरे तारे उलट जोन ना आवे, आप पारस परम त्यानी साच साचे भावे, आनंद अनदिन हर्ष साचा दुख किल विख पर हरे, सच नाम पाया गुरु दिखाया मैल नाही सच मने, संगत मीत मिलाप पूरा नावनो, गावे गावन हार सब सुहावनो, साला है साचे मन सतगुर पुन दान दया मते, तिर संग पावे सहज नावे बेड़ी तसंगम सत सते, आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया, गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया, कहन कह सब को एके वड आखी है, हम मूर्ख नीच अजान समझा साखी है, सतगुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा, पूछ करें आवे बिखला दे शब्द सचे गुर मेरा, आखन टोट न पगत पंडारी पर पुर रहया सोई, नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई, सनासरी मेला पहला, जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो, साचो साचा नाओ गुण गोविंद है जियो, गुर ज्ञान अपारा सृजनहारा जिन सृजी तिन गोई, परवाना आया हुकुम पठाया फेर न सके कोई, आपे कर वेखे सिर सिर लेखे आपे सुरत बुझाई, नानक साहिब अगम अगोचर जीवा सच्ची नाई, तुम सर अवर न कोई आया जाए सी जियो, हुक्मी होए निबेड़ परम चुकाए सी जियो, गुर परम चुकाए अकत सहाय सच में साच समाना, आप उपाए आप समाए हुक्मी हुक्म पछाना, सच्ची वड्याई गुर ते पाई तू मन अंत सखाई, नानक साहिब अवरना दूजा नाम तेरे वड्याई, तू सच्चा सृजनहार अलख सिरंदे आजियो, एक साहिब दो रहा वाद वदंदे आजियो, दो रहा चलाए हुक्म सबाए जन्म हुआ संसारा, नाम बिना नाही को बेली बिखला दी सिर पारा, हुक्मी आया हुक्म न बूझे हुक्म सवारन हारा, नानक साहिब सबत सिंजापे साचा सिरजनहारा, भगत सोहे दरबार सबत सुहाया जियो, बोले अमृत बाण रसन रसाया जियो, रसन रसाए नाम तिसाए गुर के शब्द विकाने, पारस पर से पारस होए जा तेरे मन पाने, अमरा पद पाया आप गवाया विरला ज्ञान विचारी, नानक भगत सोहंदर साचे साचे के वापारी, भूख प्यासो आस क्यों दर जाए साजियो, सतगुरु पूछो जाए नाम ते आए साजियो, सच नाम ते आए साच चवाए गुरमुख साच पछाना, दीना नाथ दयाल निरंजन अंदन नाम वखाना, करनी कार तुरु फुरमाई आप मुआ मन मारी, नानक नाम महारस मीठा कृष्णा नाम निवारी, सनासी संत मैला पहला, तिर संग मूठड़िए खबर न पाया जियो, मस्तक लिखेड़ा लेख पूर्व कमाया जियो, लेख न मिटई पूर्व कमाया क्या जाना क्या होसी, गुणी अचार नहीं रंग राती हम गुण बै बैरोसी, तन जो बन आख की छाया दिल्द पै दिन पुन्या, नानक नाम बिना दोहागण छूटी झूठ विछुन्या,
बूढ़ी कर का लियो गुर के पाए चलो, साचा नाम ते आए पावे सुख मैलो, हर नाम ते आए ता सुख पाए, पेयड़े दिन चारे निज कर जाए बह सत पाए, हम दिन नाल प्यारे बिन पगती कर वास न होवी, सुनियो लोक सभाए नानक सरसी ता फिर पाए, राती साचे नाए फिर तन पावे ता फिर पावे, नारी जियो रंग प्रीतम राती गुर के शब्द विचारी जियो, गुर शब्द विचारी ना प्यारी निव निव पगत करे, माया मोह जलाए प्रीतम रस में रंग करे, प्रभ साचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी, नानक साच वसी सोहागण फिर स्यो प्रीत प्यारी, फिर कर सो है नार जे फिर पावे जियो,

सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मर्म न जाना, संत संगत

मात पिता पाई सुत बनता, कहो को है काका रहाओ। जब लग जोत काया में बरते, आपा पशु न बूझे, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, छोड़ो मन के परमा, केवल नाम जपो रे प्राणी, परो एक की सरना। जो जन पाओ भगत कछ जाने, ताको अचरज काहो, जो जल जल में पैसना निकसे, त्यों तुर मिलियो जुलाहो। हर के लोगा मैं तो मत का पोरा, जो तन कांसी तजे कबीरा, रमैये कहानि होरा रहाओ। कहत कबीर सुनो रे लोई, परम न पूलो कोई, क्या कांसी क्या ऊखर मगहर, राम हृदय जो होई। इंद्र लोक शिव लोक कहें जैबो, ओछे तप कर बाहुर एबो, क्या मांगो किछ थिर नाही, राम नाम रख मन माही रहाओ। सोबा राज बिबे बड़ियाई, अंत न काहू संग सहाई, पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया, इनते कहो कमने सुख पाया। कहत कबीर अवर नहीं कामा, हमरे मन तन राम को नामा। राम सिमर राम सिमर राम सिमर भाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अधिकाई रहाओ। बनता सुत दे ग्रे संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजामल गज गन का

ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अधिकाए जिन तृण तर मुंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ कर।

बारह जो जन छकर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोयन की लंका होती रावण से अधकाई। कहां भयो दर बांधे हाथी खिन में पई पराई। दुर्वासा स्यों करत ठगौरी जादव ए फल पाए। कृपा करी जन अपने ऊपर नाम देव हर गुन गाए। दस बैरागन मोह बत्कीनी पंचों का मिट नावो। सत्तर दो परे अमृत सर बिख को मार कडावो। पाछे बौर नावन पावो अमृत बाणी कटते उचरो। आत्म को समझावो रहाओ। बजर कुठार मोए है छीना कर मिन्नत लग पावो। संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो। ए संसार ते तब ही छूटो जो माया नह लिपटावो। माया नाम गर्भ जोन का ते सज दर्शन पावो। इत कर भगत करे जो जन तिन पौ सगल चुकाई है। कहत नाम देव बाहर क्या परमो ए संजम हर पाई है। मारवार जैसे नीर बालहा बेल बालहा करहला। जो कुरंक निस्नाद बालहा त्यों मेरे मन रामैया। तेरा नाम रू

अतरंग रूड़ो मेरो रामैया रहाओ। जो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पवरला, जो कोकिल को अंब बा

रे मन रामैया बारिक कौ जैसे खीर बालहा चात्रिक मुख जैसे जल तरा मछली को जैसे नीर बालहा त्यों मेरे मन रामैया साधिक सिद्ध सगल मुन चाहे बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरो नाम बालहा त्यों नामे मन बीठला पहल पुरिये पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानू हर हर नाचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसाद मरा असगा

पारणा पतित पावन माधो बिरद तेरा तन ते वै मुन जन जिन त्यायो हर प्रभ मेरा मेरे माथे लागी ले।

गर्भ परहारी चरण शरण नामा बल तिहारी। तना श्री भगत रविदास जी की इको ओंकार। सतगुरु प्रसाद हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पतियार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे। हम बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल रहाओ। बहुत जन्म बिछरे थे मादो एक जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। चित सिमरन करो नैन अवलोकनो श्रवण बानी सुजस पूर राखो। मन सो मद कर करो चरण हृदय तरो रसन अमृत राम नाम पाखो। मेरी प्रीत गोविंद स्यो जिन कटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे रहाओ। साध संगत बिना पाओ नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी। कह रविदास एक बेनती हर स्यो पैज राखो राजा राम मेरी। नाम तेरो आरती मजन मुरारे हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे रहाओ। नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा नाम तेरा केसरो ले छिटकारे। नाम तेरा अम्बुला नाम तेरो चंदनो कस जपे नाम ले तुझे कौचारे। नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती नाम तेरो तेल ले माहे पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई पय उजियारो पवन सगलारे। नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारे सगल जुठारे। तेरो किया तुझे क्या अर्पो नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती सत नाम है हर भोग तुहारे। तनाश्री बाणी भगतां की त्रिलोचन इको ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण निंदस काए फूली गवारी दुकृत।

कर कलंक मफी तसरी विश्व का दीपक स्वामी ताचेरे स्वार्थी पंखी राय गरुड़ ताचे बादवा कर्म कर अरुण पिंगलारी अनित पातक हरता त्रिभुवन नाथरी तीरथ तीरथ प्रमता लहना पारी कर्म कर कपाल मफी तसरी अमृत सत्य तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर सुनागर नदी के नाथं कर्म कर खार मफी तसरी दादी ले लंका गढ़ उपाड़ी ले रावण बन फल बिशल आन तोखी ले हरी कर्म कर कछौटी मफी तसरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोह जापी अले राम चे नामं बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन तूप दीप कृत साज आरती वारने जाओ कमलापति मंगला हर मंगला नित मंगल राजा।

रामानंद जाने पूरन परमानंद बखाने मदन मूरत पैतार गोविंदे सैन पणे पज परमानंदे पीपा कायो देवा कायो देवल कायो जंगम जाति कायो तूप दीप नहीं वेदा कायो पूजो पाती काया बोखंड खोजते नव निध पाई ना कछ आयबो ना कछ जायबो राम की दुहाई रहाओ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लखावे तन्ना गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधननी का अनाज मंगो सबसी का गऊ पैस मंगो लावेरी इक साजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना ले वे मंगी जैसरी महला चौथा कर पहला चौप दे ओंकार सतगुरु प्रसाद मेरा ही अरे रतन नाम हर बसिया गुरहास तरयो मेरे माथा जन्म जन्म के किलबिक दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन पज राम नाम सब अर्था गुरपूरे हर नाम दृढ़ाया बिन नामे जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मनमुख ते मोह माया नित फाखा तिन साधु चरण न सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाता मोको की जय दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजे जन नानक चले मिलन था जैसरी मैला चौथा हीरा लाल अमोलक है पारी बिन गाहक मीका खाका रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बिकानो लाखा मेरे मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मिलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाओ मन मुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन कर रतन न लाखा ते उजड़ परम मोए गावारी माया पुअंग दिख चाखा हर हर साध मेलो जननी के हर साधु शरण हम राखा हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी हम परे पाग तुम पाखा जेवा क्या गुण आख वखाने तुम वड अगम वड पुरखा जन नानक हर कृपा तारी पाखान डुबत हर राखा जैसरी महला चौथा हम बारक कछु न जाने गत मित तेरे मूरख मुग्ध याना हर कृपा तार दीजे मत उत्तम कर लीजे मुग्ध सियाना मेरा मन आलसिया उगलाना हर हर आन मिलायो गुर साधु मिल साधु कपट खुलाना रहाओ गुर किन किन प्रीत लगावो मेरे हियरे मेरे प्रीतम नाम पराना बिन नामे मर जाइए मेरे ठाकुर ज्यो अमली अमल लुवाना जिन मन प्रीत लगी हर केरी तिन तुर पाग पुराना तिन हम चरण सरे वे खिन खिन जिन हर मीठ लगाना हर हर कृपा तारी मेरा ठाकुर जन बिछरिया चिरी मिलाना तन तन सत गुरु जिन नाम दृढ़ाया जन नानक तिस कुर्बाना जैसरी महला चौथा
सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा, माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुर बचनी बिच हर काडबा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतित पवित्र मिल साद, गुर हर नामे हर रस चाखबा रहाओ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागबा, तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गाए बा। तिनके भाग खीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्श न पाए बा, ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेवे, हम हर मीठ लगाए बा, जन नानक रेण साध पग मांगे, हर होए दयाल दिवाए बा। जैत सरी महला चौथा। जिन हर हृदय नाम न बस्यो, तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुन्नी देख रैन बिन नावे, होए खप खप मुए करांजा। मेरे मन जप राम नाम हर माजा, हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा रहाओ, हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर पाई है सतगुर माजा, हौं बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम पर गाजा। दर्शन साध मिलियो वडपागी, सब किल विख गए गवाजा, सतगुर साओ पाया वडदाना, हर किए बहुगुण साजा। जिनको कृपा करी जग जीवन, हर उतारियो मन माजा, धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जैत श्री महला चौथा। सत संगत साध पाई वड पागी, मन चल तो पयो अरूड़ा, अनहत तुन वाजे नित वाजे, हर अमृत तार रस लीड़ा। मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा, मेरे मन तन प्रीत लगाई, सतगुर हर मिलियो लाए चपीड़ा रहाओ। साकत बंद पए है माया, बिख संचे लाए जकीड़ा, हर के अर्थ खर्च नह साके, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहु सरदा लाए मुख तूड़ा, हलत पलत हर शोभा पावे।

हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध गुर मिल साधु, पाखान हरे ओ मन।

हर हर सिमरो अगम अपारा, जित सिमरत दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिए सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उधारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिए प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माडो प्राणा, मेरे मन तन अमृत मीठ लगाना। हर हर दया करो गुर मेलो, पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम सदा सुखदाता, हर के रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मेलो, गुरु नानक नाम सुखोई राम। जैत श्री महला चौथा। हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा ले लाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम उमाहा राम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर के रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस कुमर पावो, मिल सत्संग उमाहा राम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम ले लाहा। हर हर कृपा तार गुर मेलो, गुर मिलिए हर ओ महाराम। कर कीरत जस अगम अथाहा, खिन खिन राम नाम गावाहा। मोको तार कृपा मिलिए गुरदाते, हर नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना ले लाहा। खिन खिन भगत करे दिन राती, गुरमत भगत ओ महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द ले लाहा। गुरमत पंच दूत वस आवे, मन तन हर ओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाए सदा ले लाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जगन्नाथ जग लाहा। तन तन वडे ठाकुर प्रभु मेरे, जप नानक भगत ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। आपे जोगी जुगत जुगाहा, आपे निरपौ ताड़ी लाहा। आपे ही आप वरते, आपे नाम ओ महाराम। आपे दीप लो दीपाहा, आपे सतगुर समुंद मथाहा। आपे मथ मथ तत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम। सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा। हर हर भगत दृढ़ी मन पाई, हर हर नाम ओ महाराम। आपे वड दाना वड साहा, गुरमुख पूंजी नाम विसाहा। हर हर दात करो प्रभ पावे, गुण नानक नाम ओ महाराम। जैत श्री महला चौथा। मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वे साहा। हर हर कृपा तार मधुसूदन, मिल सत्संग उमाहाराम। हर गुण बाणी श्रवण सुनाहा, कर कृपा सतगुरु मिलाहा। गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जप उमाहाराम। सब तीर्थ वर्त जग पुन तोलाहा, हर हर नाम ना पुजे पुजाहा। हर हर अतुल तोल अत पारी, गुरमत जप ओ महाराम। सब कर्म

देहो संदेश रो कहियो प्रय कहियो। विषम पई मैं बहु विध सुनते कहो सुहागन सहियो रहाओ। को कह तो सब बाहर बाहर को कह तो सब महियो। वर्ण ना दिसे चिन्ह ना लखिए सुहागन शांत बुझियो। सर्व निवासी कट कट वासी लेप नहीं अल्पयो। नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बचहियो। जय श्री मैला पंजवा। तीरो सुन तीरो प्रभु को रहाओ। जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेश प्रभु को नीरो। बेकुमार बे अंत बढ़ दाता मन है गहीरो पेख प्रभु को। जो चाहो सोई सोई पावो आशा मनसा पूरो जप प्रभु को। गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरो बुझ प्रभु को। जय श्री महला पंजवा। लोड़िंदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके। कट कट तिसे बसेरा रहाओ। सुख अरादन दुख अरादन बिसरे न काहू बेरा। नाम जपत कोट सूर उजारा बिन से प्रम अंधेरा। थान सनंतर सबनी जाई जो दिसे सो तेरा। संत संग पावे जो नानक तिस बहुर ना होई है फेरा। जय श्री महला पंजवा। काल चौथा दो पदे इको अंकार। सतगुरु प्रसाद। अब मैं सुख पायो गुर आग तजी से आनप चिंत विसारी। अहंक छोड़ो है त्याग रहाओ। जो देखो तौ सगल मोए मोहियो। तौ शरण पर्यो गुर पाग। कर कृपा टहल हर लायो तौ जम छोड़ी मोरी लाग। पर्यो सागर पावक को जाओ संत पेटे वड पाग। जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरनी चित लाग। जैत सरी मैला पंजवा। मन में सतगुरु ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा। प्रभ जियो मया करा रहाओ। ताल जाल अर महा जंजाला छुटके जमे डरा। आयो दुख हरण शरण करुणा पत गयो चरण आसरा। नाव रूप पयो साध संग पवनिद पार परा। अपियो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जैत सरी महला पंजवा। जाको पय गोविंद सहाय सुख सहज आनंद सगल स्यों। वाको ब्याज न काई रहाओ। दीसे सब संग रहे अलेपा ने व्यापे उन माई। एक रंग तत के बेते सतगुर ते बुध पाई। दया मया कृपा ठाकुर की सेई संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जैत श्री महला पंजवा। गोविंद जीवन प्राण तन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी। अंधियारे में दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमल अनूप। अनेक बार करो ते बंदन मने चरावो तूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गई तुम्हारी लूक। काड ले हो नानक अपने को संसार पावक के कूप। जय श्री महला पंजवा। कोई जन हर स्यों दे वै जोर चरण गहो बको शुभ रसना। दीजे प्राण अकोर रहाओ।
मन तन निर्मल करत क्यारो, हर सिंचै सुधा संजोर, या रस में मगन होत कृपा ते महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख भंजन,

जवा चात्रिक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूरन पेख देह आन उपाव ना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं हम अनाथ नाथ

जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत के अंचल लावो बिकम नदी जाय तरणी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन में तरणी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग अपरणी जैत श्री मैला पन्नवा हर जन सिमरो हिरदे राम हर जन को अपदा निकट न आवे पूरन दास के काम रहाओ कोट बिगन बिन से हर सेवा नेचल गोविंद काम पगवंश पगत को पौ किछ नाही आदर देवत जाम ताज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिन सत खाम चरण कमल हृदय गहो।

फूलियो मन माया उर्जायो, जो जो कर्म कियो लालच लग, ते ते आप बंदायो रहाओ। समझ न परी दिखे रस रतियो, जस हर को बिसरायो, संग स्वामी सो जान्यो नाहिन, बन खोजन कौता।

जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो जैसरी महला नामा हरजू

आओ। महापतित मुग्ध लोभी सुन करत पाप अभारा, तै मर्दे को विसरत नाहिन तेह चिंता तन जारा। किए उपाव मुक्त के कारण देह दिस कौ उठ धाया, कट ही पीतर बसे निरंजन ताको मर्म न पाया। नाहन गुण नाहन कछ जप तप, कौन कर्म अब कीजे नानक हार पर्यो शरणागत, अबे दान प्रभ दीजे जय श्री महला नावा। मन रे साचा गहो बिचारा, राम नाम बिन मिथ्या मानो।

सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा, पावन नाम जगत में हर को कबहू नाही संभारा, नानक शरण परयो जग बंदन राखो बिरज तुहारा। जय श्री महला पंजवा, संत कर पहला इको अंकार, सतगुरु प्रसाद। श्लोक दर्शन प्यासी दिन सुरात, चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। संत सुन यार हमारे सज्जन, एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हों फिरों खोजंतिया, तिस दस प्यारे

जय प्रभ स्यो मन लीना ज्यो जल मीना चात्रिक जीवे संतिया जन नानक गुरु पू

जाने हाँ किस चिते या हिक दू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा तिना देख।

आई। माँ मंगल रह सिया फिर दयाल सद नवरंगिया, वड पाग पाया गुर मिलाया साध के सतसंगिया। आशा मनसा सगल पूरी त्रै अंक अंक मिलाई, बिनवंत नानक।

श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कथन न जाए अकथ नानक प्रभ शरणागति राखन को समरथ संत ज्यो जानो त्यो राख हर प्रभ तेरिया केते गनो असंख अवगुण मेरिया असंख अवगुण खते फेरे नित प्रत सद पूलिय मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी कूलिय लूक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूं ते नेरिया बिनवंत नानक दया तारो काड पव जल फेरिया श्लोक नृत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिलेन थावे थाओ चंत दूसर नाही ठाओ का पह जाई है आठ पैर कर जोड़ सो प्रभ त्याई है त्याए सो प्रभ सदा अपना मने चिंदिया पाई है तज मान मोह विकार दूजा एक स्यो लिवलाई है अर्प मन तन प्रभु आ गए आप सगल मिटाई है बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाई है श्लोक रे मन पासो त्याई है सब विद जा के हाथ राम नाम तन संचिय नानक निभे साथ संत साथी अड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान संतर आप जल थल पूर सोए जल थल मई अल पूर रहा सर्वदाता प्रभ तनी गोपाल गोविंद अंत नाही बे अंत गुणता के क्या गनी पज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए श्लोक चित जे चित व्या सो मैं पाया नानक नाम ते आए सुख समाया संत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे किलबिक बुझी तप्त अगान्या गह पुजाली ने दया कीने अपने कर मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले जैसरी छंत मैला पंजवा पाधानो संसार गार वे अट्टिया करते पाप अनेक माया रंग रट्टिया लोभ मोह अभिमान बूढ़े मरण चीतना आवे पुत्र मित्र व्योहार बनता ए करत बिहावे पुज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम तन नहीं खटिया उद्यम करे अनेक हर नाम न गावही पर मैं जोन असंख मर जन में आवही पशु पंखी सैल तरवर गणत कछु ना आवे बीज बोवस पोग पोगे किया अपना पावे रतन जन्म हार अंत जुए प्रभु आप न पावही बिनवंत नानक परमे परमाए खिन एक टिकन न पावही जोगन गया बतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन न डीठिया नै नैन दीस है बिन भजन ईस है छोड़ माया चालिया कया ना माने सिर खाक छाने जिन संग मन तन जालिया श्री राम रंग अपार पूरन ने निमख मन में वूठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सुबार ना चूठिया चरण कमल शरणाए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे पजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक।

अखंड ब्रह्मंड पाताल दीप रव्या सब लोई। जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई। श्लोक रचंत जी रचना मात गर्भ अस्थापनं सास सास स्मरण।

छोड़ी जिस विसरत तन भस्म होए कहते सब प्रेम किन ग्रह में बस न देवई जिन सोई है कर अनर्थ गर्भ

मन वसंदड़ो सच सौ नानक हबे दुखड़े उलाए पौड़ी कोट अघा सब नास होए सिमरत हर नाम मन चिंदे।

कदाचने सिमरंत नानक तेजंत विस्तात्र में मुझे अडंबर हब क्यों मंज मोहब्बत ने।

छतर चमर तक आसनं रटंत मूड अज्ञान अंधे नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हब

थोड़ी सपने से पीछे तेरी मुँह रख लाया, बिसरे राज रस भोगे जागत बस

पर जो लोक है जितते पृथ्वी नौ खंडने बिसरंत हर गोपाल नानके ते प्राणी उद्यान भरमणे कौतक कोड़।

राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भते सचंत मिखिया छलंग छिदरंग नानक बिन हर संग।

अजन लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया पौड़ी चल गया ना।

नच भोग रश्मिस्तं नच मिस्तं सुख माया मिस्तं साध संग हर नानके दात मिस्तं प्रभ दर्शनं लगना सोने मन मजाहूं रतिया विधड़े सच थोक नानक मिठड़ा सोधनी पौड़ी।

संता संग उधार सगला दुख लथास। श्लोक भावी उदोत करणं हर रमणं।

मूरत भला संजोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर ध्याय कै मनीष पुजाई। वडे भाग

करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तने। दयाल

اجو نہ پت آئے نگم بھے ساکھی گوتم نار اما

ऐसो अमर मिलियो भगतन को राच रहे रंग ज्ञानी। रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, निरपो होए रहे लिव एकै नानक हर मन मानी। टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी, ताको तो खा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी। रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना, सर्प जैसे अरजारी। नवखंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी। गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी, सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी। टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे इक ओंकार सतगुर प्रसाद। आयो रे मन दह दिस्तायो, माया मगन स्वाद लोभ मोयो, तिन प्रभ आप भुलायो। रहाओ हर कथा हर जस साध संगत स्यो, इक मोहत ना ए मन लायो। बिकस्यो पेख रंग कुसम को पर ग्रह जोहन आ जायो। चरण कमल स्यो पाओ ना कीनो, ने सतपुरख मनायो। तावत को तावे बहु पाती ज्यो तेली बल्द परमायो। नाम दान स्नान न कियो, इक निमख न कीरत गायो। नाना झूठ लाए मन तोख्यो, न बूझियो अपनायो। पर उपकार न कबहू किए, नहीं संत गुर सेव ते आयो। पंच दूत रज संगत गोष्ट मतवारो मदमायो। करो बेनती साध संगत हर भगत वचल सुन आयो। नानक पाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो। टोडी महला पंजवा मानुक बिन बूझे बिरथा आया, अनक साज सिगार बहु करता जो मृतक ओढ़ाया। रहाओ ताए ताए किरपन श्रम कीनो, एकत्र करी है माया। दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज न आया। कर अपरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया, संग न पायो

अयो अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया साध संगत के पाछे परयो जन नानक हर रस पाया टोडी महला पंजवा कृपा निध बसो हृदय हर नीत तैसी बुद्ध करो परगासा लागे प्रभ संग प्रीत रहाओ दास तुम्हारे की पावो दूरा मस्तक ले ले लावो महापति ते होत पुनीता हर कीर्तन गुन गावो आज्ञा तुमरी मीठी लागो कियो तुआरो पावो जो तू दे तही ए तृप्त है आन न कथमू तावो सद ही निकट जानो प्रभु स्वामी सगल रेण होए रही है साधु संगत होए प्राप्त ता प्रभु अपना लही है सदा सदा हम छोरे तुमरे तू प्रभु हमरो मीरा नानक बारक तुम मात पिता मुख नाम तुम्हारो खीरा टोडी महला पंजवा कर दूजा दो पदे इको अंकार सतगुर प्रसाद मांगो दान ठाकुर नाम अवर कछु मेरे संग ना चाले मिले कृपा गुण गाम रहाओ राज माल अनेक भोग रस सगल तरवर की छाम पाए पाए बहुविध को तावे सगल निरारथ काम बिन गोविंद अवर जे चाहो दीसे सगल बात है काम कहो नानक संत रेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम टोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन ए हमारे रहाओ नाम जात नाम मेरी तप है नाम मेरे परवार है नाम सखाई सदा मेरे संग हर नाम मोको निस्तार है विखे विलास कहियत बहुत तेरे चलत ना कछु संगार है।

योग। मुख उजल मन निर्मल होई है, तेरो रहे इहा उहा लोग। रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा, मने चरावो भोग। छोड़ आपत बाद अंकारा, मान सोई जो होग। पंत टहल सोई है लागा, जिस मस्तक लिखिया लिखोग। कहो नानक एक बिन दूजा, हवर न करने जोग। तोड़ी महला पंजवा, सतगुर आयो शरण तुहारी। मिले सुख नाम हर सोबा, चिंता लाए हमारी। रहाओ हवर न सूजे दूजी ठार, हार पर्यो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो बारी। सद बख्शिंद सदा मेहरवाना, सबना दे अधारी। नानक दास संत पाछे पर्यो, राख लेहो ए बारी। टोडी महला पंजवा, रसना गुण गोपाल निद गायन। सांत सहज रहस्य मन उपजो, सगले दुख पलाए रहाओ। जो मांगे सोई सोई पावे, सेव हर के चरण रसायन। जन्म मरण दोहु ते छूटे, पव जल जगत तरायन। खोजत खोजत तत विचारयो, दास गोविंद परायण। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। टोडी महला पंजवा, निंदक गुर कृपा ते हाट्यो। पार ब्रह्म प्रभ पै दयाला, शिव के बाण सिर काट्यो। रहाओ काल जाल जम जोहे ना साके, सच का पंखा थाट्यो। खात खर्चत किछ निखुटत नाही, राम रतन तन खाट्यो। पसमा पूत हुआ खिन पीतर, अपना किया पाया। आगम निगम कहे जन नानक, सब देखे लोग सबाया। टोडी महला पंजवा, किरपन तन मन किलविख भरे। साध संग भजन कर स्वामी, तापन को इक हरे। रहाओ अनक छिद्र बोहित के छुटकत, थाम न जाही करे। जिसका बोहित तिस आरादे, खोटे संग खरे। गली सैल उठावत चाहे, ओए उहा ही है तरे। जोर सकत नानक किछ नाही, प्रभ राखो शरण परे। टोडी महला पंजवा, हर के चरण कमल मन त्याओ। काड कुठार पित बात हंता, औखद हर को नाओ। रहाओ तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास।

प्रभ एक बाल बुद्ध पूरन सुखदाता नानक हर हर टेक टोडी महला पंजवा हर हर नाम सदा सद जाप पार अनग्रो पार ब्रह्म स्वामी वसदी की नी आप रहाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले बिन से शोक संताप हाथ दे राखे जन अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हर नाथ नानक शरण परे दुख पंजन जाका बड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी शरण परे ओ दरबारे कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उधारे रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे साध संग परम गत पाये माया रत बंधारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक आनंद करे हर जप जप।

तप्यो रे मूड़े कछु ना सोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न कीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहु चित लायो। सो संचयो जित पूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा, हमारे एक है हरी हरी। आन अवर सिंहान न करी, रहाओ वड़े पाग गुर अपना पायो। गुर मो को हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार व्यवहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किछ तिसके

पूरो मन हर रंगो लोड़े गाली हर नी न होए राव हौ तू देंदी दर्शन कारण बीती बीती देखा गुरमिल परम गवाया है ए बुद्ध पाई मैं साधु कन्नो लेख लिखियो तुरमाते ए बिद नानक हर नैन अलोए टोडी महला पंजवा गर्व गैलड़ो मूडड़ो ही ओरे हियो महराज री मायो डीहर न्याई मोहे।

सागलो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लैणो महराज री गाठड़ियो, जन नानक गरबार।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दोख और अहंग रोग के तन से सगल दूर कीन रहाओ। बंधन तोर छोर बिख्याते, गुरु को शब्द मेरा ही रह दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचार्यो, प्रेम गयो मोहे हर रंग पीन। पेख्यो लालन पाट बीच खोए, आनंद चिता हरखे पतीन। तिसी को गृह सोई प्रभ नानक, सो ठाकर तिसी को तीन। टोडी महला पंजवा, माई मेरे मन की प्रीत, एही कर्म तरम जप एही, राम नाम निर्मल है रीत रहाओ। प्राण आधार जीवन तन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट काट तो सासंग मोरे, मन अपने को मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पै मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। टोडी महला पंजवा, प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक ही रहते। अपने भगत को पूरन दान रहाओ, खोवो परम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामी सुगड़ सुजान, कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभ मान। आठ पैर रसना गुन गावे, जसपुर अगावे समरथ कान। तेरी

दीन दयाल प्रीतम मनमोहन कर कृपा मेरी लोचा पूर रहाओ देह विसरव रहा जस तुमरा अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जस गावे करते से जन कबो न मरते चूर कंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस

दर्शन देखन को तारी मन आस रहाओ, सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विख नास, पूरन पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास। संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ पर कृपा पेटे गुण पास, सांत सहज सुख मन उपजो कोट सूर नानक परगास। टोडी महला पंजवा हर हर पतित पावन, जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन। रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता, रिद दास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म पूम बीजन सो खावन। बिस्मन बिस्म पै बिस्मादा, आन न बियो दूसर लावन। रसना सिमर सिमर जस जीवा, नानक दास सदा बल जावन। होडी महला पंजवा माई माया छल, त्रिण की अगन मेघ की छाया। गोविंद भजन बिन हर का जल, रहाओ छोड़ सियान बहु चतुराई। दो कर जोड़ साध मग चल, सिमर स्वामी अंतर जामी मानस देखा ए उत्तम फल। वेद बख्यान करत साधु जन, पागहीन समझत नहीं खल। प्रेम भगत राचे जन नानक, हर सिमरन दहन पे मल। तोड़ी महला पंजवा माई चरण गुर मीठे, वडे पाग देवे परमेश्वर। कोट फला दर्शन गुरु डीठे, राव गुण गावत अचुत अविनाशी। काम क्रोध बिनते मद पीठे, अस्थिर पे सात रंग राते। जन्म मरण बहुर नहीं पीठे, बिन हर भजन रंग रस जेते। संत दयाल जाने सब चूठे, नाम रतन पायो जन नानक। नाम बिहून चले सब मूठे, टोडी महला पंजवा। साध संग हर हर नाम चितारा, सहज आनंद होवे दिन राती। अंकुर पलो हमारा, रहाओ गुर पूरा पेट्यो बड़ पागी। जाको अंत न पारा वारा, कर गए काड लियो जन अपना। दिख सागर संसारा, जन्म मरण काटे गुर बचनी। बहुर न संकट द्वारा, नानक सर।

चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तेन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न तुख। टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उधार सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारे रहाओ। पुन दान पूजा परमेश्वर हर तीरथ तत् विचारे गुण गावत अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पारगम अपने कीने तिनका बहुर कछ न विचारे नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ में।

पासों रुच उपजाई दीन बंद सुमरियो नहीं कभू होत जो संग सहाय। मगन रहो माया में निस दिन छुटी न मन की काई सह नानक अब नाहीं अनत गत बिन हर की शरणाई।

कोई बोला निर्वाह, कोई बोला दूर, जल की माछली चरा खजूर, कांगरे बकबाद लायो, जिन हर पायो तिन्हें छपायो रहाओ। पंडित होए के देख बखाने, मूर्ख नाम देव राम जाने, कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही, पतित पवित भय राम कहत ही रहाओ। राम संग नाम देव जन को प्रतिज्ञा आई, एकादशी व्रत रहे काहु को तीर्थ जाई, पनक नाम देव।

कुम्हार के परहांडी अच्छे है, राजा के कौशांडी दो, बामन के कर रांडी अच्छे है, रांडी सांडी हांडी गो, बानवे के कर हिंग अच्छे, पैसर माथे सिंह गो, देवल मदे लीग अच्छे है, लीग सीग हीग गो, तेली के कर तेल अच्छे, जंगल मदे देल गो, माली के कर केल अच्छे है, केल बेल तेल गो, संता मदे गोविंद अच्छे, गोकल मदे श्याम गो, नाने मदे राम।

सुन मन अकत कथा हर नाम, रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावे, पाई गुरुमत हर राम राम रहाओ। नाना ज्ञान पुराण जस उत्तम, खट दर्शन गावे राम, शंकर करोड़ 33 त्यायो, नहीं जानियो हर मरमाम। सुर नर गण गंधर्व जस गावे, सब गावत जेत उकाम, नानक कृपा करी हर जिनको, ते संत पले हर राम। बैराड़ी महला चौथा, मन मिल संत जना जस गायो, हर हर रतन रतन हर नीको, गुर सतगुरु दान दिवायो रहाओ। किस जन को मन तन सब देवो, जिन हर हर नाम सुनायो, तन माया संपै तिस देवो, जिन हर मीत मिलायो। किन किंचक कृपा करी जगदीशर, तब हर हर हर जस प्यायो, जन नानक को हर पेते स्वामी, दुख हो में रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कोटम करके पाप सब खो गए, हर पवजल पार उतारा रहाओ। काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निरपो निर्वैर निरंकारा, हर मुक्त बस्त कछ नगर न आवे, हर लादा गुरु विचारा। हर आपे साव सराफ रतन हीरा, हर आप किया पासारा।

सदा सदा हर त्याय सुखदाता जा का अंश न पारा वारा रहाओ। अगन कुंट में उर्द लिव लागा हर रात है उधर मंजारा सो ऐसा हर सेवो मेरे मन हर अंश छदावन हारा। जा के हृदय बसया मेरा हर हर इस जन को करो नमस्कारा हर कृपा के पाये हर जप नानक नाम आधारा। बैरारी महला चौथा जप मन हर हर नाम हित त्याए जो इच्छे सोई फल पावे फिर दुख ना लागे आए रहाओ। सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर्षो प्रीत लगाए दिन हर प्रीत होर प्रीत।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। राज कुलंग महला पहला कर पहला

आपे साजे आपे रंगे आपे नदर करे, नानक कामन कंसे भावे आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, तिलंग ये मानरा।

सब आए हुकम खसमाओ हुकम सब वर्तनी सच साहिब साचा केले सब हर तनी साला है सच सब ऊपर हर तनी जिस ना ही कोई शरीक किस लेखे हो गनी रहाओ कौन पानी धरती आकाश कर मंदिर हर बनी विच वर्ते नानक आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित नेफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने बलवंच कर झूठ तब जाने जग जितिया ऐसा बाजी सहसार ना केते हर नामा खिन में दिन सह सब झूठ मेरे मन के आए रामा रहाओ सावेला चित ना आवे जित आए चंतक काल ग्रस है किस नानक ले छदाए जिस कृपा कर हृदय वसै तिलंग महला पंजवा कर कहला।

पैदाए खुदाए बंदे चश्मगी दंग फनाए दुनिया मुर्दार खुरदनी गाफल हवाए रहाओ गैबान हैवान हराम कुत्तनी मुर्दार बखुराए दिल कब्ज तब जाता दरो दोजक सजाए वली नियामत बिरादरा दरबार मिल खनाए जब अजराइल बतनी तब चेकारे विदाए हवाल मालूम कर दंग।

तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। सब ऊपर पार ब्रह्म दा तार, तेरी टेक तेरा आधार। रहाओ है तू, है तू होनहार, अगम आगाद ऊंच अपार। जो तुझ से है तिन पौ दुख नाही, गुर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिन सहसो तेरा रूप, गुण निदान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक करम प्राप्त होए। जिन जपया किसको बलिहार, किसके संग तरह संसार। कौन नानक

आवे गुण तामन तामन करे तो प्यारे तो पावे जो दिल मिलिया सो मिल रहा मिलिया कहिए रे सोई जे बो तेरा लोची है बाकी मेल न होई ताप मिले कुन ताप को लिव लिव को तावे गुर पर सादी जानिए तो अनपो पावे पानावारी हुए कर खरसार न जाने रसिया होवे मुस्का तब फूल पछाने अप्यो पीवे जो

हरकिया कथा कहानियां गुरमीत सुनाया। बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाया। आए मिल गुर सुख आए मिल तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ। हर ते गुण हर पाऊंगे से गुरु ते पाए। जिन गुर का पाना मन्या तिन तुम तुम जाए। जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को है वारी। जिन गुर की चाकरी तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तनहारा। गुर सेवा ते पाई है गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आएंगे ते जन परवाना। तिन वित्तो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। सा हर तेरी उस्तत है जो हर प्रभु पावे। जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जिना हर से की तिरहड़ी बिना जीव प्रभु नाले। कोई जप जप प्यारा जीव दे हर नाम समाले। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिनको कुम जाया। कोई आप छुटे परवार स्यों सब जग रखाया। गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तनो। गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुनो। जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन परानी। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुर्बानी। गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाया। हर गर्जे पहनाया हर आप गल लाया। जो गुरमुख नाम के आएंगे तिन दर्शन दीजे। हम तिन के चरण पखाल दे दूर कोल कोल पीजे। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया। हर हर कदे ना चेते हो जम पकड़ चलाइया। जिन हर नामा हर चेतिया हृदय उधारे। तिन जम नेर न आवई गुर सिख गुर प्यारे। हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने। नानक जिन सतगुर चेतिया रंग रलिया माने। सतगुर दाता आखिए उस करे पसाओ। हों गुर वित्तो सदवारिया जिन बितड़ा नाओ। सो तन गुरु सावास है हर देश नेहा। हों वेख वेख गुरु विदसिया गुर सतगुर देहा। गुर रसना अमृत बोल दी हर नाम सुहावी। जिन सुन सिखा गुर मन्या तिन्ना पुख सब जावी। हर का मार्ग आखी है कहो कित विद जाइए। हर हर तेरा नाम है हर खर्च ले जाइए। जिन गुरमुख हर आराध्या शेषा वरदाने। हो सतगुरु को सगवारिया गुर बचन समाने। तू ठाकर तू साहिब हो तू है मेरा मीरा। तुझ पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा। आपे हर इक रंग है आपे बहुरंग।

जाग ले हो रे मना जाग ले हो कहां गाफिल सोया जो तने उपजिया संग ही सो भी संग न होया रहा माँ पिता सुत बंग जन हित जासियों की ना जियो छूटे हो जब देहते दार अगन में दीना जीवत लोग जो हार है जग को तुम जानो नानक हर गुण गाय है सब सुखन सुमानो तिलंग महला नाम हर जस रे मना गाय जो संगी है तेरो अवसर भी त्यो जात है कहो मान ले मेरो रहा संपत रख तन राज्यों अपने हो लगायो काल पास जब गल परी

तेज कतेब इस तरह पाई दिल का फिक्र न जाए। सुख दम करारी जो करो हाजिर हजूर खुदाए। बंदे खोज दिल हर रोज ना सिर परेशानी माहे। ए जो दुनिया शहर मेला दस्तगीरी नाहे। रहाओ दरोग पढ़ पढ़ खुशी होए बेखबर बाद बताए। हक सच खालक खल

क्या करी, नामे के स्वामी बसंत तू हरे। हल्ले यारा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाव रहाओ। कुजा आमद कुजा रफ्ती।

दूध करम पुन सुर समायण होए निराश जमावो। जपो ताए को नामा अवर निराशुल कामा रहाओ। ए मन की ती हाथ करो सुन नेत्रो नींद ना आवे। रसना नाम जपो तब मतिय इन बिज अमृत पावो। मन संपत जित सत्सर नावन पावन पाती तृप्त करे। पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहिब रवत रहे। कहें कहे कह जावे तुम सर अवर न कोई।

अंतर वसे ना बाहर जाए, अमृत शोध काहे बिख खाए, ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, हो चाकर साचे केरे रहाओ। ज्ञान ज्ञान सब कोई रवे, बांधन बांधिया सब जग पवे, सेवा करे सोचा कर होए, जल तल मैयल रव रहा।

उज्जल कैहा चिलकना कोटम कालड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरे जेसो तोवा तिस सज्जन से नाल में चलदिया नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दिसन रहाओ कोठे मंडक मा

जप तपता बंद देरला जित लंगे वहेला ना सरवर ना उछले ऐसा पंख सुहेला तेरा एक नाम मजीठड़ा रखता मेरा चोला सद रंग तोला राव साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवे गंठड़िया मेलेगा कोई मिलिया होए ना विछड़े जे मिलिया होई आवा गुण निवारिया है साचा सोई हों मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सहते अमृत बोला नानक तह कहे लियो सौ खरा प्यारा हम सह केरिया दासियां साचा कसम हमारा सुई महला पहला जिनको पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करे पसाओ दुख विसार सी सहसा मूले नाने सर प्रकार सी तिना मिलिया गुर आए जिनको लिखिया अमृत हर का नाम देव दीखिया चाले सतगुरु पाए पवे ना सीखिया जा को महल हजूर दूजे निवे किस दर दरवाई नाहे मूले पुछ तिस छुटे ताके बोल साहिब नगर जिस कल्ले आए आप जिस नाही दूजा मते कोए चाहे उसारे साज जाने सब सोए नाव नानक बख्शीस नदरी कर्म होए सूही महला पहला पांडा हच्छा सोए जो तिस पावसी पांडा अतमलीन तोता हच्छा न होए सी गुरु द्वारे होए सो जी पाए सी एक द्वारे तो हच्छा होए सी मैले हच्छे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे ही कर्म कमाए तेहा होए सी अमृत हर का नाम आप वरताए सी चलिया पक्षों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा ते लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सुही महला पहला जोगी होवे जोग वे पोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नाए तेरा सदना सुनी जय पाई जे तो बह अलाए रहाओ जैसा बीज है सो लुणे जो खते सो खाए अग्गे कुछ न हो गई जैसा निशाने जाए कैसो जैसा काढ़िए जैसी कार कमाए जो दम चित ना आवई सो दम दिरथा जाए ए तन वेची बैकरी जे को ले विकाए नानक कम न आ

सतगुरु प्रसाद। जोग ना संसार, जोग ना दंड, जोग ना पशु चराय, जोग ना मुंडी मूल मुदाय, जोग ना संगी वाई, अंजन मन निरंजन रही है, जोग जुगत तुर पाई है। गली जोग ना होई, एक दुष्ट कर संसर जाने, जोगी कहीं सोई रहा। जोग ना बाहर मरी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देश दिशंतर पवे, जोग ना तीर्थ नाई है। अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है। सतगुरु पेटे कांच ऐसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है। निजर झरे सहज तुन लागे, कर ही परचा पाई है। अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत के उपाय है। नानक जीव किया मर रही है, ऐसा जोग कमाई है। वाजे बाजो सुजी वाजे, तो निरपो पद पाई है। अंजन माई निरंजन रही है, जोग जुगत तो पाई है। सुई महला पहला, कौन तराजी कौन तुला, तेरा कौन शराब दुलाला, कौन गुरु कह दिखिया।

इन विद चुप रहावा। आपे कंडा तोल तराजी आपे तोलन हारा, आपे देखे आपे बूझे आपे है वनजारा। अंगला नीचे जाप परदेसी सुना आवे तुल जा।

मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के, मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन प्रबोधिया, हर किया रस गट के रहाओ। सब संगत उत्तम सब गुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सब संगत, हम तोवे पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी किस किस के। हमरी जात पात गुर सतगुर, हम देखियो सुर गुर के, जन नानक नाम पढ़ो गुर चेला, गुर राखो लाज जन के। सुई महला चौथा, हर हर नाम पजियो पुरखोत्तम, सब दिन से बाल दलगा, कौ जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी, हर अस्थिर से सुख समगा। मेरे मन पज राम नाम अतिरगा, मैं मन तन अर्प करो गुर आ गए, सिर वेश लियो मूल महंगा रहाओ। नरपत राजे रंग रसमान है, दिन नाने पकड़ खड़े सब कलगा, कर्म राय सिर डंड लगाना, सिर पछताने हाथ पलगा। हर रात रात जन किरम तुम्हारे, शरणागत पुरख प्रत पलगा, दर्शन संत जो सुख पावे, प्रभ लोच पूर जन तुमगा। तुम समर्थ पुरख वदे प्रभ स्वामी, मोको की जय दान हर निमगा, जन नानक नाम मिले सुख पावे, हम नाम विटो सर तुमगा। सुही महला चौथा, हर नामा हर रंग है, हर रंग मजीत है रंग, गुर पुठे हर रंग चालिया, फिर बौड़ ना होवी पंग, मेरे मन हर राम नाम कर रंग, गुर पुठे हर उपदेशिया, हर के प्यारा निसंग रहाओ। मुंड आनी मन मुखी, फिर आवन जाना अंग, हर प्रभु चित ना आयो, मन दूजा पाओ सैलंग, हम नैल परे दो चारिया, हर राखो अंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया, सब लाथे किलिस पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभु, सत्संगत मेलो संग, निर संगत हर रंग पाया, जन नानक मन तन रंग। सुई महला चौथा, हर हर करें नित कपट कमावे, हृदय शुद्ध न हुई, अंगिन कर्म करें बहु तेरे, सुखने सुख न होई, ज्ञानी गुरु बिन भगत न होई, कोरे रंग कदे न चढ़े, जे लोचे सब कोई रहाओ। जप तप संजम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग न जाई, अंतर रोग महा अभिमाना, दूजे पाए खुआई। बाहर देख बहुत चतुराई, मनवा जय विस्तावे, होमे व्याप्या शब्द न चीने, फिर जूनी आवे। नानक नदर करे सो गूंजे, सोजन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजे, एक समाए।

गुरमत नगरी खोज हो जाए, हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरे मन हर हर शांत बसाई, कृष्णा अगन बुझी छिन अंतर, गुरु मिले सब दुख रवाई, रहाओ हर गुण गावा जीना मेरी माई, सतगुरु दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभु प्यारा टूट टुडाई, सत संगत मिल हर रस पाई, तुरमस्तक लेख लिखे।

नानक हर रस हर रंग समावे, तू ही महला चौथा। जेवा हर रस रही अगाए, गुरमुख पीवे सहज समाए। हर रस जन चाखो जे पाए, तौकत अनत साध लो भाई। रहाओ गुरमत रस राखो उरधार, हर रस राते रंग मुरार। मनमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए। नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण।

नीच जात हर जपत्या उत्तम पदवी पाए। पूछो विदरदाती सुत किसन उतरिया कर जिस जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाए, जित तैसा दुख पूख सब ले जाए। राव रविदास चमार उस्तत करे, हर कीरत निमक इत गाए। पतित जात उत्तम भया चार वरन पे।

हर हर त्याय मन मेरे मन त्याय हर जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। सुर भगत जना को बख्शिया हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख हो वह तो उनकी रीस करे तिस हल्त पलक मोहकारा। से भगत से सेवका जिना हर नाम प्यारा। तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक कै पवे चारा। जिस कार वृत्ति सोई जाने जगत गुरु नानक पूछ करो बिचारा। चौपीड़ी आग जुगाद बकीली किने न पायो हर सेवक पाए निस्तारा। सुही महला चौथा जिते हर आराध्य तिथे हर मित सहाय। गुर कृपा ते हर मन वसे होरत बिद लया ना जाय। हर तन संचिय पाई जे हल्त पलत हर होए सखाई रहाओ। सत्संगती संग हर तन खटी है होरत है होरत उपाय हर तन किते न पाई। हर रत्ने का वापारिया हर रतन तन विहाजे। कच्चे के वापारिये वात हर तन लया न जाय। हर तन रतन जरे हर मानक हर तने नाल अमृत वेले वत्ते हर पगती हर लिव लाई। हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजिया पगत खाए खर्च रहे निकुटे नाही। हल्त पलत हर तने की पगता को मिली वड्याई। हर तन निरपो सदा सदा अस्थिर है साचा। ए हर तन अग्नि तस्कर पानी है जमदूत है किसे का गवाया न जाई। हर तन को उचका नेड़ न आवई जम जा गाती दंड न लगाई। साक्षी पाप करके बिख्या तन संचया तिना एक विख नाल न जाई। हल्के विस्थाक दुहेले पै हथों छुड़ गया अग्गे पलत साकत हर दरगे तोई ना पाई। इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो देह तो हर तन लग चलाई। इस हर तने का तोता कभी न आवई जन नानक को गुर सो जी पाई। सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवे सो पगत तो परवान। किसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसया हर पुरुष भगवान। गोविंद गुण गाये जी।

जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध प्रेम दे सो नेफल सब अज्ञान जिसनो प्रतीत होवे तिसका गावया थाए पवे सो पावे दरगे मान जो बिन प्रतीत

कर सकी अपना कीता किसु न होवे ज्यो हर पावे त्यो रखी है। मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किस कर हम साके ज्यो पावे तिवें बस रहाओ। सब जियो पिंड दिया तुद आपे कारे लाया जिहा तू हुक्म करे तेहे को कर्म कमावे जिहा तू तुर लिख पाया। पंच तत् कर तुद सिस्ट सब काजी कोई सेवा करो जे किसीता होवे इक ना सतगुर मेल तू बुझावे इक मनमुख करे सिरोवे। हर की वड्याई हौ आख ना साका हौ मूरख मुगद निचान जन नानक।

जल फल मैयल रे आपरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर। लोक पतिया रे कछु न पाइए, साथ लगे ताहो में जाइए। जिसनु लाए ले सो लागे, ज्ञान रतन अंतर जिस जागे। दुर्मत जाए परम पद पाए, गुरु प्रसादी नाम ते आए। दो कर जोड़ करो अरदास, खुद पावे ताने।

माने हुकम तजै अभिमान तैसे राती रलिया माने सुन सकिए प्रम मिलन निशानी मन तन अर्प तज लाज लोकानी रहाओ सकी सहेली को समझावे सोई कमावे जो प्रभ पावे सा सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रैन बिहावे कर्महीन मन मुख दुख पावे दिनों करी जे जाना दूर प्रभ अविनाशी रहा भरपूर जन नानक गावे देखा दूर सुई महला पंजवा गृहवास गुर की ना हो कर किनार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री में कर की जोड़ी आस प्यासी तिर को लोड़ी कवन कहा गुणकंत प्यारे सुगर स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिगार पौ अंजन पाया अमृत नाम कंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा फिर कर आवे गुण कामन कर कंत रिझाया वस्त्र लीना गुर परम चुकाया सबसे ऊंचा मंदिर मेरा सब कामन त्यागी प्रियो प्रीतम मेरा प्रगटिया सूर ज्योत उजियारा सेज विछाई सर्द अपारा नवरंग लाल सेज रावण आया जन नानक फिर तन मिल सुख पाया सुही महला पंजवा तुम क्यों हियो मिलन प्रवताई खोज करो देखो प्रह जाई सुन सदेश प्रह गृह सेज बिछाई प्रम प्रम आयो तो नजर न पाई किन विद हीरो तीरे निमानो मिलता जन हो तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विछी तन कंता तन सूती तिर सज्जा गंता पियो मधुरो तन मतवंता तन जागे जे तिर

क्या सेव कमावो, क्या कहरी जावो, विद कित पावो दर सारे, मित नहीं पाये अंत न लइए, मन करते चरनारे, पावो दान तीठ होए मांगो, मुख लागे संतरे नारे, जन नानक को गिर

कुचल कठोर कामी मुख की जय। दर्शन देखे की वड्याई, तुम सुखदासे पुरुष सुवाई। रहाओ दूजा सुही महला पंजवा, बुरे काम को ऊठ खलोया। नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बूझे ना आना। माया मोह रंग लपटाना, रहाओ लोभ लहर को बिगत फूल बैठा। सात जना का दर्श ना जीता, कभू ना समझे अज्ञान गवारा। बहुर बहुर लपट्यो जंजारा, रहाओ बिके नाद कर्म सुन पीना। हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही रे पेखत अंधे। छोड़ जाए चूठे सब तंदे, रहाओ कहो ना।

जिसे बुझाए किस नाम लेना। सुई महला पंजवा कर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पान ले लटकावे, परमे पूला साकत फिरता, नीर बिरोले खप खप मरता।

गुरु मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल मैयल पूरन विदाता, सुही महला पंजवा। लालन रावया कवन गतिरी, सखी बताओ मुझे मतीरी, सुहब सुहब सुहवी, अपने प्रीतम के रंग रती, रहाओ पामलो संग नैन पतीरी, जहाँ पठाओ जाओ ततीरी, जब तब संयम देव जतीरी, एक निमख मिलावो मोय प्राण पतीरी, मान तान अहं बुद्ध हतीरी, सा नानक सो।

ऐ खरीद हो दासरो तेरा तू पारो ठाकुर गुणी गहेरा कोट दास जा के दरबारे निमक निमक वसै तिस नाले हो किछ नाही सब किछ तेरा ओत पोत नानक संग बसेरा तू ही महला पंजवा सूक मैल जाके ऊंच द्वारे ता मैं वासे भगत प्यारे सहज कथा प्रभ की अतनी थी विरले काहू नेत्रों दी थी रहाओ चहे गीत नाद अखारे संगा उहा संत करे हर रंगा चहे मरण ना जीवन सोग ना हरखा साच नाम की अमृत वरखा दोहज कथा ए गुर ते जानी नानक बोले हर हर बाणी सूही मैला पंजवा जाके दर्श पाप कोट उतारे पेटत संग ए पवजल तारे ओए साजन ओए मीत प्यारे जो हमको हर नाम चितारे रहाओ जाका सबद सुनत सुख सारे जाकी तैल जमदूत बिदारे जाकी तीरथ इस मने सुधारे जाके सिमरन मुख उजलारे प्रभ के सेवक प्रभ

बादशाह शावा पारी मरना जोधी से सो काले करना पूरे मोह लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निधान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात तुही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारे सगल समगरी सूत तुम्हारे तू प्रीतम तू प्राण अदारे तुम ही पेक पेक मन विसारे रहाओ अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे ओट गही अब साथ संगारे अगम अगोचर अलखा पारे नानक सिमरे दिन रह नारे सुही महला पंजवा कवन काज माया वड्याई जाको बिन सतबार न काई ए सुखना सोत नहीं।

जाके सिमरन कच पौना व्यापे सदा सदा नानक हर जापे सुही महला पंजवा। गुर के बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूरत दर्शन बलिहारी चरण कमल मन प्राण हारी रहाओ साथ संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करन आधारी काम क्रोध लोभ मोह तजारी दृढ़ नाम दान इस

लोभ मोह मगन अपराधी करणहार की सेवना साधी पतित पावन प्रभु नाम तुम्हारे राख लियो मोहि निर्गुनियारे रहाओ तू दाता प्रभु अंतर जामी काची दे मान अभिमानी स्वाद बाद ईर्ष मद माया इन संग लाग रतन जन्म गवाया दुख पंजन जग जीवन हर जाया सगल त्याग नानक शरणाया सुही महला पंजवा चेखत चाखत कहियत अंधा सुनियत सुनिए नाही निकट वस्त को जाने दूरे पापी पाप कमाही तो कित कर जित छुटे प्राणी हर हर नाम जब अमृत बानी रहाओ कोर महल सदा रंग राता संग तुम्हारे कछु ना जाता रखे तो चार माटी का भांडा अत कुचीर मिले जम डांडा काम क्रोध लोभ मोह बांधा महागर्त में निगरत जाता नानक की अरदास सुनी जय डूबत पान प्रभ मेरे नी जय सुही महला पंजवा जीवत मरे बुझे

पहचाने, कट कट अंतर पार ब्रह्म पहचाने, जो किस करे सोई पल माने, आद अंक की कीमत जाने, कहो नानक तिस जन बलिहारी, जा कह हृदय वसै मुरारी, सुही महला पंजवा, गुर परमेश्वर करने हार, सगल सृष्टि को दे आधार, गुर के चरण कमल मन त्याए, दुख दर्द स्तन ते जाए, रहाओ पल जल डूबत सतगुर काडे, जन्म जन्म का टूटा गांडे, गुर की सेवा करो दिन रात, सुख सहज मन आवे सांत, सतगुर की रेण वड पागी पावे, नानक गुर को सद बल जावे, सुही महला पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस जाइए, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सगल कटा का अंतर जामी, रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूरन निर्मल रीत, संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला।

अपनी शरण वास प्रभु दाते, गुरु प्रसाद किने विरले जाते। सुनो बिनो प्रभु मेरे मीता, चरण कमल वसे मेरे चीता, नानक एक कर।

कोट आवज किस वेदक नाहे, हर चरण शरण गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम किस ना बिदार है, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मुरारी। सुही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, अनंत दिनोद मंगल सुखताहा, चल सखिए प्रभ

मन तन प्राण जियो अर्पाहा, हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा, दीन दयाल करो उत्साह, नानक दास हर शरण समाहा। सूही महला पंजवा। वैकुंठ नगर जहां संत वासा, सब चरण कमल रिद महि निवासा, सुन मन तन तुझ सुख दिखलावो, हर अनेक बिंजन तुझ भोग पुंचावो, रहाओ अमृत नाम पुंच मन माही, अचरज साध ताके बरने।

कर कृपा प्रभ अपना करया, तुम्हें छदाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महा विकराला, खिन में दूर किए दयाला, सोग रोग विपत अत भारी, दूर पई जपना मुरारी, दृष्ट तार लीनो लड़ लाए, हर चरण गए नानक शरणाए, सुई महला पंजवा दीन छदाए, दुनी जो लाए, दोही सराय खुनामी कहाए, जो जिस पावे सो प्रवान, अपनी कुदरत आपे जान रहाओ, सच्चा कर्म पुन पला कराए, दीन कह तो से दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे, अगम अगोचर सच सा।

सब अविनाशी रैन दिन गाओ जीवत मरत नहीं चल पावे थाओ सो साहो सेव जित तोट ना आवे खाप खर्चत सुख आनंद बिहावे जग जीवन पुरख साध संग पाया बुर पर साध नानक नाम ते आया सुई महला पंजवा गुर पूरे जब कह दयाल दुख बिन से पूरन पई काल देख देख जीवा दर्श तुम्हारा चरण कमल जाई बलिहारा तुझ बिन ठाकुर कौन हमारा रहाओ साध संगत क्यों प्रीत बने आई पूरब कर्म लिख तुर पाई जप हर हर नाम अचरज प्रताप जाल न साके तीने ताप निमख न बिसरे हर

आद गावे गुण सदा रसाला रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा जिस कृपा करे बसे तिसनेरा जन की पूछ तेरा नाम आहार तू दाता प्रभ देवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुही महला पंजवा दैती जात करे दृष्ट ना तारक मिथ्या मोह बंदे नित पारक माजरे पाज दिन नित रहने जन्म पदार्थ जीत हर तरण रहाओ सर्प विकार दो कर चारक राम रतन रिद तिल नहीं कारक परण पोखण संग औद बिहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी शरण समरथ अगोचर स्वामी उदर नानक प्रभ अंतर जामी सुही महला पंजवा साथ संग तरे पैसागर हर हर नाम सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण दुख रोग सोग सब बिनसे गुर पूरे मिल पाप सजायण रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ मन तन निर्मल साज सुहाओ आठ पैर पार ब्रह्म त्याय पूर्व लिप्त होए ता पाई है शरण पे जप दीन दयाला नानक जाके संत रवाला सुही महला पंजवा कर का काज ना जाने रूड़ा चूठे तंदे रचियो मूड़ा जित तू लावे तित तित लगना जा तू दे तेरा नाव जपना रहाओ हर के दास हर से तीरा ते राम रसायन अंदिन माते वहाँ पकड़ प्रभ आपे काटे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधर स्वामी प्रभ कृपा धारे नानक दास हर शरण द्वारे सुई महला पंजवा संत प्रसाद नहीं चल कर पाया सर्व सुख फिर नहीं डुलाया गुरु त्याए हर चरण मंची ने ताते करते अस्थिर कीने रहाओ गुण गावत अचुत अविनाशी ताते काटी जम की फांसी कर कृपा लीने लड़ लाए सदा आनंद नानक गुण गाए सुही महला पंजवा अमृत बचन साध की बाणी जो जो जपे तिस की गत होवे हर हर नाम नित रसन बखानी रहाओ कली काल के मिटे कलेसा एको नाम मन में परवेसा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर शरणाई सुही महला पंजवा करती जा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूरन कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चले जपनाला नानक जाके संत रवाला सुही महला पंजवा किस दिन दूजा और ना कोई आपके थम्मे सच्चा सोई हर हर नाम मेरा आधार करण कारण समरथ अपार रहाओ सब रोग मिटावे नवा निरोआ नानक रखा आपे होआ तुही महला पंजवा दर्शन को लोचे सब कोई पूरे पाग परा

अनेक दया न पाए, अनेक जन्म बीतने परमाई, कर वासना देवे दुत्तर माई, दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष न दीजे किरत पवाई, सुन साजन सा

कामना तौल हर जित हर बिसराए रहाओ अनद गरीबी साथ संग जित प्रभ चित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपताए ईसन पीस ओट कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना कितै काज जित नह तृप्ताए नगन फिरत रंग एक कह ओ शोभा पाए पाठ पटंबर देत्या जे रच लो भाए सब किस तुमरे हाथ।

न्याय पद अभिमान सरनी परो हर गुण निध पाए अवलोकन पुनः पुनः करो जन का दरसार अमृत बचन मन में सिंचो बंदो बार बार चितवो मन आशा करो जन का

लेना। जब मन गोविंद एक है और नहीं को लेख है, संत लाग मने चार दुबदा की पुरिया। रहाओ निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया पिन पिन पिन पिन करिया। विच मन कोटवरिया निज मंदर प्रिया, तहां आनंद करिया। नह मरिया नह जरिया कीर्तन जुरिया, बहुविध फिरिया पर को हिरिया। दिखना किरिया अब साधु संग परिया, हर द्वारे खरिया।

रात मंडल की नो आखारा, सगलो साज रखियो पासारा, रहाओ बहुविध रूप रंग अपारा, देखे खुशी भोग नहीं हारा, सब रस लैत बस निरारा।

सत तेरी सामग्री सत तेरा दरबारा सत तेरे खादिया सत तेरा पसारा तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा हौ कुर्बानी तेरिया सेवका जिन हर नाम प्यारा सबे इच्छा पूरिया जा पाया अगम अपार।

साई भगत जो तुद पावे तू सर्व जिया प्रत पाला। मेरे राम राय संता टेक तुम्हारी, जो तुद पावे सो परवान, मन तन तू है आधारी। राव तू दयाल कृपाल कृपा निज, मनसा पूरन हारा, भगत तेरे सब प्राण पत प्रीतम, तू भगतन का प्यारा। तू अथाव अपार अत ऊंचा, कोई अवर न तेरी भांते, ए अरदास हमारी स्वामी, विसर नाही सुख दाते। दिन रैन सात सात गुण गावा, जे स्वामी तुद पावा, नाम तेरा सुख नानक मांगे, साहिब तुठे पावा। तू ही मैला पंजवा, विसरे नाही जित तू कभू, सो थान तेरा केहा, आठ पैर जित तुद तिराई, निर्मल होवे देहा। मेरे राम हों सो थान पालन आया, खोजत खोजत पया साथ संग, तिन शरणाई पाया। रहा वेद पड़े पर ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरे बिल लाते, ते भी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते,

निमुष सिमरत जी छूटे। संतोषागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन कहा, सो गुरु प्रकादी करिए रहाओ। को तीर्थ मजन स्नाना, किस कल में महल पर ही जय, साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर ली जय। वेद कते सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अखर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौ वर्णा को सांझा, गुरुमुख नाम जपे उदरे सो कल में, कट कट नानक माजा। सोई महला पंजवा, जो कुछ करे सोई प्रभु माने, ओए राम नाम रंग राते, जिनकी शोभा सब नी थाई, जिन प्रभु के चरण पर आते। मेरे राम हर संता जेवड ना कोई, भगता बने आई प्रभु अपने स्यों, जल थल में यल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरे, जमता के नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया होवे, तिन हर स्यों आन मिलावे। माया मोह परम पौ काटे, संत शरण जो आवे, जेहा मनोरथ कर आराधे सो संतन ते पावे। जन की महिमा के तक बरनो, जो प्रभ अपने पाने, कहो नानक जिन सतगुर पेटिया, से सब ते पे निकाने। सुही महला पंजवा, माँ अगन ते तुद हाथ दे राखे, पै तेरी शरण आई, तेरा मान पान रिद अंतर होर दूजी आस चुकाई। मेरे राम राय तुद चित आये उबरे, तेरी तेग परवासा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंधकूप से काढ़ लिए तुम, आप पे कृपा।

आप खड़े हर संत तुम्हारे जिन पर तन हर नामा परवान गणी से आए सफल तिना के कामा मेरे राम हर जन कह हों बल जाई।

अच्छा ही सच्चे से पीराते, सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके से तिन जाते। पखा फेरी पानी टोवा, हर जन के पीसन

कुर्बान जाए उस वेला सुहावे जित तुम रह द्वार आया नानक को प्रभ है कृपाला सतगुर पूरा पाया सोही मैला पंजवा तुद चित आए मां आनंदा जिस विसरे सो मर जाए दयाल होए जिस ऊपर करते सो तुद सदा त्याए मेरे साहिब तू मैं मान निमाणी अरदास।

दर्शन को बल जाई, अमृत बचन हृदय उधारी, तो कृपा ते संग पाई। अंतर की गत तुझ पै सारी, तुझ जेवड अवर न कोई, जिसनो लाए लह सो लागे, भगत तुहारा सोए। दो कर जोड़ मांगो एक दान।

तेरे सेवक को पौक्ष नाही, जम नहीं आवे नेरे रहाओ। जो तेरे रंग राते स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ

प्याई है, गुर प्रसाद पाव करी है, आप त्याग होइए सब रेणा, जीव त्यागो मरिए। सफल जन्म तिसका जग पीतर, साथ संग नाव जाते, सगल मनोर तिसके पूरन, जिस दया करे प्रभ आपे। दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजे, नानक सागर वाला। राग सुही अस्पदियां, महला पहला कर तहला, इको अंकार सतगुरु प्रसाद। सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंक मिलावा होई। ना मैं रूप ना बंके नैना, ना फुल टंग ना मीठे बैना, रहा सह सिदार कामन कर आवे, पां सुहागन जा कंते भावे। ना किस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहिब सिमरिया जाई। सुरत मत ना ही चतुराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई।

सच्चे सेती रतिया जन्म ना दूजी वार जियो। रंगे का क्या रंगी है जो रखे रंग लाए जियो। रंगन वाला सेवी है सच्चे स्यों चित लाए जियो। रहाओ चारे कुंडा जे पवे दिन पागा तन नाहे जियो। अवगण मुट्ठी जे फिरे बदक खाए ना पाहे जियो। गुर रास्ते से उबरे शब्द रते मन माहे जियो। चित्ते जिनके कपड़े मैले चित कठोर जियो। तीन मुख नाम ना उपजे दूजे व्यापे चोर जियो। मूल न बूझे अपना से पशुआ से ढोर जियो। नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो। करता चित ना आवे फिर लगे दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसे चित तन कैसी पुख जियो। बाकी वाला तल भी है सिर मारे जिंदार जियो। लेखा मंगे देवना पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरे बख्शे बख्शनहार जियो। अनको की जय मित्रा खात रले मर जाए जियो। बहुरंग देख पुलाया पुल पुल आवे जाए जियो। नजर प्रभु ते छुटी है नदरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान विहूणिया गुर बिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान भी गुची है बुरा पला दोए नाल जियो। बिन शब्द तै रत्या सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया सबसे दे आधार जियो।

मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया, मन तन होए चुलंब जे सतगुरु पाया। चले जन्म सवार वखर सच ले, पथ पाए दरबार सत

आपे रहा समाए सो विस्माद कया। तू ना ही प्रभ दूर जाने सब तू है, गुरमुख वेख हदूर।

बिन सदगुरु नाम ना जाते, गुरु का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साव ना जाते। कौडी बदले जन्म गवाया चीनस नाही आपे, गुरमुख हो वे ता एको जाने हो मैं दुख ना संतापे। बलिहारी गुर अपने विटो जिन साचे स्यों लिव लाई, शब्द चीन आत्म प्रगासिया सहजे रे समाई। रहाओ गुरमुख गावे गुरमुख बूझे, गुरमुख शब्द विचारे जियो पिंड सब गुरते उपजे, गुरमुख कारे सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खटे संसारे, माया मोह सदा दुख पाए बिन गुर अब प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाए, साचा साहिब सब सिफत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखे हों मैं विच्चों जाए, आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए, सदा अलिप साचे रंग राता गुर कै सह सुवाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोले बिक बीजे बिक खाए, जम काल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कौन छड़ाए। सच्चा तीरथ जित सत सर नावन गुरमुख आप बुझाए, असर तीरथ गुर शब्द दिखाए तित नाचे मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल ना मल लगे ना लाए, सच्ची सिफ सच्ची सलाह पूरे गुरते पाए। तन मन सब किछ हर किसकेरा गुरमत कह न जाए, हुक्म होवे ता निर्मल होवे होमें विच्चों जाए। गुर की साखी सहजे चाखी कृष्णा अग्न बुझाए, गुर के शब्द राता सहजे माता सहजे रिया समाए। हर का नाम सब कर जाने गुर के पाए प्यारे, सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे।

सबो सच सच सच वरते गुरमुख कोई जाने जमन मरना हुक्मों वरते गुरमुख आप पछाने नाम से आए ता सब गुरु पाए जो इच्छा सो फल पाए नानक तिसदा सब किछ होवे जे विच्चों आप गवाए सोही महला तीजा काया कामन अब सुआल्यो फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागन गुरु का शब्द संभाले हर की भगत सदा रंग

काया अंदर सब किछ वसे, खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसे, सबना करे प्रतपाला काया कामन सदा सुहेली, गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसे, अलख ना लखिया जाए, मनमुख मुगद बूजे नाही बाहर पालन जाई, सतगुर सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दिता लखाए। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा, इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा, इस काया अंदर नाम नौ निध पाइए, गुर कै शब्द विचारा, काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलनहारा, यह मन रतन जवाहर माणक किसका मोल अफारा, मोल कित ही नाम पाई है, मोल कित ही नाम पाई है, नाही नाम पाई है गुर विचारा, गुरमुख होवे सो काया खोजे और सब परम पुलाई, जिसनो दे सोई जन पावे और क्या को करे चतुराई, काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब उपजित संसारा, सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौन पसारा, पूरे सतगुर आप दिखाया सत नाम निस्तारा, सा पाया जो सतगुर सेवे सच्चे आप सवारी, बिन नामे दर टोई नाही का जम करे कुआरी, नानक सच वडियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी। राग सूही महरा तीजा कर दसवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दुनिया ना साला है जो मरवंजसी, लोका ना साला है जो मर खाक थी, वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा रे परवाहो रहाओ। दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन, जमपुर बद्दे मारिये वेला ना लहन, गुरमुख जन्म सकार था सच्चे शब्द लगन, आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन, गुर का शब्द विसारिया दूजे पाए रचन, तिसना भुख ना उतरे अंधन जल फिरन, दुष्टा नाल दोस्ती नाल संतां वैर करन, आप दुबे

नरके कोर पवन। हे मन जैसा सेवै तैसा होवै, तेहे कर्म कमाए। आप बीज आपे ही खावना, कहना किछु न जाए। मां पुरखा का बोलना होवै कितै परखाए। कोई अमृत परे भरपूर है, ओना तिल ना कमाए। गुणकारी गुण संग्रह अवरा उपदेशेन, सेवड़ पागी जे

मन मुख मन ना पिजई आत्मे ले चित कठोर सपै दूध पियाये अंदर हिसने कोर आप करे किस आखिए आपके बख्शन हार गुर शब्दी मैल उतरे ता सच बनया सिगार सच्चा साहो सच्चे वन जारे उथे कूड़े ना ठिकन ओना सच ना पावे दुखी माए पचन हो मैं मैला जग फिरे मर जमे वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संग मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सलाही सच मन दर सच्चे सच्यार गुर पूरे पूरी मत है एन इस नाम ते आए हो मैं मेरा वड रोग है।

एक सू लिव लाए हौ मैं मेरा छड़ तू ता सच रह समाए। सतगुरु नो मिले से पायरा सच्चे शब्द लगन, सच मिले से ना विछड़े दर सच्चे दिसन। से पाई से सजना जो सच्चा सेवन, अवगुण विकन पल रन गुण की सांझ करन। गुण की सांझ सुख उपजे सच्ची भगत तरेन, सच वणन जय गुर सब स्यों लाहा नाम लेन। सोयना रूपा पाप कर कर संची है, चले ना चल दिया नाल, विण नावे नाल ना चलसी सब मुठी जमकाल। मन का तोसा हर नाम है हृदय रखो समाल, एहो खर्च अखुट है गुरमुख निभे नाल। मन मूलों पुलिया जासे पत गवाए, एह जगत मोहे दूजे व्याप्या गुरमती सत्याए। हर की कीमत ना पवे हर जस लिखन ना जाए, गुर के शब्द मन तन रपे हर स्यों रह समाए। सो सो मेरा रंगुला रंगे सह सुवाए, कामन रंग ता चढ़े जा फिर के अंक समाए। चिरी विछुन्ने भी मिलन जो सतगुरु सेवन, अंतर नाम निर्नाम है खान खर्चन ना निकुटे। हर गुण सहज रवन ना होए जन्मे ना मरे ना होए दुख सहन, गुर राखे से उबरे हर स्यों केल किरन। सज्जन मिले ना विछड़े जे अमजन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है, कित विद मिलिया जाए गुर के शब्द प्रम कटी है अचिंत वसै मन आए। गुरमुख हर हर नाम जपन हो तिनके बलिहारण, मन हर गुण सदा रवन रहाओ। गुर सरवर मान सरोवर है वडपागी पुरख लहन, सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन। नाम से आयन रंग स्यों गुरमुख नाम लगन, उर पूर्व होवे लिखिया गुर पाना मन लेन। वडपागी कर खोजिया पाया नाम निधान, गुर पूरे वेखा लिया प्रभ आत्म राम पछान। सबना का प्रभ एक है दूजा अवर न कोय, गुर प्रसादी मन वसे तित कट प्रगट होए। सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसे सब थाए, मंगा किसनो आखिए शब्द वेखो लिवलाए। बुरा कला तिचर आपदा जिचर है दो माहे, गुरमुख एको बुझिया एक समाए समाए। सेवा सा प्रभाव सी जो प्रभ पाए थाए, जन नानक हर आराध्या गुर चरणी चितलाए। राग सूही अष्टपदियां महला चौथा कर दूजा इको अंकार सतगुरु प्रसाद। कोई आन मिला है मेरा प्रीतम प्यारा, हम किस पे आप विचाई। दर्शन हर देखन कहताई, कृपा करे त सतगुर मिले हर हर नाम से आई रहाओ। जे सुख देहे ता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आई। जे भुख देहे ताई ती राजा, दुख भी सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाई। नानक गरीब कह पया द्वार है, हर मेल लहो वड्याई। अखी काड करी चरणा तल, सब करती फिर मत पाई। जे पास बहा लेता तुझे अरादी, जे मार कढ़े भी त्याई। जे लोग सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छोड़ न जाई।
जे तुद वल रह ता कोई किहो आखो, तुद विसरे मर जाई। वार वार जाई गुरु ऊपर तै पैरी संत मनाई, नानक विचारा पया दीवाना हर तौ दर्शन कहताई। चखर चांगी मीह वरसै पी गुर देखन जाई, समुंद सागर होवे बहुखारा गुर सिख लंग गुर पह जाई। ज्यो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाई। ज्यो धरती सोब करे जल बरसै त्यों सिख गुर मिल बिरसाई। सेवक का होई सेवक वरता कर कर बिनो बुलाई। नानक की बेनंती हर पै गुर मिल गुर सुख पाई। तू आपे गुर चेला है आपे गुर विच दे तुझे त्याई। जो तुझ सेवे सो तू है होवे तुझ सेवक पैज रखाई। भंडार परे भगती हर तेरे जिस पावे तिस देवाई। जिस तू दे सोई जन पाए होर नेफल सब चतराई। सिमर सिमर सिमर गुर अपना सोया मन जागाई। इक दान मंगे नानक बेचारा हर दासन दास कराई। जे गुर चिड़के ता मीठा लागे जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले सो थाए पाए मन मुख किच थाए न पाई। पाला कक्कर वर्फ वर्षे गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखूं गुर अपना विच अखी गुर पैर तराई। अनेक उपाव करी गुर कारण गुर पावे सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी दया करो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है गुर मिल तृप्त अधाई। नानक का प्रभ पूर रहो है जत कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा अष्टपदियां।

के संगा मने व्यापत अनक तरंगा मेरे मन अगम अगोचर कब पाये पूरन परमेश्वर रहाओ मोह मगन में रहा व्यापे अब तृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसे क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजे महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे किवारा जान न पाये प्रभ दरबारा आशा अंदेशा बंद पराना महल न पावे फिर बेगाना सगल ब्याज के वस्त्र दीना फिर प्यास जो जल बिन मीना कछु सियानत उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल हो नानक अरदासे पयो कृपाल।

मिथन मोह अगन शोक सागर, कर कृपा उदर हर नागर, चरण कमल शरणाए नारायण, दीना नाथ भगत परायण। रहाओ अनाथा नाथ भगत कह मेटन, साध संग जमदूत ना पेटन, जीवन रूप अनूप दयाला, रवण गुणा कटिये जमजाला। अमृत नाम रसन नित जापे, रोग रूप माया ना व्यापे, जप गोविंद संगी सब तारे, पोवत नाही पंच बटवारे। मन बच क्रम

आद मद अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां करनावा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जिन लिखिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों रंग जियो। तिन स्यों प्रीत ना टूटई, कबहु न होवे भंग जियो। पार ब्रह्म प्रभ कर दया, गुण गावा तेरे नित जियो। आए मिलो संत सज्जना, नाम जपे मन मित्र।

नाम ते आवे से जिन चले गुर पूरे संबंध जियो। हुक्मे जुग में आया चलन हुक्म संजोग जियो। हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो। जिसनो करता विसरै तिसे विछोड़ा सोग जियो। आप नड़े प्रभ पाणिया दरगह पैदा जाए जियो। ऐथे सुख मुख उजला इको नाम से आए जियो। आदर दिता पार ब्रह्म गुर सेविया सत पाए जियो। खान समंतर रव रया सर्व जिया प्रतपाल जियो। सच खजाना संचिया एक नाम धन माल जियो। मन ते कबो न विसरै जा आपे होए दयाल जियो। आन जाना रह गए मन उठा निरंकार जियो। ताका अंत न पाइए ऊंचा अगम अपार जियो। जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जमे लखवार जियो। साच ने हो तिन प्रीतमा जिन मन उठा आप जियो। गुण सांजी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो। रंग रत्ते परमेश्वर है बिन से सगल संताप।

काढ़िया जिना ने हो दू जाने लगा चूर मरो से वाडिया हों ना छोड़ो कंथ पासरा सदा रंगीला लाल प्यारा फिरो महिंजा आसरा रहाओ सज्जन तू है सैन तू मैं तुझू पर बहुमानिया जा तू अंदर तासु से तू निवाणी मानिया जे तू तुठा कृपा निदान ना दूजा वे खाल यहा पाई मु दातड़ी नित हृदय रखा समाल पाप जुलाई पंद तो नई दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुरथी वे कृपाल कितनी लख करोड़ प्रिय रोम न पुजन तेरिया तू साही हू साहो हों कह न सका गुण तेरिया सहिया कौ असंख मंजो हव बदानिया चुप पोरी नदर निहाल दे दर्श रंगवाणिया जय जिठे मन तीरिय किल विकवंजन दूरे सो क्यों विसरे माओ मैं जो रहया पर पूरे होए निवाणी तह पई मिलिया सह सुभाए पूरब लिखिया पाया नानक संत सहाय सुही महला पंजवा सिमरत देव पुराण पुकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होचिया नाम निधान अपार पगता मन वसे जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसे रहाओ मोह बाद अंकार सर पर लुनिया सुख न पाए मूल नाम विछुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंदिया नरक सुरक अवतार माया तंदिया सोदत सोदत सो तत विचारिया नाम बिना सुख ना ही सर पर हारिया आवे जाहे अनेक मर मर जन्म ते बिन बूझे सब वाद जोनी भरम ते जिनको पै दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लिया खोजे कोट असंख बहुत अनंत के जिस बुझाए आप नेड़ा तिस है विसर नाही दातार अपना नाम देहो गुण गा दिन रात नानक चाओ एहो राग सुही महला पहला कुछ जी इक ओंकार सतगुरु प्रसाद मंज कुचजी अमावन दोसड़े हों क्यों सो रावण जाओ जियो इक दू इक चरण दिया कौन जाने मेरा नाव जियो जिन्नी सखी सौ रावया से अंबी छावड़ी है जियो से गुण मंज न आमनी हों कह जी दोस्त रे ओ जियो क्या गुण तेरे विथरा हों क्या क्या किन्ना तेरा नाव जियो इकत तोल नाम बड़ा हों सब कुर्बान है तेरे जाओ जियो सोयना रूपा रंगला मोती तै मानक जियो से वस्तु सहदतिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की ते रास जियो हों इनी टोली पुलियस तिस कंतना बैठी पास जियो अंबर पूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो सातन चली साहुरे क्या मुंह देसी अग्गे जाए जियो सुती सुती चाल थिया पुली वाचड़ी आस जियो तै सह नालो मुतियस दुखा को तरी आस जियो तुद गुण मैं सब अवगुणा इक नानक की अरदास जियो सब राती सोहागनी मैं डोहागन काई रात जियो सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सबको तू साहिब मेरी रास जियो तुद अंतर हो सुख वसा तू अंतर सा वास जियो पाने तख्त वडाइया पाने पीप उदास जियो पाने थल सिर सर्व है कमल फुले आकाश जियो
पाने पावजल लंगिए पाने मंज परियास जियो पाने सो सोह रंगला सुस्त रता गुणतास जियो पाने सोह पिहावला हौ आमन जान मोई आस जियो तू सहो अगम अतोलवा हौ कह कह तै पई आस जियो क्या मांगू क्या कह सुनी मैं दर्शन पूप प्यास जियो गुर शब्दी सो

गुणवंती। जोधि सह गुर सिखड़ा तिस निर्निवला गो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई दस उपदेशड़ा मेरा मन अंक न काहू जाए जियो। ए मन तै कू देवसा मैं मार्ग दिहो बताए जियो। हौ आया दूरों चल के मैं तकी तौ शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो। इत मार्ग चले पाई अड़े गुर कह सुकार कमाए जियो।

आओ जियो हाँ आपको बोल ना जानदा मैं कहया सब हुकम आओ जियो हर भगत खजाना बख्शिया गुरु नानक किया पसाओ जियो मैं बहुर ना तिसना पुखड़ी हाँ रजा तृप्त आघाए जियो जो गुरु दी सह सिखड़ा तिस निव निवला

गुण गाद गवाया, वर कर दर दर्शन नहीं जाता, फिर का सहज न पाया। सतगुरु पूछ नव मार्ग चाली, सूती रहन विहानी, नानक बालकन रणे का बिन फिर तन कुमलानी।

जैसी आशा तैसी मनसा पूर रहा पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण राण न मैले वैसे नानक मैं वरसाचा पावे जुग जुग प्रीतम कैसे बाबा लगन गणाए हम भी बंजा सहुर बलराम जियो सारा हुक्म रजाए सो ना टले जो प्रभ करे बलराम जियो कृपया करते कर पाया नेत न सके कोई जान जी ना उन्हें केवल रव रहा तिहु लोई।

ज्ञान है। सच संतोष सदा सच पल्लै, सच बोले फिर पाए, नानक विछड़ना दुख पाए, गुरमत अंक समाए। राग सुही मैला पहला, संत कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हम कर साजने आए, साचे मेल मिलाए, सहज मिलाए हर मन पाए, पंच मिले सुख पाया। साई वस्त्र प्राप्त होई जिससे ती मन लाया, हम दिन मेल पया मन मानिया, कर मंदर सोहाए, पंच शब्द अनहद वाजे, हम कर साजने आए। आवो मीत प्यारे मंगल गावो नारे, सच मंगल गावो ता प्रभ पावो, सोहिलड़ा जुग चारे। अपने घर आया थान सुहाया, कार्य शब्द सवारे,

ज्ञान वहाँ रस नेत्री अन्यन त्रिभुवन रूप दिखाया, सखी मिलो रस मंगल गावो हम कर साजने आया। मंथन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना, अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत्व विचारो। जंत ते तू सफलो दाता सिर सिर देवन हारो, तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण की ना। सुनो सखी मन मोहन मोया तन मन अमृत पीना, आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा, सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुझ बिन कौन बुझाए। सिद्ध साधक सियाने कहते तुझ बिन कौन कहाए, काल विकाल पै देवाने मन राखिया गुरु ठाए। नानक अव गुण सबद जलाए गुण संगम तब पाए, राग सूही महला पहला कर दीजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आओ सजना हो देखा दर्शन तेरा राम, कर आप लड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ कनेरा राम। मन चाओ कनेरा सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख कई ने केवल जन्म मरण दुखनासा। सगली जोत जाता तू सोई मिलिया भाई सुभाए, नानक साजन कौबल जाइए साथ मिले कर आए।

रंग रासे अवगुण मार गुणी कर छाया पूरे पुरख विदासे तस्कर मार वसी पंचायण अदल करे विचारे नानक राम नाम निस्तारा गुरमत मिले प्यारे।

प्रभ दूर ना होई कट कट सोई तिसकी नार सवाई आपे रसिया आपे रावे जो तिसकी वड्याई अमर अडोल अमोल अकारा गुरपुरे सताई नानक आपे जोग संजोगी नदर करे लिवलाई है फिर उचड़ी है मारड़ी है तेलो आसर ताजा राम हों विषम कई देख गुना अनद शब्द अगा जा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निशानो नाम बिना खोटे नहीं ठार नाम रतन परवानो पत मत पूरी।

प्रसाद राग सुई छंत महला पहला हर चौथा जिनकी आतिन देखिया जब पंदड़े लाया दान तेरे कट चानना तन चंदी पाया चंदो दी पाया दान हर कै दुख अंधेरा उठ गया गुण जंज लाड़े नाल सो है परख मोहनी है लिया वियाहो हुआ सोभ सेती पंच शब्दी आया जिनकिया तिन देखिया जग तंदड़े लाया हों बलिहारी साजना मीता वरीता ए तन जिन सों गाड़िया मन लीड़ा दीता लिया का दिया मान जिन सों से सज्जन क्यों मिसरे जिन दिस आया होए रलिया जी सेती गहर है सगल गुण अवगुण ना कोई ओहे नीता नीता हों बलिहारी साजना मीता वरीता गुणा को हो वे वासला कड़वास नहीं जय जे गुण हो मन साजना मिल सांझ करी जय गुण केरी छोड़ अब गुण चली है पहरे पटंबर कर अडंबर आपना पिड़ मल्ली है जिथे जाए गई है पला कही है चोल अमृत की जय गुणा कहो वे वासला कद वास लई जय आप करे किस आखिए होर करे न कोई आखनता को जाई है जे पूलड़ा होई जे होए पूला जाए कही है आप कर

क्यों फूले सुने देखे बाज कहे है दान सन मंगिया देवे दान दे दाता जग विधाता नानका सच सोई आप करे किस आप की है होर करे ना कोई सूरी मेला पहला मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई गुर की पौड़ी साफ की साचा सुख होई सुख सहज आवे साथ पावे साथ की मत क्यों टले इस नान दान सो ज्ञान मज्जन आप अचलियो क्यों चले परपंच मोह विकार साके कूड़ कपट न दोई मेरा मन राता गुण रवे मन पावे सोई साहिब सो सालाही है जिन कारण किया मैं लागी मन मैले है किने अमृत पिया मत अमृत पिया ए मन दिया गुर पे मोल कराया आप नड़ा प्रभ सहज पछाता जामन सा फैलाया इस नाल गुण गावा जे तिस पावा क्यों मिले होए पराया साहिब सो सालाही है जिन जग तो पाया आए गया की ना आयो क्यों आवे जाता प्रीतम से मन मानिया हर से तीराता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारया पंच तू नायको आप सिरंदा जिन सच का पिंड सवारया हम अवगुणियारे तू सुन प्यारे तुद पावे सच सोई आवन जाना नाची है साची मत होई अंजन कैसा अंजी है जैसा फिर पावे समझे सूझे जा।

कौन अथेवे कंस मंस पखंड ना जाना राम हृदय मन मानिया अंजन नाम तिसे ते सूजे गुरु सबदी सच जानिया साजन होन आपने क्यों पार कर जाही साजन राते सच के संगे मन माही साजन करे रलिया करम करम सबाया अठ हठ तीरथ पुन पूजा नाम साचा भाया आप साजे थाप वेखे तिसे पाना पाया साजन राग रंगीलड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जेती है क्यों पादर जाने आप मुझसे मत होछिए क्यों राह पिछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली विन नाम हर के कछ ना सूजे अंध बूढ़ो तंदली दिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वसे कर जोड़ गुर पे कर बिनंती राह पादर गुर दसे मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पे खोलो गंठड़ी दुखी पर आया।

सोई, ताकि कीमत ना पवे जे लोचे कोई, कीमत सो पावे आप जानावे आप अपुल न पुले, जय जयकार करे तुद पावे गुर के शब्द अमूल्य, हीनो नीच करो बेनंती साथ न छोड़ो पाई, नानक जिन कर देखिया देवे मत साई, राग सुही संत महला तीजा कर दूजा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सुख सोहेला हर त्यावो गुरमुख हर फल पावो, गुरमुख फल पावो हर नाम त्यावो, जन्म जन्म के दुख निवारे।

दै जिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम से आए। नानक हर आपे जोड़ बिछोड़े, हर बिन को दूजा नाही, साजन आए उठे करमाही। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग सुही महला तीजा करती जा, भगत जना की हर जियो राखे है।

होई। सच्चा सबद सच्ची है शोभा, साचे ही सुख होई। साच रते भगत इक रंगी, दूजा रंग न कोई। नानक जिसको मस्तक लिखिया, तिस सच प्राप्त होई। सुही महला तीजा, जुग चारे तांजे पवे,

मेरे प्रभ आप मिलाई राम गुरमति कर सांगन हुआ प्रभ रव रहा सब थाई राम प्रभ रव रहा सब थाई मन वसाई पूरब लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रभ पानी सत सिगार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते हैं नाम नवै निज पाई सूही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम अंजिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अंजिन पगत करे गुर आगे साखन कंत प्यारी गुरु का शब्द वस्या कट अंतर से जन शब्द सुहाए नाम तिन कर साधी सोहिला हर कर कृपा कर आए भगता मन आनंद पाया हर नाम रहे लिवलाए राम गुरमुखे मन निर्मल हुआ निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसया से जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी

गवाया राम विचों मो चुकाया जहां हर पाया हर कामन मन पानी अंजन गुण गावे नित साचे कथे अकथ कहानी जुग चारे साचा एको वर्ते बिन गुर किने ना पाया नानक रंग रवे रंग राती जिन हर से की चितलाया कामन मन सोहिलना साजन मिले प्यारे राम गुरमति मन निर्मल होआ।

बहु कृपा तारी हर कै सबत सुहाए राम मिल सबत सुहाए आप गवाए रंग सो रलिया माने से सुखाली जा प्रपाया हर हर नाम समाने नानक सुहागन सावड़ पागी जे चले सतगुरु भाए।

दूर वसै, इकना मन आधारो राम, इकना मन आधारो सिरजनहारो, वडपागी गुर पाया, काट काट हर प्रभ एको स्वामी, गुरमुख अलख लखाया, सहजे अनद हुआ मन मानिया, नानक ब्रह्म विचारो,

हर तूर देवो मैं पूरे गुर की, हम पापी मुक्त कराया राम। पापी मुक्त कराए आप गवाए, निज कर पाया वासा, विवेक बुद्धि सुख रहन विहानी, गुरमत नाम प्रगासा। हर हर आनंद भया दिन राती, नानक हर मीठ लगाए, गुर सेवन सतगुर दाता, हर हर नाम समाए।

बलराम जियो। अंतर ममता कूर कूर विहाजे, कूर लई बलराम जियो। कूर कपट कमावे मां दुख पावे, बिन सतगुरु मग न पाया। उज्जर पंथ प्रमे गवारी, खिन खिन तके खाया। आपे दया करे प्रभदाता,

आए हृदय कान को माया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाया बलराम जियो पत्ती बचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने कार्य आए गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए वर पाया पुरुष अगम अगोचर सद नवतन बाल सखाई नानक कृपा करके मेले विछड़ करे न जाए। सुही महला चौथा हर कहलड़ी लाभ प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो बाणी ब्रह्मा वेद कर्म दृढ़ो पाप सजाया बलराम जियो कर्म दृढ़ो हर नाम से आवो सिमरत नाम दृढ़ाया।

अनहद शब्द बजाए। हर तीजड़ी ला मन चाओ पया बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल हर पाया वड पागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया मुख बोली हर बाणी, संत जना वड पागी पाया हर कथिये अकप कहानी, हृदय हर हर हर तुन उपजी हर जपिया मस्तक पाग जियो।

गुरुमुख मिलिया सुभाए हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया अंगिन हर लिवलाई मन सिंधिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी बधाई हर प्रभ ठाकुर का

खास शब्द लिवलाई, अंजन सहज रहे रंग राता, राम नाम रिद पूजा, नानक गुरमुख एक पछाणे, अवर न जाने दूजा।

न पाई राम, अंतरे हो मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम, अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया, जम मग दुख पा

पाथ न जाए। हम पूछो अपना सतगुरु दाता किन विद उत्तर करिए राम, सतगुरु पाए चलो जीवत्या इव मरिए राम, जीवत्या मरिए पौजल करिए गुरमुख नाम समावे, पूरा पुरख पाया वट पागी सच नाम लिवलावे, मत प्रगास पई मन मानिया राम नाम वढाई, नानक प्रभ पाया शब्द मिलाया ज्योति ज्योत मिलाई। सूरी महला चौथा कर पंजवां।

से हम मन संदेवा सतगुरु है मैं मेले प्रभु गुणता से तन तन गुरु वड पुरख है मैं दसे हर साबा से वड पागी हर पाया जन नानक नाम विगासे गुरु सज्जन प्यारा मैं मिलिया हर मार्ग पंथ दसाहा कर आवो चिरी विछुन्या मिल शब्द गुरु प्रभ नाहा हौ तुझ बाजो खरी उडीनिया जो जल बिन मीन मराहा वड पागी हर त्याया जन नानक नाम समाहा मन दह दिस चल चल परमिया मन मुख परम कुलाया नित आसा मन चितवे मन कृष्णा भुख लगाया अंता तन तर दबिया फिर बिख पालन गया जन नानक नाम।

अड रह नाम लो गोविंद नाम मजीठा, थी रहे लाला अत गुलाला, शब्द चीन गुर मीठा, मिथ्या मोह मगन थी रहया, झूठ संग लपटाना, नानक दीन शरण कृपा निद, राख लाज भगवाना। सुन बावरे सेव ठाकुर नाथ पराना, सुन बावरे जो आया तिस जाना, नेचल हब वैसी सुन परदेसी, संत संग मिल रही है, हर पाई है पागी सुन बैरागी, चरण प्रभु गह रही है। एहु मन दी जय संत ना की जय, गुरमुख तज बहुमाना, नानक दीन भगत पवतारण, तेरे क्या गुण आस वखाना। सुन बावरे क्या कीचे कूड़ा मानो, सुन बावरे हब वैसी गर्भ गुमानो, नेचल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु हुए दा

सतगुरु दित्ती तुसके बलराम जियो, हर अमृत परे पंडार, सब किछ है कर तुसके बलराम।

तू वरदाना कर मेरा मत साईं, कृपा की जैसा मत दीजे हाथ पैर तू त्याई। गर्भ ना की जय रेण होवी जय तांगत जी रे तेरी, सब ऊपर नानक का ठाकुर मैं जे ही कणचेरी राम। तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम फिर हम बोरिया राम, तुम बड़े बड़े बड़ ऊंचे हो इतनी लोहरिया राम। हो पिछ नाही एको तू है आते आप सुजाना, अमृत दृष्ट निमित प्रभ जीवा सर्व रंग रसमाना। चरण है सरनी दास है दासी, मन मोले तन हरिया, नानक ठाकुर सर्व समाना आपन पावन करिया। तुझ ऊपर मेरा है माना, तू है मेरा ताना राम, सुरत मत चतुराई तेरी तू जाना है जाना राम। सोई जाने सोई पछाने जाको नदर सिरंदे मन।

तू पर्वत मेरा ओला राम। हों बल बल जाई लख लख लख दरिया, जिन परम पर्दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे विकारे, ठाकुर स्यो मन माना। प्रभ जी पानी पई निकानी, सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली, मुकत जुगत दर खोला। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रभ मेरा ओला। सूरी महला पंजवा। साजन पोत सतगुर मेरा पूरा, तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता ताई सुत बंदक, जी प्राण मन पाना राम। जियो पिंड सब तिसका दिया, सर्व गुणा पर पूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा, सर्व रहा पर पूरे। ताकी शरण सर्व सुख पाए, होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ को बलिहार, नानक सर्व कुर्बाना। ऐसा गुरु वडकागी पाई है, जित मिले प्रभ जापे राम। जन्म जन्म के किलविक उतरे, हर संत तूरी नित नापे राम। हर तूरी नाई है प्रभु ते आई है, बहुर जोन ना आई है। गुर चरणी लागे परम पौ पागे, मन सिंधिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए, फिर सोग नाही संतापे। नानक सो प्रभ जी का दाता, पूरा जिस पर तापे। हर हरे हर गुण निदे, हर संतन कैवस आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे, तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मिटाया, हर पूरन कृपा सारी। सफल जन्म हुआ पौ पागा, हर पेटिया एक मुरारी। जिसका सा तिन ही मेल लिया, ज्योति ज्योत समाया। नानक नाम निरंजन जपिए, मिल सतगुर सुख पाया। गाओ मंगलो नित हर जनो, पुन्नी इच सदाई राम। रंग रते अपने स्वामी सेती, मरे ना आवे जाई राम। अविनाशी पाया नाम ते आया, सगल मनोरथ पाए। सांस सहज आनंद कनेरे, गुरु चरणी मन लाए। पूर रहा कट कट अविनाशी, थाम थम कर साई। कहो नानक कार्य सगले पूरे, गुरु चरणी मन लाए। सूही महला पंजवा। कर कृपा मेरे प्रीतम स्वामी, नेत्र देखें दर्श तेरा राम। लाख जेवा दिहो मेरे प्यारे, मुख हर आरा दे मेरा राम। हर आरा दे जम पंख सा दे, दुख ना व्यापे कोई। जल कल मैयल पूरन स्वामी, जत देखा तत सोई। परम मोह विकार नाथे, प्रभ नेर हूते नेरा। नानक को प्रभ कृपा कीजे, नेत्र देखे दर्श तेरा। कोट करन दीजे प्रभ प्रीतम, हर गुण सुनिए अविनाशी राम। सुन सुन ए मन निर्मल होवे, कटिए काल की फांसी राम। कटिए जम फांसी सिमर अविनाशी, सगल मंगल सो क्याना। हर हर जप जपिए दिन राती, लागे सह सियाना। कलमल दुख जारे प्रभु चितारे, मन की दुर्मत नासी। कहो नानक प्रभ कृपा कीजे, हर गुण सुनिए अविनाशी। करोड़ हस्त तेरी टैल कमावे, चरण चले प्रभ मार्ग राम। पर सागर नाम हर सेवा, जो चढ़े तिस पार्ग राम। पर जल तरिया हर हर सिमरिया, सगल मनोरथ पूरे। महाविकार गए सुख उपजे, बाजे अनहद तूरे। मन बांचत फल पाए, सगले कुदरत कीम अपारग। कहो नानक प्रभ कृपा कीजे, मन सदा चले तेरे मार्ग। एहो वर एहा वड्याई, एहो तन होए वडपागा राम। एहो रंग एहो रस होगा, हर चरणी मन लागा राम। मन लागा चरणे प्रभ की शरणे, करण पारम गोपाला। सब किस तेरा तू प्रभ मेरा, मेरे ठाकुर दीन दयाला। मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर, संत संग मन जागा। कहो नानक प्रभ कृपा कीनी, चरण कमल मन लागा।
सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदिर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप जावे राम हर जो गाय परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी अकथ कहानी पला संजोग मूरत पल साचा

गुरमुखे सच करने सारी बिन से प्रम पहच उठा राम अमहद बाणी गुरमुख बखवाणी जस सुन सुन मंगन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करया कर मैं नव निध परे पंडारा राम नाम रंग लागा नानक जन प्रभ कदे न विसरे पूरन जाके भागा छाया प्रभ छत्रपत कीनी सगली तपत विनाशी राम दुख पाप का डेरा टाठा कारज आया राशी राम हर प्रभ फुरमाया मिटी बलाया साच करम पुन फलिया सो प्रभ अपना सदा त्याय सोवत बैसत खलिया गुण निधान सुख सागर स्वामी जल थल में यल सोई जन नानक प्रभ की शरण आई तिस बिन अवर न कोई मेरा कर बनिया बन पाल बनिया प्रभ पर से हर लाया राम मेरा मन सोया मीत साजन सस्ते गुण मंगल हर गाया राम गुण गाए प्रभु त्याए साचा सगल इच्छा पाया गुर चरण लागे सदा जागे मन वजिया वादाया करी नदर स्वामी सुखेंगामी हल्प पल सवारया बिनवंत नानक नित नाम जपिए जियो पिंड जिन तारिया सुही मैला पंजवा तै सागरो तै सागर तरिया हर हर नाम त्याए राम बोथड़ा हर चरण आराधे मिल सतगुर पार लंगाए राम गुर शब्दी तरिय बहुत न मरिये चूके आवन जाना जो किछ करे सोई फल मानो तामन सहज समान दुख ना पूख ना रोग ना व्यापे सुख सागर सरणी पाए हर सिमर सिमर नानक रंग राता मन की चिंत मिटाए संत जना हर मंत्र दृढ़ाया हर साजन वसगत कीने राम आत्मड़ा मन आगे तरिया सर्व सुखा कर दीने राम कर अपनी दासी मिटी उदासी हर मंदिर थित पाई अनग विनोद सिमरो प्रभ साचा बिछड़ कभू न जाय सावर कागण सदा सुहागण राम नाम गुण चीने कौ नानक रहे रंग राते प्रेम महारस पीने अनग विनोद कहे मित सखिए मंगल सदा हमारे राम आप न रह प्रभ आप सिगारी सोभावंती नारे राम सह सुभाए पय कृपाला गुण अवगुण ना बिचारिया कंठ लगाए लिए जन अपने राम नाम उधारिया मान मोह मद सगल व्यापी कर कृपा आप निवारे कहो नानक पै सागर तरिया पूरन काज हमारे गुण गोपाल गावो नित सखियो सगल मनोरथ पाए राम सफल जन्म हुआ मिल साधु एक अंकार प्याए राम जब एक प्रभु अनेक रव्या सर्व मंडल छाया ब्रह्म उपसारा ब्रह्म पसरिया सब ब्रह्म दृष्टि आया जल फल मैयल पूर पूरन तिस बिना नहीं जाए एक दर्शन नानक बिकसे आप ले मिलाए सुही मैला पंजवा अब चल नगर गोविंद गुरु का नाम जप सुख पाया राम मन इच्छे से ही फल पाए करते आप बसाया राम करते आप बसाया सर्व सुख पाया पुत पाई सिख बिगासे गुण गावे पूरन परमेश्वर कारज आया रासे प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन एव थान सुहाया कर मंदर हट ना ले सोहे जिस विच नाम निवासी राम संत भगत हर नाम अराधे कटिए जम की फांसी राम काटी जम फांसी प्रभ अविनाशी हर हर नाम ते आए सगल सामग्री पूर्ण होई मन इच्छे फल पाए संत सजन सुख माने रलिया दुख दर्द क्रम नासी सबत सवारे सदगुरु पूरे नानक सदगल जासी बात खत्म की पूरी होई नित नित चढ़े सवाई राम पार ब्रह्म खसमाना किया जिस दी वडी वड्याई राम आज जुगाद भगतन का राखा सो प्रब तया दयाला जी जंत सब सुखी वसाए प्रब आपे कर प्रतपाला
जय दिसपुर रहा जस स्वामी कीमत कह न जाए कहो नानक सतगुरु बलिहारी जिन अचल नीव रखाई ज्ञान ध्यान पूरन परमेश्वर हर हर कथा नित सुनिए राम अनहद चोज पगत पर कंजन अनहद बाजे सुनिए राम अनहद चुनकारे तत विचारे संत गोष्ठ नित होवे हर नाम आराधे मेल सब काटे किलविक सगले खोवे तह जन्म न मरना आवन जाना बोल न पाई है जोनी है नानक गुरु परमेश्वर पाया जिस पर साध छुनी है सूही महला पंजवा संता के कारज आग खलोया हर काम करावन आया राम तरत सुहावी काल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूरन साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाथे सगल विसूरे पूरन पुरख अचुत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम ते आया।

खाप खर्चक बिलचक सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई निकुट न जाए अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाथे दुख न निर्णय आया सांत सहज आनंद घनेरे बिनसी पूप सबाई नानक गुण गावे स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन ही किया मानस क्या बेचारा राम भगत सोन हर के गुण गावे सदा करें जयकारा राम गुण गाए गोविंद अमद उपजे साथ संगत संग बनी जिन उद्दम किया काल केरा तिसकी उपमा क्या गनी अखर तीरथ पुन किरिया महानिर्मल चारा पतित पावन बिरद स्वामी नानक शब्द आधारा गुण निधान मेरा कब करता उस्तत कौन करी जय राम संता की बेनंती स्वामी नाम महारस दी जय राम नाम दी जय दान की जय बिसरना ही खिनो गुण गोपाल उचर रसना सदा गाये अंदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती ममता ने अमृत पी जय बिनवंत नानक इच पुनी पेख दर्शन जी जय राग सूही महला पंजवा छंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिठ बोलला जी हर सज्जन स्वामी मोरा हर संभल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा कौरा बोल ना जाने पूरन भगवान है अवगुण को ना चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए एक किल नहीं पन्ने काले खट खट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास वा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा हर विषम पई जी हर दर्शन देखा तारा मेरा सुंदर स्वामी जी हर चरण कमल पग छारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा जिस जेवर अवर न कोई आद अंत मद प्रभ रव्या जल थल मैयल सोई चरण कमल जब सागर तरया पव जल उतरे पारा नानक शरण पूरन परमेश्वर तेरा अंत न पारा वारा हर निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण धारो गुर सतगुर कहया जी।

जाए परम अर्थ काम सब पूरन मन चिंदी इच्छित जाए। श्रुत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा नि स्वामी बड़ पागी हर हर गाया। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद वारसुही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा। सू है वेश बुहागनी पर फिर रावण जाए ते छोड़िया कर अपने मोही दूजे भाए। मिठा करके खाया बहु साधो वदिया रोग शुद्ध पतार हर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग। गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उधार। आज्ञाकारी सदा सुहागन आत्मेली कर पार नानक फिर पाया हर साचा सदा सुहागन नार। महला तीजा सूविये निमानिये सो सं सदा समाल नानक जन्म सवार अपना कुल भी छुट्टी नाल। कौड़ी आपे तख्त रचायन आकाश पताला हुक्मे तरती साजियन सच्ची धर्मशाला। आप उपाय खपाए दा सच्चे दीन दयाला सबना रिजक संभाए दा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा।

ऐसा सिंगार बनाए तू मैला कदे न हो गई एन सलागे पाओ नानक सुहागण का क्या चिन्ह है अंदर सच मुख उजला खसमे माए समाए मैला तीजा लोका वे हौ सुहवी सुहा वेश करी वेसी सौ न पाई है कर कर वेश रही नानक तिन्नी सौ पाया जिनी गुर की सिख सुनी जो तिस पावे सोती है इन विद कंत मिली। पौड़ी हुक्मी सृष्ट साजियन बहुपित संसारा तेरा हुक्म ना जाती केतना सच्चे अलखा पारा इतना नो तू मेल लह गुर शब्द विचारा सच रते से निर्मले हों मैं तज विकारा जिस तू मेले सो तुद मिले सोई सच्यारा। श्लोक महला तीजा सुहुविये सुहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ छिन में टूट सब विनस जाए जो टिके ना बिरकी चाओ गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीत सचड़ाओ उल्टी सकत स्वे कर आई मन वस्या हर अमृत नाओ नानक बलिहारी गुर आपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है कंत ना पाया जाए इस लहदे बिलम ना हो गई रंग बैठी दूजे भाए मुंड ए आनी दुमनी सूहे वेश लुभाए सर्व सच्चे रंग लाल कर पै पाए सिंगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुरु भाए। पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई मन मुख ठौर न पायनी फिर आवे जाए जो तिस पावे सोती है सब चले रजाए। श्लोक महला तीजा सूहे वेश पावन कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख करे प्यार उस सील न संजम सदा झूठ बोले मन मुख कर्म खुआर जिस पूरब हो वे लिखिया तिस सतगुरु मिले कतार सूहा वेश सब उतार तरे गल पहरे खिमे सिगार पेये सहरे बहु सोगा पाए तिस पूज करे सब संसार ओहर लाई किसे दी ना रले जिस रावे सृजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख करतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीत का गुरमुख ब्रह्म विचार नानक प्रेम महारसी सब बुरे आया चार। पौड़ी इह जग आप उपायन कर चोज विधान पंच पात विच पायन मोह झूठ गुमान आवे जाए पो आइए मन मुख अज्ञान इकना आप बुझायन गुरमुख हर ज्ञान भगत खजान।

तू है वेश तिर किने न पायो, मन मुख दज मोई गवार। सतगुरु मिले सूहा वेश दया, हो मैं विचो मार। मन तन रता लाल हुआ, रसना रती गुणसार। सदा सुहागन शब्द मन, पै पाए करे सिगार। नानक करमी महल पाया, फिर राखिया उधार। महला तीजा मुंडे सूहा परहरो, लाल करो सिगार। आवन जाना विसरे गुर सबदी विचार। मुंड सुहावी सोनी जिस कर सहज पतार। नानक सातन रावी है रावे राहार। पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है, मन मुख मुग्ध रता। हो मैं मेरा कर्म हुए किस साथ न लिता। सिर ऊपर जम काल न सुजई, दूजे कर्मिता। फिर वेला हथ न आवई, जम काल वस किता। जेहा तुर लिख पायुन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए नाखियन, जो मड़िया लग जलन। नानक सतिया जानियन, जे बिरहे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन, सील संतोख रहन। सेवन साई अपना नित उठ संवालन। महला तीजा कंता नाल महेलिया, सेती अग जलाए। जे जाने फिर अपना तन तन दुख सहाए। नानक संत न जाननी से क्यों अग जलाए। पावे जीवो कै मरो, दूरो ही पज जाए। पौड़ी तुद दुख सुख नाल उपाया, लेख कर तै लिखिया। नावे जेवड होर दात नाही, किस रूप ना रिखिया। नाम अकुट निधान है, गुरमुख मन वस्या। कर कृपा नाम देवसी, फिर लेख ना लिखिया। सेवक पाए से जन मिले, जिन हर जपिया। श्लोक महला दूजा जिन्नी चलन जानिया, से क्यों करे विथार। चलन सार न जानी, काज सवारन हार। महला दूजा रात कारण तन संची है, पलके चलन होए। नानक नाल न चली, फिर पछतावा होए। महला दूजा बब्बा चट्टी जो करे, ना गुण ना उपकार। सेती खुशी सवारी है, नानक कार सार। महला दूजा मन हठ तरफ ना जिपई, जे बहुता काले। तरफ जिने सत पाओ दे, जन नानक शब्द विचारे। पौड़ी करते कारण जिन किया, सो जाने सोई। आपे सिष्ट उपायन, आपे फुनगोई। जुग चारे सब पाल सकी, किन कीमत होई। सतगुर एक खा लिया, मन तन सुख होई। गुरमुख सदा सलाई है, करता करे सो होई। श्लोक महला दूजा जिना पाओ तिन नाहे पाओ, मुझ पाओ निविव्या। नानक एहो पटंतरा, तित दी दान गया। महला दूजा तुर देखो तुरदा मिले, उड़ते को उड़ता।

सच त्यायन से सच्चे गुर शब्द विचारी हो मैं मार मन निर्मला हर नाम उधारी कोठे मंदक मारिया लग पे गवारी जिनकी तिसे ना जाननी मन मत गुबारी जिस बुझाए सो बुझसी सचिया क्या जंत विचारी श्लोक महला तीजा तामन को सिंगार कर जा कहना कंत मिनाए मत से जय कंत ना आवई एवं बिथा जाए कामन फिर मन मानिया कौ बनिया सिंगार किया तो परवान है जा सो करे प्यार कौ सिंगार कबोल रस कोजन पाओ करे तन मन सौंपे कंत कौ तो नानक तो करे महला तीजा काजल फूल कंबोल रस ले तन किया सिगार सेजे तंत न आयो एवं पया विकार महला तीजा तन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए एक जोत दो मूर्ति तन फिर कही है सोए पौड़ी पै बिन भगत ना हो गई नाम ना लगे प्यार सतगुरु मिले पौ उपजे पै पाए रंग सवार तन मन रखा रंग स्यों होमे तिसना मार मन तन निर्मल अख सोहना तेतिया कृष्ण मुरार पाओ पाओ सब तिसदा सो सच वरते संसार श्लोक महला पहला वाहो खसम तू वाहो जिन रच रचना हम किए सागर लहर समुद्र सर वेल वर्ष वराह आप छोड़ो मैं आप कर आप

सुहा गणराज सौड़ी दर मंगत जाचे दान हर दीजे कृपा कर गुरमुख लेहो मिलाए जन पावे नाम हर अनहद शब्द बजाए ज्योति जो कर हृदय हर गुण गाए जय जय शब्द हर जग में वर्त आतो हर से प्रीत।

हर हर नाम सलाइए सत्कार कमावे दूजी कारे लगिया फिर जोनी पावे नाम रतिया नाम पाइए नामे गुण गावे गुर के सब सलाइए हर नाम समावे सतगुर सेवा सकल है सेवे है फल पावे श्लोक महला दूजा किसी कोई कोई मंज निमाणी एक तू क्यों ना मरी जय रोए जा लग चितना आवई महला दूजा जा सुख पास रावे हो दुख भी संभालो नानक कह सियाणी क्यों कंत मिलावा होए पौड़ी हूं क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंक सखाई जो तेरी शरणागति तिन लह छाई नानक वे प्रभाव है तिस तिल ना कमाई राग सूही बाणी श्री कबीर जियो तथा सगना भगतां की।

राम को नाम न कभू लीना, राम ना जपो कवन मत लागे, मर जाए को क्या करो अभागे। रहा दुख सुख करके

सूही कबीर जी हर हर कंपे बाला जियो ना जानो क्या करसी पियो रहन गई मत दिन भी जाए पल गए बग बैठे आए रहा काचे करवे रहना पानी हंस चलिया काया कुमलानी क्वार कन्या जैसे कर सिगारा क्यों रनिया माने बाज बतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर ए कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सियानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहां गवाया चलो सिताब दीवान बुलाया चल दरहाल दीवान बुलाया हर फुरमान दरगे का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लेओ निबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गुजारो साध संग जा को हर रंग लागा तम तम सोजन पुरख सभागा ईत ऊत जन सदा सुहेले जन्म पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया तया कराया कहो कबीर तेई नर फूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन श्रवण सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाथ दी सब मत थाकी एक ना खाक स्मार

जब लग कट में साता, जे कट जाए ता पाओ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर चूपे किसे प्यासा, हुक्मे बूझे चौपर खेले मन जिन टाले पासा। जो जन जान पजे अवगत को तिनका कछु ना नासा, कहो कबीर ते जन कबो न हारे पाल जो जाने पासा। सुही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा, पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई, ऐसा देन दुखाला। सर के लोगा मोको नीत दसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिन्हो लिया उबारी। रहाओ नौ दाडी दस नू सवतावे, रैयत बसन ना देही, दोरी पूरी मा पैनाही बोगश काला लेही। बेहतर कर एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई, धर्म राय का दफ्तर सोदिया, बाकी रिजम न काई। संता को मत कोई निंदो, संत राम है एको, कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जाका नाओ विवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सह की सार सुहागन जाने, अज अभिमान सुख रलिया माने, तन मन दे ना अंतर राखे, अवरा देख ना सुने अपाखे। सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। रहो दुखी दुहागन दो पखीनी, जिन ना निरंतर भगत ना कीनी, पुर सलात का पंथ दुहेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दमंद दर आया, बहुत प्यास जवाब न पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानू त्यों करगत मेरी। सोही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना पूछ रहन फिर नाही, संग चलत है हम भी चलना, दूर गगन से ऊपर मरना। क्या तू सोया जाके आना, तैं जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया सो रिज़्क अंबरावे, सब कट की तरह हाथ चलावे, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सवार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दहज संध्यारा, कह रविदास निदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया फनखाने। सोही ऊंचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रह न होई, यह तन ऐसा जैसे काश की ताटी, जल गयो काश रल गयो माटी। रहाओ पाई बंद कुतंब सहेरा, कोई भी लागे काट सवेरा, कर की नार उन्हें तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सब जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। इको ओंकार सतगुरु प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की।

तें साहिब की मैं सार न जानी, जो गुण खोए पाछे पछतानी रहा। काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरह जाली। फिर बिहून कथे सुख पाए, जा हुए कृपाल सा प्रभु मिलाए। विदन कुही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रभ साथ संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा हो बेली। वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बोपीनी। उस ऊपर है मार्ग मेरा, से फरीदा पंख समार सवेरा। सूही ललित बेड़ा बंद न सकियो बंधन की वेला, पर सरवर जब उछले तब करन दुहेला। हाथ न लाए कुसुम्बड़े जल जासी टोला रहा। एक पाती ने पतली सह केरे बोला, दुद्दा थड़ी ना आवई फिर होए न मेला। कै फरीद सहेलियो सहो अलायसी, हंस चलसी डुमना।

जो किछु होआ सब किछु तुझते, तेरी सब सुनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चकराई। क्या हूँ कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ न कथ न जाई, जो तुद पावे सोई आखा तिल तेरी वड्याई। केते कुकर हों बेगाना, औका स्तन पाई, भगत हीन ना।

अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करो हमारी, जल फल मैयल कर पुरलीना कट कट जो तुम्हारी, सिख मत सब तुम्हारी,

तुम्हारी सर्व चिंतित तुझ पासे जो तुझ पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे। बिलावल महला पहला। आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे पान तू दाता नाम परवान। ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचिक तू अलख अधेओ रहाओ। माया मोह तरकटी नार ऊंडी कामन कामन यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चांगन अंधियार। चक छोड़ी सहसा नहीं कोय बाप दिसे वे जात न होए एक एक को ना ही सौ कोए करता करे करावे सोए। शब्द मोए मन मन से माया ठाक रहे मन साचे पारिया अवर न सूजे गुर को वारिया नानक नाम रते निस्तारिया। बिलावल महला पहला। गुर बचनी मन सहित्याने हर के रंग रता मन माने मन मुख करम कुले बौराने हर दिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने। बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर दिन जियोरा रह न सके खिन सतगुर बूझ बुझाई। रहाओ मेरा प्रभ विसरे हो मरो दुखाली सास दिरास जतो अपने हर पाली सब बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख शरणाली। अटक कथा कहिए गुर पाए प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए बिन गुर करने क्या कार कमाए हों में लेट चले गुर शब्द समाए। मन मुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दासन दास जन नानक हर नाम तन रास। बिलावल महला तीजा हर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग छाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग पापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहत स्यों जित हुन खसम ना पाया। पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूजा पाओ न दे लिव लागण जिन हर के चरण विसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तें दुख निवारे। रहाओ तू दयाल दयापत दाता क्या ए जंत विचारे मुक्त बंद सब तुझते हुए ऐसा आख वखाने। गुरमुख हो वैसो मुक्त कहिए मन मुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रहे हर नाले। तिनकी गहन गत कही न जाई सत्य आप सवारे परम कुलाने से मन मुख कहिए ना उर्वार न पारे। जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माय निस्तारे नानक पाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा। अतोले क्यों तोले आ जाए दूजा होए तां सो जी पाए किसते दूजा नाही कोए तिस दी कीमत किको होए। गुर प्रसाद वसे मन आए ताको जाने दुबदा जाए। रहाओ आप सराफ कसवटी लाए आपे परके आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब चिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तिस आए सब सच दिखा लेता सच समाए। आपे लिव पात है आपे आप बुझाए आपे जाते आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आप सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा। साहिब ते सेवक सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनिया है सब में एक समाना। सतगुरु परचय हर नाम समाना जिस कर्म हो वैसो सतगुरु पाए अंदिन लागे सहित आना। रहा
क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अभिमाना, जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, सब कोई करो दिखाव खियाना। आपे गुर चेला है आपे, आपे गुण निधाना, जो आप चलाए तिन्हें कोई चाल है, जो हर पाव है भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब, कौन जाने तेरे कामा, इक ना कर मैं देव डियाई, इक परम पवे अभिमाना। बिलावल महला तीजा, पूरा खाट बनाया पूरे, वेखो एक समाना, इस परपंच में साचे नाम की वडियाई, मत को करो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे, सो सतगुर माए समाना, ए बाणी जो जियो जाने, इस अंतर रवे हर नामा। रहाओ चौह जुगा का हुन वेड़ा, नर मनुखानो एक निधाना, जत संजम तीरथ ओना, जुगा का कर्म है कल में कीरत हर नामा, जुग जुग आपको अपना कर्म है।

कहत नानक सच्चे सो प्रीत लाए चूके मन अभिमाना कहत सुनत सबे सुख पावे मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित कर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल मारी गाए आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए सौ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सह सुभाए। रहाओ सदा रंग राते तेरे चाए हर जियो आग वसे मन आए आचे शोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए गुरमुख राते सबद रंग आए निज पर वासा हर गुण गाए रंग चलू ले हर रस पाए यह रंग कदे न उतरे साथ समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सतरा ते तिन बहुत न फेरा नानक नाम दिलवाए पूरा गुर मेरा। बिलावल मैला तीजा पूरे गुर ते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हों में माया शब्द जलाई दर फाते गुर ते शोभा पाई जगदीश सेवो मैं और न काजा हम दिन अनुभ होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा। रहा मन की प्रतीत मन से पाई पूरे गुर ते शब्द गुजाई जीवन मरण को संसर वेख है बहु न मरे न जम पेख है कर ही मैं सब कोट निदान सतगुरु दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सहस्यान हम दिन गावे को नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम से आई जह देखा तैरिया समाए सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई पूरे पाग गुर पूरा पाया अंतर नाम निधान दिखाया गुर का शब्द अत मीठा लाया नानक कृष्ण बुझी मन सम सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा धरती जा इको अंकार सतगुर प्रसाद उदम मत प्रव अंतर जामे ज्यो प्रेरे त्यों करना ज्यो नटुआ तंत बजाए तंती त्यों वाजे जंत जना जप मन राम नाम रसना मस्तक लिख लिखे गुरु पाया हर हृदय हर बसना। रहाओ माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना जो प्रहला भरना कुछ ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना कवन कवन की गत नित कही है हर की ये पतित कवन्ना ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हर उद्रयो करे सरना प्रभ दीन दयाल पगत पग कारण हम पापी राख कपना हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल मेला चौथा हम मूरख मुगध अज्ञान मती शरणागत पुरुष अजन्मा कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर हम पाथर हीन अकर्मा मेरे मन पज राम नाम है रामा गुरमत हर रस पाई है होर त्यागो नेफल कामा। रहाओ हर जन सेवक से हर पारे हम निर्गुण राख उपमा

अगर ना कोई मेरे ठाकुर हर जती है वड्डे करमा नामहीन त्रिग जीव से तिन वड दुख समा ओए फिर जोन पवाई है मंद पागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तो पूर्व लिखे वड परमा गुर सत गुरु नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल मैला चौथा हमरा चित लुगत मोह बिखिया बहु दुर्मत मैल परा तुमरी सेवा कर न सके हैं प्रभ हम क्यों कर मुग्ध करा मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा कर तारी मिल सतगुरु पार करा रहा हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहो मति जस करा तुमरे संग लगे से उदरे जो संग पासत लोह तरा साकत न होची मत मद्दम जिन हर हर सेव न करा ते नर पाघीन दोचारी कोई जन्म मोए फिर मरा जिनको तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोष गुरसरा दुर्मत मैल गई हर पजया जन नानक पार करा। बिलावल मैला चौथा आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोहे थे कल युग खेवट गुर शब्द करो मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख लिखे गुण गाए मिल संगत पार करो रहाओ। काया नगर में राम रस उत्तम क्यों पाये उपदेश जन करो सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखो गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब दिख रहो राम नाम रस राम रसायन हर सेवो संत जनो चार पदार्थ चारे पाए गुरमत नानक हर पजो। बिलावल महला चौथा खत्री ब्राह्मण सूद वैश को जापे हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार जम कर पूजो नित सेवो दिन सब रहनी हर जम देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरमत बैनी रहाओ। अनिक उपाव चितनी है बहुत तेरे सा होवे जे बात होवे नहीं अपना पला सब कोई बात है सो करे जे मेरा चित ना चितैनी मन की मत त्यागो हर जन एहा बात कठैनी हम दिन हर हर नाम से आवो गुर सतगुर की मत लेनी मत सुमत तेरे वत स्वामी हम जंत तू पुरख जंत रहनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी ज्यो पावे तिवें बुलैनी। बिलावल मेला चौथा अनद मूल से आयो पुरखोत्तम अन दिन अनद आनंदे तरम राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे जप मन हर हर नाम गोविंदे वड पागी गुर सतगुर पाया गुण गाए परमानंदे राव साकत मूड माया के बदक विच माया फिरे फिरंदे कृष्णा जलत किरत के बादे ज्यो केली बलद पहंदे गुरमुख सेव लगे से उदरे वड पागी सेव करंदे जिन हर जप्या तिन फल पाया सब टूटे माया संदे आपे ठाकुर आपे सेवक सब आपे आप गोविंदे जन नानक आपे आप सब वरते जो राखे तिवे रहंदे। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग बिलावल महला चौथा पड़ताल हर तेरवा बोलो भैया राम नाम पतित पावनो हर संत भगत पारनो हर पर पूरे रहा जल फले राम नाम नित गाये हर दुख विसारनो राव हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख विसारन हारा गुर पेटिया है मुकुट दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो
मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निराशी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक के सगलावनो। राग बिलावल महला पंजवा चौक दे घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। नदरी आवे किस्यो मोह क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी तोहे कर कृपा मोह मार्ग पावो साफ संगत के अंचल लावो क्यों करिए दिखिया संसार सतगुरु बोहित पावे पार। रहाओ परम चुलारे माया दे हर के पगत सदा फिर से हर शोक से रह निरारा सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड माया सर्व पुयंगा हौ मैं पचे दीपक देख पतंगा सगल सिगार करे नहीं पावे जा होए कृपाल सं गुरु मिलावे। हौ फिरो उदासी मैं एक रतन दिखाया निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर कुसमे लाल गुर खोलिया पर्दा देख कई निहाल जिन चाखिया किस आया फाग जो गूंगा मन में विस्माद अनग रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण आख समाया। बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेवक अपनी लायो सेव विघ्न न लागे जब अल्प वेव तरत पुनीत सही गुण गाए दुर्त गया हर नाम से आए। रहाओ सबनी थाने रवे आप आज जुगा जाका वड प्रताप गुर प्रसाद ना होए सिंपात गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाने उठे सब सुख पाए सतगुरु टूटे पार ब्रह्म प्रभ पै रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रभ पाले। बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणित गुण ठाकुर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तूरी शरण आई कर कृपा हर चरण से आई दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए। रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़ हर सेवक नौ ही जम पीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै सं सदा प्रभ दसे। प्रभ का नाम मन तन आधार विसरत नाम हो संसार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर विसरत सब काम उताज चरण कमल संग लागी प्रीत विसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कह कर सदा आनंद। राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा यानड़िए कह कर गावना एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्यान पा बिरथियां प्यारे राखन को तुम एक। रहा सतगुरु पूरा जे मिले प्यारे सोजन होत निहाला गुर की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन अपना प्रभ जाता हर नाम अरादे नाम वखाने हर नाम ही मनवाता सेवक जन की सेवा मांगे पूरे कर्म कमावा नाम की बेनंती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड पागी से काढ़िए प्यारे संत संगत जिना वासो अमृत नाम अरादिए निर्मल मने होए प्रगासो जन्म मरण दुख काटिए प्यारे चूके जम की काने तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाने। ऊंच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे गावते उदरे सुनते उदरे बिन से पाप नेरे पशु प्रेत मुग्ध को तारे
पावन पारु पारे नानक दास तेरी शरण आई सदा सदा बलिहार है। बिलावल मैला पंजवा दिखे बन फीका त्याग री सकिए नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुड गई सगली सुखी ना होत जियो मान महत ना सकती पाई सादा दासी थियो नानक से दसोबा बनते जो प्रभ अपने कियो हर चंदौरी चित क्रम सकिए मृग तृष्णा द्रुम छाया चंचल संग ना चालती सकिए अंत तज जावत माया रस ओगण अतरूप रस माते इन संग सूख न पाया तन तन हर साधन सकिए नानक जिन्नी नाम ते आया जाय बसोवड पागणी सखिए संता संग समाई है कहे दुख ना पूख ना रोग व्यापे चरण कमल लिव लाई है कहे जन्म ना मरण ना आन जाना नेचल सरणी पाई है प्रेम बिचो ना मोह व्यापे नानक हर एक से आई है दृष्ट तार मन बेदिया प्यारे रतड़े सह सुहाए से सुहावी संग मिल प्रीतम अर्ग मंगल गुण गाए सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छु जाए नानक अचरज अचरज सो मिलिया कहना कछु न जाए राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद एक रूप सगलो का सारा आपे बनज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलो ही पाए जब बच जाइए तब दिश पाए रहाओ अनेक रंग निर्गुण इक रंगा आपे जल आप ही तरंगा आप ही मंदिर आपे सेवा आप ही पुजारी आप ही देवा आपे जोग आप ही जुगता नानक के प्रभु सद ही मुक्ता बिलावल महला पंजवा आप उपावन आप सुधरना आप करावन दोष न लेना आपन वचन आप ही करना आपन विपो आप ही जरना रहाओ आप ही मस्त आप ही बुलना आप ही अचल न जाई चलना आप ही दुख आप प्रगटना आप ही कट कट आप लिखना आपे अवगत आप संरचना कहो नानक प्रभ के सब जचना बिलावल महला पंजवा पूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु वड़पागी पाया सिमर मना राम नाम चितारे

बंधन काट मुकुट गुर कीना, दुख सुख करत जन्म पुनम हुआ, चरण कमल गुर आसन दिया, अग्न सागर बूट संसारा, नानक बहा पकर सतगुरु निस्तारा। बिलावल महला पंजवा। तन मन तन अर्पण सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जतना, कर आशा आयो प्रभ मांगन, तुम पे खत शोभा मेरे आंगन। रहा अनेक जुगत कर बहुत विचारो, साथ संग इस मने उदार, मत बुद्ध सुरत नाही चतुराई, ता मिलिए जान ले मिलाई, नैन संतो के प्रभ दर्शन पाया, कहो नाम सफल सो आया। बिलावल महला पंजवा। मात पिता सुत साथ ना माया, साथ संग सब दुख मिटाया, रव रहा प्रभ सब में आपे, हर जप रसना दुख ना व्यापे, रहा तिखा पूख बहुत तकत व्यापया, शीतल पे हर हर जप जापया, कोट जतन संतोख न पाया, मंत्र ताना हर गुण गाया, देहो पगत प्रबं कर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरा वडपागी पाई है, मिल साधु हर नाम ते आई है, पार ब्रह्म प्रभ तेरी सरना, किलबे काटे पज गुर के चरना। रहाओ अवर करम सब लोकाचार, मिल साधु संग होए उधार, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, जपिए नाम जित पार उतारे, जन नानक को प्रभ कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिए। बिलावल महला पंजवा।

अपना नाम दीना रहा अंग टूटते पर गह लीना जय जयकार जगत प्रगटीना नीचा से ऊंच ऊन पुरीना अमृत नाम महारस लीना मन तन निर्मल पाप जल खीना कहो नानक प्रभु पय परसीना। बिलावल महला पंजवा सगल मनोरथ पाई मीका चरण कमल सुन लाई चीता हों बलिहारी जो प्रभु त्यावत जन्म बुझे हर हर गुण गावत रहा सफल जन्म होवत वट पागी साफ संग्राम में लिव लागी मत पत तन सुख सहज आनंदा एक निमख न विसरो परमानंदा हर दर्शन की मन प्यास तनेरी अनंत नानक शरण प्रभु तेरी। बिलावल महला पंजवा मोहे निर्गुण सब गुण बिहुना दया तार अपना कर लीना मेरा मन तन हर गोपाल सुहाया कर कृपा प्रभु कर मैं आया रहा भगत वत्सल कह का तुम्हारे संसार सागर अब उतरे पारे पतित पावन प्रभु बिरद वेद लेखिया तार ब्रह्म सो नैनो पेखिया साध संग प्रगटे नारायण नानक दास सब दूख पलायन। बिलावल महला पंजवा कौन जाने प्रभु तुमरी सेवा प्रभु अविनाशी अलख अपेवा गुण बेअंत प्रभु जहर गंभीरे ऊंच महल स्वामी प्रभु मेरे तू अपरम कर ठाकुर मेरे रहा एक दिन नाही को दूजा तुम ही जानो अपनी पूजा आपको कछु न होवत पाई जिस प्रभु देवे सो नाम पाई कहो नानक जो जन सब पाया गुण निदान प्रभु तिन्ही पाया। बिलावल महला पंजवा मात गर्भ में हाथ दे राखिया हर रस छोड़ दिखिया फल चाखिया सज गोबिंद सब छोड़ जंजाल जब जम आए सिंगारे मूड़े तब तन बिनस जाए बेहाल रहाओ तन मन तन अपना कर थापिया करन हार एक निमक न जापिया महा मोह अंधकूप परया पार ब्रह्म माया कटल बिसरिया वड्डे पाग सब कीर्तन गाया संत संग नानक प्रभु पाया। बिलावल महला पंजवा मात पिता सुत बंद पाई नानक हुआ पार ब्रह्म सहाय सुख सहज आनंद कणे गुरपूरा पूरी जाकी बाणे अनेक गुणा जाके जाहे ना गणे रहाओ सगल संजाम करे प्रभु आपे ऐ मनोरथ सो प्रभु जापे हर चरम काम मोख का दाता पूरी तई सिमर सिमर विदाता साथ संग नाम करंग मान्या कर आया पूरे गुरियाण्या। बिलावल महला पंजवा सर्व निधान पूरन गुरुदेव रहाओ हर हर नाम जपत नर जीवे नर सुवार साखत नर थीवे राम नाम हुआ रखवारा चक मारो साखत बेचारा निंदा कर कर पचै कनेरे निरपत फाक दले सिर पैरे कहो नानक जपै जन नाम ताके निकट न आवे जाम। राग बिलावल महला पंजवा कर चौथा दो पदे

रहा ऐसी कृपा करो परम मेरे हर नानक बिसरन पाहु बेरे। बिलावल महला पंजवा। चरण कमल प्रभ हृदय पे आए रोग गए सगले सुख पाए गुर दुख काटिया दीनो दान सफल जन्म में जीवन प्रवान रहाओ। अकत कथा अमृत प्रभ बानी कहो नानक जप जीवे ज्ञानी। बिलावल महला पंजवा। सांस पाई गुर सदगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। पाप पाप संताप बिनासे हर सिमरत किल विक्षवना से अनुज करो मिल सुंदर नारी गुरु नानक मेरी पैसवारी। बिलावल महला पंजवा। ममता मोह त्रो मद माता बंधन बाध्या अत विकराल दिन दिन छिजत विकार करत औद फाही फाफा जम कह जाल। तेरी शरण प्रभ दीन दयाला महा विखम सागर अत पारी उधरो साधु संग रवाला रहाओ। प्रभ सुख दाते समरथ स्वामी जियो पिंड सब तुमरा माल कम के बंधन काटो परमेश्वर नानक के प्रभ सदा कृपाल। बिलावल महला पंजवा। सगल आनंद किया परमेश्वर अपना बिद समारया सात जना होए कृपाला दिक्षे सब परवारया कारज सतगुरु आप सवारया वड्डी आरजा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारया रहा। वन तृण त्रिभुवन हरिया होए सगले जी सभारया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारया। बिलावल महला पंजवा। जिस ऊपर होवत दयाल हर सिमरत का तैसो काल रहा। सात संग पजिया गोपाल गुण गावत तू तै जंजाल आपे सतगुर आपे प्रपाल नानक जाचे सादरवाल। बिलावल महला पंजवा। मन में संचो हर हर नाम अन दिन कीर्तन हर गुण गान ऐसी प्रीत करो मन मेरे आठ पहर प्रभ जानो मेरे रहाओ। कहो नानक जाके निर्मल पाग हर चरनी ताका मन लाग। बिलावल महला पंजवा। रोग गया प्रभ आप गवाया नींद पई सुख सहज कर आया रहाओ। राज राज भोजन खावो मेरे भाई अमृत नाम रिद माहे त्याई नानक गुरु पूरे शरण आई जिन अपने नाम की पैज रखाई। बिलावल महला पंजवा। सतगुर कर दीने अस्थिर कर बार रहाओ जो जो निंद करे इन ग्रहण की तिस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार। बिलावल महला पंजवा। पाप संताप सगले गए बिन से ते रोग पार ब्रह्म तू बख्शिया संतन रस भोग रहाओ। सर्व सुखा तेरी मंडली तेरा मन तन आरोग गुण गावो नित राम के ए अवसत जोग। आए बसो कर देश में ए तले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न कहे लह गए बियोग। बिलावल महला पंजवा। काहू संग ना चाल ही माया जंजाल ऊंट सिधारे छत्र तक संतन के ख्याल रहाओ। अहं बुद्ध को बिन सना ए कुर की टाल बहु जोनी जन्मे मरे बिखिया विकराल। सत बचन साधु कहे नित जपे गोपाल सिमर सिमर नानक करे हर की रंग लाल। बिलावल महला पंजवा। सहज समाज आनंद सुख पूरे गुरदीन सदा सहाय संग प्रभु अमृत गुण चीन रहाओ। जय जयकार जगत में लोचे सब जिया सुपर सन पे सतगुरु प्रभु कस बिघन किया। जाका अंग दयाल प्रभु ताके सब दास सदा सदा वडियाया नानक गुरु पास। राग बिलावल महला पंजवा। कर पंजवा चौक दे इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू कर बार बिन सत बार ना ला गई ज्यो कागद बूंदार।
सुन मेरी मनसा मने माहे सत देख विचार।

कज गए कर बार रहाओ। जैसा सुखना रहन का तैसा संसार, दृष्टमान सब विनसी है क्या लगे गवार। कहां सुपाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल से सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेव्या से अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख तैज मुरार। बिलावल महला कन्या लोकन किया वड्याया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जियो दयाल होए तो भक्ति लागो, लप रहो मन बासना गुर मिल ए त्यागो। रहाओ करो बेनती अतकनी ए जियो हुम आगो, अर्थ आन सब वारिया प्रिय निमक सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोख अर वागो, हृदय प्रवास प्रगट तया निस्बासर जागो। शरण सुहागन आया जिस मस्तक पागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा लाल रंग किसको लगा जिस केवड़ पागा, मैला कदे न हो वही नहला गे दागा। प्रभ पाया सुख दाया मिलिया सुख पाए, सह समाना पीतरे छोड़िया न जाए। रहो जरा मरा न व्यापई फिर दुख न पाया, पी अमृत आधान्या गुर अमर कराया। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही न जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्द तेरा पार जम गुण नित तेरी बाणी, पावो तूर ते दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा राखो अपनी शरण प्रभ मोहि कृपा धारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे। मान करो तुझ ऊपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद गुण थे तुम बक्षण हारे। रहाओ हम अवगुण करें असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग एक कर्म हमारे। तुम देवो सब किस दया तार हम अकीर्त कनारे, लाज परे तेरे दांस्यों ने चित पसमारे। तुझते बाहर किछ नहीं पाव काटन हारे, कहो नानक शरण दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बिलावल महला पंजवा दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याये, जित सेवे सुख होए कहा मन सोई गाये। कहिए काय प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा। रहाओ जो तुम राखो त्यों रहा, अवर नहीं चारा नी तरिया कर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करो सोई पला मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभु नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा निर्भ हसे सिर ऊपरे कछुआ नहीं बूझे, बाद साब अंकार में मरना नहीं सूझे। सतगुर सेवो अपना काहे फिरो अभागे, देख कुसुम्बा रंगुला काहे फूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्द किया वर्तन कह पाई, माटी से माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए सम करे ते बैर विरोधी, अंतकाल पर जाएंगे काहे जलो क्रोधी। दास ऋण सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की शरणा। बिलावल महला पंजवा पिंगल पर्वत पार परे खल सतर्भ कीता,

जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बिलाई हो गयो त्रिण मेर दिखीता, श्रम करके।

इन पंगन देहाद ए अवसर ते चूकिया बहु जोन प्रमाद प्रभ कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूरन नाद। बिलावल महला पंजवा चरण पाए संत बोए था तरे सागर जेत मार्ग पाए उद्यान में गुरद से पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हेत उठत बैठ सोवते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे पगे जब साथ संगेत पूंजी साबत कणो लाभ ग्रे शोभा सेत नेकल आसन मिटी चिंत माही दोलेत परम पुलावा मिट गया प्रभ ते खतनेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहिए केत नानक पाया साथ संग हर हर अमरेत। बिलावल महला पंजवा बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी मिलत संग सब काम मिटे गत कई हमारी जहाँ दिन पेटे साध मोहे ओआ दिन बलिहारी तन मन अपनो जियरा फिर हों वारी रहाओ एक सदाई मोहते इतनी दृढ़ पारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अपदारी निंद चिंद पर दूखना एखिन में जारी दया मया अब निकट पेख ना ही दूरारी तन मन शीतल पय अब मुक्ते संसारी हीत चीत सब प्राण तन नानक दरसारी। बिलावल महला पंजवा टहल करो तेरे दास की पग चारों बाल मस्तक अपना पेट दियो गुण सुनो रसाल तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलो दयाल निस्बा सर मन अनंद होत चितवत कृपाल रहाओ। जगत उधारन साध प्रभ तिन लागो काल मोको दीजे दान प्रभ संतन पगराल उकत स्यान कछ नहीं ना ही कछ काल परम पैरा को मोहते काटो दमजाल।

सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिन पूर, जीवन सुख सब साथ संग प्रभ मनसा पूर। जित जित लावो तित तित लगे स्यान सब जाली, जत तक तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किछ तुम ते मांगना वड पागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा। साथ संगत कै बास मैं कलमल सब नसना, प्रभ सेती रंग रातिया ताते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोविंद का सूची भई रसना, मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखल त्रापया मन रस ले हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उलट कमल विकसना। शीतल शांत संतोष होए सब बूझी तृष्णा, दैद सतावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे

राज मिलक सुखदारियां अग्नि महजाल संत जना का छोरा तिस चरणी लाग माया तारी छत्रपत तिन छोड़ो त्याग रहाओ संतन का दाना रूखा सो सर्व निधान गृह साकत छत्ती प्रकार के बिकु समान भगत जना का लूगरा ओढ़ नगर ना होई साकत सिर पाव रेशमी।

मत फूलो मानस जनमाया परमाया, नानक तुस पत राक्षी जो प्रभ पहराया। बिलावल मेला पंजवा। माटी ते जिन साजिया कर दुर्लभ देहे, अनक छिद्र मन में तके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण एहे, प्रभ तज रचे जे आंसू सोर लिया खे। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत जुलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रभ सो रचो तज कूड़े नेहे। जिन अनक एक बहुरंग किए है होशी एहे, कर सेवा किस पार ब्रह्म गुर के मत लेहे। ऊंचे ते ऊंचा वडा सब संग बरने हे, दास दासन को दासरा नानक कर ले हे। बिलावल महला पंजवा। एक टेक गोविंद की त्यागी अनास, सब ऊपर समरथ प्रभु पूरन गुण तास। जन का नाम आधार है प्रभु सरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रहाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतिपार है, दीन दयाल कृपा निधे सास सास समार है। करण हार जो कर रहा साई बड़े आई, गुरपुर उपदेशया सुख खसम रजाए। चिंत अंदेशा गलत ताज जन हुकम पछाता, न बिन सह में छोड़ जाए नानक रंग राता। बिलावल महला पंजवा। महा तपत ते कई शांत पर सत पाप।

जिन प्यो तत होवत सुखी जी दान देन रहाओ। परा पूर्वला लिखिया मिलिया अब आए, वस्त संग हर साध कै पूरन आसाए, पैदन से कुल लोक के पाए सुख थान।

कीमत कहीं ना जाई है ठाकुर प्रताप है। देखत लीला रंग रूप चलने दिन आया, सुपने का सुपना पया संग चलिया कमाया। करण कारण समर्थ प्रभु तेरी शरणाई, हर दिन सिरे नानक जतै सब सद बल जाई। बिलावल महला पंजवा। जल तो वो इस कर कर पग पखलावो, बार जाओ लख देरिया दर्श तेख जीवावो। करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभ के पावो, देव सुहनी साध कह बीजन टोलावो। रहाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पिलावो, कोआ रस में सांप तृप्त होए बिखे जलन बुझावो। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो, करो नमस्कार भगत जन तूर मुख लावो। उठत बैठत जपो नाम ए कर्म कमावो, नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावो। बिलावल महला पंजवा। तिन सागर सोई करे जो हर गुण गाए, साध संगत के संग बसे वड पागी पाए। सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जन आखी, प्रगट पई सब लो में सेवक की राखी। रहाओ अगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई, अमृत नाम जल संचिया गुरु पहे सहाय। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया, काटी सिर्फ क्रम मोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अगर कछ सब प्रभ के हाथ, सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा। बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल, दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकि नजर निहाल। गुरु पूरे कृपा करी काटिया दुख रोग, मन तन शीतल सुखी भया प्रभ त्यावन जोग। रहाओ औषध हर का नाम है जित रोग ना व्याप है, साध संग मन तन हित है फिर दुख ना जाते। हर हर हर हर जाती है अंतर निवलाई, किलरित उतरे शुद्ध होए साधु शरणाई। सुनत जपत हर नाम जसे ताकि दूर बलाई, महामंत्र नानक कथे हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा। कहते उपजे भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसे परम प्रांत। गुरु पूरा जिस पेटिया

मन से कभो ना विसरे सो पुरख अपार। चरण कमल से रंग लगा अचरज गुरुदेव, जा को कृपा करो प्रभ का को लाओ सेव। निध निधान अमृत पिया मन सन आनंद, नानक कभो न विसरे प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा। कृष्ण बुझी ममता गई नाथे तय परमा, चित पाई अनद भया।

निंदक निंदा कर पचे जम काल ग्रसिए रहाओ। संता एक प्यावना दूसर को नाहे, एकस आगे बेनती रविया सर्व खाए। कथा पुरातन क्यों सुनी पगतन की बानी, सगल दुष्ट खंड खंड किए जन लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगत सब माहे, प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिनको पौ नाहे। बिलावल महला पंचमा। बंधन काटे सो प्रभु जाते कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हर नाथ। कौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए।

समग्री मन वशी पार ब्रह्म ना जाना, परम ज्योत पूरन पुरख सब जी तुम्हारे, जो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे। करण कारण समरथ प्रभ दिल अपना नाओ, नानक करिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल मेला पंजवा कवन कवन नहीं पत्रिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोया नरक की रीत। मन फुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा, हर का पैखर तो छुटे जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड, सिमरे नाही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यो तेरा तेद, दीदा पंच बटवारी उपजियो मां खेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तन तन सर्व सो अपना प्रभ जन को दीना। बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार, जप जप नाम गोविंद का पूरन विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा रहा। जी जंत सब सुख बचे सब के मन लोच, पर उपकार निश्चित बचे नाही कछ कोच। तमसो थान बसंत तन जह जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अतकना सुख सहज विश्राम। मन से कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभ शरणागति जाके सब कुछ हाथ। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया कुन सुख में पाया, सदा सिमर चरणार बिंद शीतल हो पाया। जीव किया अथवा मोया।

परज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निभकर है गुर शब्द अफूट पूरन पई समग्री कबहू नहीं टूट रहाओ साध संग आराधना हर निद अपार कर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार।

प्रभ की वडियाई, नानक अंत न पाई है बेअंत गुसाई। बिलावल महला पंजवा। सिमर सिमर पूरन प्रभु कारज भय रास, करतारपुर करता वसै संतन के पास। रहाओ विघ्न ना को लागता गुर कै अरदास। रखवाला गोविंद राय भगतन की रास, कोट ना आवे कदे मूल पूरन पंडार। चरण कमल मन तन बसे प्रभ अगम अपार, बस कमावत सब सुखी किछ ऊन न दिसे। संत प्रसाद पेटे प्रभु पूरन जगदीश है। जय जयकार समय करें सत्थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा। हर हर हर आराध्य होइए आरोग, रामचंद की लस्तुता जिन मारे आरोग।

अवर उपाव सब त्याग गया, दारू नाम लया, ताप पाप सब मिटे, रोग शीतल मन पया, गुरपूरा आराध्या, सगला दुख गया, राखन हारे राख्या, अपनी करमया रहाओ, बां पकड़ प्रभ का दया, कीना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी, नानक निर्भया, बिलावल महला पंजवा, कर कर मस्तक थापया, नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की, ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित में साध जन सो लेता मान रहाओ, शरण परे चरणार बिंद जन प्रभ के प्राण, सहज सुभाय नानक मिले ज्योति ज्योत समान, बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे ताका सब प्रताप, राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज राम दासपुर कीने गुरुदेव रहाओ, सदा सदा हर त्याय है किछ बिघन न लागे, नानक नाम सलाही है कई दुश्मन पागे, बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है मिल साथ समागे, उचरत गुण गोपाल जस दूर तेजम भागे, राम नाम जो जम जपे अंजन सब जागे, पंत मंत नह जोई तित चाख न लागे रहाओ, काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागे, आनंद मगन रस

तुझे ना जो है को मीत जन, तू गुर का दास, पार ब्रह्म तू राख्या, दे अपने हाथ रहाओ। जीवन का दाता एक है, दिया नहीं होर, नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बिलावल महला पंजवा। मीत हमारे साजना राखे गोविंद, निंदक मृतक हो गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव, जय जयकार जगत में सफल जाकी सेव। पूछ अपार अगणित हर सब जी जिस हाथ, नानक कब शरणागति जत तक मेरे साथ। बिलावल महला पंजवा। गुरपुरा राध्या होए कृपाल, मार्ग संत बताए।

शीतल भय राखे प्रभ आप, नान प्रभ शरणागति जाका वड प्रताप। बिलावल महला पंजवा, तर्क सुहावी सफल थान पूरन पय काम, और नाथा प्रभ मित गया रविया नित राम, साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई करी सुलखनी सिमरत हर नाम। रहाओ प्रगत भय संसार।

मिटाए जीवालियन जा कावड़ प्रताप दोत हमारे बख्शियन अपनी कल तारी मन बांच फल दितियन नानक बलिहारी।

आए साकत गीत नाद तुन गावते बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेवो सदा करो किरताए अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अभय अभय गुण राती नैन दर्श रंग लाए हो कृपाल दीन दुख पंजन मोह चरण हृदय बसाए सब तले तले सब ऊपर तेरे दृष्ट दृष्ट पाए अभिमान खोए खोए खोए खोई हो मोको सतगुरु मंत्र दृढ़ाए अतुल अतुल अतुल नहत लिए भगत वचन कृपाए जो जो शरण पर्यो गुरु नाम।

नमस्कार दंडोत वंदना। अनेक बार जाऊं बार है रहाओ, उठत बैठत सोवत जागत, ए मन सुजय चितार है, सुख दुख इस मन की व्यथा तुझी आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्हें मेरे परिवार है, जो तुम करो सोई पल हमरे, तेख नानक सुख चरनार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ को सगल उदाहरण, मोह मगन पतित संग प्राण।

पर कृपा अपने प्रभु की ने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभु के काम क्रोध स्तंभ के जात त्रिपत अघाए पेट प्रभु दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण शरण नानक प्रभु तेरी कर कृपा संत

गुण गोविंद गावो सब हरजन, राग रतन रसना आलाप, कोट जन्म की तृष्णा निवरी, राम रसायन आत्म त्राप, चरण गहे शरण सुख दाते, गुर के बचन जपे हर जाप, सागर तरे परम तै बिनसे, कहु नानक ठाकुर प्रताप। बिलावल महला पंजवा, आप लाया गुर सृजनहार, सब गुर अपने को बल जाई, जिन पैज रखी सारा संसार, रहो कर मस्तक तार बालक रख लीनो, प्रभ अमृत नाम महारस दीनो, दास की लाज रखे मेहरबान, गुरु नानक बोले दरगे परवान। राग बिलावल महला पंजवा, चौक दे दुख दे कर सतवा, इको ओंकार सतगुरु प्रसाद। सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिनसो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा, रहाओ विस्मन विषम पे जो पेठियो, कह न जाए वड्याई, मगन पे ऊहा संग माचे, ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा,

कै अपर अपारा एक विस्थिरण एक संपूर्ण एक कै प्राण धारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूचो सूचा अंश ना अंता सदा बिरंता पहु नानक ऊंचो ऊंचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर कामना आवत है जासु राच माच कुम लागे ओ मोहनी मोहावत है त्राव कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ छिने में जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बिखै ठगौरी खावत है त्रिन को मंदर साज सवार पावक तने जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ ठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मूड पर छाडे केस गहे फिर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है जाल पसार चोग विस्थारी पंखी ज्यों

कहो नानक बंधन कातन कहो मैं सतगुरु पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा। हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारो मने अधारो चीत चितवो जैसे पान संबोली। रहाओ सहज समायो गुरे बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जो वड़कागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना तूप ना गंध ना दीपा पोत पोत अंग अंग संग मौ

पंते हुए सगल खरी। सत संतोष दया कर्म सुख संतन ते इह मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन को सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा। क्या हम जी जंत बेचारे वरन न साके एक रुमाई, ब्रह्म महेश सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकुर तेरी दत नहीं पाई। क्या कथिय किस कथन न जाई, जह जह देखा तहरिया समाई। रहाओ जह महाप्रयान दुख जम सुनिए, तह मेरे प्रभु तुहें सहाई। शरण पर्यो हर चरण गहे प्रभु, गुरु नानक को बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा। अगम रूप अविनाशी करता पतित पवित्र एक निमख जताई है, अचरज सुनियो प्रापक केतले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधि है कित संयम पाई है, कहो सुरजन कित युक्ति त्याई है। रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा को किसकी लई लई फुन जाई है। नानक शरण शरण सुख सागर, मुहे टेक तेरो इकनाई है। बिलावल महला पंजवा। संत शरण संत टहल करी, पंद बंद हर सगल जंजारो, अवर काज ते छूट परी। रहाओ सुख सहज हर कनो आनंदा, गुर ते पायो नाम हरी। ऐसो हर रस बरन ना सातू, गुर पूरे मेरी उल्ट करी। देखियो मोहन सब कै संगे, पूर न काहू सगल करी। पूरन पूर रहो कृपा निद, कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हूँ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे।

ज्यों कालर पीत गिरिए रहाओ। जो देखे छिदर तो निंदक कुमा है, पलो देख दुख परिये। आठ पैर चितवे नहीं पहुँचे, बुरा चितवक चितवित मरिये। निंदक प्रभु पुलाया, काल नेरे आया, हर जन स्यों बाद उठरिये। नानकारा था आप प्रभु स्वामी, क्या मानस बपरे करिये। बिलावल महला पंजवा। ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे, देखत सुनत सदा संग हरे रहो। काच बिहाजन कंचन छादन, बैरी संग हेत साजन त्याग करे। होवन तोरा अनहोवन मीठा, बिख्या में लपटाए जरे। अंध कूप में परयो प्राणी, परम गुबार मोह बंद परे। कहो नानक प्रभु हो दयारा, गुर पेटे का दे बहा फरे। बिलावल महला पंजवा। मन तन रसना हर चीना, पै आनंदा मिटे अंदेसे। सर्व सुख मोको गुर दीना रहाओ। त्यानप ते सब परिश्यानप, प्रभु मेरा दाना बीना। हाप दे राखे अपने को, काहू ना करते कछीना। बल जाओ दर्शन साधु के, जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोसे, कहो ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा। गुर पूरे मेरी राख ले, अमृत नाम हृदय मैं दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहा, निवरे दूत दुष्ट बैराई। गुर पूरे का जपया जाप, कहां करे कोई बेचारा। प्रभु मेरे का बड़ प्रताप। सिमर सिमर सिमर सुख।

सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाहे। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हर काके नानक मन लागे है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरो देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही बसे साध कै संगा रहाओ। छिन में थाप निवाजे ठाकुर, नीच कीर्त ते कहरा जंगा, कभु न बिसरहिए मोरे ते नानक दास एही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचुत पूजा जोग गोपाल, मन तन अर्थ रखो हर आगे, सर्व जिला का है प्रतपाल रहाओ। शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राख है अपने को, किसनो लगे न ताची बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्व सो संत जना तन माल, नानक जाचित दर्श प्रभ मांगे, संत जना की मिले रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन भय, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन को त्रास कहे रहाओ। जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाथा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, तुह पदार्थ बड़ काज लहे, कर कृपा पूरन प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण रात, सुलही का हाथ कहीं ना पहुँचे, सुलही होए मुआ ना पास रहाओ। काट कुठार खसम सिर काटया, छिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया, जिन रचया तिन दीना साक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सम पाई साक, कहो नानक।

आपे आप वर्ते स्वामी कार्य रास किया गुरुदेव रहाओ। आद मद प्रभ अंत स्वामी अपना खाद बनायो आप, अपने सेवक की आपे राखे प्रभ मेरे को वड प्रताप। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु वस कीने जिन सगले जंत, चरण कमल नान शरणाई राम नाम जप निर्मल मंत। बिलावल महला पंजवा। पाप पाप ते राखे आप, शीतल पै गुरु चरनी लागे, राम नाम हृदय में जात राव, कर कृपा हस्त प्रभ जी ने जगत उधार नवखंड प्रताप, दुख बिन से सुख।

और ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम होए कल्याण रहाओ। गुरु पूरा पेटियो बड़ पागी अंतर जामी सुवर सुजान हाथ दे राखे कर अपने बरसम रथ निमाणिया।

दोवे थाव रखे गुर सूरे, हल्क पलक पार ब्रह्म सवारे, कारज हुए सगले पूरे रहाओ, हर हर नाम जपत सुख सहजे, मज्जन होवत साधु तूरे, आवन जान रहे थित पाए, जन्म मरण के मिटे बिसूरे, प्रम पै तरे छुटे पै जम के, कट कट एक रहा पर पूरे, नाम शरण परयो दुख पंजन, अंतर बाहर के खजूरे, बिलावन महला पंजवा, दर्शन देखत दोख नसे, कभो ना हो वो दृष्ट अगोचर, जीते संग बसे।

की जनती करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जाते, नानक प्रीत लाई प्रभाते। बिलावल महला पंजवा। पन पन जोबन चलत गया, राम नाम का पदन ना कीनो, परत विकार निष्फोर पया रहा, अनेक प्रकार भोजन नित खाते, मुख दंता कस खीन खया, मेरी मेरी कर कर मुठो, पाप करत नह परी दया।

कंठ लाए ऑक्सीजन अपने, उधर लिए लाए अपने पाल। सही सलामत मिल कर आए, निंदक के मुख होए काल। कहो नानक मेरा।

दया शांत सहज अनंत गुण गाए दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगुण प्रभ कछ ना विचार्यो कर कृपा अपना कर लिया अतुल बड़ाई अचुत अविनाशी नानक उचरे हर।

आवत फिरत मद मावत बिखिया राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक मुहावत पाप कमावत बुढ़े ऐसे शरण दुख पंजन पुरख निरंजन साधु संगत रवण जैसे केशव कलेश नाश अग खंडन नानक जीवत दर्श।

फूल ज्यो अल मकरंद कमल ज्यो अन रस नहीं चाहे ये कह हर ला है अन से टूटी है रिक से छूटी है मन हर रस कूटी है संग साधु उलट।

ना है। तुम नर जन्म अकार खोया, जहरा खो मन माही राव, तीर्थ करे व्रत फुन राखे, ने मनुआ बस जा को नेफल कर्म ताहे तुम मानो, साच कहत मैं जा को।

नानक कहे अवर नहीं कोए। बिलावल मेला पहला मन का कहे आ मन सा करे इहो मन पुन पाप कुचरे माया मद माके कृपत ना आवे कृपत मुक्त मन सा।

दूजी दुर्मत दर्द न जाए, छूटे गुरमुख दारू गुण गाए, तोती उजल तिलक गल माला, अंतर क्रोध पढ़े नाट साला, नाम विसार माया मद किया, बिन गुरु भगत नाही सुख थिया, सूकर स्वान गर्दव मंजारा, पशु मलेच्छ नीच चंगाला, गुर के मुंह फेरे तिन जोन पवाये, बंधन बांधिया।

आप न बूझे लोक बुझावे, मन का अंधा अंध कमावे, डर कर महल ठौर कैसे पावे, हर जियो सेवी है अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, इस नाल क्या चले तैनामी।

गुरमुख मनुआ इकत कर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया। नैनी देख दर्श मन तृप्ते, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है तीने, रस रस राम गोपाल रवैया। त्रै गुण माया मोह व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लैया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया। राम नाम है जोत सबाई, गुरमुख आपे अलख लख।

सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत भंडार खुलैया, गुर चरणी एक सरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृपत न

नानक जंत बजाए वाजे जित पावे तित राहे चलैया। बिरावल मेला चौथा। गुरुमुख अगम अगोचर त्याया हों बल बल सतगुर सतपुर खैया। राम नाम मेरे प्राण वसाए सतगुर परस हर नाम समैया।

लाल जवे हर नाम पर गासिया, पांडे पाओ पवै तित अय्या। दासन दास दास हुए रही है, जो जन राम भगत निज पहिया। मन बुद्ध अर्प तरो गुर आ गए, गुर प्रसादी मैं अकथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे, यो मन तृष्णा जल कथैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया, अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। यो मन नाचे सतगुर आ गए, अनहद शब्द

छिन में तिन तिन टह पैया। हर सर सागर हर है आपे, इहो जग है सब खेल खिलैया। ज्यो जल तरंग जल जल है समावे, नानक आपे आप रमैया। बिलावल मेला चौथा, सतगुर परचय मन मुंद्रा।

मन मांगे रिद सिद चेतक चेत कहिया त्रिपत संतोख मन शांत न आवे मिल साधु त्रिपत हर नाम सिद कहिया अंडज जेरज सेतज उत्पुज

किया। मन तन काट दियो गुर आगे जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखाया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट दियो चरणा तल जो हर प्रभ मेले मेल मिलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबोधे गुण कामन कर हर प्रभ लैया। भगत वचन ओआ को नाम कहियत है शरण प्रभु तिस पाछे पैया। खिमा सिदार करे प्रभ खुशिया मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा हम तिस आगे जियो कट।

मैया सतगुरु दया करे प्रभ मेले, मैं कुछ आ गए सिर कट कट पैया रहाओ। रोम रोम मन तन इक बेदन, मैं प्रभ देखे बिन नींद न कहिया। वैदक नाटके देख पुलाने, मैं हृदय मन तन प्रेम तीर लगैया। हौ खिन पल रह न सकूं बिन प्रीतम, जो बिन अमले अमली मर गैया। जिनको प्यास हुए प्रभ केरी, तिन अवर न पावे बिन हर को दोइया। कोई आन आन मेरा प्रभु मिलावे, हौ किस विटों बल बल कुम गैया।

प्रभु ठाकुर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत शरण जे आवे प्रभु आए मिले खिनटील न पैया कर कर क्रिया चार वधाए मन पाखंड कर्म कपट लो भैया बेसुआ के कर बेटा जन्मिया पिता ताहे क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत करते हर

राजपूत बेकाला आप अगोचर पुरुष निराला एक परम भूखे मोह प्यासे एक रस चाखे सब तृप्ता से एक रंग राते एक मरतूर एक दर कर सा

तिस में मनुआ रहा लिव लाए, प्रणवत नानक काल न खाए। नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा, कट कट नाथ महाबलवंडा। आई पूता इहो जग सारा, प्रभ आदेश आद रखवारा। आद जुगादी है भी होग, ओह अपरंपर करने जोग। दसवीं नाम दान इसनान, अन दिन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान। सच मैल ना लागे।

रहे डागर मरे ना बूढ़े कोए निडर बूढ़ मरे पत खोए डर में कर कर में डर जाने तख्त निवास सचमन पाए चौदस चौथे थावे ले पावे राजस्तामस सत्काल समावे ससियर के कर सूर समावे जोग जुगत की कीमत पावे चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड दया लिवला।

गुर के शब्द हर रया समाये, मंगल माया मोह उपाया, आपके सिर सिर तंदे लाया, आप बुझाए सोई बूझे, गुर के शब्द दर कर सूझे, प्रेम भगत करे लिवलाए, हो मैं ममता शब्द जलाए।

गवाए नानक नाम रखो उधार देवन हारे को जयकार वीरवार वीर परम पुलाए प्रेत भूत सब दूजे लाए आप।

गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिवलाए। सत गुर सेवे सेवड पागी, होमे मार सच लिवलागी, तेरे रंग राते सह सुवाए।

जी जंत माया मोह पाजे, दूजे पाए परपंच लागे, आवे जावे मरे अपागे, सतगुर पे ते सो जी पाए, परपंच चूके सच समाए, जाके मस्तक लिखिया लेख, ताके मन वस्या प्रभ एक रहाओ, श्रेष्ठ उपाय आपे सब वेख है, कोई न मेटे तेरे लेख है, सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवे जाए, सतगुर से वै सो जन बूझे, हमें मारे ता दर सूझे, एक ते सब दूजा हुआ, एको वत अवर न बिया, दूजे से जे एको जाने, गुर के शब्द हर दर

मार न साके कोई जिस दा साहिब डाडा होए किसनो मार न साके कोई साहिब की सेवक रह शरण आई आपे बख्शे दे वड्याई किसते ऊपर नाही कोए कौन डरे डर किसका होए गुरमति सांत वसै शरीर।

मुंड नवेलड़िया गोयल आई राम, मटकी डार तरी हर लिवलाई राम, लिवलाए हर सो रही गोयल, सहज सब फिगारिया, कर जोर गुर पे कर बेनंती, मिलो सास प्यारिया। तन पाए भगती देख प्रीतम, काम क्रोध निवारिया, नानक मुंड नवेल सुंदर, देख फिर साधारिया। सच नवेलड़िए जो बन बाली राम, आओ न जाओ कहीं अपने सैनाली राम, ना अपने संग दासी मैं भगत हर की पावे, अगाध बोध अकथ कथिए सहज प्रभु गुण गावे, राम नाम रसाल रसिया रवे साच प्यारिया, गुर शब्द दिया दान किया नानका विचारिया। श्री तर मोहड़ी पिर संकूति राम, गुर के पाए चलो साथ संगूति राम, तन साथ संगूति हर संगसूति, संग सकी सहेलिया, एक पाए एक मन नाम वसिया, सतगुरु हम मेलिया, दिन रैन करी ना चसा विसरे, साथ साथ निरंजनो, शब्द ज्योत जगाए दीपक नानका पौ पंजनो। ज्योत सबाइड़िए त्रिभुवन सारे राम, कट कट लव रहा अलख अपारे राम, अलख अपार अपार साचा आप मार मिलाई है, हों मैं ममता लोभ जालो शब्द मैल चुकाई है, दर जाए दर्शन करी पाने सार तारण हारिया, हर नाम अमृत चाख तृप्ति नानका उधारिया। बिलावल मेला पहला, मैं मन चाओ कणा साथ विगासी राम, मोही प्रेम पिरे प्रभ अवनासी राम, अब जतो हर नाथ नाथे तिसे पावे सोची है, कृपाल सदा दयाल दाता, जिया अंदर तू जिये, मैं अवर ज्ञान ना ज्ञान पूजा, हर नाम अंतर वस रहे, देख पवनी हठ न जाना नानका सच गह रहे। पिंडी रैन पली दिन सुहाए राम, निज कर सूतड़िए पिरम जगाए राम, नव हान नव तन शब्द जागी अपने पिर पानिया, तज कूड कपट स्वभाव दूजा चाकरी लोकानिया। मैं नाम हर का हार कंठे साज शब्द निशानिया, कर जोर नानक साथ मांगे नगर कर तुद पानिया। जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम, जिन सुन मने अड़ी अकथ कहानी राम, अकथ कहानी पद निर्बाणी को बिरला गुरमुख बूजे, ओ शब्द समाए आप गवाए त्रिभुवन को जी सूजे, रह अतीत अपरंपर राता साच मन गुण सारिया, ओ पूरया सर्व ठाई नानका उर्धारिया। महल बुलाईड़िए भगत स्नेही राम, गुरमत मन रहसी सीजस देही राम, मन मार विजय शब्द सीजय त्रै लोक नाथ पछाणे, मन डीग डोल ना जाए कतही अपना फिर जाने, मैं आधार तेरा तू खसम मेरा, मैं कान तकिया तेरो साथ सूचा सदा नानक, गुर शब्द चगर निवेरो। संत बिलावल मेला चौथा मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा हर प्रभ से जय आया मन सुख समाना राम, गुर पुत्र है हर प्रभ पाया रंग रलिया माना राम, वड पा गया सुहागनी हर मस्तक माना राम, हर प्रभ हर सुहाग है नानक मन पाना राम, निमानिया हर मान है हर प्रभ हर आपे राम, गुरमुख आप गवाया नित हर हर जाते राम, मेरे हर प्रभ पावे सो करे हर रंग हर रापे राम, जन नानक सहज मिलाया हर रस हर कृपे राम, मानस जन्म हर पाये हर रावण मेरा राम, गुरमुख मिल सुहागनी
रंग होए कनेरा राम, जिन मानस जन्म ना पाया तिन पाग मंगेरा राम। हर हर हर हर राख प्रभ नानक जन तेरा राम। गुर हर प्रभ अगम दृढ़ाया मन सन रंग पीना राम। भगत वत्सल हर नाम है गुरमुख हर नीना राम। बिन हर नाम ना जींदे ज्यो जल बिन नीना राम। सफल जन्म हर पाया नानक प्रभ कीना राम। बिलावल मेला चौथा श्लोक। हर प्रभ सज्जन लोड़ लो मन वसै वड भाग। गुर पूरे वेखा लिया नानक हर लिव लाग संत। मेरा हर प्रभ रावण आया हो मैं बिच्चा जे राम। गुरमत आप मिटाया हर हर लिव लागे राम। अंतर कमल प्रगासिया गुर ज्ञानी जागे राम। जन नानक हर प्रभ पाया पूरे वड पागे राम। हर प्रभु हर मन पाया हर नाम वधाई राम। गुर पूरे प्रभ पाया हर हर लिव लाई राम। अज्ञान अंधेरा कटिया ज्योत प्रगटियाई राम। जन नानक नाम आधार है हर नाम समाई राम। तन हर प्रभ प्यारे राविया जा हर प्रभ पाई राम। अखी प्रेम कसाईया ज्यो बुलक मसाई राम। गुरपूरे हर मेलिया हर रस अधाई राम। जन नानक नाम विदसिया हर हर लिव लाई राम। हम मूर्ख मूड मिलाया हर कृपा तारी राम। तन तन गुरु सवास है जिन हो मैं मारी राम। जिन वड पागिया वड पाग है हर हर उधारी राम। जन नानक नाम सला

मंगल साज भया प्रभ अपना गाया राम, अविनाशी वर सुनिया मन उपजया चाया राम। मन प्रीत लागे वड्डे पागे कब मिलिए पूरन पते, सहजे समाये गोविंद पाये दियो सतिये मोहे मते। दिन रैन ठाडी करो सेवा प्रभ कवन जुगती पाया, दिन वंत नान करो कृपा लहो मोहे लड़ लाया। पया समारा हर रतन विसाराम,

एक चित एक मन त्याय स्वामी लाए प्रीत प्यारो कर जोड़ प्रभु ते कर बिनंती मिले हर जस ला बिनवंत ना।

मिल एकत्र होए सहज तोए मन प्रीत उपजी मांझिया मिल जोत जोती ओत पोती हर नाम सब रस भोगो बिनवंत नानक सब संत मेली प्रभु कारण करण जोगो पवन सुहावरा तर्क सबागी राम प्रभु कर आयरा गुर चरणी लागी राम गुर चरण लागी सहज जागी सगल इच्छा पुनिया मेरी आस पूरी संत पूरी हर मिले कंत विछुनिया आनंद अंगुल वजे बाजे अहं मत मन की त्यागी बिन वंत नानक शरण स्वामी संत संग लीलागे बिलावल मेला पंजवा पाग सुलखना हर कंका मारा राम अनहद बजित्रा तिस सुंदर वारा राम आनंद अंदिन वजे बाजे बिन स्रें उमाहा तह रोग सोग ना दुख दिया तह जन्म मरण ना ताहा रिद्ध सिद्ध सुधा रस अमृत पगत परे पंडारा बिनवंत नानक बलिहार वंजा पार ब्रह्म प्राण अधारा सुन सकी सहेलड़ियो मिल मंगल गावे राम मन तन प्रेम करे तिस प्रभ को रावे राम कर प्रेम रावे तिसे पावे एक निमख पलक ना त्यागी है जय कंठ लाई है नह लजाई है चरण राज्य मन पागी है पगत फगौरी पाए मोह है अंत कथु न पावे बिनवंत नानक मिल संग साजन अमर पदवी पावे दिस मन दिसम पई पेट गुण अविनाशी राम कर जय पूजा गही कट जम की साफी राम जय पूजा लीनी दास कीनी अंकुर अदोप जनाया मलन मोह विकार नाथे दिवस निर्मल आया दृष्ट तारी मन प्यारी महा दुर्मत नासी बिनवंत नानक पही निर्मल प्रभ मिले अविनाशी सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम ब्रह्म दिशे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए आत्म पसारा करण हारा प्रभ बिना नहीं जानिए आप करता आप पुगता आप कारण किया बिनवंत नानक से जाने जिन्हें हर रखिया।

कि आओ सखी वक आओ सखी अति तिरका मंगल गावे तज मान सखी मत अपने प्रीतम पावे तज मान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजनो लग चरण शरण दयाल प्रीतम सगले दुर्ख दिखंडनो हुए दास दासी तज उदासी बहुत विधि न पा

वो जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी माँ विचित्र चंचल अनक पाल दिखावे। ओए पीठ मीठी मने लागे नाम लेन ना आवे। गृह बने तीर बर्त पूजा बात काटे जो

सगल जाको करुणा पत दक्षिण लखो नानक पयम पै सेव सेवक जो जानो क्यों मोए रखो। मुल मछली तुम नीर तुझ दिन क्यों सरे मोए चात्रिक तुम बूंद तृप्तो मुख परे मुख परे हरे प्यास मेरी जी जिया प्राण पते लाडले लाड लड़ाए सब में मिल हमारी हुए गते कीत चित वो मित अंधारे जो आस चतवी दिन चरे नानक पयम तय प्रय संग मेली मछली नीर न विसरे। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा सोहे बंक द्वार सगला बनहरा हर हरा स्वामी सुखे गामी अनद मंगल रसकना नवल नव तन नाव बाला कवन रसना गुण।

सुंदर छाप दयाल प्रभ सर्व सुखानिद पियो सुख सागर प्रभ केते है नानक सुखी होते हो जियो। संत सुख सागर प्रभ पाइये जब हो वे पागो राम मानन मान बजाइये हर चरणी लागो राम छोड़ ध्यान पचातरी गुरमत बुद्ध त्यागो राम नानक पौ शरण आई राम राय फिर होए सुहागो राम। सो प्रभ तज तत लागी है जिस दिन मर जाइए राम लाज ना आवे अज्ञान मती दुर्जन बिरमाइए राम पतित पावन प्रभ त्याग करे कहो कत ठहराइए राम नानक पगत पाव कर दयाल की जीवन पद पाइए राम। श्री गोपाल ना उचरे बल गये दुचारण रसना राम प्रभु भगत वचल ने सेवही काया काक ग्रसना राम प्रम मोही दुख ना जानही कोट जोनी बसना राम नानक बिन हर अवर जे चाहना दुष्टा क्रम पसमा राम। लाए बिरहो भगवंत संगे होए मिल बैरागन राम चंदन चीर सुगंध रसा हो मैं दुख त्यागन राम ईत ऊत मैं डोलिए हर सेवा जागन राम नानक जिन प्रभ पाया अपना सा अटल सुहागन राम।

लीना राम बहा पकड़ तम ते का दिया कर अपना लीना राम नाम जपत नानक जीवे शीतल मन सीना राम क्या गुण तेरे कह सको प्रभ अंतर जामी राम सुमर सिमर नारायण पय पार जरामी राम गुण गावत गोविंद के सब उच्च पुजामी राम नानक उदरे जप हरे सबू का स्वामी राम रस्त मेरे

इस युग में विरले ब्राह्मण ब्रह्म बिंदे चित लाए, नानक जिन को नजर करे हर कच्चा के नाम रहे लिलाए। मैला तीजा सतगुरु की सेव ना की किया, सबल ना लगो पाओ, हो मैं रोग कमावना अत दीर्घ बहु स्वाओ, मन हट कर्म कमावने फिर जो नी पाए, गुरमुख जन्म सफल है जिसनो आपे ले मिलाए, नानक नदरी नदर करे ता नाम तन पल्ले पाए। कौड़ी सब वडियाईया हर नाम विच हर गुरमुख त्याये, जे वस्त मंगिए साई पाईए, जे नाम चित लाईए, गुहज गल जी की कीचे सब गुरु पास ता सर्व सुख पाईए, गुरु पूरा हर उपदेश दे सब भुख ले जाइए, जिस पूर्व हो वह लिखिया सो हर गुण गाइए। श्लोक महला तीजा सतगुरु ते खाली को नहीं मेरे प्रभु मेल मिलाए, सतगुरु का दर्शन सफल है जिहा कोई खेते हाफल पाए, गुरु का शब्द अमृत है सब कृष्णा पुख गवाए, हर रस की संतोष हुआ सत रसिया मन आए, सच के आए अमरा पद पाया अनहद शब्द बजाए, सचो दैव पथरिया गुर कहते सुबाए, नानक जिन अंदर सच है से जन छते ना किसे दो छुपाए। महला तीजा गुर सेवा ते हर पाई जा को नदर करे, मानस के देवते पे सच्ची पगत जिस दे, हो मैं मार मिलायन गुर के शब्द सुचे, नानक सहजे मिल रहे नाम वडियाई दे। पौड़ी गुर सतगुर विच नाम है की वड्डी वडियाई, हर करते आप वधाई, सेवक सिख सब वेख वेख जीवन ओ ना अंदर हृदय पाई, निंदक दुख वडियाई वेख ना सकन ओ ना पराया पला ना सुखाई, क्या होवे किस ही की चख मारी जा सके स्यों बने आई, ये गल करते पावे सा नित नित चले सवाई, सब चक चक मरे लुकाई। श्लोक महला तीजा।

किए जो कुछ हर करावे सो ओय करे सब हर के अर्थिए सो ऐसा हर सबना का प्रभु सतगुरु के वल है तुम सब वर्ण चारे खाने सब सृष्टि को लेकर सतगुरु अग्गे कार कमावन को दिए हर सेवे की ऐसी वडियाई देखो हर संतो जिन विचों काया नगरी दुश्मन दूत सब मार कदिए हर हर कृपाल हुआ भगत जना ऊपर हर अपनी कृपा कर हर आप रख लिए श्लोक महला तीजा अंदर कपट सदा दुख है मन मुख ध्यान न लागे दुख विचकार कमावनी दुख वरते दुख आ गए कर्मी सतगुरु पेटी है ता सच नाम निलागे।

हर का नाव मन पाया, गुरुमुख देखण बोलना, नाम जपत छुप पाया, नानक गुरुमुख ज्ञान पर गास्या, तिमर अज्ञान अंधेर छुपाया। मैला तीजा, मन मुख मैले मरे गवार, गुरुमुख निर्मल हर राख्या उधार, पनत नानक छो जन पाई, सतगुरु से यो हो मैं मल जाई, अंदर संसा दूख व्यापे, सिर तंदा नित मार, दूजे पाए सूते कमो न जागे, माया मोह प्यार, नाम न चेते शब्द न विचारे, तो मन मुख का विचार, हर नाम न पाया बिरथा जन्म गवाया, नानक जम मार करे खुआर पौड़ी। जिसनो हर भगत सत भक्तियन सो सच्चा साव, किसकी मोहताजी लोक कटदा, होर को हट ना वस ना वेसाओ, भगत जना को सन्मुख होवे, सो हर रास ले वे मुख पट पाओ, हर के नाम के व्यापारी हर भगत है, जम जागा की किना नेड़ न जाओ, जन नानक हर नाम तन लग्या, सदा वे प्रवाओ। श्लोक महला तीजा, इस युग में पगती हर तन खटिया, और सब जगत परम पुलाया, गुरु प्रसादी नाम मन वसिया, अंबिन नाम से आया, दिखिया माए उदास है, हों में शब्द जलाया, आप तरिया कुल उदरे तन जनेंदी माया, सदा सहज सुख मन वसिया, सत्य से लिव लाया, ब्रह्मा विष्णु मां देव त्रै गुण पुल्ले, हों में मोह वदाया, पंडित पर परमोनी पुल्ले, दूजे पाए चितलाया, जोगी जंगम सन्यासी पुल्ले, गुण गुरु पत न पाया, मन मुख दुख ये सदा परम पुल्ले, तिनी बिरथा जन्म गवाया, नानक नाम रते।

अवर न कोई गुरुमुख अंतर मन वसै सदा सदा सुख होए पौड़ी। जिन्नी गुरुमुख हर नाम तन ना खट्यो से देवालिये जुग माहे। कोई मंगदे फिरे सब जगत में कोई मोह फुक ना तिनको पाए। पराई बकीली करें अपनी प्रतीत फोन सगवा भी आप लखाए। जिस तन कारण चुगली करे सो तन चुगली हथ ना आवे कोई पावे तिथे जाए। गुरुमुख सेवक पाए हर तन मिले तुच्छों कर्महीन लै न सकें। होर थे देश दिसंतर हर तन

गुरमुख संसा मूल न हो गई, चिंता विचों जाए जो किस होए, सो सहजे हुए कहना किसू ना जाए, नानक तिनका आस।

अंगन जागे कदे न सोवे सहजे अमृत प्याओ। मीठा बोले अमृत बाणी अंदिन हर गुण गाओ। निज कर वासा सदा सोंदे नानक तिन मिलिया सुख पाओ। पौड़ी हर तन रतन जवे हरी सो गुर हर तन हर पासो देवाया। जे कुसै क्यों दिस आवे ता कोई क्यों मंग ले अकै कोई क्यों देवाए। इहो हर तन जोर कीते किसे नाल ना जाए वंडाया। जिसनो सतगुर नाल हर श्रद्धा लाए तिस हर तन की वंड हथ आवे। जिसनो करते तुर लिख पाया किस हर तन का कोई शरीक नाही किसे का खत नाही। किसे के सीव बन्ने रोल नाही जे को हर तन की वकीली करे। किसका मोह हर चौ कुंडा विकाला कराया हर के दिते नाल किसे जोर वकीली ना।

ना ए मारी ना मरे ना ए हट विकाए गुर के शब्द पर जा लिए ता ए विच्चों जाए तन मन होवे उजला नाम वसे मन आए नानक माया का मारन शब्द है गुरमुख पाया जाए पौड़ी सतगुर की वड्याई सतगुर दित्ती तुरों हुकम बुद्ध निशान कुत्ती पाती जावाई सकी अगो पिछो टोल जिठा लायुन सबना का अभिमान जिथे को वेखे तिथे मेरा सतगुरु हर बख्शो से सब जान जे सतगुरु नो मिल मन्ने सो हल पल जय जे वे मुख हो वे सो फिरे परिष्ठ खान जन नानक केवल हुआ मेरा स्वामी हर सज्जन पुरुष सुजान पौधी तित देख के सब आए पे।

नानक जो पावै सो होए पौड़ी। पारगम दयाल सागर तारिया, गुरपुरै मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दूत संभारिया, अमृत नाम निदान कंठ उधारिया। नानक साधु संग जन्म मरण सवारिया। श्लोक महला तीजा। जिन्नी नाम विसारिया कूड़े कहन कान, पंच चोर तिना कर मोहन। हौ मैं अंदर सन साकत मुठे दुर्मती, हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया, विक्षो रचै रचन। दुष्टा सेती तिरहड़ी, जंक्षो वाद करन। नानक साकत नरक में जम बजे।

तिस सास गिरास सदा मन वसै, जम जोए ना सकै तिस हृदय हर हर नाम रस, कवला सेवक तिस हर दासा का दास हुए परम पदार्थ तिस। नानक मन तन जिस प्रभु वसै, हौं सद कुर्बाने तिस जिनको पूरब लिखिया रस संत जना से।

जगत में काट काट मुख पनिया बहुत वड्याईया साहिब है ने जाई गलिया सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे जो बनिया। श्लोक पहला तीजा अपना आप ना पछानई हर प्रभु जाता दूर गुर की सेवा विसरी क्यों मन रहे हजूर मनमुख जन्म गवाया झूठे लालच कूर नानक बख्श मिलायन सच्चे शब्द हजूर। महला तीजा हर प्रभु सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद अंजन नाम सलाहना हर जपिया मन आनंद वड पागी हर पाया पूरन परमानंद जन नानक नाम सलाहया बहुर न मंतन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे पिछले गुने सतगुरु बख्श ले सत संगत नाल रलावे जो मी उठे गलिया नालिया टोबिया का जल जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन हो जावे ए वड्याई सतगुरु निर्वैर विच जित मिले तिसना पुख उतरे हर सांत तड़ आवे नानक ओ अचरज देखो।

दे सू दे रे चलो तुम नतर को तक्का दे गई है रे राव बारे बूढ़े तरने भैया सबु जम ले जई है रे मानस बपरा मूसा की नो मीच बिलैया खई है रे तनमंता अर निर तन मन ही पापी कछु न कानी रे राजा प्रजा समकर मारे ऐसो काल बनानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे आवे न जाए न

बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण का फते सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक स्यानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहा आप न बौरा राम कियो बौरा सतगुरु जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत कोई मेरे परम पूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ताए कह जाने अब है न माता सो कबू न माता कह कबीर राम रंगराता बिलावल गिरो तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा अजो विकार न छोड़े पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो पौजल निरपारी राख राख मेरे दीठला जन शरण तुम्हारी राव बिखे बिखे की बात ना तजी न जाई अनित जतन कर राखी है फिर लपटाई जरा जीवन जो बन गया किसकी आरानी का ए जीरा निर्मोल को कौडी लगनी का कहूँ कबीर मेरे माधवा तू सर्वे आती तुम संसर नाई दयाल मोहित संसर पापी बिलावल नित उठ कोरी गागर आने लीपत जियो गयो ताना बाना कछु न सूजे हर हर रस लपते हो हमारे कुल कौने राम के हो जब की माला लई निकूते तब के सुख ना पयो राव सुनो जिठानी सुनो जिरानी अचरज एक पयो सात सूत इन मुंडिये खोए यह मुंडिया क्यों ना मोयो सर्व सुखा का एक हर स्वामी सो गुरु नाम दयो संत प्रहलाद की पैज जिन राखी हरनाशक नख बिदरयो करके देव पितर की छोड़ी गुरु को शब्द लयो कहत कबीर सगल पाप खंडन संत लै उदरयो बिलावल को हर समान नहीं राजा ए तू पर सब विचार के झूठे कर दिवाजा रहाओ तेरो जन होए सोए सत डोले तीन पवन पर छा जा हाथ पसार सके को जन को बोल सके ना अंदाजा चेत अचेत मूर मन मेरे बाजे अनहद बाजा कह कबीर संसार परम क्यों को रूप है लाद निवाजा बिलावल राख लो हम ते बिगरी सील कर्म जब पगत न कीनी हो अभिमान टेढ़ पगरी रहाओ अमर जान संची ए काया ए मिथ्या का की जगरी जिन्हें निवाज साज हम किए किसे विसार अवर लगरी संगत तोए साध नहीं कहियो शरण परे तुमरी पगरी कह कबीर ए गिनती सुनियो मत पालो जम की खबरी बिलावल दरमा दे ठांडे दरबार।

अहिंसा आधारी ब्रह्म के पाए पवे तेज तारी आसन पवन दूर कर बवरे छोड़ कपट नित हर पद बवरे राव जिन तू जाचे सो त्रिगुण भोगी कह कबीर के सो जग जोगी बिलावल इन माया जगदीश गुसाई तुमरे चरण बिसारे किंचित प्रीत ना उपजे जन को जन का करे बेचारे राव त्रिग तन त्रिग तन त्रिग ए माया त्रिग त्रिग मत बुद्ध फन्नी किस माया को दृढ़ कर राखो बांधे आप बचनी क्या थे की क्या लेवा दई सरपंच झूठ घुमाना कह कबीर के अंत बिगूते आया काल निदाना बिलावल शरीर सरोवर पीतरे आछे कमल अनूप परम ज्योत पुरखो तुमो जाके रेख न रूप रे मन हर पज परम तजो जग जीवन राम रहाओ आवश्यक न दी सही न दी सह जात जय उपजे दिन सह तही जैसे पुरवन पात लुखिया कर माया तजी सुख सहज विचार कह कभी सेवा करो मन मंज मुरार बिलावल जन्म मरण का प्रम गया गोविंद लिव लागी जीवक सुन समान्या गुर सासी जागी रहाओ कांसी के तुन उपजे तुन कांसी जाई कांसी फूटी पंडता तुन कां समाई तृप्ति संग मैं पेखिया कटू कट जागी ऐसी बुद्ध समाचरी कट माए त्यागी आप के जानिया तेज तेज समाना कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना बिलावल चरण कमल जा कह हृदय बसे सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौ निज ता कह सहज सहज जस बोले देव रहाओ तब ए मत जो सब मैं पेख है कुटल गांठ जब खोले देव बारंबार माया से अटके ले नरजा मन को ले देव जे ओ जाए तही सुख पावे माया तास न चोले देव कह कबीर मेरा मन।

भगत की एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद दारिद देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अस्त दशा सिद्ध करते।

बिलावल जे कुल साध बैसनो होए बरन अबरन रंक नहीं ईश्वर बिमल बास जानिए जग सोए रहा ब्रह्मन बैस सूद अर खत्री

तन पुनीत कुटुंब सब लोए, जिन पिया सार रस तजे आन रस, होए रस मगन डारे दिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा, तगत बराबर और न कोए, जैसे पुरैन पात रहे जल समीर।

महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हर ऊपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाए। हर जाने सब किस जो जीवर ते प्रभ का लिया किसे का एक तिल ना गवाए। हर किस की आस की जय मन मेरे जो सब में स्वामी रहा समाये। मेरे मन आशा कर जगदीश गुसाई जो बिन हर आस अवर काहू की जय साले फल आस सब बिरथी जाय रहा। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत किसकी आस लग जन्म गवाई। इनके कुछ हाथ नहीं कहा करे ए बकुड़े इनका वाहया कछ ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब चढ़ाई। जो कुछ आस

छिन में झूठ दिल सब जाए। मेरे मन आशा कर हर प्रीतम साचे की, जो तेरा कालिया सब खाए पाए। आशा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी, जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। कुछ किसी के हाथ ना ही मेरे स्वामी, ऐसी मेरे सतगुरु बूझ बुझाए। जन नानक की आस तू जाने, हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताए। गोंड महला चौथा ऐसा हर से नित प्याई है, जो छिन में किलित सब करे विनाशा। जे हर त्याग अवर की आस की जय, ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवियो सुखदाता स्वामी, जिस सेवे सब दुख लहासा। मेरे मन हर ऊपर की जय परवासा, जह जाइए तह

जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी दीर्था अवरा पह कहिए, अवरा पह कह मन लाज मरासा।

हर अविनाशी सदा चिर निर्चल तुस मेरे मन पद परवान। मेरे मन नाम हरि पद सदा दीवान, जो हर महल पावे गुर बचनी, तिस जेवड़ अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दीसे मन मेरे, सब बिनस जाए जो रंग कुसुम्ब कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे, जित हर दरगे पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है, जो हर त्यावे सो परवान। जो चंदन निकट वसे हिरड बपुड़ा, क्यों सत संगत मिल पतित परवान।

करिए सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुझनो सब दूर रख लई है। मेरे मन हर जप हर नित पड़ी है हर दिन को मार जीवाल न साक है ता मेरे मन कायत करी है रहाओ। हर पर पंच किया सब करते विच आपे अपनी जोत तरई है हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखाई है। हर अंतर नाले बाहर नाले कहो किस पासों मन क्या चो रही है मैं कपट सेवा की जय हर तेरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है जिस दैवा सब

हर सलाते आए तू तुद लय छड़ैया गौन महला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहुत अपते ज्यो त्रिखावंत बिन नीर। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर हमरी बेदन।

परलोकर्ता, व्यापतकर्ता, अलिप्तोकर्ता, वक्तोकर्ता, बूजतकर्ता, आवतकर्ता, जात भी करता, निर्गुण करता, सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गौण महला पंजवा, आंक्यो मीन कपक की न्याई, तू उर्ज रहे हो कुछम भाई ले, पग तारे सास ले खेले, तो उदरे हर गुण गाए ले, मन समझ छोड़ अवाए ले, अपने रहन को ठोर न पावे, काए पर कह जाए ले, रहाओ, ज्यो मैगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग पड़े कुटुंबाए ले, ज्यो पंखी कत्र हुए फिर बिछरे, फिर संगत हर हर चाए ले, जैसे मीन रसन साध बिन सो, ओ मूठो मूड लोभाए ले, तू हो आ पंचवास वैरी के, छूटे परसर नाए ले, ओ किरपाल जीन दुख पंजन, सब तुमरे जीजन पाए ले, पावो दान सदा दर्श देखा, मिल नानक दास दसाए ले, रागौन महला पंजवा, चौक दे कर दूजा।

रंग अनेक प्रकार ओ तट पर लो निमक मझार जाकी गत नित कहीं ना जाए सो प्रभु मन मेरे सदा के आए आए न जावे नेचर तने बेअंत गुना ताके ते तक गने।

मिटय कोट अगमनख जस गाओ बाल सखाई पगतन को मीत प्राण आधार नानक हित चीत कौन महला पंजवा नाम संग कीनु व्यवहार नामो ही इस मन का आधार नामो ही चित कीनी ओट नाम जपत मिटे पाप कोट रास दी हर एको नाम मन का इष्ट गुरसंग ध्यान राव नाम हमारे जी की रास नामो संगी जत कत जात नामो ही मन लागा मीठा जल थल सब में नामो गीता नामे दरगे।

कहो नानक सुख सहज निवास गौण महला पुण्यवा। निमानी को जो दे तो मान सगल पूछे को करता दान गर्भ कोर में राखन हार इस ठाकुर को सदा नमस्कार। ऐसो प्रभु मन माहे त्याए कट अवकट जत कट है सहाय रहाओ रंक राओ जाके एक समान ईट हस्त सगल पुराण बियो पूछ ना मसलत करे जो किस करे सो आपे करे जा का अंत ना जान सकोए आपे आप निरंजन सोए आप आकार आप निरंकार कट कट कट सब कट आधार नाम रंग पग पुताए लाल जस करते संत सदा निहाल नाम रंग जन रहे अघाए नानक तिन जन लागे पाए गौण महला पंजवा। जाके संग इहो मन निर्मल जाके संग हर हर सिमरन जाके संग किल बिख हो है नास जाके संग हृदय प्रदास से संतन हर के मेरे नीत केवल नाम गाये जाके नीत रहाओ। जाके मंत्र हर हर मन वसे जाके उपदेश परम पौनस है जाके कीरत निर्मल सार जाकी रेन बांछे संसार कोट पतित जाके संग उदार एक निरंकार जाके नाम आधार।

गुरु के शब्द मंत्र मनमान, गुरु के चरण हृदय ले तारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार, मत तो परम पुले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरस पार रहाओ। फूले को गुरु मार्ग पाया, अवर त्याग हर पगति लाया, जन्म मरण की ताप मिटाई, गुरु पूरे की बेअंत वडाई, गुरु प्रसाद उरद कमल विगास, अंधकार में पया प्रगास, जिनकी आसो गुरु के जानिया, गुरु कृपा ते मुग्ध मन मानिया, गुरु करता गुरु करने जोग, गुरु परमेश्वर है भी होग, कहो नानक प्रभ यह जनाई, जिन गुरु मुक्त ना पाए पाई। गौण महला पंजवा, गुरु गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मेटे दात, गुरु परमेश्वर एको जान, जो तिस पावे सो परवान रहाओ, गुरु चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का पागे, गुरु की सेवा पाए मान, गुरु ऊपर सदा कुर्बान, गुरु का दर्शन देखने हाल, गुरु के सेवक की पूरन काल, गुरु के सेवक को दुख ना व्यापे, गुरु का सेवक दह दिस जापे, गुरु की महिमा कथन न जाए, पार ब्रह्म गुरु रहा समाए, कहो नानक जाके पूरे भाग, गुरु चरणी ताका मन लाग। गौण महला पंजवा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा देव अलख अभियो, सर्व पूज चरण गुरु सेओ।

अंधकार, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा, गुरु के संग सगल निस्तारा, गुरु पूरा पाये वड पागी, गुरु की सेवा दुख ना लागी, गुरु का शब्द न मिलते कोई। गुरु नानक नानक हर सो

रमत राम सब रहो समाए, संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। रहाओ राम राम।

सहाय राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लीलाए राम राम जप निर्मल भय जन्म जन्म के किल बिछ गए रमत राम जन्म मरण निवारे उचरत राम तै पार उतारे सबसे ऊंच राम पर गास निस्बासुर जप नानक दास गौण महला पंजवा उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संग ते मार बिदारे गोविंद भगत का महल न पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल सृष्टि के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार राव जगत पास ते लेते दान गोविंद भगत को करें सलाम लूट ले सात पथ कोवे सात जना पग मल मल तोवे पंच फूट जने इक माए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुना के संग रच रखे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए चढ़ाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभार दिन पगती सब होए खुआर गौण महला पंजवा कल कलेश मिटे हर नाए दुख बिन से सुख की नो ठाओ जप जप अमृत नाम अघाए संत प्रसाद सगल फल पाए राम जपते जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ गुर के चरण हृदय उधारे अग्न सागर के उतरे पारे जन्म मरण सब मिटि उपाद प्रभ क्यों लागी सह समाद थान थनंतर एको स्वामी।

पास भगत पाए हर कीर्तन करिए, जब पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गौण मेला पंजवा गुरु के चरण कमल नमस्कार, काम क्रोध इस संते मार, होए रही है सगल की रीना, कट कट रमैया सब में चीना, इन विद रमो गोपाल।

तिवै सुवाओ पज अभिमान जान प्रभ संग साद प्रसाद हर सो मन रंग जिन तू किया तिसको जान आगे दर्जे पावे मान मंकन निर्मल हो।

सोहे दयाल देहो प्रभु दान। नानक जप जीवै प्रभु नाम गौण महला पंजवा। सूप दीप सेवा गोपाल अनेक बार बंधन करतार। प्रभु की शरण गही सब त्याग गुर सो प्रसन्न पै वडपाग। आठ पहर गाये गोविंद तन तन प्रभु का प्रभु की जिंद। रहाओ अर्घ।

करम करम इह तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम सागर पर बोहित प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण राख लिए अपनी कृपा तार पंचदूत पागे विकराल जुए जन्म न कबहू हार नानक का अंग किया करतार गौण महला पंजवा कर कृपा सुख आनंद करे बालक राख लिए गुरुदेव प्रभ कृपाल दया।

पर कोई नाही, काट पट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हल्क पल तुम्हारे, पति पावन प्रभिर तुम्हारे। औखद कोट सिमर गोविंद, पंक मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए, मन बांचित पूरन फल पाए। कर्म कारण समरत दयार, सर्व निधान महाविचार। नानक बख्श लिए प्रभ आप, सदा सदा एको हर जाप। गौण महला पंजवा, हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत, मन तन की सब मिटे बलाए। दुख अंधेरा सगला जाए, हर गुण गावत करिए संसार। बड़ पागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल, किसको पोए ना सके जमकाल। जग में आया सो परवान, गुरमुख अपना खत्म पछाण। हर गुण गावे संत प्रसाद, काम क्रोध मिटे उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत, पूरे गुर का पूरन मंत। हर तन काट किए पंडार, मिल सतगुर सबका सवार। हर के नाम रंग संग जागा, हर चरणी नानक मन लागा। गौण महला पंजवा, पाव सागर बोहित हर चरण। सिमरत नाम नाही फिर मरण, हर गुण रमत नाही जम पंत। मां विचार पंच दूते मंत, सौ शरणाई पूरन नाथ। जंत अपने को दी जय हाथ। रहाओ सिमरत।

तारो संत का निंदक आकाश के तारो संत को राखो अपने जी नाल संत उधारो तत्क्षण ताल सोई संत जे पावे।

नानक को उपजी प्रतीत, मनमुख हार गुरमुख सजीत। गौण महला पंजवा, नाम निरंजन नीर नारायण, रसना सुमृत पाप बिलायण। रहाओ ना

गायन बस अगोचर गुर मिल लही। नारायण ओत नानक दास गही गौण मैला पंजवा। जाको राखे राखन हार तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्भ में अगर न जो है काम क्रोध लोभ मोह न पो है। साध संग जपे निरंकार निंदक कै मुहि लागे चार। राम कवच दास का सना हो दूत दुष्ट तिस्कोवत नाहे। जो जो गर्व करे सो जाए गरीब दास की प्रभ शरणाए। जो जो शरण

सदा सदा जाई बलिहार, अपने दास रखे कृपा तार, नानक के प्रभ प्राण आधार। गौण मैला पंजवा अचरज कथा महा अनूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना एहो बूढ़ा ना एहो बाला, ना इस दुख नहीं जम जाला, ना एहो बिनसे ना एहो जाए, आज जुगा दी रहा समाए। ना इस उसन नहीं इस शीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस हरख नहीं इस सोग, सब किस इसका एहो करने जोग। ना इस बाप नहीं इस माया, एहो अपरंपर होता आया, पाप पुण्य का इस लेप न लागे, कट कट अंतर सब ही जागे। तीन गुणा एक सकत उपाया, महा माया ताकी है छाया, असल अछेद अपेद दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ताकी गत मित कछु न पाए, नानक ताके बल बल जाए। गौण महला पंजवा संतन के बलिहारे जाओ, संतन के संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किल विच सब गए, संत शरण वड पागी पए, राम जपत कछ विघ्न ना व्यापे, गुरु प्रसाद अपना प्रभ जापे। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करे रवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसे मन आए, सकल जन्म ताका परवान, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मन सापूर, नानक सुख पावे जन तूर। राग गौण अष्टपदियां मैला पन

सब लोग संतन के मन महा आनंद संत जपे गुरुदेव भगवंत संगत के मुख उजल पाए सगल स्थान निंदक से गए सास सास जन सदा सलाए पार ब्रह्म गुरुदेव परवाए सगल पै मिटे जाकी शरण निंदक मार पाए सब तरन जन की निंदा करे न कोए जो करे सो दुखिया होए आठ पैर जन एक से आए जमुआ ता के निकट न जाए जन निर्वैर निंदक अहंकारी जन पल माने निंदक बेकारी गुर कै सुख सतगुरु त्याया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरते हर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अभिमानी की जड़ खर पर जाए नितरिया सतगुर तर तेरी कर कृपा राखो जन केरी कहो नानक तिस गुरु बलिहारी जा कै सिमरन पैज सवारी राग गौंड बाणी भगतां की कबीर जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत मिले किस सुनिए कही है मिले असंत मस्त कर रही है बाबा बोलना क्या कही है जैसे राम नाम रव रही है रहाओ संतन स्यों बोले उपकारी मूर्ख स्यों बोले चख मारी बोलत बोलत बढ़े बिकारा बिन बोले क्या करें बिचारा कहो कबीर छूछा कट बोले करया होए सो कब होना डोले गौंड नरु मरे नर काम ना आवे।

सतगुरु प्रसाद। पूजा बांध पिला कर डारियो, हस्ति क्रोप मूल में मारियो, हस्त पाग के चीसा मारे, क्या मूरत के हों।

दिया रहे, तीन बार पतिया पढ़ लीना, मन कठोर अजहूना पतीना, कह कबीर हमरा गोविंद, चौथे पद में जन की जिंद। गौंड ना एहु मानस ना एहु देओ, ना एहु जति कहा वैसे हो, ना एहु जोगी ना अवजूता, ना इस माए ना काहू पूता, या मंदिर में कौन बसाई, ताका अंत ना को पाई रहाओ, ना एहु गिरही ना उदासी, ना एहु राज ना तीख मंगासी, ना इस पिंड ना रक्तू राती, ना एहु ब्रह्म ना एहु खाती, ना एहु तपा कहा वै शेख, ना एहु जीव ना मरता देख, इस मरते को जे कौ रोवे, जो रोवे सोई पत सोवे, गुर प्रसाद में डगरो पाया, जीवन मरण दो मिटवाया, कहो कबीर हो राम की अंश, जस कागज पर मिटे न मंस। गौंड सूते तागे निखुटी पान, द्वार ऊपर चिलकावे कान, कूच बिचारे फूए फाल, या मुंडिया सिर चढ़गो काल, एहो मुंडिया सगलो डब खोई, आवत जात नाक सर होई रहाओ, तुरी नार की छोड़ी बाता, राम नाम वहाँ का मन राता, लड़की लड़कन खैबो नाहे, मुंडिया अंधन तापे जाहे, एक दोए मंदर एक दोए बात, हमको साथर उनको खात, मूड पलोस कमर बद पोची, हमको चाबन उनको रोटी, मुंडिया मुंडिया हुए एक, के मुंडिया बूढ़क की टेक, सुन अंधली लोई बेपीर, इन मुंडियन पद शरण कबीर। गौंड खस्म मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए विनाश।

कार शंख को बिख बिखे संसार कर सीगार बह पखियारी संत की छिटकी फिरे बिचारी संत पाग ओ पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे साकत की ओ पिंड परायण हमको दिष्ट परे तक डायण हम तिसका बोझ

सुहागन महापवित तपे तपी सर डोले चीत रहाओ सुहागन किरपन की पूती सेवक साज जगत स्यों सूती साधु कै ठाडी दरबार।

गौंड जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल ना टिकावे, साधु बिन ऐसे अवगत जावे, जारो तिसे जो राम ना चेते, तन मन रमत रहे मैं चेते रहाओ। जैसे हल हर बिना जिमी नहीं बोये, सूत बिना कैसे मणि परोये, कुंडी बिन क्या गंथ चढ़ाई है, साधु बिन कैसे अवगत जाई है। जैसे माँ पिता बिन बाल न होई, बिंब बिना कैसे कपड़े तोई, कोर बिना कैसे असवार।

कह कबीर कह कर करना, गुरुमुख होए बहुर नहीं मरना। गौंड कूटन सोए जो मन को कूटे, मन कूटे तो जमते छूटे, कुट कुट मन कस वट्टी लावे, सो कूटन मुकत बहु पावे। कूटन किसे कहो संसार, सगल बोलन के मन विचार रहाओ। नाचन सोए जो मन सो नाचे, झूठ न पतिए परचे साचे, किस बिन आगे पूरे ताल, इस नाचन के मन रखवाल। बजारी सो जो बजारे सो दे, पांच पलीते को प्रबोधे, नौ नायक की पगत पछाने, सो बाजारी हम गुरमाने। तस्कर सोए जे तात न करे, इंद्री के जतन नाम उचरे, कहो कबीर हम ऐसे लखन। तन गुरुदेव अत रूप विचखन, गौंड तन गोपाल तन गुरुदेव, तन अनाद पूखे कवल टहकेव, तन ओए संत जिन ऐसी जानी, तिनको मिलबो सारंग पानी। आद पुरख से होए अनाद, जपिए नाम अन कैसाद रहाओ। जपिए नाम जपिए अन्न, अम्बे के संग नीका वन, अन्न बाहर जो नर होवे, तीन पवन में अपनी खोवे। सोडे अन्न करे पाखंड, ना सोहागन ना ओए रंड, जग में बकते दूधा तारी, गुप्ती खावे वटका सारी। अन्न बिना न होए सुकाल, तजे अन्न ना मिले गोपाल। कहो कबीर हम ऐसे जान्या, तन अनाद ठाकुर मन मान्या। राग गौंड बाणी नाम देव जी की, कर पहला इको अंकार सतगुर प्रसाद। असुमेध जगने तुला पुरख दाने, प्राग इसनाने तो न पुजे हर कीर्तनामा। अपने रामे पाजरे मन आलसिया रहाओ, गया पिंड परता बनारस अस बसता, मुख बेद चतुर परता, सगल कर्म अच्छता, गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता, खट कर्म सहत रहता। सिवा सकत संबादं, मन छोड़ छोड़ सगल पेडं, सिमर सिमर गोविंदं, पजनामा तरस पर सिद्धं। गौंड नाद प्रमे जैसे मिर्गाए, प्राण सजे वहाँ को ध्यान न जाए। ऐसे रामा ऐसे हेरो, राम छोड़ चित अनत न फेरो रहाओ। जो मीना हेरे पसुआरा, सोना गढ़ते हिरे सुनारा, जो बिखई हेरे

मुक्त की दरिया कहाँ छुपानी, गुरमत राम नाम गहु मीता, तन में नामा यूं कह गीता। बिलावल गौंड आज नामे बीथल देखिया, मूर्ख को समझाओ रे राव, पांडे तुमरी गायत्री लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा टगरी तोरी लांगत लांगत जाती थी, पांडे तुमरा महादेव तौले बल चढ़िया आवत देखिया था, मोदी के करखाना पाका वाका लड़का मारिया था, पांडे तुमरा राम।

सोई मुकंद मुक्त का दाता, सोई मुकंद हमरा पुत माता, जीवत मुकंदे मर्त मुकंदे, ताके सेवक को सदा आनंदे रहाओ, मुकंद मुकंद हमारे प्राण, जप मुकंद मस्तक।

कह रविदास अब तृष्णा चूकी, जप मुकंद सेवा ताहू की गौंडे जे ओ अवसर।

पाप का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे रहाओ। जे ओ ग्रहण करे कुल खेत, अर्पे नार सिगार समेत, सगली सिमरत श्रवनी सुने, करे निंद कवने नहीं गुने। जे ओ अनेक प्रसाद करावे, पूम दान शोभा मंडप पावे, अपना बिगार बिराना सांडे, करे निंद बहुजोनी हांडे। निंदा का करो संसारा, निंदक का प्रगट पौहारा, निंदक सो दुसाद विचारिया, कहो रविदास पापी नरक सुधारिया। जोड़

कभी किछु न जाना तेरा एको नाम पछाना ना जाना हरे मेरी कौन गते हम मूर्ख अज्ञान शरण प्रभ तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ कभू जियरा ऊब चरक है कभू जाय प्याले लोभी जियरा फिर ना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजे माई एक चले हम देखे स्वामी पाए बलंती आई ना किसी का मीत ना किसी का भाई ना किसे बाप ना माई प्रणवत नानक जो तू देवे अंते होए सखाई राम करी महला पहला सर्व जोत तेरी पसर रही जह जह देखा तह नर हरी जीवन तलब निवार स्वामी अंधकूप माया मन गाडिया क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ जह तीतर कब तीतर बसिया बार काहे नाही तिनकी सार कहे नित साहिब सदा चिंत मन माही आपे नेड़े आपे दूर आपे सर्व रहा पर पूरे सतगुर मिले अंधेरा जाए जह देखा तैरिया समाए अंतर सहसा बार

मैला। जित दर वसे कवन दर कहिए, दरा पीतर दर कवन लहे। जिस दर कारण फिरा उदासी, सो दर कोई आए कहे। किन बिद सागर तरिए, जीवतियां नह मरिए रहाओ। दुख दरवाजा रो रखवाला, आशा अंदेशा दे पट जड़े। माया जल खाई पानी कर बांधिया,

आप करें, जब आशा अंदेशा तब ही क्यों कर एक कहे, आशा पीतर रहे निराशा तो नानक एक मिले, इन विद सा

बाबा गोरख जागे गोरख सो जिन गोए उठा ली करते बार न लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन को तरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक अर्जोगी जंगम पीर पुरुष बहुत तेरे जे तिन मिला ता कीरत आखा तामन सेव करे।

पहला सुन माँ चिंद्रा नानक बोले वसगत पंच करे न डोले ऐसी जुगत जोग को पाले आप तरह सगले कुल पारे सो अवधूत ऐसी मत पावे ऐनस सुन समाज समावे रहाओ तिथ्या पाए पगत पै चले होवे सो तृप्त संतोष अमुले।

आशा मह निराश बलाए लूचो नानक करते पाए तनवत नानक अगम सुनाए गुर चेले की संग मिलाए जीठा दारू भोजन खाए छह दर्शन की सो जी पाए राम कली मेला पहला हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाए सन्मुख सिद्ध पेटन को आए नीचो देव दे आए गुर पार तारण हारिया देव भगत पूरन अविनाशी हों तुझको बलिहारिया रहाओ सिद्ध साधक जोगी अर्जंगम एक सिद्ध जिन त्याया परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिन को आया जप तप संयम कर्म न जाना नाम जपी प्रभ तेरा गुर परमेश्वर नानक पेत्यो साचे शब्द निबेरा राम कली मेला पहला सुरती सुर कर लाये एक तन कर तुल्हा लंगे जेत अंतर पाए तुसे तू रख तेन सदीवा

जाओ, प्राप्त पोता कर्म पसाओ, तू देवे मंगत जन चाओ, पांडे पाओ पवे तुझ आए, तुरते छोड़ी कीमत पाए, जिन किस किया सो किस करे, अपनी कीमत आपे तरे, गुरमुख प्रगट हुआ हर राय, ना को आवे ना को जाए, लोक पिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाया, सह किया गल्ला दर किया।

कौन बुझे विध जाने, खुद खुद चलत आप कर चीने, आपे तत पछाने। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तुस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ। दिन में रैन रैन में दिनियर, उसन सीत विध सोई। ताकि गत मित और न जाने, गुरबिन समझ न होई। पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी। मन में ज्योत ज्योत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई। नानक तिन कै सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई। राम कली महला पहला, जहाँ हर प्रभु कृपा तारी। ताहो में विच्यो मारी, सो सेवक राम प्यारी। जो गुर शब्दी विचारी, सो हर जन हर प्रभु पावे। एन भगत करे दिन राती, लाज छोड़ हर के गुण गावे। रहाओ कुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा। गुर पूरे सच समाया, गुर आद पुरख हर पाया। सब नाग देद गुर बाणी, मन राता सारंग पानी। तें तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे। जह आप गया पौ पागा, गुर चरणी सेवक लागा। गुर सत गुर परम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया। राम कली महला पहला, छादन पोजन मांगत पागे। खुदया दुष्ट जले दुख आगे। गुरमत नहीं लीनी।

गडिया दिहतारी राम कला निभे पत सारी तर टूटी गाडो सिर पार लकड़ी बिखर जरी मंज पार गुर का शब्द विचार जोगी दुख सुख सम करना सोग देओगी भुगत नाम गुर शब्द विचारी अस्थिर कंध जपे निरंकारी सहज जगोटा बंधन ते छूटा काम क्रोध गुर शब्दी लूटा मन में मुंदरा हर गुर शरणा नानक राम भगत जन करना।

जा कर पहला। सत युग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई। सत युग धर्म तैर है चार, गुरमुख बूझे को भी चार। युग चारे नाम वडियाई होई, जे नाम लागे सो मुक्त होवे। गुर बिन नाम न पावे कोई रहाओ। त्रेते इक कल कीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर। गुरमुख बूझे सो जी होई, अंतर नाम वसे सुख होई। द्वापर दूजे दुबदा होए, परम पुलाने जाने दोए। द्वापर तरम दोए।

गुरमुख नाम वखाणे कोई, सब जुग में नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, हर नाम किया है भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड़े।

मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, से दुख ना व्याप कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे, अंतर जोत समाई, जैसा लिखिया तुर करते, हम कैसी कीर्त कमाई, मन तन साफ किया।

पर पंथ छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो न कोई सतगुर मिलो नवे निड पावो इन विद तत् बिलोई परम चुकावो गुरमुख लिवलावो आत्म चीनो पाई।

तन तन से जन जिन्नी कल में हर पाया, जन नानक सद कुर्बानी राम कली महला पंजवा। आवत हरख ना जावत दुखा, ने व्यापे मन रोगनी, सदा आनंद गुरपूरा पाया तो उतनी सगल बेगनी। ए बिद है मन जोगनी, मोह सोग रोग लोग ना व्यापे, ते हर हर हर रस पोगनी। रहाओ सुर्ग पवित्रा

वासा जय अवगत नाथ अगम तनी तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हों त्यागनी कहो नानक हम तुम गुर खोई है अम्बे अम्ब मिलोगनी राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर के खजाने अचरज किस तैन न जाई बस अगोचर।

सर मेरा अनतराज भोग रस मानी नाव जपी परवासा तेरा रहाओ चीतना आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा दे परवाओ रहत है स्वामी एक नाम के आधारा पूर्ण होए मिलियो सुखदाई पूर्ण काई बाता तत् सार परम पद पाया छोड़ ना कतू जाता बरन ना साको जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथा अडोल स्वामी नानक खसमा हमारा।

हम भी संग अधाए मिल गया नानक कहन न जाए। राम कली मैला पंजवा कर कर पाल पखावज नैनो माफे वजैर बाबा करनो मद बासुरी बाजे जेवा तुन आगा जा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृत्यकारी।

को रहे व्यापे एक सुर के एक ही सेवा एक गुरते जापे पलो पलो रे कीर्तनिया राम रमा रामा।

कोई ओडा नील, कोई सुपेद, कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बाछे पुस्त, कोई सुरजिंदु, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभु साहिब का।

मनहार दे ऊट सुदाए परम मोह के बांधे बंद सुपन पया पखलाए अंद ते तो रचन रचिया करतार आवत जावत।

पाए, खींचे आंसू आई खाए, जो मैं एक है मत हूँ किया, तें बिखरे थान अनक खिड़किया, खोजत खोजत द्वारे आया, का नानक जोगी महल कर पाया, क्यों किंकुरी अनूप वाजे।

जप नाथ दिन रहनाई, तेरी चिंता दो दिहाई, रहाओ जहरी विपूत लाए बैठा तारी, मेरी तेरी मुंद्रा तारी, मांगे तू का तृप्त ना पावे।

सह कोई ठाकुर मेरा सुगड़ सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना और सोरे हर रस मीठा गुरमुख किने विरले गीठा राव निर्मल ज्योत अमृत हर नाम पीवत अमर पहने काम तन मन शीतल अग्न निवारी अनद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किस तेरा सद बलिहार जाऊं लख बेरा।

कहो नानक सब पर्दा टूटा, हाँ तेरा तू मैं मन बूठा, राम करी महला पंजवा। सेवक लायो अपनी सेव, अमृत नाम दियो मुख देव, सगली चिंता आप निवारी, तिस गुर को हो सब बलिहारी। काज हमारे पूरे सतगुर, बाजे अनहद तूरे सतगुर, रहाओ मैं माजा की जहर गंभीर, होए निहाल दे जिस पीर, जाके बंधन काटे राए, सोनर बौर ना जोनी पाए, जाके अंतर प्रगटो आप, ताको ना ही दुख संताप। लाल रतन किस पाले पर्या, सगल कुटुंब ओ जन ले करया, ना कुछ परम ना दुबदा दूजा, एको एक निरंजन पूजा, जत कत देखो आप दया।

जो कुछ करे सो मन मेरे मीठा ता उह अचरज नैनो डीठा अब मोहे जानी रे मेरी दही बलाए बुझ गई तृष्ण निवारी ममता गुरपुर लियो समझाए रहाओ कर कृपा राखियो गुर सरना गुर पकराए हर

उमीत सो पंडित गुरु शब्द कमाए त्रय गुण की ओस उतरी माए चतुर वेद पूरन हर नाए नानक तिसकी सरणी पाए राम कली महला कन्या कोट विघ्न नहीं आवे नेर अनक माया है ताकी चेर अनक पाप ताके पानी हार जाको मया पही कर पार जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओआ के संजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जी तो सगला पवन दे अंत में माता की केसक बरन बल बल जाये ताके चरण तिन्ही किया जब तक ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल में परवान जाको ठाकुर दिया मान साध संग मिल पे प्रगा

संत जनी परदास पया पूरे गुरबतनी रहाओ तन तन कलक मिथिला विस्तार हैवर गैवर चालन हार राज रंग रूप सब कूर नाम बिना हो जासी तूर परम पूले बाद अंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख में दिल दिर्धानी सात इन्हीं करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे तो निधाना साधु पाए नानक गुरु गोविंद जिस

माद अनहद बाजे अचरज विस्माद केल करे संत हर लोग पार ब्रह्म पूर्ण निर्जोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गावे ते रोग सोग नहीं।

धारे नीचल आसन बेसुमार डिगना डोले कतहु जावे गुर प्रसाद को इहु मेल पावे परम पे मोह न माया जाले सुन समाद प्रभु कृपाले ताका अंत न पारावारे आपे

तेरे मन आस, संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राख्या पर्दा, संत प्रसाद मुहे कभू न करदा, संते संग दिया कृपाल, संत सहाय पै दयाल, सुरत मत बुद्ध परदास, गैर गम

सेवा। तेरे काज ना गृह राजमाल, तेरे काज ना भुखे जंजाल, इष्ट मीत जान सब चले, हर हर नाम संग तेरे चले। राम नाम गुण दायले मीता, हर सिमरत तेरी लाज रहे, हर सिमरत

कर कर थाके वडे वडेरे किन्हीं ना किए काज माया पूरे हर हर नाम जपे जन कोए ताकि आशा पूर्ण होए हर भगतन को नाम आधार संति जीता जन्म अपार हर संत करे सोई परवान।

नानक कौ गुर पेटे पूरे राम कली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनेक रूप रंग भोग रस गुरुमुख नाम निमख हृदय वस हर के नाम की वड्याई कीमत कहन ना जाई रहाओ सूरबीर तीरज मत पूरा

आए पई सुन संतो निर्मल विचार राम नाम बिन गप नहीं काई गुरपुरा पेटत उधार राव।

त्याग सत्संगत करे वडपागी नानक ओ तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व में पेख पूरन पूर रहा प्रभ एक रतन अमोल हृदय में जान अपनी वस्त तू आप।

परमेश्वर स्वामी काटको प्रदाता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट बंधन ते होई छोट। हृदय जप परमानंद मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण।

तज अभिमान दिन रहन सदा गुण गाओ पूरन एही स्वाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बहु चतुराई गुरु का जप मंत्र निर्मल रहाओ।

बूढ़त लो साध संग तरे, नानक जिसे प्राप्त करे। राम कली महला पंजवा, मन माहे जाप भगवंत, गुरपुरै इहो दीनो मंत, मिटे सगल पै त्रास।

नहीं जाने, पंच बटवारे से मीत कर माने, सो कर सेव जित उदरे मीत, गुण गोविंद रविया दिन राती, साध संग कर मन की।

सुख पाया, नहीं पेट कर्म राया। हर दरगे शोभावंत, फुन गर्भ नाही बसंत, जानी संत की मित्राई, कर कृपा दीनो।

पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बगियारी लई निवार, तीन अवर्त की चूकी केर, साध संग चूके पैर।

साध संग दुख जाय रहाओ। जा कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही। सगले काज सवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने। जिसके मस्तक हाथ गुर

से बैसंतर पा गए, माटी को जल भेद त्याग गए, ऊपर चरण तले आकाश, खट में सिंध कियो प्रगास, ऐसा समरथ हर जियो आप, निमख ना बिसरे जी भगतन के।

आई रहाओ। दर्शन पेखत हुए निहाल, जहाँ की तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार सवारे सगले तन के। जहाँ

छिन छिन औध कटे निष्बासुर बिरथा जात है देहे राव। तरना को बिखियन सो खोयो बालपन अज्ञाना बिरद पयो अजहू नहीं समझे

वर्त तपन कर मन नहीं पीजे, राम नाम सर अवर न पूजे, गुर सेव मना हर जन संग पीजे, जम जंदार जोहे नहीं साके, सरपन डस ना सके हर कारक पीजे रहाओ। वाद पड़े रागी जग पूजे, त्रै गुण बिछिया जन्म।

पहला अंतर उत्कुज अवर न कोई जो कही है सो प्रवते होई जुगे जुगंतर साहिब सतोई उत्पत परलो अवर न कोई ऐसा मेरा ठाकुर गहर गंभीर जिन जपिया तिन ही सुख पाया हर के नाम न लगे जम तीर रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल साचा साहिब अमर अतोल।

तीरथ परम सुध्याद न जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे न रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जमपुर बादो लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, शिव साधक के ते मुन देवा, हाथ निज रहे न तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गहे गुर सेवा, मन तन निर्मल।

जिन गुरु शब्द नहीं कर बार, नानक गुरुमुख तक विचार, राम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावे बोरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया, ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागे, नाम विसार पव जल पया, तन तन देखत गर्भ गया।

हृदय नाम ना सर्व दया, बिन गुरु शब्द ना गत पथ पावे, राम नाम बिन नरक गया। तिन में वेश करे नटुआ जो, मोह पाप में गलत गया। इत उत माया देख पसारी, मोह माया के मगन भया। करे विकार विकार घनेरे, सुरत शब्द दिन परम पया। हो मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपद को आवत देखे, साकत मन अभिमान।

ज्योति सह सब सह मया आद पुर अपरम परसो प्रभ हर नाम हृदय लय पार पया मुए कोरो में किसे सुनावे पैसा अगर असराल पया देख कुटुंब माया गृह मंदिर।

जिन एहो चाख्या राम रसायन तिनकी संगत खोज पाया रिद्ध सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया मुक्त पदार्थ शरण पाया दुख सुख गुरुमुख समकर जाना हरख सोग ते बिरकत भया आप मार गुरुमुख हर पाए नानक सहज समाए लया राम कली दखनी मैला पैला जप सत संयम साच दृढ़ाया साच शब्द रस लीना मेरा गुरदयाल सदा रंग लीना एनस रह एक लिव लागी साचे देख पतीना राव रह गगनपुर दृष्ट समय सर अनहत शब्द रंगीना सत बंद कुपीन परपुर लीना जेवा रंग रसीना मिले गुर साचे जिन रच राचे किरत विचार पतीना एक में सर्व सर्व में एका हे सतगुरु देख दिखाई जिनकी ये खंड मंडल ब्रह्मंडा सो प्रभ लखन न जाई दीपक ते दीपक प्रगासिया त्रिभुवन ज्योत दिखाई।

सतगुरु सच सिखाए राम कली मैला पहला औहठ हस्त मलि कर छाया करण गगन कल तारी गुरुमुख केती शब्द उधारी संतो रहाओ ममता मार हो मैं सुख है त्रिभुवन ज्योत तुम्हारी मनसा मार मने में राखे सतगुरु शब्द विचारी सिंगी सुरत अनाद बाजे कट कट ज्योत तुम्हारी पर पंच बेन कहीं मन राख्या ब्रह्म अगन पर जारी पंच तत् मिल एनस दीपक निर्मल ज्योत अपारी राम सच लोके एहो तन चिंगुरी वाजे शब्द निरारी शिव नगरी में आसन औदु अलख अगम अपारी काया नगरी एहो मन राजा पंच वसे विचारी शब्द रवे आसन कर राजा अदल करे गुणकारी काल विकाल कहे कह बपुरे जीवत मुआ मन मारी

शोध कर पावसागर आत्म तत् विचारी गुरु सेवा ते सना सुख पाया अंतर शब्द रव्या गुणकारी आपे मेल लय गुणदाता हो मैं तृष्णा मारी त्रै गुण में ते चौथे वर्ते तेहा भगत निरारी गुरमुख जोग शब्द आत्म चिन्ह हृदय एक मुरारी मनुआ अस्थिर शब्दे राता एहा करनी सारी वेद बाद ना पखंड औदु गुरमुख शब्द विचारी गुरमुख जोग कमावे औदु जत सत शब्द विचारी शब्द मरे मन

प्यार न लागे जोगी ना सच पल्ले पाए इत सिंगरी शांत ना आवे जोगी अभिमान ना विचों जाए पाओ पाओ दोए पत लाए जोगी एहो शरीर कर डंडी गुरमुख होवे ता तंती वाजे इन विद

फारसे की चितनाए सतगुरु नाल तेरी पावनी लागे ता ए सोजी पाए एहो जोग न होवे जोगी जे कुटुंब छोड पर पवन करे जे शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रभ लहे एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करे जोगी रोग न जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवे सोई बूझे जोग जुगत सो पाए जोगे का मार्ग दिखम है जो

भगत खजाना गुरुमुख जाता सतगुरु बूझ बुझाई संतो गुरुमुख देव डियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजे काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिख लागी ममता शब्द जलाई जिसते उपजे तिसते बिन सह अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर नह देखो रचना जिन रचाई सच्चा शब्द रवे कट अंतर सच्चे सो लिवलाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड़े पाग पाया जाई परम न पूलो सतगुर सेवो मन राखो इकठाई बिन नामे सब पूली फिर दी बेथा जन्म गवाई जोगी जुगत गवाई हंडे पाखंड जोग न पाई।

से नाम नमन निध पाई, मनसा मार मन सह समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे विस्मादी, चित अदुष्ट लगाई।

गुरुमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिवलाए आपे निर्मल पूज कर आए गुरु शब्द खाए पाए पूजा करें पर दुज नहीं जाने दूजे पाए मन लाए गुरुमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाए पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सकाई अपना आप ना पछाणे संतो कूर करें वड्याई पखंड कीने जम नहीं छोड़े ले जासी पत गवाई जिन अंतर शब्द आप पछ

एक पेट करें फिरें अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक अंदिन भगत करें दिन राती, राम नाम उर्धारी। अंदिन राते सहजे माते, सहजे हो मैं मारी। सह दिन भगत न हुई।

माँ तुम्हारी सतगुरु ना सेवे माया लागे डूब मुए अहंकारी जिचर अंदर सांस तिचर सेवा की जय जाय मिलिए राम मुरारी अंग दिन जागत रहे दिन राती

तो जन सूझे जिस हृदय नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, वाणी सब सुनाई, नानक सुन वेख रहा विस्माद, मेरा प्रभ रविया सर्व थाई, राम करी महला पंजवा अष्टपदिया।

किन्हि मून अवतूत सदाया, कोई कहतो अनन पगौते मोहे दीन हर हर ओट लेते। किन्हि कया हो तीर्थवासी, कोई अन पज पया उदासी, किन्हि पवन सब करती करया मोहे दीन हर हर दर परया। किन्हि कया मैं कुल्हे वड्याई, किन्हि कया बहा बहु पाई, कोई कहे मैं तहे पसारा मोहे दीन हर हर आधारा। किन्हि कुंगर नृत्य कराई, किन्हु वर्त ने माला।

मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावै पंडित, को खट कर्म सहित सो मंडित, कोई करे आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म कर्म जुग तो दे, गिन नामे यो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो सा

इस सेवक मन आलस करे जिस विसरे एक निमक ना सरे हम अपराधी निर्गुनियारे ना किस सेवा ना कर मारे गुरबोहित वडपाजी मिलिया नानक दास संग पातर करया राम कली मेला पंजवा काहू बिहावे रंग रस रूप काहू बिहावे माए बाप पूत काहू बिहावे राज मिलख व पारा।

संत बिहावे हर रस्तीवत जित को लाया तित ही लगाना ना को मूड नहीं को स्याना कर कृपा जिस देवे ना।

जो पावक संग शीत को नाश, ऐसे प्राचक संत संग विनाश। जो साबन कापर उजल होत, नाम जपत सब परम पौखोत। जो चकवी सूरज की आस, जो चात्रिक बूंद की प्यास। जो कुरंक नाद करण समाने, क्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा से लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान देखे नैन अलोए, किस दिन दूजा अवर न कोए। क्रम तै टूटे गुरु प्रसाद, नानक ते सो सब समाद। राम करी मैला पंजवा, जी जंत सब देखिए।

की तृप्ताई संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसया जाई पूरे गुरपुरी मत दीनी हर बिन आन न पाई नाम निधान पाया वड पागी नानक नरक

मुख उजल सदा सुखी नानक सिमरत एक मन तन राता राम प्यारे हर प्रेम भगत।

पूर रहा सब खाए संतो मीत साजन माल जो बन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो राम करी मैला पंजवा मन बच क्रम राम नाम चितारी उमन केर महा अत बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी रहाओ अंतर सूखा बार सूखा हर जप मलन पै जुतारी जिस ते लागे तिन्हें निवारे प्रभ जियो अपनी कृपा धारी उधरे

सतगुरु का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले, कह नानक मन प्यारे तू सदा सच समाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जाने, जी जन सब खेल तेरा क्या को आंख वखाने, आखें पाँ वेखें सब तू है जिन जग तू पाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया, सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया, जी जन सब तुझ उपाय एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार तू का

मार्ग चलना, लब्ध लोभ अहंकार पद कृष्णा बहुत नामी बोलना, समयो तिथि वालों की एक मार्ग जाना, गुरु प्रसादी जिन्नी आप तजिया हर वासना समानी।

हम कमाए सहसे जियो मलिन है कुछ संयम तोता जाए मन तो वो शब्द लागो हर्षो रहो चित लाए कह नाम दुर्प्रसादी सहज उपजे है तू सहसा उजाए जियो मैले बारो निर्मल जियो तमैले तुन्नी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिर जो बेता लिया कह नानक जिन सच कजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी पूर्ति सोए पहुँचे नाही मनसा सच कमाणी जन्म रतन जिनी खटिया पल्ले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेवकी सन्मुख होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले आप छाड़े सदा रहे परने गुर बिन और न जाने कोई कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए जो को गुर के विमुख होवे।

पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आस वखाणी हर हर नित करे रसना कहा कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पैरवाणी कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एवं हुआ समाओ शब्द खेती मन मिलिया सच लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सुर सकत आप उपाय कह करता आपे हुकम वर्ताए आप वेखे गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक कस्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपसे हुकम बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तैसार न जानी गुरु बाजो तत्तैसार न जानी तेही गुणी संसार क्रम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले।

हमारा हर राम नाम समाया जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रभ पास जियो सतगुरु करे हर पै बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज राखो हर जने केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चल दिया होए बेली जमदूत काल निकल।

गुर जाए हर प्रभ पास जियो। सतगुरु पाणे अपने बह परवार सदाया, मत मैं पिछे कोई रोसी सो मैं मूल ना पाया।

फुल हर सर पावे। हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो। रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। सतगुर पुर

साजनड़ा निकट खलोएड़ा मेरा साजनड़ा जानियड़ा हर जानियड़ा नैन अलोएड़ा हर जानियड़ा नैन अलोया कट कट सोया

अपर अपारा कट कट अंतर सोनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोनिया जिसनो राखे सो सच पाखे गुर का शब्द भी

सुगड़ सुजाना सद परदाना अमृत हर का नामा चाख अगाने सारंग पाने जिनके पाग मथाना तिन ही पाया तिने तिराया सगल तिसे का मानो कौ नानक थिर तकत निवासी सच तिसे दीबाणो मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला सोहिलड़ा प्रभ सोहिलड़ा अनहद तुनिए सोहिलड़ा अनहद वाजे शब्द अगाजे नित नित जिसे वधाई सो प्रभ त्याये सब किछ पाये मरे न आवे जाई चूकी प्यासा पूरन आसा गुरुमुख मिल निर्गुनिए।

पुरधार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो। पै दूर करता पाप हरता दुसे दुख पव खंडनो। जगदीश ईस गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये, बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरेण चितारिये। चरण कमल आधार जन का आसरा, माल मिलक पंडार नाम

सुख निदान मिलिया दुख हरिया कृपा कर प्रभ राखिया हर चरण लागा परम पौ पागा हर नाम रसना पाखिया हर एक चितवे प्रभ एक गावे हर एक दृष्टि आया बिनवंत नानक प्रभ करी कृपा पूरा सतगुरु पाया मिल रही है प्रभ साध जना मिल हर कीर्तन सुनिए राम दयाल प्रभु दामोदर माधो अंत न पाये गुनिए राम दयाल दुख हर शरण दाता सगल दोख निवारणो मोह सोग विकार बिखड़े जपत नाम उधारणो सब जी तेरे प्रभु मेरे कर कृपा सब रेण थीवा बिनवंत नानक प्रभ मया की जय।

विपत निवारण राम। संत प्रभ विपत निवारणो तिस बिन अवर न कोई जियो, सदा सदा हर सिमरिए जल थल मैयल सोए जियो। जल थल मैयल पूर रहा इक निमक मनो ना विसरे, गुरु चरण लागे दिन सपागे सर्व गुण जगदीसरे। कर सेव सेवक दिन सरैणी तिस पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रगास मन तन होए जियो। श्लोक हर सिमरत

बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो। श्लोक उद्दम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सात उदपावसी नानक नाम आधार संत शरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत सूके ते हरिया थिया नानक जप भगवंत चंत रुत सरस बसंत महाचेत वैसाख सुख मास जियो हर जियो नाओ मिलिया मौलिया मन तन सास जियो कर नाओ ने चल अनद सखिए चरण कमल पर फुल्लिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूल्या वड भाग पाया।

0: आए हरकंत जियो, ग्रहलाल आए मनति आए सेज सुंदर सोहिया, वन त्रिन त्रिभवन पए हरिया देख दर्शन मोहिया, मिले स्वामी इच्छपुनी मन जपिया निर्मल मंत जियो, बिनवंत नानक नित करो रलिया,
1: हर मिले श्री तरकंत जियो। श्लोक

लिखो जंजाला, लिख राम नाम गुरमुख गोपाला, रहाओ ससै सब जग सहज उपाया, तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त परा।

गर्भ गले बिख खाया, गुर रस गीत बाद नहीं पावे, सुनिए गहर गंभीर गवाया, गुर सच कहया अमृत लया, मन तन साथ सुखाया।

आप अगोचर तंदे लोई, जोग जुगत जग जीवन सोई, कर आचार सच सुख होई, नाम विहूणा मुक्त किव होई, विण नाम है विरोध शरीर।

ज्ञान प्राप्त होए गुणदाता विरला संसार साची करणी गुर विचार अगम अगोचर

तह सोताओ नदर सराफ बन्नी सचड़ाओ जगत पशु अहंकाल कसाई कर करते करनी कर पाई जिनकी ती तिन कीमत पाई होर क्या कही है किछ कह न जाई खोजत खोजत अमृत पिया खिमा गही मन सतगुर दिया खरा खरा आखे सब कोए खरा रतन जुग चारे होए खात पियंत मुए नहीं जानिया खिन मैं मुए जा शब्द पछानिया अस्थिर चीत मरन मन मानिया गुर कृपा ते नाम पछानिया।

लिवलाए गगन अगम अनाथ अजोनी अस्थिर चीत समाज सगोनी हर नाम चेत फिर पवे न जूनी गुरमत सार होर नाम बिहूनी कर दर फिर था की बहुतेरे जात असंख।

चार वर एक समाल, गुरमुख मरण जीवन प्रभ नाल, दै दिस टूंड करे मैं पाया, मेल पया सतगुरु मिलाया, गुरमुख गावे गुरमुख बोले, गुरमुख तोल तुलावे तोले, गुरमुख आवे जाए निसंग, पर हर मैल जलाए कलंक, गुरमुख नाद वेद विचार, गुरमुख मज्जन चज आचार, गुरमुख शब्द अमृत है सार।

मुक्त पया पक्षियों कर जाए। छीजय देख खुले एक गंड, छिया नित देखो जगहंड, तूप छाव जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त।

तिन जाइए, हर गुण गाए सदा रंग राते, बौड़ न पछोताइए। पब्बे पाले गुरमुख बूजे, ता निज कर वासा पाइए, पब्बे पौजल मार्ग विखड़ा, आस निराशा तरिए, गुर पर

वन तिन तू डट फिर रही, मन मैं करो विचार, लाल रतन बहु मान की सतगुर हास भंडार, उत्तम होवा प्रभ मिले, एक मन एक पाए नानक।

आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार। सोयना रूपा संचिए तन काचा बिखचार, साउ सदाए संच तन दुबदा हुए कुआर। सचियारी सच संचिया

क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाणे आपना फूले बंद न पाए शब्द मैली खरा तू किमा सच सुख पाए खर्च खरा तन त्यान तू आपे वसे शरीर मन तन मुख जा।

मनमुख विद्या बिकरदा बिख खटे बिख खाए मूरख शब्द नाची नहीं सूझ बूझ नहकाए पांदा गुरमुख आखी है।

सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो मस्तक काट तरी तिस आगे तन मन आगे देओ नानक संत मिले सच पाये सहज पाए जस लेओ क्या पविये सच सूचा होए साच सबद बिन मुकुत न कोए रहाओ कौन तुम्हें क्या नाओ तुम्हारा कौन मार्ग कौन सुआओ साच कहूं अरदास हमारी हों संत जना बल जाओ।

कट कट बैस निरंतर रही है, चाले सतगुरु पाए सहजे आए हुकम सिधाए, नानक सदार जाए आसन बैसन थिर नारायण, ऐसी गुरमत पाए गुरमुख बूझे आप पछाने, सच्चे सच समाए दुनिया सागर दुत्तर कहिए, क्यों कर पाए पारो चरपट बोले औ।

हट दर्शन एक पंथा, इन विद मन समझाये पुरखा, बाहुल चोट न खाये, नानक बोले गुरमुख बूझे, जोग जुगत इव पाये, अंतर शब्द निरंतर मुद्रा, हौ मैं ममता दूर करी, काम क्रोध अंकार निवारे, गुर के शब्द सो समझ परी।

आर सतगुर कै जन्मे गवन मिटाया अनहत राते एहो मन लाया मनसा आसा शब्द जलाई गुरमुख जोत निरंतर।

पाए। आद को विस्माद विचार कथियले, सुन निरंतर वास लिया अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले। कट कट साचा सर्व जिया गुर बचनी अवगत समाये, तत् निरंजन सहज लह नानक दूजी कार न करनी, से वैसिक सो खोज लह। हुकम विस्माद हुकम पछाणे, जी जुगत सत जाने सोई, आप मेट निरालम होवे, अंतर साच जोगी कही है सोई। अवगत तो निर्मायल उपजे, निर्गुण ते सरगुण थिया, सतगुर परचे परम पद पाये, साचे शब्द समाय लिया। एक एको सच एका जाने, हो मैं दूजा दूर किया, सो जोगी गुर शब्द पछाने। अंतर कमल प्रगास थिया, जीवत मरे ता सब

गुरमुख बाणी अगड़ कड़ावे, गुरमुख निर्मल हर गुण गावे, गुरमुख पवित्र परम पद पावे, गुरमुख रोम रोम हर त्यावे, नानक गुरमुख साज समावे, गुरमुख परचे वेद विचारी, गुरमुख परचे तरिय तारी, गुरमुख परचे सो शब्द ज्ञानी, गुरमुख परचे अंतर विद जानी, गुरमुख पाये अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख निभे सब परवार, गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाये शब्द अचार, शब्द भेद जाने जानाई, नानक हो मैं जाल समाई, गुरमुख तरती साजे साजी, तिसमें ओपत खपत सोबाजी, गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रतो पत स्यो कर जाए, साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे, गुरमुख अष्ट सिद्धि सब बुद्धि, गुरमुख पाव जल तरिये सच शुद्धि, गुरमुख सर अपसर विद जाने, गुरमुख परवित नरवित पछाणे, गुरमुख तारे पार उतारे, नानक गुरमुख शब्द

जोग जुगत सच रहे समाए, बारह में जोगी परमाए, सन्यासी छे चार। गुर के शब्द जो मर जीवे सो पाए मोख द्वार, बिन शब्द सब दूजे लागे देखो हृदय विचार। नानक वड्डे से वड पागी जिनी सच रखिया उधार, गुरमुख रतन लह लिवलाए गुरमुख परखे रतन सुभाए, गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए, गुरमुख अलख लखाए तिस पावे नानक गुरमुख चोट ना खावे। गुरमुख नाम दान इसनान गुरमुख लागे सहज ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान गुरमुख पाव पंजन प्रदान, गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावे कट कट भेद, गुरमुख वैर विरोध गवावे गुरमुख सगली गणत मिटावे। गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता, बिन गुर पर मैं आवे जाए बिन गुर काल न पवी थाए, बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर त्रिपत नहीं बिख खाए, बिन गुर बिसियर डसे मरवाट नानक गुर बिन काटे काट। जिस गुर मिले तिस पार उतारे, अवगुण मेटे गुण निस्तारे, मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार, गुरमुख कदे ना आवे हार। तन हटड़ी एव मन मन जारा नानक सहजे सच वापारा, गुरमुख बांध्यो सेत।

गुरमुख कोट तेती सुधारे, गुरमुख चूके आवन जान, गुरमुख दरगे पावे मान, गुरमुख खोटे खरे पछाण, गुरमुख लागे सहचान, गुरमुख दरगे सिफत समाए, नानक गुरमुख बंद ना पाए, गुरमुख नाम निरंजन पाए, गुरमुख होमे शब्द जलाए, गुरमुख साचे के गुण गाए, गुरमुख साचे रहे समाए, गुरमुख सात नाम पत उत्तम होए, नानक गुरमुख सगल पवन की सोजी होए, कवन मूल कवन मत वेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, कवन कथा ले रहो निराले, बोले नानक सुनो तुम बाले, एक कथा का दे विचार, पव जल शब्द लंगावन हार, पवन आरंभ सतगुरु मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुन चेला, अकथ कथा ले रहो निराला, नानक जुग जुग गुरु गोपाला, एक शब्द जित कथा विचारी, गुरमुख हो मैं अग्न निवारी, मैन के दंत क्यों खाई है सार, जित गर्भ जाए सो कवन आहार, हृदय का कार मंदर अग्न पिराहन, कवन गुफा जित रहे आवाहन, इत उत किसको जान समावे, कवन त्यान मन मन है समावे, हौ हौ मैं विचों खोवे, दूजा मेटे एको होवे, जग करड़ा मन मुख गावार, शब्द कमाये खाये सार, अंतर बाहर एको जाने, नानक अगन मरे सतगुर के पहाने, सच पैराता गर्भ निवारे, एको जाता शब्द विचारे, शब्द वस है सच अंतर हिया, तन मन शीतल रंग रंगिया, काम क्रोध बिख अगन निवारे, नानक नदरी नदर प्यारे, कवन मुख चंद हिवे कर छाया, कवन मुख सूरज तपे तपाया, कवन मुख काल जोहत नित रहे, कवन बुद्ध गुरमुख पत रहे, कवन जोत जो काल सिंगारे, बोले बाणी नानक बिचारे, शब्द पाखत सस जोत अपारा, सस कर सूर वसे मिटे अंधे।

तत मिले मन माने, दूजा जाए इकत कार्याने, बोले पवना गगन गरजे, नानक ने चल मिलन सहजे, अंतर सुनंग बाहर सुनंग, त्रिभवन सुनंग म सुनंग, चौथे सुनने जो नर जाने, ताको पाप न पुनंग, कट कट सुन का जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ, जो जन नाम निरंजन

परे सच भाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरिय पव जल संसारो। त्रैसत अंगुल वाई कहिए, तिस कहो कवन आधारो। बोले खेले अस्थिर होवे, क्यों कर अलख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवे, अपने मन समझाए। गुरुमुख शब्दे सच निव लागे, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे दीना, पूरे पाग समाए। सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जय देखा तह सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला तर सोई। नदर करे शब्द कट में वसे, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल।

पियो आत्म सुख तारी, सच आराध्या गुरमुख तर तारी, नानक बूझै को विचारी, इहो मन मैगल कहां बसियले, कहां बसे इहो पवना, कहां बसे सो शब्द औदू, ताको चूके मन का पवना, नदर करे ता सत गुर मेले, ता निज करवासा इहो मन पाए, आपे आप खाए ता निर्मल होवे, तावत वर्ज रहाए, क्यों मूल पछाने आत्म जाने, क्यों सस कर सूर समावे, गुरमुख हो मैं विच्चों खोवे, तो नानक सहज समावे, इहो मन ने चल हृदय वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहे, नाभी पवन कर आसन बैसे, गुरमुख खोजत तत लहे, सो शब्द निरंतर निज कर आछे, त्रिभवन ज्योत तो शब्द लहे, खावे दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहे, अनहद बाणी गुरमुख जानी, बिरलो को अर्थावे, नानक आखे सच सुभाखे, सच रपे रंग कब हूं ना जावे, जा इहो हिरदा दे ना होती, तो मन कैठे रहता, ना भी कमल अस्तंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहता, रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई, रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई, वरन पेख अस रूप न जापी, क्यों कर जापस साचा।

वर्ण पेख अस्वरूप सो एको एको शब्द विदानी साच बिना सूचा को नाही नानक अकथ कहानी कित कित विद जग उपजय पुरखा कित कित दुख बिनस जाई हो मैं विच जग उपजय पुरखा नाम विसरे दुख पाई गुरमुख होवे सो ज्ञान तत विचारे हो मैं शब्द जलाए तन मन निर्मल निर्मल बाणी साचे रहे समाए नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उधारे नानक बिन नावे जोग कदे न होवे देखो हृदय बिचारे गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए गुरमुख मन पीजे विरला बूजे कोए गुरमुख निज कर वासा होए गुरमुख जोगी जुगत पछाणे गुरमुख नानक एको जाने बिन सतगुर सेवे जोग न होई बिन सतगुर पेटे मुक्त न कोई।

बिन गुरमुआ जन्महार, गुरमुख मन जीता हो मैं मार, गुरमुख साच रखिया उधार, गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार, गुरमुख दरगह ना आवे हार, गुरमुख मेल मिलाए।

गया विलाए, ना किच बीजे ना उगवे, जो बक्से सो खाए। अम्ब ऐसे ती अम्ब रलिया, बहुड़ ना निकस्या जाए। नानक गुरमुख चलत है, वेखो लोका आए। लोक के वेखे बपुड़ा, जिसनो सो जी नाहे। जिस वेखा ले सो वेखे, जिस वस्या मन माहे। महला तीजा, मनमुख दुख का खेत है, दुख बीजे दुख पाए।

से को लपटाए। नानक पूरब लिखिया कमावना अवर ना करना जाए महला तीजा। सतगुरु मिले सदा सुख जिसनो आपे मिले सोए। सुख है एहो विवेक है अंतर निर्मल होए। अज्ञान का परम कटिए ज्ञान प्राप्त होए। नानक एको नदरी आया जह देखा तै सोए। पौड़ी सच्चे तख्त रचाया बैसन को जाई। सब किस आपे आप है गुर शब्द सुनाई। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखे सुने आप गुर शब्द से आई। वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। रहा उस श्लोक कबीर मेहंदी करके कालिया आप पिसाए पिसाए तैसे।

बीजा परम पुलाई सब जग फिरी फावी होई पाल सो सब सांत ना दे रही क्या चले तिस नाल गुर प्रसादी।

पर जम डंड है दूजे पाए पथ खोए, हर नाम कदे ना चेत्यो फिर आवन जाना होए। गुर प्रसादी हर मन वसै जम डंड ना लागे कोए, नानक सहजे मिल रहे कर्म प्राप्त होए। पौड़ी इक अपनी सिफति लायन दे सतगुर मत्ती, इक नानो नाउ बख्शियोन अस्थिर हर सत्ती। पौन पानी बैसंतरो हुकुम करे पगती, इनानो पौ अगला पूरी बनत बनती, सब इको हुकुम वर्तदा मने।

सुख पाए। श्लोक कबीर कसौटी राम की चूठा टिके न कोए, राम कसौटी सो सह है जो मर जीवा होए। महला तीजा क्यों कर इहो मन मारिए, क्यों कर मृतक होए, कहया शब्द ना मानई हो मैं छड़े न कोए। गुर प्रसादी हो मैं चुटे जीवन मुक्त सो होए, नानक जिसनो बख्शे तिस मिले तिस बिघन ना लागे कोई। महला तीजा जीवत मरना सबको कहे जीवन मुक्त क्यों होए, पैसा संजम जे करे दारू पाव लाए, अंदिन गुण गावे सुख सह जे बिख पाव जल नाम तरे, नानक गुरमुख पाईए जाको नदर करे पौड़ी। दूजा पाव रचायन त्रै गुण वरतारा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपायन हुक्म कमावन कारा।

को सच कमावे, नानक सो तपा मोख अंतर पावे, महला तीजा सो तपा जे यो तप काले, सतगुरु नो मिले शब्द समाले, सतगुरु की सेवा यो तप परवान, नानक सो तपा दरगह पावे मान, पौड़ी रात दिन सो

सब साजियन रविया सब वन त्रिण सब किस आपे आप है गुरमुख सदा हर पण सब देही तो जी पई सच्चे आप बुझाई श्लोक महला तीजा अभ्या।

सच्चाई सब समाए पौड़ी। आप अलिपत सदा रहे होर तंदे सब तावे, आप नेचल अचल है होर आवे जावे, सदा सदा हर त्याये गुरमुख सुख पावे, निज करवासा पाये सच समावे, सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई, श्लोक महला तीजा, सच्चा नाम त्याय तू सबो वर्ते सच, नानक हुक्म में जो बुझे सो फल पाए सच, कथनी बदनी करता सिरे हुक्म ना बुझे सच, नानक हर का पाना मन्ने सो भगत हुए, विण मन्ने कच नी कच महला तीजा, मन मुख बोल न जाननी ओना अंदर काम क्रोध अहंकार, कोई थाओ कुथाओ ना जाननी उन अंतर लोभ विकार।

डोबेन नानक जित ओए लाए चित लगे ओए बपड़े क्या करेन पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती शिष्ट सब कीती इक पूर्क सत लायन मनमुख विगूति गुरमुख सदा से आई है अंदर हर प्रीति जिनको पोते पुन है तिन वाक्स पीति नानक नाम से आई है सच सिखत सनाई श्लोक महला पहला सती पाप।

मिले वडाई, जिस कट पीतर सब द्रवे, सब कट मेरे हो सबना अंदर, जिसे खुआई तिस कौन कहे, जिसे दिखाला वाटड़ी तिसे पुलावे कौन, जिसे पुलाई पंग सिर तिसे दिखावे कौन, मेला पहला सो गिर ही जो निग्रह करे, जब तब संजम पीछा करे, पुन दान का करे शरीर, सो गिर ही गंगा का नीर, बोले ईश्वर सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो अवधूती जो तू कह आप, पिख्या भोजन करे संताप, औहठ पट्टन में पीख्या करे, सो अवधूती शिवपुर चढ़े, बोले गोरख सत स्वरूप, परम संत में रेखना रूप, मेला पहला सो उदासी जे पाले उदास, अर्ध

हर जाता। मानस दे गुर बचनी पाया सब आत्म राम सचाता। बाहर मूल न खोजिए कर्माए विदाता। मन मुख हर मंदिर की।

0: कडवही तलबा पौसन आसिया बाकी जिना रही अजराइल से रस्ता होशी आए तई आवन जान नस जई पीड़ी गली फई कूड़ निकुटे नानका ओड़ सच रही पौड़ी हर का सब शरीर है हर रव रहा सब आपे हर की कीमत ना पवे किछ कह न जापे गुर प्रसादी सलाही है हर पगती रापे सब मन तन हरिया होया अहंकार गवापे सब किछ हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई।
1: श्लोक महला पहला।

कोई पौड़ी। नौ दरवाजे काया कोट है, दसवें गुप्त रखी जय। वज्र कपाट ना खुलनी, गुरु शब्द खुली जय। अनहद वाजे तुन वज दे, गुरु शब्द सुनी जय। तित कट अंतर चानना, कर भगत मिली जय। सब में एक वर्तदा, जिन आपे रचन रचाई। श्लोक महला दूजा, अंधे कह राह दसे, अंधा होए सुजाए।

कोय जिथे सो वस्त ना जाते आपे वर्तो जाने नानक गाहक क्यों ले सके न वस्त पछाण महला दूजा सो क्यों अंधा आखिया जे हुक्मो अंधा होए नानक हुक्म ना बुझई अंधा कहिए सोए पौड़ी काया अंदर गरकोट है शब्द संतर देसा आपे ताड़ी लाइन सब में प्रवेशा आपे सृष्ट साजियन आप गुप्त रखे सा गुर सेवा ते जानिया सच करती सा सब किस सच्चो सा।

जावे सगल विजोग पौड़ी। मन मुख मोह गुबार है, दूजे पाए बोले, दूजे पाए सदा दुख है, नित नीर विरोले। गुरमुख नाम ते आई है, मच तप कढोले, अंतर प्रगास कट चानना, हर लब्दा तोले। आपके परम पुलाइंदा किस कह न जाई, श्लोक महला दूजा।

नाम की चिंता मत करो, चिंता किस ही है। मेला पहला नानक इहो जियो मछली चीवर कृष्णा काल, मनुआ अंध न चेत पड़े अचिंता जाल। नानक चित अचेत है,

मत्सिर आवे पार पौड़ी। सो सत्संगत शब्द मिले जो गुरमुख चले, सच त्यायन से सच्चे जिन हर फर्क तम पल्ले। भगत सोन गुण गाउंदे गुरमत अचले, रतन विचार मन वस्या गुर कै शब्द पल्ले।

नानक सोई सेवी है सदा सदा जो दे, नानक सोई सेवी है जित सेवी है दुख जाए, अब गुण वंजन गुण रवे है मन सुख वस है आए पौड़ी, आपे आप वर्तदा आप ताड़ी लायन, आपे ही उपदेश दा गुरमुख पति लायन, एक आपे उज्जर पायन एक पगति लायन, जिस आप बुझाए सो बुझसी आपे नाय लायन, नानक नाम ते आई है सच्ची वड़ियाई सुध। राम।

नानक हर प्रभ बुझिया गुर सतगुर कै प्रसाद पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साव आपे ही खटिया आपे कर पासार आपे रंग रटिया कुदरत कीम न पाए अलख ब्रह्मटिया अगम अथा बेअंत परे प्रटिया आपे वड पात साव आप विजी रटिया कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहिब आ

सतगुरु संत मिलाया, मस्तक पर कै हाथ वड्डा साहिब गुरु मिलाया, जिन तारिया सगल जगत मन किया इच्छा पूरिया, पाया तुर संजोग नानक पाया सच नाम सद ही पोगे पोग। मैला पंजवां।

जिस दा करता मित्र सब का सवारिया, जिस तू आवे चित सो प्रवान जन, जिस तू आवे चित बहुता तिस्तान, जिस तू आवे चित सो वड परवारिया।

आवे अंदर मैल ना उतरे हो मैं फिर आवे जावे नींद भी आप्या काम संतापया मुखो हर हर कहावे वैष्णो नाम कर्म हो जुगता।

ओ ताडी तुद त्याए कलाने दिन रैणार मंगे अमृत नाम ना आवे कदे हार कपड़ पोजन सच रेंदा लिवे तार सो ताडी

पंड जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देखने आली महला पंजवा, हाथ मंजा हूँ मैं माणक लद्दा, मुल ना किद्दा मैं कू सतगुर दित्ता, टूंड वजाई थी अथता, जन्म पदार्थ नानक जित्ता पौड़ी, जिस कै मस्तक कर्म होए सो सेवा लागा, जिस गुर मिल कमल पर गासिया सो अंदिन जागा, लगा रंग चरणार बिंद,

खती है, जोत पोहा जुगत साए सहकाया फेर पलटी है, चुल्ले सो छप निरंजनी मल तकत बैठा गुरहट्टी है।

मुद्रा मदद सहज तुन लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीरथ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने दियो रे। सुरत प्याल सुधा रस अमृत यो महारस पियो रे। निजर धार चुए अत निर्मल ए रस मनु आ रातो रे। कह कब

पूरब जन्म हम तुम्हारे सेवक, अब तो मिटिया न जाए। तेरे द्वारे तुन सहज की माथे मेरे दगाई। दागे हुए सुरन में जूझे, बिन दागे पग जाई। साधु हुए सो भगत पछाने।

लागे। जे मुख वेद गायत्री निपसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करे। जा कह पाए जगत सब लागे सो क्यों पंडित हर ना कहे। काहे मेरे बामन हर ना कहे। राम न बोले पांडे दोजक परे। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठ धर्म कर उदर परे। चौदस अमावस रच रच मांगे कर दीपक ले कूप परे। तू ब्राह्मण मैं काशी दुल्हा मोहे तोहे बराबरी कैसे कह बने। हमरे राम नाम कह उबरे वेद परोसे पांडे डूब।

अंतर जोत राम परदासा, गुरमुख बिरले जानी राव। पावर एक पोप रस बीदा, बारे ले उर्धरिया। सोरे मजे पवन चकोरिया, आकाशे फर फरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजिया, करती जलहर सोखिया। कह कबीर हो ताका सेवक, जिन इहो बिरवा देखिया। मुंदरा मून दया कर चोली,

करम दया कर बारी। पवन काज सृजे जग पीतर जन्म कवन फल पाया, पवन इद तरन तारन चिंता मन इक निमख ना एहो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभु जीओ पिंड था दिया, तिसकी पाओ भगत नहीं सादी रहाओ। पर धन पर तन पर ती निंदा, पर अपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग न टूटे। जिहि कर कथा होत हर संतन, इक निमख न कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संग सदा बसे।

जे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार। निरपो कह कर बजावे तूर, अनहद बजे सदा परपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कट नाहे। रहाओ जे सिमरन नाही ननकार, मुक्त करे उतरे बहु।

बंदच बंधन पाया मुक्त गुर अनल बुझाया। जब नख सिख यो मन चीना तब अंतर मज्जन कीना पवन पत उन मन रहन खरा नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ।

करो आदेश, कह कबीर निरंजन अलेख, दुनिया होशियार बेदार, जागत मुसीहत हौं रे पाई, निगम होशियार पहरुआ देखत जम ले जाई रहाओ, नींब पयो आंब आंब भयो, नींबा केला पाका झार, नालियेर फल सेबर पाका मूर्ख मुग्द गवार, हर भयो खांड रेत में बिखरियो, हस्ती चुनियो न जाई, कह कबीर कुल जा।

आकाश मधे परमी अले पंच जना सो बात बतौआ चीत सो डोरी राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले राव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुमार पुरंदरिये

सोचने बालक पालन पौड़ी अले अंतर बाहर काज विरुदी चीत सो बारिक राखी अले वेद पुराण शास्त्र आनंद का गीत कवित ना गावोगो। अखंड मंडल निरंकार में अनहद बेन बजावोगो बैरागी रामे गावोगो शब्द अतीत अनाहद राता आकुल के कर जाओगो रहाओ पीड़ा पिंगला और सुखमना पौने बंद रहाओगो चंद सूरज दोए समकर राखो ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो तीर्थ देख ना जल में पैसो जीव जंत ना सतावोगो।

तत है। सतगुरु हुए लखाया, राम कली कर दूजा। बनारसी तप करे उल्ट तीरथ मरे, अगन दह काया कल्प की जय। अश्वमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजे।

करे तम जो हिवाले गारे राम नाम सर तौ न पूजे असबान गज दान सेजा नारी पूम दान ऐसो दान नित नित की जय आत्म जो निर्माइल की जय आप बराबर कंचन दी जय राम नाम सर पऊ न पूजे मने न की जय रोष जमे न दी जय दोष निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय जसरथ राय नंद राजा मेरा रामचंद्र प्रणवे नामा तत रस अमृत पी।

सुनिए अनपौ पाओ न दर्श है। लोहा कंचन हिरण होए कैसे, जो पारस ना परस। देव संशय गांठ न छूटे,

आर सतगुरु प्रसाद पीड़ा पिंगुला और सुखमना तीन बसे इकठाई बेणी संगम तह प्राग मन मज्जन करे तुथाई संतो

तहें बाजे शब्द अनाहद बाणी, तहें चंद ना सूरज पौन ना पानी, साथी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुर्मत चीजे, अमृत रस गगनंतर बीजे, एस कला जो जाने पे हो, एते तास परम गुरुदेव, दशम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काती, ऊपर हाथ हाथ पर आला, आले पीतर थाती, जागत रहे सो

मेरे मन जप अहमस नाम हरे, कोट कोट दोख बहु कीने सब पर हर पास धरे। रहाओ हर हर नाम जपे आराधे, सेवक पाए खरे किल बिखे दोख गए सब नीकर, जो पानी मैल हरे। किन किन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे, पंच दोख असाध नगर में एक किन पल दूर करे। वड पागी हर नाम के आवे, हर के भगत हरे, इनकी संगत देह प्रभ जाचो मैं मूड मुगद निस्तरे। कृपा कृपा तार जग जीवन रख ले वो शरण परे, नानक जन तुमरी शरणाई हर राखो लाज हरे।

गुरबचनी हर तारी हर किरपले रहाओ हर हर अगम अगोचर स्वामी जन जप मिल सलल सलले हर के संत मिल राम रस पाया हम जन के बल बलले पुरखो तम हर नाम जन गायो सब दालग दुख दलले विच देही दोख असाध पंच धातु हर किए खिन परले हर के संत मन

आई हम जीवे देख हर मिले जन नानक हर अमल हर लाए हर मेलो आनंद भले मट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम सके गुर प्रसादी हर नाम दे आयो हम सतगुरु चरण पखे रहाओ उत्तम जगन्नाथ जगदीशर हम पापी शरण रखे तुम वड पुरख दीन दुख पंजन हर दियो नाम मुखे हर गुण ऊंच नीच हम गाए गुर सतगुर संग सके जो चंदन संग बसे।

मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के पूल चूक हम अब आए प्रभु शरण गे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हर राखो वड पाप गे, तुमरी संगत हर को

तुमरे गुण प्रभ कह न सके हम तुम वड वड पुरख वड गे जन नानक कहो दया प्रभ धारो हम सेवे तुम जन पगे नट महला चौथा मेरे मन जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी मत गुरमत नाम बने रहाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुरु सुने किल बिख पाप नाम हर काटे जीव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो हम कह ना सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने माया फास बंद बहु बंदे हर जप्यो खुल खुलने जो जल कुंचर तदुए बांधियो हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुग ने तुमरी खा पाई नहीं पावे जन नानक के प्रभु वड ने नट महला चौथा मेरे मन कल कीरत हर प्रभु ने हर हर दयाल दया प्रभ धारी लग सतगुर हर जपने रहाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर रुण

मिल सलल सलल समणे जो प्रभ किया सो तुम ही जानो हम नह जानी हर गहने हम बारिक तौरिद उस्तत तारो हम करें प्रभु सिमरणे तुम जल निद हर मान सरोवर जो सेवे सब फलने जन नानक हर हर हर हर बांचे हर देवो कर कृपणे।

मन सेव सफल हर काल, ये गुर पग रे निर्वाल, सब दालद पंज दुख दाल, हर हो नगर निहाल, राव हर का गृह।

सुन अकथ कथा सुखवंती, सब किलबिख पाप लहंती, हर हो लिखत लिखंती रहाओ, हर कीरत कल युग विच उत्तम मत।

हर अकथ कथा का जिन रस चाख्या तिस जन सब पूख लहंती नानक जन हर कथा सुन तृप्ते जप हर हर हर होवंती नट महला चौथा कोई आन सुनावे हर की हर गाल तिस को हो बल बल बाल सो हर जन है पल पाल हर हो मेल निहाल रहाओ हर का मार्ग गुर संत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सुखो ने कपट कमावो हर की हर काल निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल जन नानक को मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट हदूर निहाल निहाल निहाल निहाल राग नट नारायण महला पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद राम हो क्या जाना क्या भाव है मन प्यास बहुत दर्शावे रहाओ सोई ज्ञानी सोई जन तेरा जिस ऊपर रुच आवे कृपा करो जिस पुरख विदाते सो सदा सदा तू प्यावे कवन जोग कवन

जम की त्रास मिति सुख पाया निकसी हूँ मैं पीर रहाओ। तपत बुझानी अमृत बानी तृप्ते ज्यो बार खीर मात पिता साधन संत मेरे संत सहाई वीर खुले प्रम पीत मिले गोपाला हीरे बेदे हीर विषम पय नान।

किस पे थियो दास का कुल ना बिचारे हो कर कृपा नाम हर दियो सहज सुभाय सवारे हो महा विखम अग्नि का सागर किस्ते पार उतारे हो पेख पेख नानक बिगसानो पुने पुने बलहारे हो नट महला पंजवा हर हर मन में नाम कहो कोट अपराध मिटे खिन भीतर ताका दुख ना रहो रहाओ खोजत खोजत पयो बैरागी साधु संग लहो सगल त्याग एक लिव लागी हर हर चरण गयो कहत मुक्त सुनते निस्तारे जो जो शरण पयो सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना कहो नानक आनंद भयो।

कोट पतत हो है पुनीत, नानक दास बल बल कीत, नट अष्टपदिया महला चौथा को अंकार। सतगुरु प्रसाद राम मेरे मन तन नाम आधारे, खिन पल रह न सकूं बिन सेवा, मैं गुरमत नाम समारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन के

मेरे ठाकुर अगम अपारे एक बिनो बेनती करो गुर आ गए मैं साधु चरण पखारे सहस नेत्र नेत्र है प्रभु को प्रभु एको पुरख निरारे सहस मूरत एको प्रभु ठाकुर प्रभु एको गुरमत तारे गुरमत नाम दमोदर पाया हर हर नाम उर्धारे हर हर कथा बनी अति मीठी जो गूंगा गटक समारे रसना साध चखे पाए दूजे हथ पी के लोग विकारे जो गुरमुख साध चखे राम नामा सब अंग साध दिसारे गुरमत राम नाम तन

नाम सुत वजी है दैदिस हर मुस्की मुस्क गंधारे तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी गुरनी के बचन समारे गावत गावत हर गुण गा।

कै बलिहारे पखंड पखंड कर कर कर में लोभ पखंड जग बुरियारे हलत पलत दुखदाई होवे जमकाल खड़ा सुर मारे उगवे दिन आल जाल समाले दिख माया के विस्तारे आई रैन पया सुपनंतर दिख सुपने भी दुख सारे कल्लर खेत लै कूड़ जमा।

कर सेवक पग लगवारे, जगन्नाथ सब जंत्र उपाए, नक्खीनी सब नथहारे, नानक प्रभु खिंचे तिग चलिए, जो पावे राम प्यारे। नट महला चौथा, राम हर अमृत सर नवारे, सतगुरु ज्ञान मजन है नीको, कीनो मिल कलमल पाप उतारे। रहाओ संगत का गुण बहुत अधिकाई, परसुआ गणक उधारे, परस ना परस।

ना समारे, जब कर मंदिर आग लगानी तब कूप कदे पनिहारे, साकत सो मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम विसारे, साकत बचन बिछुआ जो डसिए तब साकत परे परारे, लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे, गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे, पूरब जन्म परचून कमाए हर हर हर नाम प्यारे, गुर प्रसाद अमृत रस पाया रस गावे रस विचारे, हर हर रूप रंग सब तेरे मेरे लाल में लाल गुलारे, जैसा रंग दिल सो होवे क्या नानक जंत विचारे, नट महला चौथा राम गुर शरण प्रभु रखवारे, जो कुंचर कदुए पकड़ चलायो कर ऊपर कर निस्तारे रहाओ, प्रभु के सेवक बहुत अपनी के मन सरदा कर हर तारे, मेरे प्रभु सरदा भगत मन पावे जन की पै सवारे, हर हर सेवक सेवा लागे सब देख ब्रह्म पसारे, एक पुरुष एक नदरी आवे सब एका नदर निहारे, हर प्रभु ठाकुर रविया सब ठाई सब चेरी जगत समारे, आप दयाल दया दान देवे बिच पाथर कीरे कारे, अंतर वास बहुत मुस्काई ब्रह्म फूला मृग सिंहारे, बन बन टूट

कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे सब है ब्रह्म ब्रह्म है पसरिया मन बीजिया खेवारे जो जन चंद्र हास दुखिया त्रिष्ट बुद्धि अपना कर लूकी जा रे प्रभ को जन अंतर हृदय लोचे प्रभ जन के सास निहारे कृपा कृपा कर भगत दृढ़ाए जन पीछे जग निस्तारे आपन आप आप प्रभ ठाकुर प्रभ आपे शिष्ट सवारे जन नानक आपे आप सब वरते कर कृपा आप निस्तारे नट महला चौथा राम कर कृपा लेहु उबारे ज्यो पकड़ द्रौपदी दुष्टा आनी हर हर लाज निवारे रहाओ कर

मेरे सत्संगत परम पद पाया, कदमा सुन के गटकारे, नित नित काया मज्जन किया, नित मल मल देह सवारे। मेरे सतगुरु के मन बचन न पाए, सब सोकट चार सिवारे, मटक मटक चल सकी सहेली, मेरे ठाकुर के गुण सारे, गुरुमुख सेवा मेरे प्रभु पाई, मैं सतगुरु अलख लखारे।

रिद अंतर हर जन पारे सरदा सरदा उपाय मिलाए मोको हर गुरु गुर निस्तारे पवन सूत सब नीका करया सतगुरु शब्द विचारे निज पल जाए अमृत रस पिया बिन नैना जगत निहारे तो गुण ईश बरन नहीं साको तुम मंद हम निकीरे नानक कृपा करो गुर मेलो मैं राम जपत मन तीरे नट महला चौथा मेरे मन पद ठाकुर अगम अपारे।

अनित जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रवराया। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह नित चगरते चगराया, हम रात रात दीन तेरे हर शरण हर प्रवराया। शरणागति प्रभ पालते हर भगत वचन नाया, प्रहलाद जन हर नाथ पकड़िया हर राख लियो।

हर प्रभु आए मिले सुख पाया, सब तुल पाप गवाता। राम रसायन जिन गुरमत पाया, तिनकी उत्तम बाता, तिनकी पंख पाई है वड पागी, जन नानक चरण पराता। माली गौड़ा महला चौथा, सब सिद्ध साधक मुन जना, मन पावनी हर त्यायो, अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी, हर अलख गुरु लखायो। रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए, नहीं चेतो हर रायो, हर आन मेलो सतगुरु खिन बंद मुक्त करायो। प्रभु मस्त के तुरली खिया, गुरमति हर लिवलायो, पंच शब्द दरगे बाजया, हर मिलियो मंगल गायो। पतित पावन नाम नर हर मंद पागिया, नहीं पायो ते गर्भ जोनी गालियें, जो लोन जले गलायो। मत दे हर प्रभ अगम ठाकुर, गुर चरण मन में लायो, हर राम नामे रहो लागो, जन नानक नाम समायो। माली गौरा मेला चौथा, मेरा मन राम नाम रस लागा, कमल प्रगास कया गुरु पाया, हर जप्यो क्रम तो पागा। रहो कह पाए भगत लागो मेरा हीरा, मन सोयो गुरमत जागा, किलबित खीन पै शांति आई, हर उर्धारियो वड पागा। मन मुख रंग कसुंभ है कछुआ, जो कुसुम चार दिन चागा, खिन में बिनस जाए पर पापे, दंड धर्म राय का लागा। सत संगत प्रीत साध अत गूरी, जो रंग मजीठ बहु लागा, काया का पर चीर बहु फारे, हर रंग ना लहे सवागा, हर चारे ओ रंग मिले गुर शोभा।

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नामे, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम से आई है हर हर, मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्व जंजाला, तिन जब नेड़ ना आवई गुरु राखे हर रखवाला। हम बार किछु न जानू हर मात पिता प्रताला, कर माया अगन नित मेलते गुरु राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किल विख हर जस जाला, मन अनंद भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किल विख काट, हर हर उतारे हो गुरपुर है मेरा शीस की जय गुरवाट। राव मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावे, तिस मन देवो कटकाट। हर साजन मेलियो गुरपुरे, गुर बचन बिकानो हटहाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अध काट, बिन हर नाम को मुक्त न पावे बहु कंचन दी जय कटकाट। हर कीरत गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट, त्रिकुटी फोर परम पाव पागा लज पानी मटकी माट। कल युग गुर पूरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट, जन नानक रस अमृत पिया सब लाथी पू

हवर टहला चूठियां नित करे जम सिर मार रहाओ जिना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह विकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस इक निरंकार इक परम पूले साकता बिन गुर अंध अंधार तुर होव ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनेक नाम आप

नमस्कार। जास जपत होवत उधार रहाओ, जा कै सिमरन मिटे तंद, जा कै सिमरन छूटे बंद, जा कै सिमरन मूरख चतुर, जा कै सिमरन कुल्हे उदर, जा कै सिमरन पौ दुख हरे, जा कै सिमरन अपदा टरे, जा कै सिमरन मुच्चत पाप, जा कै सिमरन नहीं।

साध संगत पज पूरन काम रहाओ, बूढ़त को जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत।

खाए बिलास। जैसो आंडो हृदय माहे, जैसो दानो चक्की दराहे, बहुत उपमा थोर कही, हर अगम अगम अगाज तुही, ऊंच ऊंचो बहु अपार, सिमरत नानक तर।

नैन दर्श पेखो निस्पोर, हस्त हमरे संत टहल, प्राण मन तन संत बहल, संत संग मेरे मन की प्रीत, संत गुण बसे मेरे चीत, संत आज्ञा मने मीठ, मेरा कमल बिगसे संत डीठ, संत संग मेरा होए निवास, संतन की मोहे बहुत प्यास, संत बचन मेरे मने मंत, संत प्रसाद मेरे

करन करावन हाजरा हजूर रहाओ। सुनत जियो जास नाम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम। सगल निद हर हर हरे, मुन जनता की सेव करे। जां कै कर सगले समाहे, जिसते बिरथा कोए नाहे। जी जंत्र करे तत्पाल, सदा सदा सेवो कृपाल। सदा कर्म जां कै दीबान, बे मोहताज नहीं किछ कान। सब किछ करना अपन आप, रे मन मेरे तू ताको जाप। साध संगत को हों बलिहार, जास मिल हो वै उधार। नाम संग मन तन्हे रात, नानक को प्रभ करी दात। माली गौड़ा मैला पंजवा, दो पदे इको अंकार। सतगुर प्रसाद हर समरथ की सरना, जियो पिंड तान रास मेरी। प्रभ एक कारण करना रहाओ। सिमर सिमर सदा सुख पाये, जीवने का मूल। रव रया सर्वत ठाए, सुख मो अस्थूल। आल जाल विकार तज सब, हर गुना नित गाओ। कर जोड़ नानक दान मांगे, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा महला पंजवा, प्रभ समरथ देव अपार। कौन जाने चलत तेरे, किछ अंत नाही पार रहाओ। इक खिने थाप उथाप दा, कर पन करने हार। जेत कीन उपार जना, प्रभ दान दे दातार। हर शरण आयो दास तेरा, प्रभ ऊंच अगम मुरार। कड लेहो पौजल बिखमते, जन नानक सद बलिहार। माली गौड़ा महला पंजवा, मन तन बस रहे गोपाल। दीन बांधव भगत वछल, सदा सदा कृपाल रहाओ। आद अंते मद तू है, प्रभ बिना नाही कोए। पूर रहा सगल मंडल, एक स्वामी सोए। करन हर जस नेत्र दर्शन, रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक, देहो अपना नाओ। माली गौड़ा।

बाप माँ दो तू तन के सो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम दियो तो शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी पांजन है बोना नारे अस्थावर जंगम कीट पतंगम कट कट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सब आसा रे प्रणवे नामा पहने कामा को ठाकुर को दासा रे राग मा

0: श्लोक।
1: साजन तेरे चरण की होए रहा सद्दूर, नानक शरण तुहारी आ, देखो सदा हजूर।
0: शब्द
1: पिछो राती सदड़ा नाम खसम काले है, खेमे छत्र सराय चे दिसन रथ पीड़े, जिनी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले।

विजोगी मिल विछड़े नानक भी संजोग मारू मैला पैला। मिल मात पिता पिंड कमाया तिन करते लेख लिखाया लिख दात जोत वड्याई मिल माया सुरत गवाई। मूरख मन काहे करसे माना उठ चलना खसमै पाना रहाओ तज साध सहज सुख होई कर छड़ने रह न कोई किछ खा जाय किछ तर जाये जे बाहुर दुनिया आये सज काया पट हंडाए फुरमाइश बहुत चलाए कर सेज सुखा।

कागद मन मसवाणी बुरा पला दोए लेख पए। ज्यों ज्यों किरप चलाए त्यों चलिए तो गुण नाही अंत हरे। चित चेतस की नहीं बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ जाली रैन जाल दिन हुआ जेती कड़ी फाही तेती। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मूड़े कहन गुणी। काया आरण मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत भई। पया मनूर कंचन फिर होवे जे गुर मिले तने हा। एक नाम अमृत उह देवे तो नानक त्रिष्टस देहा। मारू महला पहला बिमल मझार बस निर्मल जल पद्मन जावल रे। पद्मन जावल जल रस संगत संग दोख नहीं रे। दादर तू कब है ना जान सरे पक्ष सिबाल बसस निर्मल जल अमृत ना लखस रे। रहाओ बस जल नित ना वस्त अलियल मेर चचा गुन रे। चंद कुमदनी दूरों निवसस अनपौ कारण रे। अमृत खंड दूध मद संचस तू बन चातुर रे। अपना आप तू कब हो ना छोड़स पिसन प्रीत ज्यों रे। पंडित संग वसे जन मूर्ख आगम सास सुने। अपना आप तू कब हो ना छोड़स स्वान पूछ ज्यों रे। एक पाखंडी नाम ना राचे एक हर हर चरणी रे। पूरब लिखिया पावस नानक रसना नाम जप रे। मारू महला पहला श्लोक। पतित पुनीत असंख हो है हर चरणी मन लाग। अठसठ तीरथ नाम प्रभ नानक जिस मस्तक पाग। शब्द

पछताने। तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। पणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू मैला पैला मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाऊ सभागा। गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। तेरे लाले क्या चतुराई, साहिब का हुक्म ना करना।

हुकम पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण काए तो दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार मंदा जाने आपको हवर पला संसार मारू महला पहला इहो तन सर्व रहा भरपूर मन मुख फिर ऐसे जाने दूर सो तन वखर नाम हृदय हमारे जिस तू दे तिसे निस्तार रहाओ ना इहो तन जले ना तस्कर ले जाए ना इहो तन डूबे ना इस तन को मिले।

परमगत पाए। पंडित नानक अकथ की कथा सुनाए, सतगुर मिले ता यो तन पाए। मारू मैला पहला सूर सर सोस ले, सोम सर पोख ले, जुगत कर मरत सो संबंध की जय। मन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मूड़े काए चे परम पुला, ने चीनिया परमानंद बैरागी रहाओ। अजर गहो जार ले, अमर गहो मार ले, प्राप तज छोड़ तो अप्यो पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। पंडित नानक जनो रवे, जे हर मनो मन पवन स्यों अमृत पीजे। मीन की चपल स्यों जुगत मन राखिए, उड़े ने हंस ने कंद चीजे। मारू मैला पहला माया मोई ना मन मुआ, सर लहरी मैं मत बोहित जल सिर तरट के साचा वखर जित। मानक मन में मन मारसी, सच ना लागे कत। राजा तख्त टिके गुणी पै पंचायन रत। बाबा साचा साहेब दूर ना देख, सर्व जोत जग जीवना सिर सिर साचा लेख। रहाओ ब्रह्मा विष्णु रिखी मुनि, शंकर इंद तपे पेखारी। माने हुक्म सो है दर साचे, आकी मरे अफारी। जंगम जोत जति सन्यासी, गुरुपुरे विचारी। बिन सेवा फल कभू न पावस, सेवा करनी सारी। नितनिया तन निगुरिया, गुर निमाणिया तू मान। अंदुले मानक गुर पकड़िया।

ज्ञान रतन मन मांझी है, बहुड़ना मैला होए, जब लग साहिब मन वसे तब लग बिघन न होए, नानक सिर दे छुट्टी है, मन तन साचा सोए, मारू मैला पहला, जोगी जुगत नाम निर्मायल, ता कै मैल न राती, प्रीतम नाथ सदा सच संगे, जन्म मरण गत बीती।

ब्रह्मण ब्रह्म ज्ञान स्नानी हर गुण पूजे पाती एको नाम एक नारायण त्रिभुवन एका ज्योति जिहवा डंडी एव कट छाबा तोलो नाम अजाची एको हाथ साओ सबना सिर वनजारे एक पाती दोवे सिरे सतगुरु निबेड़े सो बूझे जिस एक लिव लागी जियो रह निबराती शब्द वसाए परम चुकाए सदा सेवक दिन राती ऊपर गगन गगन पर गोरख ताका अगम गुरु पुनवासी गुर बचनी बाहर कर एको नानक पया उदासी राग मारू मैला पहला कर पंजा।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र हैं थावा बाबा देह बसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रहो बुरा पला किछ आपस ते जानिया ए सगल विकारा ए फुरमाया खसम का होआ वरते एहो संसारा इंद्री तात सबल कहियत है इंद्री किस्ते होई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे विनाशी ज्योतिष पाणा सो सतकर मानिया काटी जम की फांसी पणत नानक लेखा मांगे कवना जाचू का मन अभिमाना तास तास धर्म राय जप्त है तय सच्चे की सरना मारू मैला तीजा आवन जाना नाथी है निज करवासा होए सच खजाना बख्शिया आपे जाने सोए ए मन हर जियो चेत तू मनो तज विकार गुर कै शब्द त्याय तू सच लगी प्यार रहाओ एथे नावो पुल्या फिर हथ किताऊ ना पाए जोनी सब पुआयन बिष्टा माए समाए वडपागी गुर पाया पूर्व लिखिया माए आंदिन सच्ची भगत कर सच्चा लय मिलाए आपे सृष्ट सब साजियन आपे नदर करे नानक नाम वडियाया जय पावे तें दे मारू मैला तीजा पिछले गुने बख्साए जियो अब तू मार्ग पाए हर की चरणी लाग रहा विच्चों आप गवाए मेरे मन गुरमुख नाम हर त्याए सदा हर चरणी लाग रहा एक मन एक है भाई रहाओ ना मैं जात ना पत है ना मैं थ्यो ना थाओ शब्द पेद प्रम कटिया गुरु नाम दिया समझाए यो मन लालच करदा फिरे लालच लागा जाए तंदे पूर व्यापिया जमपुर चोटा खाए नानक सब किछ आपे आप है दूजा नाही कोए भगत खजाना बख्शियों गुरमुखा सुख होए मारू मैला तीजा सच रते से टोल लो से विरले संसार तिन मिलिया मुख उजला जप नाम मुरार बाबा साचा साहिब हृदय समाल सतगुर अपना पुछ देख लेहो वखर पाल रहाओ एक सच्चा सब सेम दी तुरपाग मिलावा होए गुरमुख मिले से ना विछड़े पावे सच सोए एक पगती सार न जानी मनमुख परम पुलाए ओना विच आप वर्तदा करना किछु न जाए जिस नाल जोर न चले खले की चै अरदास नानक गुरमुख नाम मन वसै ता सुन करे साबास मारू मैला तीजा मारू ते शीतल करे मनूरों कंचन होए सो साचा सा लाही है तिस जेवड़ अवर न कोए मेरे मन अन दिन त्याए हर नाओ सतगुर के बचन अराध तू

सतगुरु प्रसाद। जप्यो नाम सुख जनक गुर बचनी हर हर शरण परे। दालद पंच सुदा में मिलियो भगति पाए तरे। भगत वचल हर नाम किरतारत गुरमुख कृपा करे। मेरे मन नाम जपत उदय त्रू प्रहलाद बिदर दासी सुत गुरमुख नाम तरे रहाओ। कल युग नाम प्रदान पदार्थ भगत जना उदरे। नामा जय दियो कबीर त्रिलोचन सब दोख गए चमरे। गुरमुख नाम लगे से उदरे सब किलबिक पाप तरे। जो जो नाम जपे अपराधी सब तिनके दोख पर हरे। बेसुआरवत अजामल उदरियो मुख बोले नारायण नर हरे। नाम जपत उग्रसेन गत पाई तोर बंधन मुक्त करे। जन को आप अनुग्रह किया हर अंगीकार करे। सेवक पैज रखे मेरा गोविंद शरण परे उदरे। जन नानक हर कृपा धारी उर्धरयो नाम हरे। मारू महला चौथा सिद्ध समाध जप्यो लिव लाई। साधक मुन जपिया जति सती संतोखी त्याया। मुख इंद्रादिक रविया शरण परे जप्यो ते भाए। गुरमुख पार पया मेरे मन नाम जप करया। तन्ना जट बाल्मीक बटवारा गुरमुख पार पया रहाओ। सुर नर गण गंधर्वे जप्यो रिख बपुरे हर गाया। शंकर ब्रह्मे देवी जप्यो मुख हर हर नाम जपया। हर हर नाम जिना मन पीना ते गुरमुख पार पया। कोट कोट ते तीस त्यायो हर जपत्या अंत न पाया। वेद पुराण सिमरत हर जपया मुख पंडत हर गाया। नाम रसाल जिना मन वस्या ते गुरमुख पार पया। अनत तरंगी नाम जिन जपया मैं गणत ना कर सकया। गोविंद कृपा करे थाए पाए जो हर प्रभ मन पाया। गुर तार कृपा हर नाम दृढ़ायो जन नानक नाम लया।

हर हर नाम निधान ले गुरमत हर पत पाए हालत पलत नाल चलदा हर अंते ले छड़ाए जिथे अवकट गलिया पीड़िया तिथे हर हर मुक्त कराए मेरे सतगुरा में हर हर नाम दृढ़ाए मेरा मात पिता सुख बंद पो मैं हर बिन अवर नाम आए रहाओ मैं हर बिरही हर नाम है कोई आन मिलावे माए तिस आगे मैं जोदड़ी मेरा प्रीतम दे मिलाए सतगुरु पुरख दयाल प्रभ हर मेले टिल न पाए जिन हर हर नाम न चेत्यो से पागहीन मर जाए ओए फिर जोन पवाई है मर जम्मे आवे जाए ओए जम दर बद्दे मारिये हर दरगे मिले सजाए तू प्रभ हम शरणागति मोको मेल लहो हर राय हर तार कृपा जग जीवना गुर सतगुर की शरणाए हर जियो आप दयाल होए जन नानक हर मेल आए मारू मेला चौथा हौं पूंजी नाम दसाईदा को दसे हर तन रास हौं तिस विटो खन खनिये मैं मेले हर प्रभ पास मैं अंतर प्रेम पिरम का क्यों सज्जन मिले मिलास मन

तेरा मित्र प्रभ हर मेलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति कर कृपा नाम समानी मारू महला चौथा हर पाव लगा बैरागिया वडपागी हर मन राख मिल संगत सरदा उपजे गुर शब्दी हर रस चाख सब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख मन प्यारिया मित्रा हर हर नाम रस चाख गुरपूरे हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम त्याये हर कीरत गुरमुख चाख तन तरती हर बीजिए विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुरपूरे हर रस चाख मन मुख तृष्णा पर रहे मन आशा दह दिस बहुलाख बिन नामे त्रिग जीव दे।

हर हृदय सदा सदा संभाली। हर हर नाम जपो मेरे जीड़े, जप हर हर नाम छड़ावे जियो रहाओ। सुख सागर अमृत हर नाओ, मंगत जन जाचे हर दियो पसाओ। हर सत सत सदा हर सत मेरे मन पावे जियो। नवे छिद्र स्रवे अपवित्रा, बोल हर नाम पवित्र सब किता। जे हर सो प्रसन्न होवे मेरा स्वामी, हर सिमरत मन लह जावे जियो। माया मोह बिखम है पारी, क्यों तरिये दुत्तर संसारी। सतगुर बोहित दे प्रभ साचा, जप हर हर पार लंगावे जियो। तू सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावे बेचारा, हर पावे हर थाए पावे जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे। सब किलविक काटे हर तेरे, हर तन राखो हर तन संचो। हर चलदिया नाल सखाई जियो, जिसनो कृपा करे सो त्यावे। नित हर जप जापे, जप हर सुख पावे। गुर प्रसादी हर रस पावे।

जप हर हर पार लंघाई जियो रहाओ निर्भव निरंकार सतनाम जग में श्रेष्ठ उत्तम काम दुश्मन दूत जम काल ठेह मारो हर सेवक नेर न जाई जियो जिस ऊपर हर का मन मानिया सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया जे उसका बुरा कहे कोई पापी तिस जम कंकर खाई जियो सब में एक निरंजन करता सब कर कर वेखे अपने चलता जिस हर राखे तिस कौन मारे जिस करता आप छड़ाई जियो हाँ अंदिन नाम लही करता रे जिन सेवक भगत सबे निस्तारे दस अठ चार वेद सब पूछो जन नानक नाम छड़ाई जियो मारू मैला पंजवा कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद डर पै तरत आकाश नखत्रा सिर ऊपर अमर करारा पौन पानी बैसंतर डर पै इंद्र विचारा एका निरपो बात सुनी सो सुखिया सो सदा सुहेला जो गुर मिल गाए गुनी रहाओ देह तार अर देवा डर पै सिद्ध साधक डर मोया लख चौरासी मर मर जन में फिर जोनी जोया राजस सातक तामस डर पै केते रूप उपाया छल बपुरी ए कौला डर पै अत डर पै धर्म राया सगल समग्री डरे व्यापी बिन डर करने हारा कहो नानक भगतन का संगी भगत सो है दरबारा मारू मैला पंजवा पांच बरख को अनाथ त्रू बारिक हर सिमरत अमर अटारे पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे मेरे ठाकुर केते अगनत उधारे मोहिदीन अल्प मत निर्गुण परयो शरण द्वारे रहाओ बाल्मीक सुपचारो तरयो बद्धिक तरे बिचारे एक निमख मन माहे अरादियो गजपत पार उतारे कीनी रखिया भगत प्रहलादे हर नाखस नखे बिदारे विदरदासी सुत पयो पुनीता सगले कुल उजारे कवन पराध बतावो अपने मिथ्या मोह मगनारे आयो साम नानक ओट हर की लीजे पूजा पसारे मारू महला पंजवा वित्न वित प्रम्यो बहु पांते अनेक जतन करता।

ए विद खोजी बहु प्रकारा बिन संतन नहीं पाए तुम दातार वडे प्रभु समरथ मांगन को दान आए त्याग्यो सगला मान मैता दास रेण शरणाए कहो नानक हर मिल पए कै महा आनंद सुख पाए मारू मैला पंजवा कवन थान तीरो है नामा कवन बस्त अंकारा कवन चेहन सुन

लक्ष्मण विराते पंच तत् मिल पयो संजोगा इनमें कवन दुराते जिन रच रचिया पुरख विधाते नाले हो मैं पाए जन्म मरण उसी को है रे ओहा आवे जाए वरन चेहन नाही किछ रचना मिथ्या सगल पसारा पंत नानक जब खेल उजारे तब एक है एक अंकारा।

आनंद रखियो गे पीतर उठ उआहू कौ दौरेओ आज्ञा में पूख सोई कर सूखा सो घर नहीं जानियो जो जो हुकुम पयो साहिब का सो माथे ले मानियो पयो किरपाल था।

पावन पतत किए खिन पीतर, मैं मां कथन न जाए, निरपो पए सगल पै खोए, गोविंद चरण उठाई, नानक जस गावे ठाकुर का, रैन दिन सुलिवलाई, मारू मैला पंजवा, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबू न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ताको, हुआ को फिर तावसरे, अपने प्रभु को क्यों ना समार सने, बैरी संग रंग रस रचिया।

तारियो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो। एहो नानक पत विचारियो, मारू मैला पंजवा, चरण कमल प्रभ राखे चीत, हर गुण गावे नीता नीत, तिस बिन दूजा अवर न को, आद मद अंत है सो, संतन की ओट आपे आप, रहाओ जा कै वस है सगल संसार, आपे आप आप निरंकार, नानक गयो।

सतगुरु प्रसाद। प्राण सुखदाता जी सुखदाता तुम काहे बिसार्यो अज्ञानथ, होछा मद चाक होए तुम बावर दुलभ जन्म अकारथ। रे नर ऐसी करें इयानथ, तज सारंग तर परम तू पूला, मोहे लपट्यो दासी संग सानथ रहाओ। तरणी तर त्याग नीच कुल सेवें, हौ हौ करत बिहावथ। फोकट कर्म करें अज्ञानी, मनमुख अंध कहावथ। सत होता असत कर मानिया, जो बिन सत सोने चल जानथ। पर की को अपनी कर पकरी, ऐसे पूल पुलानथ। खत्री ब्राह्मण सूद वैस सब एक है नाम तरानथ। गुरु नानक उपदेश कहत है, जो सुने सो पार परानथ। मारू मैला पंजवा, गुप्त करता संग सो प्रभ डहकावे मनुखाए। बिसार हर जियो बिखे पोगे, तपत थम गल लाए। रे नर काए पर ग्रह जाए, कुचल कठोर काम गर्दव तुम। नहीं सुनियो तर्म राय रहाओ, विकार पाथर गले बांधे, निंद पोट सिराए। महासागर समुंद लंगना, पार न पर ना जाए। काम क्रोध लोभ मोह व्याप्यो, नेत्र रखे विराए। शीश उठावन न कबहू मिले, महादुत्तर माए। सूर मुक्ता शशि मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी अल्पाए। स्वभावत जैसे बैसंतर अल्पत, सदा निर्मलाए। जिस कर्म खुलिया तिस लया पर्दा, जिन गुर पै मनिया सुभाए। गुर मंत्र अवखद नाम दीना, जन नानक संकट जोन न पाए। रे नर इन विद पार पराए, त्याए हर जियो होए।

किया था। अनुपव अचरज रूप प्रपेखिया मेरा मन छोड़ न कतहू जाया था। मानक पायो रे पायो हर पूरा पाया था। मोल अमोल न पाया जाई कर कृपा गुरु दिवाया था। रहाओ अदिष्ट अगोचर पार ब्रह्म मिल साधु अकथ कथाया था। अनहद शब्द दस

द्वार बज्यो तें अमृत नाम चो आया था। तोट नाही मन तृष्णा बूजी अखुट पंडार समाया था। चरण चरण चरण गुर सेवे अकड़ कड़ो रस पाया था। सहजे आवा सहजे जावा सहजे मन खेलाया था। कहो नानक परम गुरु।

ताओ लागा गोविंद स्यों काल पाई खाए, खेत मेरे जमिया निखुट न कबू जाए, पाया अमोल पदार्थो छोड़ न कतू जाए, कहो नानक सुख पाया तृप्त रहे आधाए। मारू मैला पंजवा फूटो आंडा परम का मने तयो प्रगास।

गीत नाद मुख राग अलापे, मन नहीं हर हर गावा, हर्ष शोक लोभ मोह रहते हैं, निर्मल हर के संतान, तिनकी तूर पाए मन मेरा, जा दया करे भगवंता, कहो नानक गुरपुरा मिलिया।

रूप रंग खुशियां मन भोगण केते छिद्र विकारा हर का नाम निधान कल्याणा सुख सहज इहो सारा माया रंग बिरंग किने में जो बादल की छाया से लाल पे गूढ़े रंग राते जिन गुर मिल हर हर गाया ऊंच मूच अपार स्वामी अगम दरबारा नामो वडियाई सोबा नानक खसम त्यार।

किया दिनस सब राति वन त्रिन त्रिभुवन पानी चार वेद चारे खानी खंड दूत सब लोआ एक कवावै ते सब होआ करने हारा बूजो रे सतगुर मिले ता सूजे रे रहाओ त्रै गुण किया पसारा नरक सुरग अवतारा हो मैं आवे जाई मन तुकन न पावे राई।

जिस होवे भाग मथाने सो मिलिया जे हर मन पाया सो पूला जे प्रभु पुलाया नह आपो मूर्ख ज्ञानी जे करावे सो नाम वखानी तेरा अंक न पारा वारा जन नानक सद बलिहारा।

भी गद है, एक के सुखने दाम न खड है, राज कमाए करी जिन थैली, ताके संग न चंचल चलिया, एक के प्राण पिंद ते प्यारी, एक संची तज बाप महतारी, सुत नीत प्राप्त गोजी, ताके निकट न होई खलिया, होए अवतूत।

मात गर्भ में जिन प्रतपारिया जियो पिंड दे साज सवारिया कोई विधाता खिन खिन जपिए जिस सिमरत अवगुण सब टकिए चरण कमल उर अंतर तारो दिखिया बनते जियो।

नानक ताके बल बल जाए, राम नाम मन तन आधारा, जो सिमरे तिसका निस्तारा रहाओ, मिथ्या वस्तु सत्य पर मानी, हित लायो सठ मूर अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मद माता, कौडी बदले जन्म गवाता, अपना छोड़ पराया राता, माया मद मन तन संग जाता, कृष्ण ना बूझे करत कलोला, ऊनी आस मिथ्या सब बोला, आवत अकेला जात अकेला, हम तुम संग झूठे सब बोला, पाए ठगोरी आप बुलायो, नानक किरत ना जाए मिटायो, पस पंखी पूत अर प्रेता, बोगित जोनी सिर्फ अनेता, जह जानो तह रहन ना पावे, थान बिहून उठ उठ फिर पावे, मन तन बास

आई प्रभु विसरत नरक में पाया ते मात ना बंद ना मीत ना जाया जिसको होत कृपाल स्वामी सोजन नानक पार गिरामी प्रमत प्रमत

प्रेम भगत हो वत निस्तारा साध रूप अपना पन तारया मां अगन ते आप उबारया जप तप संजम इस्ते किछ नाही आद अंत प्रभ अगम अगाही नाम दे मांगे दास तेरा हर जीवन पद नानक प्रभ मेरा मारू महला पंजवा कत कौ डह कावो।

आज्ञाकारी सदा सदा सुखदाई, अपने को कृपा करियो इस नाम से आई, नानक दीन नाम मांगे दुखिया परम चुकाई। मारू मैला पंजवा मेरा ठाकुर अपना

जो अवर न कोई जीवन प्रतपाल समा है होशी आहे दया मोह की जय देवा नानक लागो सेवा मारू महला पंजवा पतित उदाहरण तारण बल बल बले बल जाये ऐसा कोई पेट है संत जित हर हरे हर प्याय मोको कोई न जानत कयत दास तुम्हारा यहा ओट आधारा।

भूमंडल खंडल प्रभु तुम ही आछे, अटल अथयो देवा मोहन अलख अपारा, दान पावो संता संग नानक रेन दसारा। मारू मैला पंजवा त्रिपत अघाए संता, गुरजाने जिन मंता ताकि किछ कह न जाई, जा को नाम बढ़ाई। लाल अमोला लालो अगह अतोला नामो राव, अवगत सो मानिया मानो गुरमुख तत् ज्ञानो, तिरखत सगल त्यानो तजियो मन ते अभिमानो, ने चल तिनका।

छोड़ सगल सियाणपा मिल साध त्याग गुमान और सब किस मिथ्या रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटे अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपुरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ बिना पे मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाने हर भजन तक ज्ञान मारू मैला पंजवा। जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे से पुत्र मित्र विलास बनता टूटते इहने। मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अगन सागर सुख मन तन देहे। राव देख छाया जैसे बिन सत पवन चूलत में हर भगत दृढ़ मिल साध नानक। तेरे काम आवत एहे मारू मैला पंजवा। पुरख पूरन सुखे दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिन से व्यापत उसन न सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना ए निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै तिसीद नवल नवतन चतुर सुंदर मन नानक तिस संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैसत सोवत जागत गुर मंत्र हृदय चितार चरण शरण पद संग साधु। पव सागर उतरे पार मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर्षो अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू आपन आप निवार। गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कभू न हार। मारू मैला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेन साधु थियो तिसे प्राप्त नाम।

नाम इक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो मारू मैला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखे लगन देत न से।

सोड सगले देख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक मारू मैला पंजवा। पतित पावन नाम जाको अनाथ को है नाथ,

हुआ। पंच तात कर पुतला किया, साहे कै फुरमायड़े जी देही विच जियो आए पया। जिथे अगन पखे परहारे, उरद मुख महा गुबारे, सास सास समाले सोई, उठे खत्म छड़ाए लया। विचों गर्भ निकल आया।

मरो प्रदान है कट कटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जा का थाने आवे न जावे संगे समावे पूरन जाता काम है भगत जना का राखना आरा संत जीवे जब प्राण

हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उद्रियो गनताहू गत पाई। रहा पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधियाई, ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। जे नर जब कृपा निध गायो ताको पयो सहाय, कहो नानक में यही परोस है गही आम शरणाई।

काल फास जब घर में मेली ते सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट में को अब हो सहाय जो संपत अपनी कर मानी छिन में पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जग सब न गाई मारू मैला नावा माई में मन को मान न त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम पजन नहीं लाग्यो राव जम को दंड पड़ो सिर ऊपर तब सोवत कह जाग्यो कहाँ होत अब कह पछताए छूटत नाहीं न भाग्यो ए चिंता उपजी कट में जब गुर चरणन अनुरागियो सुफल जन्म नानक तब हुआ जो प्रभ जस में पाग्यो मारू अक्षदिया मैला पहला कर पहला ओंकार सतगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका हर सच्ची रख बहु कणा प्रम था के देखा साचो साहिब निर्मलो मन माने एका तू अजरावर अमर तू सब चालन हारी नाम रसायन पाए ले पर हर दुख पारी रहाओ हर पढ़िए हर बुझिए गुरमती नाम उधारा गुर पूरे पूरी मत है पूरे शब्द विचारा अठहठ तीर्थ हर नाम है किल विस्का तनहारा जल बिलोवे जल मत है तत लोड़े अंध ज्ञाना गुरमती जद मत्थी है अमृत पाये नाम निदाना मन मुख तत न जाननी पशु माए समाना हौ मैं मेरा मरी मर मर जम मैं वारो वार गुर कह सब दे जे मरे फिर मरे ना दूजी वार गुरमति जग जीवन मन वसै।

साची संगत थान सचे, सच्चे करवारा सच्चा पोजन पाओ सचे, सच नाम आधारा सच्ची बाणी संतोखिया, सच्चा शब्द विचारा रस भोगन पाप साइया, दुख सुख संगारा मोटा नाव तराई है गल औगुण पारा, मानस दात न हो वही तू दाता सारा, अगम अगोचर तू तनी अवगत अपारा, गुर सबदी दर जोई है मुक्ते पंडारा, नानक मेल न चूकई साचे वापारा, मारू मैला पहला बिख बोयथा ला दिया दिया समुंद मंझार, कंदी दिस ना आवई ना उरवार ना पार, वंजी हाथ ना केवटू जल सागर सराल, बाबा जग फाथा मां जाल गुर प्रसादी उबरे सच्चा नाम समाल रहाओ, सतगुरु है बोए था सबद लंगावन हार, तिथे पवन ना पाव को ना जल ना आकार, तिथे सच्चा सच नाए पव जल तारण हार, गुरमुख लंगे से पार पए सच्चे सों लिवलाए, आवा गौन निवारया ज्योति ज्योत मिलाए, गुरमति सहज उपजे सच्चे रह समाए, सप पिड़ाई पाए बिख अंतर मन रोस, पूरब लिखिया पाए किसनो दी जय दोस, गुरमुख गारण जे सुने मने नाव संतोख, मागर मच पाए कुंडी जाल बताए, गुरमत फाथा पाए फिर पछोताए, जमन मरण न सुजई कीर्त न मेटा जाए, हों मैं बिख पाए जगत उपाया शब्द वसे बिख जाए, जरा जोहे ना सकई सच रहे लिवलाए, जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हो मैं जाए, तंदे तावत जग बांदिया ना बूझे विचार, जमन मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गवार, गुरु राखे से उबरे सच्चा शब्द विचार, सुहट पिंजर प्रेम के बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उडे ताए कावार, गुर मिले खसम पछाणिए कहो नानक मोख द्वार, मारू मैला पहला शब्द मरे ता मार मरे पागो किस तै जाओ, जिस तै डर तै पागी है अमृत ता को नाओ, मारे राखे एक तू बीजो नाही थाओ, बाबा मैं कुचील काचो मत हीन, नाम बिना को कछ नहीं गुरपूर है पूरी मत कीन रहाओ, अवगण सुगर गुण नहीं बिन गुण क्यों कर जाओ, सहज शब्द सुख उपजे बिन पागा तन नाहे, जिनके नाम ना मनवसे से बांधे दुख सहाए, जिन्नी नाम विसारिया से कित आए संसार, आगे पाछे सुख

फूले मार्ग जो दसे तिसके लागो पाए, गुरबिन दाता को नहीं कीमत कह न जाए। साजन देखा ता गल मिला साज पठायो लेख, मुख तिमाने तन खरी गुरमुख आखी देख। खुद पावे तू मन वसे नगरी कर्म विशेख, भूख प्यासे जे पवे क्या तिस मांगो दे। बीजो सूजे को नहीं मन तन पूरन दे, जिनकी आतिन देखिया आप वडाई दे। नगरी नायक नवतनो बालक लील अनूप, नार ना पुरख ना पंखनु साचो चतर स्वरूप। जो तिस पावे सोचिए तू दीपक तू धूप, गीत साध चा

नानक नाम ना विसरे, जो तिस पावे सो होग, मारू मैला पैला। साची कार कमावनी होर लालच बाद, एहो मन साचे मोहया जेवा सत्साद। बिन नामे को रस नहीं होर चले दिखलाद, ऐसा लाला मेरे लाल को सुन खत्म हमारे। ज्यों फुरमावे त्यों चला सच लाल प्यारे राव। हम बिन लाले चाकरी गोले सिर मीरा, गुरबचनी मन वेचिया शब्द मन तीरा। गुरपूरे साबास है काटे मन पीरा, लाला गोला तनी को क्या कहो वड्याई है। ताने बक्से पूरा तनी सत्कार कमा।

सुहागनी सावरने क्यों जाओ, मैं गल औगन मुठड़ी दिन फिर चूर मराओ, तेयरे फिर समला सावरने करवास, सुख संबंध सुहागनी।

मैं एक जोत दो नाओ मूर्खा सिर मूर्ख है जे मन्ने नाही नाओ गुरुद्वारे नाओ पाये बिन सतगुर पल्ले ना पाए सतगुर कह पाने।

एहो शब्द सार जिसनो लाए गुरमुख तृष्णा पुख गवाए आपन लिया किछु ना पाये कर कृपा कलकारी जियो अगम निगम सतगुरु दिखाया कर कृपा अपने कर आया अंजन माहि निरंजन जाता जिनको नजर तुम्हारी जियो गुरमुख होवे सो तत पाए अपना आप विचों गवाए सतगुर बाजो सब तंग कमावे देखो मन विचारी जियो एक परम पूले फिरे अंकारी इकना गुरमुख हो मैं मारी सच्चे शब्द रते बैरागी और परम पुले गावारी जियो गुरमुख जिन्नी नाम न पाया मनमुख बिरसा जन्म गवाया अगे बिन नामे को बेली नाही बूझे गुर विचारी जियो अमृत नाम

कार्तिजा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। लख चौरासी परमते परमते दुर्लभ जन्म अब पायो, रे मूड़े तू हो छह रस लपटायो, अमृत संग बस्त है तेरे बिख्या क्यों उर्जायो रहाओ।

जे कर मैं तुद रहना बसना सो कर चीत ना आयो अटल अखंड प्राण सुखदाई एक निमख नहीं तुझ गायो जहां जाना सो थान विसार्यो एक निमख नहीं मन लायो पुत्र कलत्र ग्रह देख समग्री इस ही मैं उर्झायो जित को लायो तित ही लागा तैसे कर्म कमायो जो पयो किरपाल ता साध संग पाया जन नानक ब्रह्म ते आयो मारू महला पंजवा कर अनग्रो राख लीनो पयो साधु संग हर नाम रस रसना उचारे मिष्ट गूढ़ा रंग मेरे मान को स्थान मीत साजन सक

कही मोख मुक्त द्वार जा कै संतरिदा पंडार जी जुगत सुजान स्वामी सदा राखनहार दुख दर्द कलेश बिनसै जिस बसे मन माहे मृत नरक स्थान बिखड़े बिख न पोहे ताहे रिद्ध सिद्ध नवनिद जाके अमृता प्रवाह आद अंते मद पूरन ऊच अगम अगाह सिद्ध साधिक देव मुन जन वेद करें उचार सिमर स्वामी सुख सहज पुंचे नहीं अंत पारावार अनिक प्राचत मिटे खिन में हृदय जप भगवान पावना ते महापावन कोट दान स्नान बल बुद्ध शुद्ध प्राण सर्व सु संतना की रास बिसर नाही निमक मन ते नानक की अरदास मारू मेला पंजवा शस्त्र तीखन काट डार्यो मन ना की नो रोस काज ओआ को

कृपाल गोविंद सुन संतना की रीत रहाओ। चरण तले उगाहे बैस्यो श्रम ना रहो शरीर, महासागर नह व्यापै खिने उतरयो तीर। चंदन अगर कपूर लेपन तिस संगे नहीं प्रीत, दिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत। ऊंच नीच विकार सुकृत संलगन सब सुख छत्र, मित्र सत्र ना कछु जाने सर्व जी समत। कर परगास प्रचंड प्रगट्यो अंधकार विनाश, पवित्र अपवित्र है किरण लागे मन न पयो बिखाद। शीत मंद सुगंध चल्यो सर्व थान समान, जहां सा किछ तहां लागयो तिल न शंका मान। सुभाए अभाए जो निकट आवे शीत ता का जाए, आप पर का कछ न जाने सदा सहज सुभाए। चरण शरण सनाथ एहो मन रंग राते लाल, गोपाल गुण नित गाओ नानक पै प्रभ कृपाल। मारू महला पंजवा कर चौथा अष्टपदिया इको अंकार सतगुर प्रसाद। चांदना चांदन आंगन प्रभ जियो अंतर।

का गुरचरणी मन लागना, ए विदित से प्राप्ते जा के मस्तक पागना, कहो नानक तिस सब किछ नीका, जो प्रभ की शरणागना। मारू महला पंजवा, आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना रहाओ।

आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। संत कृपा ते हृदय वासे, दूजा पाओ मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगासे, दुर्मत दुख सजावना। दर्शन भेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नौ निद रिद्ध सिद्ध पाई, जो तुम रे मन पावना। संत बिना मैं थाओ न कोई, हवर न सूजे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे, संता संग समावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया, मन मध्य हर हर रावना। मारू महला पंजवा, जीवना सफल जीवन सुन, हर जप जप सद जीवना रहाओ। पीवना जित मन आगावे, नाम अमृत रस पीवना। खावना जित भूख ना लागे, संतोख सदा तृप्त जीवना। पहनना रख पत परमेश्वर, फिर नांगे नहीं थीवना। पोगना मन मदे हर रस, संत संगत में लीवना। बिन तागे बिन सुई आनी, मन हर पगति संग सीवना। मात्या हर रस में राते, तिस बहुड़ न कबहू औखीवना। मिलियो तिस सर्व निधाना, प्रभ कृपाल जिस दीवना। सुख नानक संतन की सेवा, चरण संत तोय पीवना। मारू महला पंजवा, कर अठवा अंजुलिया इको अंकार। सतगुर प्रसाद, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोरी सो फिरे परमंता। दोहु व्यवस्था तेजो मुक्ता, सोई सुहेला पालिए। ग्रह राज में नरक उदास करोदा, बहुविध बे

चौर टालिए जो सूरा तिस ही होय मरना जो पागे तिस जोनी फिरना जो वरताए सोई पल माने बुझ हुक्मे दुर्मत जालिए जित जित लावे तित तित लगना कर कर वेखे अपने जचना नानक के पूरन सुख दाते तू देता नाम समालिए मारू महला पंजवा बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे अस्त उदोत पया उठ चले ज्यो ज्यो औद विहानिया पाप करेंदर सर पर मुठे अजराइल फड़े फड़ कुठे दो जग पाए सिरजन हारे लेखा मंगे बाणिया संग ना कोई पया बेबा माल जोबन तन चोड वजे सा करण करीम ना जातो करता तिल पीड़े ज्यो कानिया खुश खुश लेंदा वस्त पराई वेखे सुने तेरे नाल खुदाई दुनिया लब पया खात अंदर अगली गल ना जानिया जम जम मरे मरे फिर जमे बहुत सजाए पया देश लम्मे जिनकी तात से ना जानी अंदा ता दुख सह प्राणिया खालक था वो पुला मुठा दुनिया खेल बुरा रुठ तुठा सिदक सबूरी संत ना मिलियो वत्ते आपन पानिया मौला खेल

आप उपाय पतिना, आपे पौन पानी वैसंतर, आपे मेल मिलाई है, आपे सतसूरा पूरो पूरा, आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जोहे न साके साचे स्यों लिवला।

आपे पवर फुल फल तरवर, आपे जल थल सागर सरवर, आपे मच कच करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है। आपे दिन आपे ही रहनी, आप पति जय गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदिन कट कट शब्द रजाई है। आपे रतन अनूप अमोलो, आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बक्से आपे दे ले पाई है। आपे तनक आपे सरबाना, आपे सुगड़ स्वरूप से आना, कहता बकता सुनता सोई, आपे बनत बनाई है। पौन गुरु पानी पित जाता, उदर संजोगी धरती माता, रैन दिनस दोयदाई दाया, जग खेल खेल आई है। आपे मछली आपे जाला, आपे गऊ आपे रखवाला, सर्व जिया जग जोत तुम्हारी, जैसी प्रभु फुरमाई है। आपे जोगी आपे भोगी, आपे रसिया परम।

प्रबद सहज रस अंतरमाने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता, भगत पाए मन पाई है। आप निरालम गुरुगम ज्ञाना, ज्योति सहित तुझ माहे समाना, नानक नीच पिखिया दर जाते है, मैं दीजे नाम बढ़ाई है। मारू महला पहला, आपे तरती तौल आकाशं, आपे साचे गुण प्रगातं, जति सती संतोखी आपे, आपे कार कमाई है। जिस करना सो कर कर वेखे, कोई न मेटे साचे लेखे, आपे करे कराए आपे, आपे देवड़े आई है। पंच चोर चंचल चित चाले, पर कर जो है कर नहीं पाले, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द पत जाई है। गुरते बूजे त्रिभुवन सूजे, मनसा मार मने स्यों लूजे, जो तुझ सेवे से तुझ ही जे, निरपव बाल सिखाई है। आपे सुर्ग मच पयाला, आपे ज्योत स्वरूपी बाला, जटा विकट विकराल स्वरूपी, रूप न रेख्या काई है। वेद कटे भी पेद न जाता, ना किस मात पिता सुत

कोई न काटे अवगुण मेरे। सुर नर नाथ साहिब सबना सिर पाए मिले पहु जाए है। फूले चूके मार्ग पावे आप पुलाए तू है समझावे। बिन नावे मैं अवर न दिसे नामो गत मित पाई है। गंगा जमुना केल किदारा काशी कांती पुरी द्वारा। गंगा सागर बेणी संगम अठसठ अंक समाई है। आपे सिद्ध साधिक विचारी आपे राजन पंचाकारी। तख्त बह अदली प्रभ आपे परम पेद पौ जाई है। आपे काजी आपे मुल्ला आप अपुल ना कबहू पुल्ला। आपे मेहर दया पत दाता ना किसे को बैराई है। जिस बख्शे तिस देव डियाई सबसे दाता तिल ना तमाई। परपुर तार रहा ने केवल गुप्त प्रगट सब ठाई है। क्या काला ही अगम अपार साचे सिरजनहार मुरार। जिसनो नदर करे तिस मेले मेल मिले मेल आई है। ब्रह्मा विष्णु महेश द्वार उबे सेवे अलख अपार है।

पूंजी साच सच्चे गुण गावा, मैं तर होर न काई है। जुग जुग साचा है भी होसी, कौन न मुआ कौन न मरसी। नानक नीच कहे बेनंती, दर देखूं लिवलाई है। मारू महला पहला, दूजी दुर्मत अन्नी बोली। काम क्रोध की कच्ची चोली, कारवार सहज न जाने छोहर। दिन फिर नींद न पाई है, अंतर अगन जले पड़कारे। मन मुख तक के कुंडा चारे, बिन सतगुर सेवे क्यों सुख पाये। साचे हाथ वडाई है, काम क्रोध अंकार निवारे। सत्सर पंच शब्द संगारे, ज्ञान खड़ग ले मन स्यों लूजे। मन सामन है समाई है, माँ की रकत पिता बिंद तारा। मूरत सूरत कर अपारा, जोत दात जेती सब तेरी। तू करता सब ठाई है, तुझ ही किया जमन मरना। गुर ते समझ पड़ी क्या।

सच नाम सच्ची वडियाई सच है तखत वडाई है। सत युग सत संतोख शरीरा सत सत वरते गहर गंभीरा सच्चा साहिब सच परख है सच है हुक्म चलाई है। सत संतोखी सत गुर पूरा गुर का शब्द मने सो सूरा साची दरगे साच निवासा माने हुक्म रजाई है। सत युग साच कहे सब कोई सच वरते साचा सोई मन मुख साच परम पौ पंजन गुरमुख साच सखाई है। त्रेतह धर्म कला इक चूकी तीन चरण इक दुबदा सूकी गुरमुख होवे सो साच वखाणे मन मुख पचे अवाई है। मन मुख कदे न

कर्म कर्म कर मुक्त मंगाही, मुक्त पदार्थ शब्द सलाही, बिन गुर शब्द मुक्त न होई, परपंच कर परमाई है। माया ममता चोदी न जाई, से छूटे सचकार कमाई, एनस भगत रते।

चीज ना पी जाए, बिन हर गुर किन पत पाई है, कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किन न पाखी, मन मुख कूड़ वरते वरतारा, बिन सतगुर परम न जाई है, सतगुर वे परवाह सिरंदा, ना जमकान ना छंदा बंदा, जो तिस सेवे सो अविनाशी, ना तिस काल संताई है, गुर में आप रखिया करता रे, गुरमुख कोट असंख उधारे, सर्व जिया जग जीवन दाता, निरपव मैल न काई है, सगले जाते गुर पंडारी, आप निरंजन अलखा पारी, नानक साच कहे प्रभ जाते, मैं दीजे साच रजाई है, मारू महला पहला, साचे मेले शब्द मिलाए, जात इस पाना सहज समाए, त्रिभुवन ज्योत करी परमेश्वर।

साचे की लिव गुरमत जाती, मनमुख सोए रहे से लूटे, गुरमुख साबत पाई है। कूड़े आवे कूड़े जावे, कूड़े राती कूड़ कमावे, शब्द मिले से दरगे पैदे, गुरमुख सुरत समाई है। कूड़ मुठी ठगी ठगवाड़ी, ज्यो वाड़ी ओजार उजाड़ी, नाम बिना किस साधना लागे, हर बित्रे दुख पाई है। पोजन साच मिले।

परब न जाए। पच पच मुए अचेत न चेते, अजगर पार लदाई है, बिन बात विरोध है कोई नाही, मैं दिखा लियो तिस्ता लाही। मन तन अर्प मिले जग जीवन, हर स्यो बणत बनाई है, प्रभ की गत मित कोय न पावे, जे को वड्डा कहाए वडाई खावे। साचे साहिब तोट न दाती, सगली तिन्ह उपाई है, वड्डी वड्याई वे परवाहे, आप उपाय दान समाहे। आप दयाल दूर नहीं दाता, मिलिया सहज रजाए है। एक सोगी एक रोग व्यापे, जो किछ करे सो आपे आपे। भगत पाओ गुर की मत पूरी, अनहद शब्द लखाई है। एक नांगे भूखे पवे पवाए, एक हट कर मरे ना कीमत पाए। गत अवगत की सार न जाने, बूझे शब्द कम।

गुरमत छोड़े उजड़ जाई, मन मुख राम न जपे आवाई, पच पच बूढ़े कूड़ कमावे, कूड़ काल बैराई है, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, बूझे हुक्म सोसाज समावे, नानक साच मिले मन पावे, गुरमुख कार कमाई है, मारू मैला पैला, आपे करता पुरख विदाता, जिन आपे आप उपाय पछाता, आपे सतगुर आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नाही दूरे, बूझे गुरमुख से जन पूरे, तिनकी संगत एहन सलाहा, गुर संगत ए बड़ाई है, जुग जुग संत पले प्रभ तेरे, हर गुण गावे रसन रसेरे, उस्तत करें पर हर दुख दालद, जिन नाही चिंत पराई है, ओए जागत रहे न सूते दिसे, संगत कुल तारे साथ परिसे, कलमल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिवलाई है, बूजो हर जन सतगुर बाणी, इहो जो बन सात है देह पुराणी, आज काल मर जाइए प्राणी, हर जप जप हृदय ते आई है, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा, साकत कूड़ पचे मन हो मैं, दोहो मार्ग पचे पचाई है, छोड़ो निंदा तात पर आई, पर पर दज्जे सांत ना आई, मिल सत्संगत नाम सलाहो, आत्म राम सखाई है, छोड़ो काम क्रोध बुरे आई, हों मैं संद छोड़ो लंपटाई, सतगुर शरण परो ता उबरो, क्यों तरिये पवजल पाई है, आगे बिमल नदी अगन बिखेला, तिथे अवर न कोई जियो इकेला, पर अगन सागर दे ले।

साच पछाणो अंदर, दूर नाही देखो करन अंदर, विघन नाही गुरमुख तरकारी, क्यों पव जल पार लंगाई है, देही अंदर नाम निवासी, आपे करता है अविनाशी, ना जियो मरे न मारिया जाई, कर देखे शब्द रजाई है, ओ निर्मल है नाही अंधियारा, ओ आपे तख्त बह सचियारा, साकत कूड़े बंद पवाई है, मर जन में आई जाई है, गुर के सेवक सतगुर प्यारे, कोई बैसे तक सो शब्द विचारे, तत् लहे अंतर्गत जाने, सत्संगत साथ वडाई है, आप तरे जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिस का लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई है, मारू मैला पहला, केते जुग वरते गुबारे, तारी लाई अपर अपारे, तुंदू कार निरालम बैठा, ना तद तंद पसारा है, जुग छत्ती तिने वरताए, ज्यों तिस पाना तिवे चलाए, तिसे सरीक ना दीसे कोई, आपे अपर अपारा है, गुप्ते बूजो जुग तत्वारे, कट कट वरते उदर मजारे, जुग जुग एका एकी वरते, कोई बूजे गुर विचारा है, बिंद रक्त मिल पिंड सरिया, कौन पानी अग्नि मिल गिया, आपे चोज करे रंग महली, होर माया मोह पसारा है, गर्भ कुंडल में उर्द त्यानी, आपे जाने अंतर जामी, सास सास सच नाम समाले, अंतर उदर मजारा है, चार पदार्थ ले जग आया, शिव शक्ति करवा

पर जो बन मर जाए के की जाए, मेरा मेरा कर रोवी जाए, माया कारण रोए विगुचे, त्रिग जीवन संसार आहे, काली हुफुन तोले आए, विणना में गत गया गवाए, दुर्मत अंगला बिनस बिनासे, मुठे रोए पुकारा है, आप विचार न रोवे कोई, सतगुर मिले ता सोजी होई, बिन गुर बजर कपाट न कूले, शब्द मिले निस्तारा है, बिर्द पया तन छीजे देही, राम न जपई अंत स्नेही, नाम विसार चले मुँह काले, दरगे झूठ खुआरा है, नाम विसार चले कूड़ियारो, आवत जात पड़े सिर छारो, सौरड़े कर वास न पाए, पेयड़े सिर मारा है, खाजे पैजे रली करीजे, बिन अब पगती बाद मरीजे, सर अफसर की सार न जाने, जम मारे क्या चारा है, परवृत्ति नरवृत पछाने, गुर के संग शब्द कर जाने, किसी मंदा आँख न चले, सच थरा सच यारा है, साच बिना दर्श जय न कोई, साच शब्द

जय पत होई आपे बख्श लए तिस पावे हों मैं गर्भ निवारा है गुर कृपा ते हुकम पछाने जुगे जुगंतर की बिद जाने नानक नाम जपो तर तारी सत तारे तारण हारा है मारू मैला पहला हरसा मीत नाही मैं कोई जिन तन मन दिया सुरत समोई सर्व जिया प्रतपाल संभाले सो अंतर दाना बीना है गुर सरवर हम हंस प्यारे सागर में रतन लाल बहु सारे मोती मानक हीरा हर जस दावत मन तन पीना है हर अगम अगाओ अगाद निराला हर अंत न पाये गुर गोपाला सतगुर मत तारे तारण हारा मेल ले रंग लीना है सतगुर बाजो मुक्त किने ही ओ आद जुगादि राम स्नेही दरगे मुक्त करे कर कृपा बक्से अवगुण की नाहे सतगुरु दाता मुक्त कराए सब रोग गवाए अमृत रख पाए जम जागात नाही कर लागे।

श्रेष्ठ उपाय रह प्रभ छाजे, पौन पानी बैसंतर गाजे, मनुआ डोले दूत संगत मिल, सो पाए जो किछ कीना है, नाम विसार दोख दुख सही है, हुकुम पया चलना क्यों रही है, नरक कूप में गोते खावे, जो जलते बाहर मीना है, 84 नरक साकत पोगाये, जैसा की तै तैसो पाये, सतगुर बाजो मुक्त न होई, केत बांदा ग्रफ दीना है, खंडे तार गली अत पीड़ी, लेखा ली जय तिल जो पीड़ी, मात पिता कलत्र फुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त न कीना है, मीत सके केते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त पराए।

ना है, हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लहे जन पूरे, क्यों समदर्शी की ना है, प्रभ बेअंत गुरमुख को पावे, गुर कै शब्द मन को समझावे, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो।

असुर संहारण राम हमारा, कट कट रमैया राम प्यारा, नाले अलख ना लखिए मूले, गुरुमुख लिख विचारा है। गुरुमुख साधु शरण तुम्हारी, कर कृपा सब पार उतारी, अगन पानी सागर अत गहरा, गुरु सतगुरु पार उतारा है। मन मुख अंगले सोजी नाही, आवे जाए मरे मर जाही, पूरब लिखिया लेख ना मिटे, जमदर अंध खुआ।

कनेरे नरक पथे अज्ञान अंधेरे कर्म राय की बाकी लीजै दिन हर का नाम विसारा है सूरज तपे अगन बिख चाला अपत पशु मन मुख बेताला आशा मनसा कूर कमावे रोग बुरा बुरे आ रहा है मस्तक पार कलर सिर पारा क्यों कर पव जल लंगस पारा सतगुरु बोहित आप जुगादी राम नाम निस्तारा है पुत्र कलत्र जग हेत प्यारा माया मोह पसरिया पाफारा जम के फाहे सतगुरु तोड़े गुरमुख तत् विचारा है कूड़ मुठी चाले बहुराही मन मुख दाजे पर पाही अमृत नाम गुरु वरदाना नाम जपो सुख सारा है सत गुर तुठा थच दृढ़ाए सब दुख मेटे मार्ग पाए कंडा पाए ना गडई मूले जिस सतगुर राखण हारा है खेहू खेर लै तन छीजे मन मुख पाखर सैल न पीजे करण पलाव करे बहु तेरे नरक सुरग अवतारा।

कूकर सूकर कहिए कूड़ियारा, पौक मरे पौ पौ पौहारा, मनसा चूठे कूड़ कमावे, दुर्मत दरगे हारा है। सतगुरु मिले तमनुआ टेके, राम नाम दे शरण परे के, हर तन नाम अमोलक देवे, हर जप दरगे प्यारा है। राम नाम साधु शरणाई, सतगुरु बचनी गत मित पाई, नानक हर जप हर मन।

राम जपो अंतर्गत प्याने, लालच छोड़ रचो अपरंपर, क्यों पावो मुक्त द्वारा है। जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख जाहे दुखा फुन आ गए। राम नाम जप गुरमुख जीड़े, एहो परम तत् विचारा है। हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। ऐनस राम रहो रंग राते, एहो जप तप संजम सारा है। राम नाम गुरबचनी बोलो, संत सभा में ए रस कोलो। गुरमत खोज लहो कर अपना, बौड़ना गर्व मजारा है। सच तीरथ नावो हर गुण गावो, तत् विचारो हर लिवलावो। अंतकाल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। सत गुर पुरख दाता वरदाना, जिस अंतर साच सो शब्द समाना। जिसको सतगुर मेल मिलाए, तिस चूका जम पै पारा है। पंच तत् मिल काया कीनी, किसमें राम रतन लै चीनी। आत्म राम राम है आत्म, हर पाये शब्द विचारा है। सत संतोख रहो जन पाई, खिमा गहो सतगुर शरणाई। आत्म चीन पर आत्म चीनो, गुर संगत के निस्तारा है। साकत पूर कपट महते का, कहनत निंदा करे अनेका। बिन सिमरन आवे फुन जावे, गर्व जोनी नरक मजारा है। साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबू मुके। बाकी तर्म राय की लीजे, फिर अफरियो पार असारा है। बिन गुर साकत कहो को तरिया, हो मैं करता पव जल परया। बिन गुर पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। गुर की दात न मेटे कोई, जिस बख्शे तिस तारे सोई। जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। गुर ते फूले आवो जावो, जन्म मरो फुन पाप कमावो। साकत मूर अचेत न चेते, दुख लागे ता राम पुकारा है। सुख दुख पूर्व जन्म के किए, सो जाने जिन दाते दिए। किसको दोष दे तू प्राणी।

चाले बिखला दे चार बिकार आहे। हर की भगत करो जन पाई अकथ कथो मन मने समाई। उठ चलता ठाक रखो कर अपने दुख काटे काटन हारा है। हर गुरु पूरे की ओट पराती गुरमुख हर लिव गुरमुख जाती।

तुम्हारी। तू समरथ दयाल मुरारी, तेरे चोज न जाने कोई। तू पूरा पुरख विदाता है, तू आद जुगाद करें प्रतपाला। खट खट रूप अनूप दयाला, ज्यों तुद पावे तिवे चलावे। सब तेरो किया कमाता है, अंतर ज्योत पली जग जीवन। सब कट फो गए हर रस पीवन, आपे ले वे आपे दे वे। तिहो लोई जगत पित दाता है, जगत उपाय खे

काला, कोई गुरमुख बूझे शब्द निराला, साकत दुर्मत डूबे दाजे, गुर राखे हर लिव राता है, अब तेज वाए पृथ्वी आकाशा, तिन में पंच तत् करवासा, सतगुर शब्द रहे रंग राता, तज माया हो मैं प्राता है, इव मन पीजे शब्द पति जय, बिन नावे क्या टेक टिकी जय, अंतर चोर मुहे कर मंदर, इन साकत दूत ना जाता है, दुंदर दूत पूत पिहाले, किंचो तान करे बेताले, शब्द सुरत बिन आवे जावे, पत कोई आवत जाता है, कूड़ कलर तन पत में टेरी, बिन नावे कैसी पत तेरी, बांदे मुक्त नाही जुग चारे, जम कंकर काल पर आता है, जम दर बांदे मिले सजाई, तिस अपराधी गत नहीं काई, करण पलाव करे बिललावे, ज्यो कुंडी मीन पर आता है, साकत फांसी पड़े अकेला, जम वस्किया अंध दुहेला, राम नाम बिन मुक्त न सूजे, आज काल पच जाता है, सतगुर बाज न बेली कोई, एथे उथे राखा प्रभ सोई, राम नाम देवे कर कृपा, क्यों सलले सलल मिलाता है, फूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए, जिस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख पंजन संग सखाता है, गुर की पगत करें क्या प्राणी, ब्रह्म इंद्र महेश ना जानी, सतगुर अलख कहो क्यों लखी है, जिस बख्शे तिसे पछाता है, अंतर प्रेम परापत दर्शन, गुरबाणी स्यों प्रीत सो प्रसन, एनत निर्मल ज्योत सबाई, काट दीपक गुरमुख जाता है, ओजन ज्ञान महारस मीठा, जिन चाख्या तिन दर्शन डीठा, दर्शन देख मिले बैरागी, मन मन सामार समाता है, सतगुर सेवे से प्रधाना, तिन कट कट अंतर ब्रह्म पचाना, नानक हर जस हर जन की संगत दीजे, जिन सतगुर हर प्रभ जाता है, मारू महला पहला, साचे साहिब सिरजन हारे, जिन कर चक्र करे विचारे, आपके करता कर

विण गुरु पूरे तत न पाये, सच सूचे सच रहा है। सब का लाहे सुन सुन आखे, आपे दाना सच पराखे। जिनको नदर करे प्रभ अपनी, गुरमुख सब चलाहा है। सुन सुन आखे कीर्ती बाणी, सुन कहिए को अंत न जाने। जहाँ को अलख लखाए आपे, अकथ कथा बुधता है। जन्मे को वाजे वादाए, सोह लड़े अज्ञानी गाए। जो जन्मे तिस सर पर मरना, सिर्ट पया सिर साहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभ किए, सृष्ट उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते

डाल छोड़ तत मूल पराता मन साचा ओ महा है। हर के लोग नहीं जम मारे ना दुख देखे पंथ करारे, राम नाम कथ अंतर पूजा और न दूजा कहा है। कोड़ न कथने सिफ सजाई।

कर्म तर्म सच हाथ तुम्हारे, वे प्रवाह अखुट पंडार है। तू दयाल कृपाल सदा प्रभ, आपे मेल मिलाएगा, आपे देख दिखावे, आपे आपे थाप उठापे, आपे आपे जोर विछोड़े करता, आपे मार जीवाएगा। जेती है तेती तुद अंदर, देखे आप बैठ बिज मंदर, नानक साच कह बेनंती, हर दर्शन सुख पाएगा, मारू महला पहला दर्शन।

जो किछ करे सो आपन पाणे, लख चौरासी जी उपाय पाणे सह लवाएंदा, जो तिस पावे सो नेचो होवे, मन मुख आप गनाए रोवे, नामो पुल्ला ठौर न पाए, आए जाए दुख पाएंदा, निर्मल काया उजल हंसा, तिस विच नाम निरंजन अंसा, सगले दुख अमृत कर पीवे, बहुर दुख न पाएंदा, बहु साधो दुख प्राप्त होवे, ओगो रोग सो अंत विगोवे, हरखो सोग न मिटई कभू, बिन पाणे परमाएंदा, ज्ञान विहूनी पवे सभाई, साचा रव रहा लिव लाई, निरपौ शब्द गुरु सच जाता, ज्योति ज्योत मिलाएंदा, अटल अडोल अतोल मुरारे, खिन में चाहे फिर उसारे, रूप न रेख्या मित नहीं कीमत, शब्द पेद पति आएंदा, हम दासन के दास प्यारे, साधक साच पले विचारे, मन्ने नाओ सोई जिन जासी, आपके साथ बिड़ाएंदा, पल्ले साच सचे सचियारा, साचे पावे शब्द प्यारा, त्रिभवन साच कला तर थापी, साचे ही पति आएंदा, वड्डा वड्डा आखे सब कोई, गुरु बिन सो जी किरे न होई, साच मिले सो साचे पाए, ना विछड़ दुख पाएंदा, कुरु विचुन्ने ताही रुन्ने, मर मर जन में मोहलत पुन्ने, जिस बख्शे तिस दे वड्याई, मेल न पछोताएंदा, आपे करता आपे पुगता, आपे तृप्ता आपे मुक्ता, आपे मुक्त दान मुक्ति सर।

नानक साच कह बेनंती, मिल साचे सुख पाएंदा मारू महला पहला, अरबद नरबद तुंदू कारा, तरन ना गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन ना चंद ना सूरज, सुन समाद लगाएंदा खानी ना बाणी पौन ना पानी, ओ पत खपत ना आवन जानी, खंड पताल सपत नहीं सागर, नदी ना नीर वहाएंदा ना तद सुरग मच पयाला, दोजक पेत नहीं खै काला, नरक सुरग नहीं।

आर पुरख नहीं जात ना जन्मा ना सो दुख सुख पाएदा ना तद जति सती बनवासी ना तद सिद्ध साधक सुखवासी जोगी जंगम पेख ना कोई ना को नाथ कहाएदा जप तप संजम ना व्रत पूजा ना को आख वखाने दूजा आपे आप उपाय विदसे आपे कीमत पाएदा ना सुच संजम तुलसी माला गोपी कान न गऊ गुआला संत मंत पखंड न कोई ना को वंश बजाएदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसे त्याएदा निंद बिंद नहीं जियो न जिंदो ना तद गोरख ना माचिंदो ना तद ज्ञान प्यान कुल ओपत ना को गणत गणाएदा वर्ण पेख नहीं ब्राह्मण खत्री देव न देहोरा गौ गायत्री होम जग नहीं तीरथ नावन ना को पूजा लाएदा ना को मुल्ला ना को काजी ना को शेख मसाई कहाजी रैयत राव ना हो मैं दुनिया ना को कहन कहाएदा पाओ न पगती ना शिव शक्ति साजन मीत बिंद नहीं रखती आपे साओ आपे वनजारा साचे एवो पाएदा वेद कतेब ना सिमरत शास्त्र पाठ पुराण उदय नहीं आस्त कहता बक्ता आप अगोचर आपे अलख लखाएदा जात पाना ता जगत उपाया बाज कला आदान रहाया ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय माया मोह वधाएदा विरले को गुर शब्द सुनाया कर कर देखे हुक्म सवाया खंड ब्रह्मंड पता।

नानक साच रते बिस्मादी। बिस्म पए गुण गाएंदा मारू मैला पहला, आपे आप उपाय निराला, साचा थान कियो दयाला। पौन पानी अग्नि का बंधन काया, कोट रचाएंदा नौ कर खापे खापन हार है। दसवें वासा अलख अपार है, सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। रव सच दीपक जोत सबाई, आपे कर वेखै वडियाई। जोत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाएंदा। गर्म है हाट पटनवा।

पूरे पंडार है, सर्व कला ले आपे रहया गुरमुख से बुझाएंदा। नदर करे पूरा गुर पेटे, जम जम धार न मारे फेटे, जो जल अंतर कमल बिगासी आपे बिरसते आएंदा। आपे वर्ख है अमृत तारा, रतन जवे हर लाल अपारा, सतगुर मिले ता पूरा पाये, प्रेम पदार्थ पाएंदा। प्रेम पदार्थ ले अमोलो, कभी न काटस पूरा तोलो, सच्चे का व्यापारी होवे सच्चो सौदा पाएंदा। सच्चा सौदा बिरला को पाए, पूरा सतगुरु हृदय मिलाए। गुरमुख होए सो हुकम पछाने, माने हुकम समाएदा। हुक्मे आया हुक्म समाया, हुक्मे दीसे जगत उपाया, हुक्मे सुर्ग मच पयाला, हुक्मे कला रहाएदा। हुक्मे तरती तौल सिर पारंग, हुक्मे पौन पानी गैनारंग, हुक्मे शिव शक्ति करवासा, हुक्मे खेल खिलाएदा। हुक्मे आडाने आगासी, हुक्मे जल फल त्रिभुवन वासी, हुक्मे सास गिरा सदा फुन, हुक्मे देख दिखाएदा। हुक्म उपाए दस अवतारा, देव दानव अगणत अपारा, माने हुक्म सो दरगह पै जाए, साथ मिलाए समाएदा। हुक्मे जुग शक्ति गुदारे, हुक्मे सिद्ध साधक विचारे, आप नाथ नथी सब जाकी, बख्शे मुक्त कराएदा। काया कोट करे महराजा, नेब खवास पला दरवाजा, मिथ्या लोभ नाही करवासा, लब पाप पछताएदा। सत संतोख नगर में कारी, जत सत संयम शरण मुरारी, नानक सहज मिले जग जीवन, गुर सबदी पत पाएदा। मारू महला पहला, सुन कला अपरंपर तारी, आप निरालम अपर अपारी, आपे कुदरत कर कर देखे, सुनो सुन उपाएदा। कौन पानी सुने के साजे, श्रेष्ठ उपाय काया गढ़ राजे, अग्न पानी जियो ज्योत कुमारी, सुनने कला रहाएदा। सुनो ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय, सुनने वर्ते जुग सवाए, इस पद विचारे सो जन पूरा, इस मिलिए परम चुकाएदा। सुनो सपत सरोवर थापे, जिन साजे विचारे आपे, तित सत्सर मनुआ गुरमुख नावे, फिर बहुड़ जोन ना पाएदा। सुनो चंद सूरज गैनारे, किसकी ज्योत त्रिभुवन सारे, सुनने अलख अपार निरालम, सुनने ताड़ी लाएंदा। सुनो तरत आकाश उपाए, बिन थम्मा राखे सच काल पाए, त्रिभुवन साज में खुली माया, आप उपाय खपाएंदा। सुनो खाणी सुनो बाणी, सुनो उपजी सुन समानी, कुछ कुछ चलत किया सिर करते, विस्माद शब्द देखाएंदा। सुनो रात दिन सदोय किए, ओ पत खपत सुखा दुख दिए, सुख दुख ही ते अमर अतीता, गुरमुख निज कर पाएंदा। साम वेद ऋग जुजर असर बन, ब्रह्मे मुख माया है त्रै गुण, ताकी कीमत कह न सके को, त्यों बोले ज्यों बोलाएंदा। सुनो सप्त पताल उपाय, सुनो पवन रखे लिवलाए, आपे कारण किया परंपर, सब तेरो किया कमाएंदा। राज्य तम सत कल तेरी छाया, जन्म मरण हो मैं दुख पाया, जिसनो कृपा करे हर गुरमुख, गुण

गुरमुख समझे रोग न होई, हे गुर की पौड़ी जाने जन कोई, जुग है जुगंतर मुक्त परायण, सो मुक्त पया पत पाएंदा, पंच तत् सुनो परिघासा, दे संजोगी कर्म अभ्यासा, बुरा पला दोई मस्तक लीखे, पाप पुन भी जाएंदा, उत्तम सतगुरु पुरख निराले, शब्द रते हर रसमत वाले, रिद्ध बुद्ध सिद्ध ज्ञान गुरु ते पाये, पूरे पाग मिलाएंदा, इस मन माया को न्यो कनेरा, कोई बूझो ज्ञानी करो निवेरा, आशा मनसा हो।

अंदर जुगत समाई रहो निरालम राया। जग तिस की छाया जिस बाप न माया, ना तिस पैन ना प्राव कमाया। ना तिस ओपत खपत पुल जाती, ओ अजरावर मन पाया। तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। सब संतोख शब्द अतीतल सहज पाए लिवलाया। त्रैवरताए चौथे करवासा, काल विकाल किए इक ग्रासा। निर्मल ज्योत सर्व जग जीवन, गुर अनहद शब्द दिखाया। उत्तम जन संत पले हर प्यारे, हर रस माते पार उतारे। नानक रेण संत जन संगत।

किया, आत्म राम पाए सुख किया, कर्म करतूत अमृत फल लागा, हर नाम रतन मन पाया, ना किस भूख प्यास मन मान्या, सर्व निरंजन कट कट जान्या, अमृत रस राता केवल बैरागी, गुरमत पाए सुवाया, अध्यात्म कर्म करे दिन राती, निर्मल ज्योत निरंतर जाती, सब दिर साल रसन रस रसना, बेन रसाल बजाया, बेन रसाल बजावे सोई, जाकी त्रिभुवन सोजी होई, नानक बूजो ए विद गुरमत, हर राम नाम लिवलाया, ऐसे जन विरले संसारे, गुर शब्द विचारे रह निरारे, आप तरह संगत कुल तारे, तिन सफल जन्म जग आया, कर दर मंदर जाने सोई, जिस पूरे गुर ते सोजी होई, काया गढ़ महल मैली प्रभ साचा, सच साचा तख्त रचाया, चतुर्दश हाथ दीवे दो साखी, सेवक पंच नाही बिचाखी, अंतरवस्त अनूप निर्मोलक, गुर मिले हर तन पाया, तख्त बह तख्त की लायक, पंच समाए गुरमत पायक, आद जुगादी है भी होसी, सहसा परम चुकाया, तख्त सलाम होवे दिन राती, क्यों सात वडाई गुरमत लिव जाती, नानक राम जपो तर तारी, हर अंत सखाई पाया, मारू मैला पहला, हर तन संचो रे जन पाई, सतगुरु सेव रहो सरनाई, तस्कर चोर ना लागे ताको, तुन उपजे शब्द जगाया, तू एकंकार निरालम राजा, तू आप सवारे जन के काजा, अमर अडोल अपार अमोलक, हर अस्थिर स्थान सुहाया, देही नगरी उत्तम थाना, पंच लोक वसे प्रदाना, ऊपर एकंकार निरालम, सुन समाद लगाया, देही नगरी नौ दरवाजे, सिर सिर करने हारे साजे, दसवें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया, पुरख अलेख सच्चे दीवाना, हुक्म चलाए सच निशाना, नानक खोज लहो कर अपना, हर आत्म राम नाम पाया, सर्व निरंजन पुरख सुजाना, अगल करे गुर ज्ञान समाना, काम क्रोध ले गर्दन मारे, हों मैं लोभ चुकाया, सच्चे थान वसे निरंकारा, आप पछाने शब्द विचारा, सच्चे महल निवास निरंतर, आवन जान चुकाया, ना मन चले न पौन उड़ावे, योगी शब्द अनाद वावे, पंच शब्द चुनकार निरालम, प्रभ आपे वाय

दुख पै पंजन प्रभ अविनाशी, रोग कटे साथी जम फासी, नानक हर प्रभ सो पौ पंजन, गुर मिले हर प्रभ पाया, काले कवल निरंजन जाने, बूझे कर्म सो शब्द पछाने, आपे जाने आप पछाने, सब किसका चोर सवाया, आपे साव आपे वनजारा, आपे परखे परखनहारा, आपे कस कसवटी लाए, आपे कीमत पाया, आप दयाल दया प्रवतारी, कट कट रव रहा बनवारी, पुरख अतीत वसे ने केवल, गुरु पुरख है पुरख मिलाया, सब दाना बीना गर्भ गवाए, दूजा मेटे एक दिखाए, आशा माए निरालम जोनी, अकुल निरंजन गाया, हों में मेट शब्द सुख होई, आप विचारे ज्ञानी सोई, नानक हर जस हर गुण लाहा, सत्संगत सच फल पाया, मारू मैला पहला, सच कहो सच्य कर रहना, जीवत मरो पव जल जग तरना, गुर बोहित गुर बेड़ी तुल्हा, मन हर जप पार लंगाया, हों मैं ममता लोभ विनाशन, नौ दर मुक्ते दसवें आसन, ऊपर परे परे अपरंपर, जिन आपे आप उपाया, गुरमत ले वो हर लिव तरिये, अकल गाये जम के क्या डरिये, जत जत देखो तत तत तुम ही, और ना दुतिया गाया, सच हर नाम सच है सरना, सच गुर शब्द जिते लग तरना, अकत कठ है देख है अपरंपर, सुन गर्व ना जो नी जाया, सच बिन सत संतोख ना पावे, बिन गुरु मुक्त ना आवे जावे, मूल मंत्र हर नाम रसायन, कहो नानक पूरा पाया, सच बिन पाव जल जाए न तरिया, एहो समुद्र अथा मां बिक परिया, रह अतीत गुरमत ले ऊपर, हर निरपो कै कर पाया, झूठी जग हित की चतराई, बिलम न लागे आवे जाई, नाम विसार चले अभिमानी, उपजे बिन खपाया, उपजे बिन से बंधन बंदे, हो मैं माया के गल फंदे, जिस राम नाम नाही मत गुरमत, सो जमपुर बंद चलाया, गुर बिन मोख मुक्त क्यों पाये, बिन गुर राम नाम क्यों त्याये, गुरमत लेहो तरो पवज उतर, मुक्त पहे सुख पाया, गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे, गुरमत लेहो परम पद पाये, नानक गुर परम चुकाया, गुरमत लेहो तरो सच तारी, आत्म चीनो हृदय मुरारी, जम के साहे काटे हर जप अकल निरंजन पाया, गुरमत पंच सखे गुर पाई, गुरमत अगन निवार समाई, मनमुख नाम जपो जग जीवन, रिद अंतर अर्थ लखाया, गुरमुख बूझे शब्द पति जय, उस्तक निंदा किसकी की जय, चीनो आप जपो जगदीशर, हर जगन्नाथ मन पाया, जो ब्रह्मंड खंड सो जानो, गुरमुख बूझो शब्द पछाणो, कट कट पोगे पोगन हारा, रह अतीत सवाया, गुरमत बोलो हर जस सूचा, गुरमत आखी देखो ऊचा, श्रवणी नाम सुने हर बाणी, नानक हर रंग रंगाया, मारू मेला पहला, काम क्रो

देख अदित रहो लिव लागी। सब त्रिभवन ब्रह्म सबाया, अमृत रस पाए तृष्णा पौ जाए, अनपौ पद पावे आप गवाए। ऊंची पदवी ऊंचो ऊंचा, निर्मल शब्द कमाया, अदृष्ट अगोचर नाम अपारा। अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग हर जस दी जय। हर जपिए अंत न पाया, अंतर नाम प्राप्त ही।

जले संसारा, जल जल खपे बहुत विकारा, मन मुक्त और न पाए कबहू, सतगुरु बूझ बुझाई है, सतगुरु सेवन सेवन पागी, साचे नाम सदा लिव लागी, अंतर नाम रविया ने केवल, कृष्णा शब्द बुझाई है, सच्चा शब्द सच्ची है बाणी, गुरमुख विरले किने पछाणी, सच्चे शब्द रते बैरागी, आवन जान रहाई है, शब्द बुझे सो मैल चुकाए, निर्मल नाम वसे मन आए, सतगुर अपना सभी सेवे, हों मैं विच्चों जाई है, गुर ते बुझे तांदर सूझे, नाम विहूणा कत्कत लूझे, सतगुर सेवे की वडियाई, कृष्णा फूक गवाई है, आपे आप मिले ता बुझे, ज्ञान विहूणा किछु न सूझे, गुर की दात सदा मन अंतर, बाणी शब्द बजाई है, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाया।

नानक दास कहे बेनंती, पीठिया नाम दर पाई है मारू महला तीजा, एको एक वर्त है सब सोई, गुरमुख किरला बूझे कोई, एको रव रहा सब अंतर, किस दिन अवर न कोई है, लख चौरासी जी उपाय, ज्ञानी चानी आठ सुनाए, सबना रिजक समाए आते, कीमत होर न होई है, माया मोह अंध अंधारा, हौ मैं मेरा पसरिया पासारा, अन दिन जलत रहे दिन राती, गुर बिन शांत न होई है, आपे जोड़ विछोड़े आपे, आपे थाप उठापे आपे, सच्चा हुक्म सच्चा पासारा, होरन हुक्म ना होई है, आपे लाए ले सो लागे, गुर प्रसादी जम का पौ पागे, अंतर सबद सदा सुखदाता, गुरमुख बूझे कोई है, आपे मेले मेल मिलाए, पूर्व लिखिया को मेटना ना जाए, हम दिन भगत करे दिन राती, गुरमुख सेवा होई है, सतगुर सेव सदा सुख जाता, आपे आए मिलिया सबना का।

जय अंग दिन नाम रवे दिन राति मिल प्रीतम सुख होई है मन मुक्तात दूजे है लागा जन्मत की नाम वो अपागा आवत जात बिरसा जन्म गवाया बिन गुरु मुक्त ना होई है काया कुसुद हो मैं मल लाई।

माया संगारे, मर मर जम में शब्द ना विचारे, अंतर माया मोह गुबारा, जो सुपने शुद्ध ना होई है। एक पंचा मार शब्द है लागे, सतगुर आए मिलियावट पागे, अंतर साथ रहे रंग राते, सहज समावे सोई है। गुर की चाल गुरु ते जापे, पूरा सेवक शब्द जापे, सदा शब्द रवे कट अंतर, रसना रस चाखे सच सोई है। हम मैं मारे शब्द निवारे, हर का नाम रखे उधारे, एक बिन हो होर ना जाना, सहजे होए सो होई है। बिन सतगुर सहज किने नहीं पाया, गुरमुख बूझे सत समाया, सच्चा सेव शब्द सच राते, हो मैं सब देखोई है। आपे गुण

साची ते पत होई है। मारू महला तीजा जग जीवन साचा एको दाता। गुर सेवा से शब्द पछाता एको अमर एका पत साही। जुग जुग सिरकार बनाई है सोजन निर्मल जिन आप पछाता। आपे आए मिलिया सुखदाता रसना शब्द रसी गुण गावे। दर्शा चै पत पाई है गुरमुख नाम मिले वड्याई। मन मुख निंदक पत

पाए सुबाई है। पर पंडित अवरा समझाए, पर जलते की खबर न पाए, बिन सतगुरु से वे नाम न पाई है, परखा के सांत न आई है। एक पसम लगाए फिर पेक तारी, बिन शब्द हूँ मैं किन मारी, हम दिन जलत रहे दिन राती, परम पेक परमाई है। एक गृह कुटुम्ब में सदा उदासी, शब्द मोए हर नाम निवासी, हम दिन सदा रहे रंग राते, तह पाए भगत चित लाई है। मन मुख निंदा कर कर विगुता, अंतर लोभ पहुँचे जिस कुत्ता, जम काल तिस कदे न छोड़े, अंत गया पछताई है। सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नाम है मुक्त न पावे कोई, बिन सतगुरु को नाम न पाए, प्रभ ऐसी बंत बनाई है। एक सिद्ध साधिक बहुत विचारी, एक एनस नाम रते निरंकारी, जिसनो आप मिलाए सो बूझे, भगत पाए पहु जाई है। स्नान दान करे नहीं बूझे, एक मनुआ मार मने सो लूझे, साचे शब्द रते एक रंगी, साचे शब्द मिलाई है। आपे सिरजे दे वड्याई, आपे पाने दे मिलाई, आपे नदर करे मन वस्या, मेरे प्रभु क्यों फुरमाई है। सतगुरु सेवे से जन साचे, मन मुख सेव न जानन काचे, आपे करता कर कर वेखे, जो पावे त्यों लाई है। जुग जुग साचा एको दाता, पूरे पाग गुर शब्द पछाता, शब्द मिले से विछड़े नाही, नदरी सहज मिलाई है। हूँ मैं माया मैल कमाया, मर मर जम मैं दूजा पाया, बिन सतगुरु सेवे मुक्त न होई, मन देखो लिव लाई है। जो तिस पावे सोई करसी, आपो हुआ ना किछ होसी।

सुफी का मुख बोले दुर्मत नाम न पाई है अवगण्यारी कंस न पावे मन की जूठी जूठ कमावे फिर का साओ न जाने मूरख बिन गुरु बूझ न पाई है दुर्मत खोटी खोट कमावे सिगार करे फिर खत्म न पावे गुणवंती सदा पिर रावे सदगुरु मेल मिलाई है आपे हुक्म करे सब लेख है इकना बख्श ले तुर लेख है हम दिन नाम रते सच पाया आपे मेल मिलाई है हम मैं तात मुह रस लाई गुरमुख लिव साची सहज समाई आपे मेल है आपे कर वेख है बिन सतगुरु बूझ न पाई है एक शब्द विचार सदा जन जागे एक माया मोह सोए रहे अपागे आपे करे कराए आपे होर करना किछु न जाई है काल मार गुर शब्द निवारे हर का नाम रखे उधारे सतगुर सेवा के सुख पाया हर के नाम समाई है दूजे पाए फिरे देवानी माया मोह दुख माए समानी बहुते पेक करे न पाए बिन सतगुर सुख न पाई है किसनो कहिए जा आप कराए जित पावे तित राह चलाए आपे मेहरवान सुखदाता ज्यो पावे तिह चलाई है आपे करता आपे पुगता आपे संयम आपे जुगता आपे निर्मल मेहरवान मधुसूदन जिसदा हुक्म ना मेटिया जाई है सेवड पागी जिन्नी एको जाता कट कट वस रहा जग जीवन दाता एक है गुप्त प्रकट है आपे गुरमुख परम पहुँचाई है गुरमुख हर

अंतर नाम शब्द पछाता जिस तू दे सोई जन पाए। नानक नाम वडाई है मारू महला तीजा सत्साला ही गहर गंभीर है सब जग है तिस ही कैचीर है सब कट भोग वै सदा दिन राती आपे सुख निवासी है सच्चा साहिब सच्ची नाई गुरु प्रसादी मन वसाई आपे आए वस्या कट अंतर टूटी जम की फांसी है किस सेवी तै किस सलाही सतगुरु सेवी शब्द सलाही सच्चे शब्द सदा मत उत्तम अंतर कमल प्रगासी है देही काची कागद मिकदारा बूंद पवे बिन सह कहत न लागे बारा कंचन काया गुरमुख बूझे जिस अंतर नाम निवासी है सच्चा चौका सुरत की कारा हर नाम पोजन सच आधारा सदा तृप्त पवित्र है पावन जित कट हर नाम निवासी है हों तिन बलिहारी जो साचे लागे हर गुण गावे अंदिन जागे साचा सुख सदा तिन अंतर रसना हर रस राशी है हर नाम चेता अवरना पूजा एक तो सेवी अवरना दूजा पूरे गुर सब सच दिखाया सच्चे नाम निवासी है परम परम जोनी फिर आया आप पूला जा खसम पुलाया हर जियो मिले ता गुरमुख बूझे चीने शब्द अविनाशी है काम क्रोध परे हम अपराधी क्या मुँह ले बोले ना हम गुण ना सेवा सादी डुबदे पाथर मेल ले हो तुम आपे साथ नाम अविनाशी है ना कोई करे न करने जोगा आपे करे करावे तो होएगा आपे बख्श लें सुख पाए सभी नाम निवासी है तिर तन तरती शब्द बीज अपारा हर साचे सेती वणज अपारा सच तन जमया कोट न आवे अंतर नाम निवासी है हर जियो अवगणया रे नो गुण की जय आपे बख्श लै नाम दी जय गुरमुख होवे सो पट पाए इकत नाम निवासी है अंतर हर तन समझ न होई गुर प्रसादी बूझे कोई गुरमुख होवे सो तन पाए सभी नाम निवासी है अनलवाओ परम फुलाई माया मोह सुध न काई मनमुख अंधे किछु न सूझे गुरमत नाम प्रगासी है मनमुख हो मैं माया सूते अपना कर न संभाले अंत विगूते पर निंदा करें बहु चिंता जाले दुखे दुख निवासी है आपे करते कार कराई आपे गुरमुख देव

मन मुख ना बूझे फिर आणी, जम काल कड़ी मोत निहाले, अंदिन आरजा छी जय हे, अंतर लोभ करे नहीं बूझे, सिर ऊपर जम काल ना सूझे, ऐठे कमाना सो अग्गे आया, अंत काल क्या की जय हे, जो सच लागे तिन साची सोए, दूजे लागे मन मुख रोए, दुहा सिरिया का खत्म है आपे, आपे गुण में पी जय हे, गुर के शब्द सदा जन सो है, नाम रसायन इव मन मोह है, माया मोह मैल पतंग ना लागे, गुरमति हर नाम पी जय हे, सब नाम विच वरते एक सोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, हऊ मैं मार सदा सुख पाया, नाय साचे अमृत पी जय हे, किलविख दुख निवारण हारा, गुरमुख सेविया शब्द विचारा, सब किस आपे आप वरते, गुरमुख तन मन पी जय हे, माया अगन जले संसारे, गुरमुख निवारे शब्द विचारे, अंतर सांप सदा सुख पाया, गुरमति नाम ली जय हे, इंद्र इंद्रासन बैठे जम का पौ पावे, जमना छोड़े बहु कर्म कमावे, सतगुरु पेटे ता मुक्त पाये, हर हर रसना पी जय हे, मनमुख अंतर पगत न होई, गुरमुख पगत शांत सुख होई, पवित्र पावन सदा है बाणी, गुरमत अंतर पी जय हे, ब्रह्मा विष्णु महेश विचारी,

वेद पढ़े हर नाम न बूझे, माया कारण पर पढ़ लूजे, अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर तरी जय हे, वेद बाद सब आंख बखाने, ना अंतर पीजे ना शब्द पछाने, पुन पाप सब वेद दृढ़ाया, गुरुमुख अमृत पीजे हे, आपे साचा एको सोई, तिस बिन दूजा अवर न

सच्चे सच्चा सत रचाया, निज कर वस्या तिथे मोह न माया, सद ही साथ वस्या कट अंतर, गुरमुख करनी सारी है। सच्चा सौदा सच वापारा, ना तिथे परम ना दूजा पसारा, सच्चा तन खटिया कदे तोत ना आवे, बूझे कोई चारी है। सच्चे लाए से जन लागे, अंतर शब्द मस्तक।

गुरमत ऊंचो ऊंची पौड़ी, ज्ञान रतन हूँ मैं मारी है, माया मोह शब्द जलाया, सच मन वस्या जा सुद पाया, सच्चे की सब सच्ची करनी, हूँ मैं सिखाने वारी है, माया मोह सब आपे कीना, गुरमुख विरले किन्ही चीना, गुरमुख वो वैसो सच कमावे, साची करनी सारी है, कार कमाई जो मेरे प्रभु पाई, हूँ मैं तृष्णा शब्द बुझाई, गुरमत सद ही अंतर शीतल, हूँ मैं मार निवारी है, सच लगे तिन सब किस पावे, सच्चे शब्दे सच सुहावे, ऐसे साचे से दर साचे, नगरी नदर सवारी है, बिन साचे जो दूजे लाया, माया मोह दुख सवाया, बिन गुर दुख सुख जाते नाही, माया मोह दुख पारी है, साचा शब्द जिना मन पाया, पूरब लिखिया तिनी कमाया, सच्चो सेवै सच प्यावे, सच रते विचारी है, गुर की सेवा मीठी लागी, अन दिन सुख सहज समाधि, हर हर करत्या मन निर्मल होआ, गुर की सेव प्यारी है, से जन सुखिए सतगुर सच्चे लाए, आपे पाने आप मिलाए, सतगुर राखे से जन उभरे, होर माया मोह खुआरी है, गुरमुख साचा शब्द पछाता, ना तिस कुटुंब ना तिस माता, एको एक रविया सब अंतर, सब ना जिया का आधारी है, हूँ मैं मेरा दूजा पाया, किछ ना चले सुर खत्म लिख पाया।

लातीजा आपे आप उपाय उपन्ना सब में वर्त है एक प्रसन्ना सबना सार करे जग जीवन जिन अपना आप पछाता है जिन ब्रह्मा विष्णु महेश उपाय फिर सिर संदे आपे लाए जिस पावे तिस आपे मेले जिन गुरुमुख एको जाता है आवा गौण है संसारा माया मोह बहुत चित विकारा फिर साचा साला ही सदही जिन गुर का शब्द पछाता है एक मूल लगे ओनी सुख पाया डाली लागे तिन्नी जन्म गवाया अमृत फल तिन जन को लागे जो बोले अमृत बाता है।

जो इच्छे सोई फल पाए, जो रंग मजी ठहराता है, मनमुख ज्ञान कते न होई, फिर आवे ठौर न कोई, गुरुमुख ज्ञान सदा साला है, जुग जुग एक हो जाता है, मन मुख कार करे सब दुख सवाए, अंतर शब्द ना ही क्यों डर जाए, गुरुमुख शब्द वसे मन साचा, सद सेवे सुख दाता है। जह देखा तू सबनी थाई, पूरे गुर सब को जी पाई, नामो नाम त्याय सदा सद।

जय इतना गुरुमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुरु बूझ बुझाई, बिन नामे मुक्त किने ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह तेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साज सलाहे साज समावे, जिन गुरुमुख एक को

आपे करता सब जिस करना, जी जंग सब तेरी सरना। आपे गुप्त वर्त सब अंतर, गुर कै शब्द पछाता है। हर के भगत परे पंडारा, आपे बसे शब्द।

कर कृपा आप पछाता है। जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके तेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुग जुग एक हो जाता है। माया मोह सब जगत उपाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुड पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है। पाप पुनवर्ते संसारा, हर्ष सोग सब दुख है पारा, गुरुमुख हो वह सो सुख पाए, जिन गुरुमुख नाम पछाता है। कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मोख द्वारा, पूरब लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है। माया मोह हर क्यों चित न लागे, दूजे पाए कणा दुख आगे, मनमुख परम पुले पेख सारी, अंत काल पछताता है। हर कै पाने हर गुण गाए, सब किल विख काटे दुख सवाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर तेती मन गाता है। जिसनो नजर करे सो गुण निद गाए, हों मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण काहे को दाता, गुरुमुख विरली जाता है। मेरा प्रभु निर्मल अत अपारा, आपे मिले गुर शब्द विचारा, आपे बक्से सच दृढ़ाए, मन तन साचे राता है। मन तन मेला विच जोत अपारा, गुरमत बूझे कर विचारा, हों मैं मार सदा मन निर्मल, रसना सेव सुख दाता है। गढ़ काया अंदर बहु हट बजारा, तिस विच नाम है अत अपारा, गुर कै शब्द सदा दर्शो है, हों मैं मार पछाता है। रतन अमोलक अगम अपारा, कीमत कवन करे बेचारा, गुर कै शब्दे तोल तोलाए, अंतर शब्द पछाता है। सिमरत शास्त्र बहुत विस्तारा, माया मोह पसरिया पासारा, मूर्ख पढ़े शब्द ना बूझे, गुरमुख विरले जाता है। आपे करता करे कराए, सच्ची बाणी सच दृढ़ाए, नानक नाम मिले वड्याई, जुग जुग एक हो जाता है। मारू महला तीजा, को सच सेवियो सृजन हारा, सबदे दुख निवारण हारा, अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, आपे अगम अथाहा है। आपे सच्चा सत वरताए, एक जन सच है आपे लाए, साचो सेवे साच कमावे, नामे सच समाहा है। तुर पगता मेले आप मिलाए, सच्ची पगती आपे लाए, साची बाणी सदा गुण गावे, इस जन्मे का लाहा है। गुरुमुख वणज करे पर आप पछाणे, एक बिन को अवर न जाने, सच्चा साव सच्चे वन जारे, पूंजी नाम विसाहा है। आपे साजे सृष्ट उपाए, विरले को गुर शब्द बुझाए, सतगुर सेवे से जन साचे, काटे जम का फाहा है। पन्ने करे सवारे साजे, माया मोह दूजे जंत पाजे, मन मुख फिरे सदा अंध कमावे, जम का जेवड़ा गल फाहा है। आपे बख्शे गुर सेवा लाए, गुरमती नाम मन वसाए, अंदर नाम त्याए साचा, इस जग में नामो लाहा है। आपे सच्चा सच्ची नाई, गुरमुख देवे मन वसाए, जिन मन वस्या से जन सो है, तिन सिर चूका कहा है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, गुर प्रसादी मन वसाई, सदा शब्द सलाही गुण दाता, लेखा कोई न मंगे ताहा है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा, अंत न पावे अलख वेवा, जिनको नजर करे तू अपनी, गुरमुख अलख लखाहा है। पूरे सतगुर सो जी पाई, एको नाम मन वसाई, नाम जपी तै नाम त्याई, महल पाए गुण गाहा है। सेवक सेवे मन हुक्म अपारा, मन मुख हुक्म न जाने सारा, हुक्मे मन्ने हुक्मे वड्याई, हुक्मे वे परवाहा है। गुर प्रसादी हुक्म पछाने, तावत राखे।

सबद सलाह है से जन निर्मल निज करवा साता है सदा भगत तेरी शरणाई अगम अगोचर कीमत नहीं पाई ज्यों तुद पावे त्यों तू राखे गुरु।

सच देवो सच समाहे मारू मैला तीजा। सतगुर सेवन सेवड पागी अंदिन सात नाम लिव लागी। सदा सुख दाता रव्या कट अंतर शब्द सच्चै ओ माहे। नदर करे ता गुरु मिलाए हर का नाम मन वसाए। हर मन वस्या सदा सुख दाता सबदे मन ओ माहे। कृपा करे ता मेल मिलाए हो मैं ममता शब्द जलाए। सदा मुक्त रहे इक रंगी नाही किसे नाल कहा है। बिन सतगुर सेवे कोर अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा। जो शब्द राते महा बैरागी सो सच शब्द लाहा है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वर्ताया। गुरमुख होवे सो अलिप्तो वर्ते मनमुख का क्या बेसाहा है। से मनमुख जो शब्द ना पछाने गुर के तय की सार न जाने। तै बिन क्यों निरपो सच पाये जम काट लेगा सहा है। अफ्रियो जम मारिया ना जाई गुर के शब्दे नेर ना आई। शब्द सुने ता दूरों पागे मत मारे हर जियो वे परवाह है। हर जियो की है सब फिरकारा एहो जम क्या करे विचारा। हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मे कटदा सहा है। गुरमुख साचे किया आकारा गुरमुख पसरिया सब पासारा। गुरमुख होवे सो सच बूझे शब्द सच्चे सुख ताहा है। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुगचारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे ना जन्मे गुरमुख गुरमुख शब्द समाहा है। गुरमुख नाम शब्द साला है अगम अगोचर वे

आए गुरमुख हो वह सो नाम बूझे काटे दुर्मत साहा है गुरमुख उपजे साज समावे ना मर जमे ना जूनी पावे गुरमुख सदा रहे रंग राते अंदिन लें दे लाहा है गुरमुख भगत सोहे दरबारे सच्ची बाणी सब सवारे अंदिन गुण गावे दिन राती सह छेती कर जाहा है सतगुर पूरा सब सुनाए अम दिन प्रगट करो लिव लाए हर गुण गावे सद ही निर्मल

सतगुर पूरा सात दृढ़ाए, सच्चे शब्द सदा गुण गाए, गुणदाता वर्त है सब अंतर, सिर सिर लिखदा साहा है, सदा हदूर गुरमुख जाते, सब देशे वै सो जंत्रापे, अनदिन सेवे सच्ची बाणी, शब्द सच्चे ओ महा है, अज्ञानी अंधा बहु कर्म दृढ़ाए, मन हठ कर्म फिर जो नी पाए, विख्या कारण लब लोभ कमावे, दुर्मत का दो रहा है, पूरा सतगुर भगत दृढ़ाए, गुर के शब्द हर नाम चित लाए, मन तन हर रविया तट अंतर, मन पीने भगत सलाहा है, मेरा प्रभु साचा असुर संगारण, गुर के शब्द भगत निस्तारण, मेरा प्रभु साचा सद ही साचा, फिर साहा पाप साहा है, से भगत सच्चे तेरे मन पाए, दर कीर्तन करे गुर शब्द सुहाए, साची बाणी अम दिन गावे, निरसन का नाम विसाहा है, जिन आपे मेल भी छोड़े नाही, गुर के शब्द सदा साला ही, सबना सिर तू एको साहिब, सबदे नाम सलाहा है, बिन शब्द तुदनो कोई न जानी, तुद आपे कथी अकथ कहानी, आपे शब्द सदा गुरदाता, हर नाम जप संभा है, तू आपे करता सृजनहारा, तेरा लिखिया कोई न मेटनहारा, गुरमुख नाम देवे तू आपे, सहसा गणत ना ताहा है, भगत सच्चे तेरे दरबारे, सब दे सेवन

वर्त अवर न बिया गुरु प्रसादी आप पछाणे कमल बिकसे बुध कहा है अपनी गहन गत आपे जाने और लोग सुन सुन आख वखाने ज्ञानी होवे सो गुरमुख बूझे साची सिर्फ सलाह है देही अंदर वस्त अपारा आपे कपट खुला।

गुर कै शब्द अमृती आया, अमृती अमरा पद होए, गुर कै शब्द रस पाहा है, आप पछाने सो सब गुण जाने, गुर कै शब्द हर नाम वखाने, हम दिन नाम रता दिन राती, माया मोह चुका है, गुर सेवा ते सब किछ पाए, हौ मैं मेरा आप गवाए, आपे कृपा करे सुखदाता, गुर कै शब्द दे सोहा है, गुर का शब्द अमृत है बाणी, हम दिन हर का नाम वखाणी, हर हर सच्चा वसै कट अंतर, सो कट निर्मलता है, सेवक सेवे शब्द सराहे, सदा रंग राते हर गुण गावे, आपे बसे शब्द मिलाए, परमल वास मन ताहा है, शब्दे अकप तपे साला है, मेरे प्रभ साचे वे परवाहे, आपे गुण दाता शब्द मिलाए, शब्दे का रस ताहा है, मन मुख पूला ठौर न पाए, जो तुर लिखिया सो कर्म कमाए, बिख्या राते बिख्या खोजे, मर्जन में दुख ताहा है, आपे आप आप साला है, तेरे गुण प्रभ तुझी माँ है, तू आप सच्चा तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाहा है, बिन गुरदाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते तत अंतर वस्या, शब्दे सच सलाहा है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए।

पूरे गुरते सो जी होई। हर रस पीने सदा त्यायन गुरमत शील सनाहा है। अंदर रंग सदा प्यारा गुर कै शब्द हर नाम प्यारा। नौ निद नाम वस्या सठ अंतर छोड़िया माया काला है। रैयत राजे दुर्मत दोई बिन सतगुर सेवे एक न होई। एक त्यायन सदा सुख पायन नेचल राज तिनाहा है। आमन जाना रखे न कोई जम्मन मरण तिसहते होई। गुरमुख साचा सदा त्यावो गत मुक्त तिसहते पाहा है। सच संजम

कहो मैं मोह उपजय संसारा, सब जग बिनसै नाम विसारा, बिन सतगुरु सेवे नाम न पाये, नाम सच्चा जग लाहा है, सच्चा अमर सबद तुहाया, पंच शब्द मिलवा जावाया।

सत्सेव सत्यो सच्चा। गुरुमुख सबक सुनाएगा, गुरुमुख हो वह सो जी पाए, हो मैं माया परम गवाए। गुरु की पौड़ी उत्तम ऊंची, दर सच्चे हर गुण गाएगा। गुरुमुख सच संजम करनी सार, गुरुमुख पाए मोख द्वार। पाए पगत सदा रंग राता, आप गवाए समाएगा। गुरुमुख हो वह मन खोज सुनाए, सच्चे नाम सदा लिवलाए। जो तिस पावे सोई करसी, जो सच्चे मन पाएगा। जा तिस पावे सतगुरु मिलाए, जा तिस पावे ता मन वसाए। अपने पाने सदा रंग राता, पाने मन वसाएगा। मन हट कर्म करे सोची जाए, बहुते पेश करे नहीं पी जाए। बिख्या राते दुख कमावे, दुखे दुख समाएगा। गुरमुख होवे सो सुख कमाए, मरण जीवन की सो जी पाए। मरण जीवन

समायला मारू महला तीजा। आपे श्रेष्ठ हुकम सब साजी, आपे खाप उठाप निवाजी, आपे न्याऊ करे सब साचा, साचे साथ मिलाएंदा, काया कोट है आकारा।

जिस विच रविया शब्द अपारा गुरमुख गावे सदा गुण साचे मिल प्रीतम सुख पाएदा काया हर मंदर हर आप सवारे तिस विच हर जियो वसै मुरारे गुर कै शब्द वणजन वापारी नगरी आप मिलाएदा सो सूचा जे क्रोध निवारे शब्दे बूझे आप सवारे आपे करे कराए करता आपे मन वसाएदा निर्मल भगत है निराली मन तन सोवे शब्द विचारी आन दिन सदा रहे रंग राता कर कृपा भगत कराएंदा इस मन मंदर में मनुआ तावे सुख पल्लर त्याग महा दुख पावे बिन सतगुरु पे ते ठौर न पावे आपे खेल कराएंदा आप अपरंपर आप विचारी आपे मेले करनी सारी क्या को कार करे बेचारा आपे बख्श मिलाएंदा।

दिसंतर पवे अंतर नहीं पाले, माया मोह बद्दा जम काले, जम की फांसी कभू न टूटे, दूजे पाए परमाए दा, जब तप संजम होर कोई नाही, जब लग गुर का शब्द ना कमाही, गुर के शब्द मिलिया सच पाया, सच्चे सच समाए दा, काम क्रोध सबल संसारा, बहु कर्म कमावे सब दुख का पसारा, सतगुर सेवे से सुख पावे, सच्चे शब्द मिलाए दा, पौन पानी है बेसंतर, माया मोह वर्त है सब अंतर, जिनकी ते जात से पछाने, माया मोह चुकाएंदा, एक माया मोह गर्भ व्यापे, हो मैं होए रहे हैं आपे, जम काले की खबर न पाई।

सच नाम शीतलाएंदा मारू महला तीजा आद जुगाद दया पत दाता पूरे गुर कह शब्द पछाता सुदनो सेवै से तुझे समावै तू आपे मेल मिलाएंदा अगम अगोचर की

मत देहे सो होवे तू आपे शब्द बुझाएंदा अन दिन आर जा छिजदी जाए रैन दिन दोए साखी आए मनमुख अंध ना केते मूड़ा सिर ऊपर काल रुआएंदा मन तन शीतल गुर चरणी लागा अंतर परम गया पो पागा सदा आनंद सच्चे गुण गावे सच बाणी बोलाएंदा जिंतु जाता कर्म विधाता पूरे पाग गुर शब्द पछाता जत पत सच सच।

आपे करे कराए करता ज्यो पावे तिवें चलाएंदा। सिमरत सासत अंत न जाने मूरख अंधा तप न पछाने। आपे करे कराए करता आपे परम पुलाएंदा। सब किस आपे आप कराए आपे सिर सिर संदे लाए। आपे थाप उठा पे वेख है गुरमुख आप बुझाएंदा। सच्चा साहिब गहर गंभीरा सदा सलाही तामन तीरा। अदम अगोचर कीमत नहीं पाई गुरमुख मन वसाएंदा। आप निरालम होर तंदे लोई गुर प्रसादी बूझे कोई। नानक नाम वसै कट अंतर गुरमती मेल मिलाएंदा। मारू महला तीजा जुग शक्ति कियो गुबारा। तू आपे जाने सिरजनहारा होर क्या को कह के आख बखाने। तू आपे कीमत पाएंदा। ओंकार सब सृष्ट उपाय सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेख करे सब साचा आपे पन कराएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिप्त रह गुर सबदी साचे स्यो चितलाएंदा। बाजे बाजे तुन आकारा आप वजाए वजावन हारा।

गुर प्रसादी किसे दे वड्याई, नामो नाम ते आयंदा गुर सेवे जे वड होर लाहा नाही। नाम मन वसे नामो सालाही, नामो नाम सदा सुखदाता नामो लाहा पाएंदा। बिन नामे सब दुख संसारा, बहु कर्म कमावे वदे विकारा। नाम न सेवे क्यों

सहसा मूल न चुके विकारा, गुरमुख हो वै सो गणत चुकाए, सच्चे सच समाए दा, जे सच दे ता पाए कोई, गुर प्रसादी प्रगट होई, सच नाम सलाहे रंग राता, गुर कृपा ते सुख पाए दा, जप तप संजम नाम प्यारा, किलविख काटे काटनहारा, हर कै नाम तन मन शीतल होआ, सहजे सह समाए दा, अंतर लोभ मन मैले मल लाए, मैले कर्म करे दुख पाए, कूड़ो कूड़ करे वा पारा, कूड़ बोल दुख पाए दा, निर्मल बाणी को मन वसाए, गुर प्रसादी सहसा जाए, गुर कै पाणे चले दिन राती, नाम चेत सुख पाए दा, आप सिरंदा सच्चा सोई, आप उपाय खपाए सोई, गुरमुख हो वै सो सदा सलाहे, मिल साचे सुख पाए दा, अनेक जतन करे इंद्री वसना होई, काम क्रोध जले सब कोई,

हर जियो दाता अगम अथाहा, उस तिल न कमाए वे परवाहा, जिसनो अपड़ न सकते कोई, आपे मेल मिलाएगा, जो किछ करे सो नहचो होई, जिस बिन

अंतर साज परम सुखाए सत सचै का आपे दाता जिस देव है सो सच पाएगा आपे करता सबना का सोई जिसनो आप बुझाए बुझे कोई आपे बख्शे दे वड्याई आपे मेल मिलाएगा हों मैं कर दिया जन्म गवाया आगे मोह न चूके माया अगे जम काल लेखा ले वे जो तिल कानी पीड़ाएगा पूरे पाक गुर सेवा होई नजर करे ता सेवे कोई जम काल किस नेड़ ना आवे महल सच्चे सुख पाएगा तिल सुख पाया जो तुद पाए पूरे पाक गुर सेवा लाए तेरे हथ है सब वड्याई जिस देवे सो पाएगा अंदर परदास गुरु ते पाए नाम पदार्थ मन वसाए।

जय रसना नाम से आए रस पी जय रस ही से रस पाएगा महल अंदर महल को पाए गुरु कह सब सच चित लाए जिसनो सच देव सोई सच पाए सच्चे सच मिलाएगा नाम विसार मन तन दुख पाया माया मोह सब रोग कमाया बिन नामे मन तन है कुश्ती नरके वासा पाएगा नाम रते तिन निर्मल देहा निर्मल हंसा सदा सुख नेहा नाम सलाहे सदा

गुर कै शब्द हर मन वसाए, गुर कृपा ते नाम वसिया कट अंतर, नामो नाम ते आइंदा, नावे नो लोचे जेती सब आई, नाव तिना मिले तुर पुरब कमाई, जिन्नी नाव पाया सेवट पागी, गुर कै शब्द मिलाएंदा, काया कोट अत अपारा, तिस विच बह प्रभ करे विचारा, सच्चा न्याओ सच्चो वापारा, निचल वासा पाएंदा, अंतर कर बंके खान सुहाया।

सत संगत बह गुण गाएदा हर के गुण गावा जे हर प्रभ पावा अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चौ कुंडी सुनिए साचे नाम समाएदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नजर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नगरी नगर मिलाएदा वड्डे भाग इहो शरीर पाया मानस जन्म सब चित लाया दिन सब दे सब अंधेरा गुरमुख किसे बुझाएदा एक चित आए जन्म गवाए मन मुख लागे दूजे पाए ए वेला सिर हाथ न आवे पद किसे पछताएदा गुर के शब्द पवित्र शरीरा किस विच वसे सच गुणी गहीरा सचो सच वेखे सब थाई सच सुन मन वसाएदा होमे गणत गुर शब्द निवारे हर जियो हृदय रखो उड़धारे गुर कै शब्द सदा साला है मिल साचे सुख पाएगा सोचे ते जिस आप चिताए गुर कै शब्द वसे मन आए आपे वेखे आपे बूझे आपे आप समाएगा जिन मन विच वठ पाई सोई जाने गुर कै शब्दे आप पछाए।

इहो शरीर सब मूल है माया, दूजै पाए परम पुलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर्श कह जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएदा, बिन पादा गुर से

अंतर इस बाणी ते हर नाम पाएंदा वेद पढ़े अन दिन वाद संभाले नाम न चेते बद्दा जमकाले दूजे पाए सदा दुख पाए त्रै गुण परम पुलाएंदा गुरमुख एक स्यों लिवलाए त्रिविध मनसा मने समाए साचे शब्द सदा है मुक्ता माया मोह चुकाएंदा जो तुर राते से हुन राते गुर प्रसादी सहजे माते सतगुरु सेव सदा प्रभ पाया आपे आप मिलाएंदा माया मोह परम न पाए दूजे पाए लगा दुख पाए सूहा रंग दिन थोड़े होवे इस जानदे बिलम न लाएंदा इहो मन पै पाए रंगाए इत रंग साचे माहे समाए पूरे पाग को इहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाएंदा मनमुख बहुत करे अभिमान।

अंदर आप लुकाया, गुर प्रसादी हर मिले मिलाया, सच्चा प्रभ सच्चा वापारा, नाम अमोलक पाएदा, इस काया की कीमत किने न पाई, मेरा ठाकुर ए बणत बनाई, गुरमुख हो वै सो काया सो दे, आपे आप मिलाएदा, काया विच तोटा काया विच लाहा, गुरमुख खोजे वे परवाहा, गुरमुख वणज सदा सुख पाए, सहजे सहज मिलाएदा, सच्चा महल सच्चे पंडारा, आपे देवे देवनहारा, गुरमुख साला है सुखदाते।

अंत न पारा कीमत नहीं पाई। आपे दया करे सुखदाता गुण में गुणी समाया। इस जग में मोह है पसारा मनमुख अज्ञानी अंध अंधारा। तंदे तावत जन्म गवाया बिन नावे दुख पाया। कर्म होवे ता सतगुरु पाए हौं मैं मैल शब्द जलाए। मन निर्मल ज्ञान रतन चानन अज्ञान अंधेर गवाया। तेरे नाम अनेक कीमत नहीं पाई सच नाम हर हृदय वसाई। कीमत कौन करे प्रभ तेरी तू आपे सहज समाया। नाम अमोलक अगम अपारा ना को होआ तो लनहारा। आपे तोले तोल तोलाए गुर शब्दी मेल तोलाया। सेवक सेवे करें अरदास तू आपे मेल बहा ले पास। सबना जिया का सुखदाता पूरे कर्म ते आया। जत सत संजम जे सच कमावे यह मन निर्मल जे हर गुण गावे। इस बिख में अमृत प्राप्त होवे।

सच पाया बिनकर्मा होर फिरे कनेरी मर मर जमै चुकै न फेरी बिकारा ता बिख कमावे सुख न कबहू पाया बहुते पेख करे पेख तारी बिन शब्द हो मैं किने न मारी जीवत मरे ता मुक्त पाए सच्चे नाई समाया अज्ञान तृष्णा।

भगत सराहन सदा लिवलाए, तौ शरणाई उबरे करते आपे मेल मिलाया, पूरे शब्द भगत सुहाई अंतर सुख तेरे मन पाई, मन तन सच्ची भगती राता सच्चे सो चितलाया, हऊ मैं विच सब जलै शरीरा कर्म होवे पेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाए सतगुर ते सुख पाया, मन मुख अंधा अंध कमाए बहु संकट जो नी परमाए, जम का जेवड़ा कदे न काटे अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे सच नाम रखे उधारे, गुर कै शब्द मरे मन मारे हऊ मैं जाए समाया, आवन जाने परज विगोई बिन सतगुर थिर कोई न होई, अंतर जोत शब्द सुख वस्या ज्योति जोत मिलाया, पंच दूत चित में विकारा माया मोह का इहो पसारा, सतगुर सेवे ता मुक्त होवे पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा फिर डुबे वारो वारा, सतगुर पेटे सच दृढ़ाए सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा सच्चे सेवे शब्द प्यारा, सच्ची तुन सच्चे गुण गावा सच्चे माए समाया, करे अंदर को कर पाए गुर कै शब्दे सह सुवाए, उथे सोग विजोग ना व्यापे।

दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत न होई, बिन सबदे पार न पाए कोई, सहजे गुण रवे दिन राती, ज्योति जोत मिलाया, काया बिरख पंखी विचवासा, अमृत चुगे गुर शब्द ने।

सतगुर मन वसिया लिव लाई, आप मिलिया जग जीवन दाता, नानक अंक समाई है। मारू महला चौथा, हर अगम अगोचर सदा अविनाशी, सर्वे रव रहा कटवासी, तिस बिन

सब आशा मन सा पूरे थारी, जन नानक नाम जपो पव खंडन, सुख सहजे रहन विहानी है, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, जो शरण परे तिसकी पत राखे।

हर हर नाम जिन्हें सदा त्याया, तिन्हें गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो ताणी है। तू सब में वरते हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुरमस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी जन नानक।

गगन रहाया हुक्मे चरणा, अगन उपाय ईदन मह बांधी, सो प्रभ राख पाई है, जी जंत को रिजक संभाहे, करण कारण समरथ अपाहे, खिन मह थाप उथापन हार।

थानंतर अंतर जामी सिमर सिमर पूरन परमेश्वर चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन।

रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, पूच अथा अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जनत सैंत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार।

संगी जोगी नार लपटाणी उर्ज रही रंग रसमाणी किरत संजोगी पय इकतरा करते भोग विलासा है जो पिर करे सो तन तत माने फिर तने सिगार रखे संगाने मिल एकत्र वसे।

जित उतरे भूख प्यासा है, सगले कर्म धर्म जुग सादा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पई कृपा नानक सत्संगे, तो तन फिर आनंद उलासा है, तन अंधी फिर चपल सियाना।

वचन दे छोड़ ना जा साहे। फिर कया हों हुक्मी बंदा, ओ पारो ठाकुर जिस कान न चंदा, जिचर राखे तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदा साहे। जो प्रेह बचन कहे तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर फिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासाए। आई आ गया फिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया।

जम फासा है, मनमुख आवे मनमुख जावे, मनमुख फिर चोटा खावे, जितने नरक से मनमुख पोगे, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया।

सुरत सबद रिद अंतर जागी अम्यो चोल चोल पी जाहे मरे नाही सद सद ही जीवे अमर पया अविनाशी थी वे ना को आवे ना को जावे।

संत संग महा सुख पाया, देख दर्शन इहो मन पी जाहे, मारू महला पंजवा सोलहे। इको अंकार सतगुर प्रसाद। गुरु गोपाल गुरु गोविंदा, गुरु दयाल सदा बख्शिंदा, गुरु सासत सिमरत खट कर्मा, गुरु पवित्र स्थाना है, गुरु सिमरत सब किल विखनास है, गुरु सिमरत जम संग न फास है, गुरु सिमरत मन निर्मल होवे, गुरु काटे अपमाना है, गुरु का सेवक नरक न जाए, गुरु का सेवक पार ब्रह्म त्याए, गुरु का सेवक सात संग पाए, गुरु करदा नित जी दाना है, गुरु द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर पेट हर जस मुख पणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगे देवे माना है, अगम अगोचर गुरु दिखाया, पूला मार्ग सतगुर पाया, गुरु सेवक को विघ्न न पगती, हर पूर दृढ़ाया गया।

है गुर मिलिए सब तृष्ण बुझाई, गुर मिलिए ने जो है माई। सत संतोख दिया गुरपुर है नाम अमृत पी पाना है। गुर की बाणी सब माए समाणी, आप सुनी तें आप वखाणी। जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया ने चल थाना है। सत गुर की महिमा सत गुर जाने, जो किच करे सो

गुरुमुख जपिए लाए त्याना। आप तरह सगले कुल तारे हर दरगे पत स्यो जाएंदा, खंड पताल दीप सब लोआ, सब काले वस आप प्रभ किया। नेचल एक आप अविनाशी, सो नेचल ज्योति सैंति आएंदा, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा, जो जल तरंग उठे।

सुखवासी बाल सुभाए अतीत उदासी अनेक रंग करें बहु पांति ज्यों पिता पूत लड़ाए दा अगम अगोचर कीमत नहीं पाई तामिली है जान ले मिलाई गुरुमुख प्रगट पया तिन जन को जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा तू आपे करता कारण करना सृष्ट उपाय।

श्रवण सुनिए दूजी अवर न जाप सकाई सगल तुम्हारी तारण आप चितारे अपना किया आपे आप प्रवथिया आप उपाय रचुन पसारा आपे कट कट सारणा एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक करबारी एक पूखे एक तृप्त अघाए सब सह तेरा पारणा आपे सत सत सत साचा ओत पोत भगतन संगराचा आपे गुप्त आपे है प्रगट अपना आप पसारणा सदा सदा सद होनहारा ऊंचा अगम अथा अपारा ऊने परे परे पर ऊने।

पासे आनंद मंगल हर चल तमासे गुण गावे अनहद तुन बाणी तह नानक दास चितारणा आवन जाना सब चलत तुम्हारा।

से अंधियारे, प्रगट पए प्रभु पुरख निरारे, आप छोड़ पए शरण आई, जिसका सा तिस्कालना, ऐसा कोवड़ पागी आया, आठ पहर जिन खसम ते आया, तिस जन कै संग।

मोह सोग सब परम मिटाए, एको मंत्र दृढ़ाए औखद सच नाम रिद गायना। जिस नामे को तरसें बो देवा।

गुर की सेव न जाने कोई, गुर पार ब्रह्म अगोचर सोई, जिसनो लाए ले सो सेवक, जिस वड पाग मथाएना, गुर की महिमा बेद न जाने, तुच्छ मात सुन सुन वखाने, पार ब्रह्म अपरम्पर सतगुर, जिस सिमरत मन

पायणा संतन की शरणाई पड़िया जियो प्राण तन आगे तरिया सेवा सुरत न जाना काई तुम करो दया किरमाएणा निर्गुण को संग लिहोर लाए कर कृपा मोह टहले लाए पखा फेरो पीसो संत आ गए चरण तोए सुख पाएणा बहुत दुआरे परम परम आया तुमरी कृपा ते तुम शरण आया सदा सदा संते संग राखो इहो नाम दान देवाएणा पए कृपाल गुसाई मेरे दर्शन।

अक्ष दैत सब सिमरै अगनत ना जाई जस गना सिमरै पश पंखी सब पूता सिमरै वन पर्वत अवधूता लता बली साख सब सिमरै रव रहया स्वामी सब मना सिमरै थूल सूखम सब जनता सिमरै सिद्ध साधिक हरमंता गुप्त प्रगट सिमरै प्रभ मेरे सगल

परम रुणा गुरु का शब्द वसै मन जाके दुख दर्द प्रमता का भागे सुख सहज आनंद नाम रस अनहद बाणी सहज तुना सो तनवंता जिन प्रवत्याया सो पतवंता जिन साध

गुर ज्ञान अंजन काट्यो परम सगला अवर न दिसे एक बिना ऊंचे ते ऊंचा दरबारा कह न जाई अंत न पारा गैर गंभीर अथा स्वामी।

प्रभ समरथ सर्व सुख दाना, सिमरो नाम हो मेहरवाना। हर दाता जी जंत पे खारी, जन बांचे जा चंगना। मांगो जन तूर परम गत पावो, जन्म जन्म की मैल मिटावो। दीर्घ रोग मिटे हर

पंगना मन तन अर्प तरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हत त्यागी हो मैं हंतना जल तल पूरन अंतर जामी कट कट रव्या अचल स्वामी परम पीत खोई गुरपूर है एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर तोट पंडार नाही।

एको एक रविया सब ठाई, तिस बिन दूजा कोई नाही। आद मद अंत प्रभ रविया, त्रिष्ण बुझी परमंगना। गुर परमेश्वर गुर गोविंद, गुर कर्ता गुर सदबक्संद। गुर जप जाप जपत फल पाया, ज्ञान दीपक संत संगना।

किंचन काया पात्र प्रभ करने हारा लगी लाग संत संगारा निर्मल सोए बनी हर बाणी मन नाम मजी ठहरंगना सोले कला संपूर्ण फलिया अनत कला होए ठाकुर चढ़िया अनद विनोद हर नाम सुख नानक अमृत रस हर पुंचना मारू सोले मैला पंजवा इको ओंकार सतगुरु प्रसाद तू साहेब हो सेवक कीता जियो पिंड सब तेरा दीता करन करावन सब तू है ना ही किछ असाड़ा तुम्हें पठाए ता जग में आए जो तुद पाना से कर्म कमाए तुझते बाहर किछु ना हुआ।

सच बेड़ा कौतक काल एहो हुकम पठाया जी जंत उपाय समाया वेखे विकसे सब रंग माने रचन की ना एक आखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड्डा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बेअंत अतोला है नाही किछ आहारा कीमत कोई न जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सुज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन तुंदुकारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरतायन अंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसे निवाजे गुरमुख साजे नाम वसे तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसे न आवे जम नेड़ा कीमत कागद कही न जाई कहो नानक बेअंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई।

मोहन माधव कृष्ण मुरारे, जगदीशर हर जियो असर संगारे, जग जीवन अविनाशी ठाकुर कट कट वासी है संगा, तरणी तर ईश नरसिंह नारायण,

खुद लेप नहीं एक तिलरंगा। एक जी गुण कमन बखाने सहस फनी शेख अंत ना जाने। नवतन नाम जपे दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा। ओट गही जगत पित सरनाया।

मस्तक लाए परम पद पावो, जिस प्राप्त सो पावेगा, जिनको कृपा करी सुख दाते, तिन साधु चरण लै हृदय पराते, सगल नाम निधान तिन पाया, अनाद शब्द मन वा जंगा, कीर्तम नाम कथे तेरे जेबा, सत नाम तेरा परा पूर्वला, कहो नानक भगत पै शरणाई।

तिनकी तोड़ मांगे मन मेरा, जिन विसरै नाही काहू बेरा, तिनके संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अंकार जाए, तिस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हों बलिहारी सतगुरु पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ विसरे नाही, आठ पैर हर हर को त्याई, नानक संत ते

चरण कमल हृदय नित तारी, गुरपुरा खिन खिन नमस्कारी, तन मन अर्प तरी सब आगे, जग में नाम सुहावना, सो ठाकुर क्यों मनो विसारे, जियो पिंड देश आज सवारे, सास दरास समाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग पज अचुत स्वामी, दरगह शोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निध, सर्व कल्याण जे मन में चाहे, मिल साधु स्वामी रावणा, सासत सिमरत वेद बखान।

राती पूरन पूर रहा दिन राती जो जो जपै सोई वडपागी बौर न जोनी पावना जिसनो बिसरे पुरख विधाता जलता फिरे रहे नितताता अकिरत कने को रखे न कोई नरक कोर में पावना जियो प्राण तन तन जिन साजिया मात गर्भ में राख निवाजिया तिस्यो प्रीत छाड़ अनराता काहू सिरे ना लावना तार अनग्रो स्वामी मेरे कट कट वसे सबन कहने रे हाथ हमारे कछुए नाही जिस जाना है तिसे जनावना जाके मस्तक तुर लिख पाया तिस ही पुरुख ना व्यापे माया।

खेल नहीं बदले कटे ना कटाए सोई होए जे करते भावे कह कह आप वजावना अंधकूप ते से ही काडे जन्म जन्म के टूटे गांडे कृपा तार रखे कर।

ला विण गाहक गुण वेचिए तो गुण सहगो जाए गुण का गाहक जे मिले तो गुण लाख विकाए गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुरु माहे समाए मोल अमोल ना पाई है वणज ना ली जय हाथ नानक पूरा तोल है कबू ना होवे काट महला चौथा नाम विहूणे परम सह आवे जावे नीत इक बांदे इक टीलिया इक सुखिए हर प्रीत नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरु ते ज्ञान पाया अत खड़क करारा दूजा परम गढ़ कटिया मोह लोभ अंकारा हर का नाम मन वसिया गुरु शब्द विचारा सच संजम मत ऊतमा हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सृजनहारा श्लोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए पाई शब्दे करे प्यार सतसंगत च्यों मिल दो रहे सच्चे तरे प्यार विच्चों मल कटे अपनी कुला का करे उधार गुणा की रास संग्रह अवगुण कढ़े विडार नानक मिलिया सो जानिए गुरु ना छोड़े अपना दूजे ना तरे प्यार मैला चौथा सागर देखो डर मरो पै तेरे डर ना है गुर के शब्द संतोखिया नानक बिकसा नाए महला चौथा चढ़ बोए थे चाल सौ सागर लहरी दे थाक न सच्चे बोए थे जे गुर तीरक दे तित दर जाए उतारिया गुर दिसे सावधान नानक नदरी पाई है दरगे चले मान पौड़ी ने कंटक राज पुंच तू गुरमुख सच कमाई सच्चे तख्त बैठा न्याऊ कर सत्संग।

पिछले अपेकार कमाए, नानक चानन गुर मिले दुख बिख जाली नाए पौड़ी। माया वेख ना पुल तू मनमुख मूर्खा, चलदिया नाल ना चले सब झूठ दर्ब लखा। अज्ञानी अंध ना बूझे सिर ऊपर जम खड़ग कलखा, गुर प्रसादी उबरे जिन हर रस्ते।

जे सतगुरु माहि समाए मैला तीजा। मन के अधिक तरंग क्यों दर्शाए विछुटी है, जे राचे सच रंग गूड़े रंग अपार के, नानक गुर प्रसादी छुटी है। जे चित लगे सच पौड़ी हर का नाम अमोल है, क्यों कीमत की जाए, आपे सृष्ट सब साजियन आपे वर्ती जाए। गुरमुख सदा सलाही है सच कीमत की जाए, गुर शब्दी कमल विकास या

नानक जे इव मारिय गुरसब दी विचार इव मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोए नानक मन ही को मन मारसी जे सतगुर पेटे सोए पौड़ी दो वै तरफा उपायुन विच सकत शिव वासा शक्ति किने न पायो फिर जन्म विनाशा गुर सेवे सांत पाये जब सांस गिरासा सिमरत सासत सोध देख उत्तम हरदासा नानक नाम बिना को थिर नहीं नामे बल जासा। श्लोक महला तीजा। होवा पंडित ज्योत की वेद पढ़ा मुखचार नवखंड मध्ये पूजिया अपने चज विचार मत सच्चा अखर पुल जाए चौके पिटे ना कोए झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा। आप उपाय करे आप आपे नजर करे आपे दे वडिआइया कहो नानक सच्चा सोए पौड़ी। कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजे अफरियो जग में वर्तदा पापी स्यों लूजे गुर शब्दी हर पे दिए हर जप हर बूजे सो हर शरणाई छुटिए जो मन स्यों जूजे मन विचार हर जप करे हर दरगह सीजे। श्लोक महला पहला। हुक्म

इश्क मोहब्बत नानका लेखा करते पास। महला पहला अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाए हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुबाए पौड़ी। मनमुख काल व्यापदा मोय माया लागे

नाम पौड़ी आपे पिंड सवार्योन विच नवनिद नाम इक आपे परम पुलायन तिन ने फल काम इकनी गुरमुख बुझिया हर आत्म राम इकनी सुन के मन्या हर उत्तम काम अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम श्लोक महला पहला। पोल तन पै मन वसे है कै पादर हीड अत डापन दुख कणो तीने था परीड महला पहला मांदल बेद से बाजनो कणो तड़िए जोए नानक नाम संभाल तू बीजो अवर न कोए महला पहला। सागर गुणी अथा किन हाथा ला देखिए वड्डा वे प्रभाव सतगुर मिले ता पार पवा मज पर दुख बदुख नानक सच्चे नाम बिन किसे न लथी पुख पौड़ी जिन्नी अंदर पालिया गुर शब्द सुहावे जो इच्छन सो पाएंदे हर नाम ते आवे जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले सो हर गुण गावे तरम राय तिन का मित है जम मग ना पा।

तुम मने दुख जाए, आपे दाता सुखैदा आपे दे सजाए, नानक ए वह जानिए सब किछ तिसैर जाए पौड़ी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नामे तृप्त नाही, दूजे परम पुलाया हो मैं दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाये जे बहुत लो चाही, आवे जाए जम मैं मरे गुर सब छुटाही। आप करे किस आखिए दूजा को नाही, श्लोक में ला तीजा। इस जग में संति तन खटिया, जिना सतगुर मिलिया प्रभ आए। सतगुर सच दृढ़ाया इस तन की कीमत कही न जाए, इत तन पाए पुख लथी सुख वस्या मन आए। जिना को तुर लिखिया तिनी पाया आए, मन मुख जगत निरतन है माया नो बिलाए। अंदिन फिरदा सदा रहे पुख ना कदे जाए, सांत ना कदे आवई ने सुख वसे मन आए। सदा चिंत चित वदा रहे सहसा कदे न जाए, नानक विण सतगुर मत पवी, सतगुर नो मिले ता शब्द कमाए।

तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार। नानक हुकम मने सुख पाई है गुर सब जीवी चार पौड़ी अंदर राजा तख्त है।

आप गया तम पो गया जन्म मरण दुख जाहे। गुरमत अलख लखाई है उत्तम मत तराहे। नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रिभुवन तिसै समाहे। महला तीजा मन मानक जिन परखिया गुर शब्दी विचार। से जन विरले जानिए कल युग विच संसार। आप पैनो आप मिल रहा हो मैं दुबदा मार। नानक नाम रते दुत्तर तरे पौ जल बिखम संसार पौड़ी। मन मुख अंदर न पालनी मुठे अहमते। चारे कुंडा पव थके अंदर तिख तत्ते। सिमरत सासत ना सोधनी मन मुख विगुते। बिन गुर किने न पायो हर नाम हर सत्ते। तत ज्ञान विचारे।

सब कोए पौड़ी सबे थोक विसार इको मित कर मन तन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुके जन्म ना जाए मर सच नाम आधार सोग नाम होए जर नानक नाम निदान मन में संजतार।

पाने जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूरब लिखिया तिन सच कमाया नानक ते शरणागति जिन जगत उपाया श्लोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पैकी नाही बिंद नानक मोया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पतरी वाचनी सुखी हूँ सुखसार सो ब्राह्मण पला आखी है जे बूझे ब्रह्म विचार हर साल आ

प्यार, अंदर सुख ना होवई मन मुख जन्म खुआर। नानक नाम रते से उबरे, गुर कै हेत अपार पौड़ी। आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा, जो हुक्म ना बूझे खसम का सोई नर कच्चा। जित पावे तित लाएदा गुरमुख हर सच्चा, सबना का साहिब एक है गुर सबदी रचा। गुरमुख सदा सलाहिए सब तिस दे जचा, जो नानक आप नचाएदा तिभी को नचा सुध।

देख कपड़ भोग डरावने जिचर फिरी न देख महला पंजवा उठी जालू कंतड़े हो पसी तो दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हबरस छार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब धारिया।

दुर्जन तू जल पहाड़ी वे छोड़े मर जाए, कंता तू सौ से जुड़ी मैंडा हबो दुख लाए। महला पंजवा। दुर्जन दूजा भाव है वे छोड़ा हो मैं रोग, सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग। पौड़ी।

श्रेष्ठ करण डखणे महला पंजवा जे तू वतै अंगणे हब धरत सुहावी होए हिकस कंत बाहरी मैंडी बात न पुछे कोई।

आपे सतवंता, जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता। सब ब्रह्म पसार पसारयो आपे खेलंता, यो आवागमन रचायो कर चोज देखंता। तिस बौड़ गर्भ ना पावई जिस देवै गुरमंता, जो आप चलावे त्यों चल दे किच वस ना जनता। दखने महला पंजवा, कुरिये कुरिये वैद्या तलगाड़ा महरेर, वेखे छिटड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर। महला पंजवा, सच जान कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे, नानक आतसड़ी मंज नैनू बिया ढल पबन ज्यो जुम्यो। महला पंजवा, पोरे पोरे।

जिस मेलै सतगुर आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दर नानक जन तेरा। दखने महला पंजवा गैड रात्रि छाया।

इन माया मोहनी मोइया नित फिरे परमाइया हाठा दो मैं की त्यों शिव सकत वरताइया शिव अगे शक्ति हारया एव हर पाइया एक विचों ही तुद रखया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माए समाइया दखने

कौड़ी। जिस जन तेरी भूख है तिस दुख ना व्यापै, जिन जन गुरमुख बुझया सो चौ कुंडी जापै। जो नर उसकी सरणी पर तिस कंबे पापे, जन्म जन्म की मल उतरे गुर धूड़ी नापे। जिन हर बाणा मन्या तिस सोग ना संतापे, हर जियो तू सब ना कामित है सब जाने आपे। ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापे, सब अंतर जनवरता।

जित भुख ले जावे प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना। जित डाढ़ी तृप्तावे अरदास सुनी दातार प्रभ डाढ़ी को महल बुलावे। प्रभ देख दया दुख भुख गई ढाढ़ी।

मन तन अत गुलाल, नानक बिन नावे आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी। हर जीओ जा तू मेरा मित्र है, ता क्या मैं काड़ा जिन्नी ठगी जग ठगया से तुद मार निवाड़ा। गुरु भोजन पार लंघाया जिता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा। सब इंद्रिया वस कर दित्ती ओ सतवंता साड़ा, जित लाइयन तित्तै लगदियां न खिंजो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा गुर अंदर वाड़ा।

पौड़ी। बिन कर्मा हर जियो ना पाईए, बिन सतगुर मनवा ना लगे। धर्म धीरा कर अंदरे, यो पापी मूल न तगे। ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, एक घड़ी मोत ना।

जान गंदरबा नगरे सुख घटाओ डोरे इस पंधानू घर घने पौड़ी अकल कला न पाई है प्रभ अलख अलेखं खड़ दर्शन ब्रह्म ते फिर न मिली है भेखं वर्त करें चंद्रायणा से कुछ न लेखं वेद पढ़े संपूर्ण तत्सार न पेखं तिलक कढ़ाए स्नान कर अंतर का लेखं भेखी प्रभु न लभई विन सच्ची सिखं भूला मार्ग सो पवै जिस धुर मस्तक लेखं तिन जन्म सवारा आपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवा सो निवाहु गढ़ जो चलाऊ नाथी है कार कुड़ावी छड़ सम्मल सच धनी महला पंजवा हब समानी जोत जो जल घटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आप नानक मस्तक लिखया महला पंजवा मुख सुवावे नाम चौ आठ पैर गुण गाओ नानक दर गय मनिए मिली निथावे थाओ पौड़ी बार देख न पाई है प्रभु अंतर जामी एक हर जियो बारी सब फिर निकामी मन रत्ता कुटम स्यो नित गर्भ फिरामी फिर गुमानी जग में क्या गर्भ है दामी चल गया नाल न चली खिन जाए दिलामी विचर दे फिर संसार में हर जी हुकामी कर्म खुला गुरु पा

जान वसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो तैतन पड़दा नाहे नानक जय गुरु भेटिया महला पंजवा।

सुख समुआ भोग भूम सबाई को धनी नानक हबो रोग मृतक नाम विहुनिया। महला पंजवा सुकत को तू आए पछाणु भी हिक कर नानक आसड़ी।

सुखदायक ज्ञान रास नाम धन सौ प्यों इस सौदे लायक सांझी गुरु नाल बहालिया सर्व सुख पायक मैं नालों कदे न विछड़े हर पिता सबना गल्ला लायक श्लोक दखने महला पंजवा नानक कचड़िया से तोड़ ढूंढ सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े ओए मोया न जाही छोड़ महला पंजवा नानक बिजलिया चमकन गुरन घटा अत कालिया बरसन मेघ अपार नानक संगम तेरी सुहंदिया महला पंजवा जल थल नीर परे शीतल पवन झुलार दे सेजड़िया सोयन हीरे लाल जड़न दिया सुबर कपड़ भोग नानक तेरी विहूणी तत्तिया पौड़ी कारण करता जो किया सोई है करना जे सौ ताम है प्राणिया पावे धुर लेना बिन कर्मा किसू न लभई जे फिरे सब धरना गुर मिल पो गोविंद का भय डर दूर करना बहते बैराग उपजे हर खोजत फिरना खोजत खोजत सहज उपजया फिर जन्म न मरना ज्याय कमाए ज्याया पाया साध सरना बोहित नानक देव गुर जिस हर चढ़ाए तिस पौ

कीमत कहन न जाइए सच सा अडोलै सिद्ध साधक ज्ञानी जानिया कौन तुद नो तोलै बन्नन गड़न समरथ है ओपत सब पर लै करण कारण समरथ है घट घट सब बोलै रिजक समाहे सब सह।

ग्रहों। वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस पारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। जी बधो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझो, काहे बुझावो भाई, माया कारण विद्या बेचो, जन्म अभिर था जाई। नारद बचन व्यास कहत है, सुख को पूछो जाई, कह कबीर राम रम छूटो, नाहे तबूढ़े पाई। बने बसे क्यों पाई है, जो लो मनो न तजे विकार, जे घर बन संसार किया, ते पूरे संसार। सार सुख पाई है रामा, रंग रवो आत्म राम रहो, जटा भस्म लेपन।

राम उदग दे जन पिया तुम बहुर न पई प्यास। गोर प्रसाद जे बूझया आसा ते भया निराश। सब सच नजरी आया जो आत्म भया उदास। राम नाम रस

तारण तरण तवे लग चाहिए जब लग तत न जाने आ, अब तो बिमल पय घटी मैं कह कभी मन मान्या। जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावण, काहे सीजत है मन पावन, जब जम आए केस ते पकड़े तैं

जीड़े ममता जालिया पिंड बना हम बै चिंता जाल तन जालिया बैरा जीड़े जे मन मृतक होए बना हम बै सतगुर बिन बैराग न होवे।

अवैराव। हस्ती देख परंते गूला सिर भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया।

चार मुकत चारे सिद मिलकै दूले प्रभु की शरण पर्यो। मुकत भयो चौहो जुग जान्यो जस कीरत माथे छत्र धर्यो। राजा राम जपत को न करयो गुरु उपदेश साध की संगत। भगत भगत ताको नाम पर्यो रहाओ। शंख चक्र माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डर्यो। निर्भव भय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिर्यो। अम्बरीक को दियो अभय पद राज भवीकन अधिक करयो। नवनिध ठाकुर दई सुदा मैं धुरु अटल अज हूँ न टर्यो। भगत हेत मार्यो हर नाखस नरसिंह रूप होय देत हर्यो। नामा कै भगत बस के सब।

पेट भरो पशुआ जो सोयो, मनुख जन्म है हारे रहा। साध संगत कब हो नहीं कीनी, रचियो धंधा झूठ। स्वान सूकर बायस जिमे, भटकत चाल्यो ऊठ। आप

राम निंदा करते जन्म सिरानो कभु न सिमरो राम। कह कबीर से तय नहीं मूर्ख मुगध गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया, सूर सत थोड़ सादत किया। अबल बल तोड़या अचल चल थपया, अघड़ घड़या तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद बखानया, तेरी दुबदा दृष्ट सम्मानया। रहा अर्ध को अर्धया, सर्द को सर्दया, सलल को सल सम्मान आया। बदत जय देव।

लालच लागे जन्म गवाया माया परम भुलाएगा। धन जो बन का गर्व न की जय कागज जो गल जाएगा। जो जम आए केस जय पटके ता दिन कृष्ण बसा।

चार पदार्थ अष्टमा सिद्ध नव निध कर तलता कै हर हर हर न जपस रसना अवर सब छाड़ बचन रचना रहा नाना ख्यान पुराण वेद विद चौतीस अक्षर माहे व्यास विचार कहो परमार्थ राम नाम सरना है। सहज समाज उपाध रहत हो बड़े भाग लिव लागी कह रवदा।

नाराज रहे निरंकारी सब मन कर्म सुकर्मा नानक पंथ निहाले साधन तू सुन आत्म रामा। बाबिया प्रयो बोले को कल बानिया साधन सबरस चोले अंक समानिया हर अंक समानी जा प्रभानी सा सोहा गण नारे। नव घर थाप मैल घर ऊंचो निज घर वास मुरारे सब तेरी तू मेरा प्रीतम निस्बास रंग रावे। नाने प्रियो प्रियो चवे बबीहा को कल सबद सुहावे। तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम आपने मन तन रवत रवन्ने।

हर बिन रहन न जाए। कोट गई हर चरण निवासे भय पवित्र शरीरा, नानक दृष्ट दीरग सुपावे गुर सब दी मन तीरा। बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी, साजन मिले सहज सुपाए हर स्यों प्रीत बनी। हर मंदिर आवे जा प्रभु पावे धन उबी गुण सारी, घर घर कंत रवे सोहागण हो क्यों कंत विसारी। पुनव घन छाए बरस सुभाए मंतन प्रेम सुखावे, नानक वरसे अमृत बानी कर कृपा घर आवे। केत

सावन सरस मना घन वर्ष ऋतु आए, मैं मन तन सौ पावे फिर पर देश सिधाए, फिर धरनी आवे मरिए हावे, दामन चमक डा।

नानक सा सोहा गण चंके फिर कै अंक समावे बादो परम भूली पर जो बन पछताने जल थल नीर भरे बरस रुते रंग माने बरसे निज काली क्यों सुख बाली दादर मोर लवंते प्रिय प्रिय चवे बबीहा बोले भुयंगम फिर डसंते मच्छर डंग सायर पर सुबर बिन हर क्यों सुख पाई है नानक पूछ चलो गुरु अपने जय प्रभु तै ही जाइए असुन आओ फिरा साधन झूर मुई सामिली है प्रभु मेले दूजे पाय सुई झूठ विभूति तापिर मोती को कह कहा से फुले आगे काम पिछे रुत जाडा देश चलत मन डोले दै दिस साख हरी हरियावल सहज पचे सो मीठा नानक असुन मिलो प्यारे सतगुर पे बसीठा कतर किरत पया जो प्रभु पाया दीपक सहज बल तत जलाया।

दीपक रस्ते लो धन फिर मेलो धन ओ माँ है सरसी अवगुण मारी मर न सी जय गुण मारी तामरसी नाम भगत दे निज घर बैठे अजो तिनाड़ी आसा नानक मिलो कबड दर खोलो एक घड़ी खतमासा मंगल माओ भला हर गुण अंक समावे गुणवंती गुण रवे मैं फिर नेचल पावे नेचल चतुर सुजान विदाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ज्ञान गुण अंक समाने सब पाने का पाया गीत नाद कवित कवे सुन राम नाम दुख भागे नानक साधन ना प्यारी अब भक्ति ते आगे भोख तुखार पड़े वर्ण तृण रसोख आवत की नाही मंतन वसे मुखे मंतन रव रहा जग जीवन गुरु सब धी रंग मानी अंडर धीरज से तज उद्भुज गट गट जोत समानी दर्शन देहो दया पत दाते गत पावो मत देहो नानक रंग रवै रस रसिया हर्षो प्रीत स्नेहो माघ पुनीत भई तीरथ अंतर जानिया साजन सहज मिले गुण गय अंक समानिया प्रीतम गुण अंके सुन प्रभु बंके सुर पावा सरनावा गंग जमुन तह बेनी संगम सात समुन्द समावा पुन दान पूजा परमेश्वर जुग जुग एको जाता नानक माघ महारस हर जप असर तीरथ नाता फल गुण मन रहसी प्रेम सुभाया अनदिन रस भया आप गवाया मन मोह चुकाया जा तुझ पाया कर कृपा घर आओ बहुते वेच करे फिर बाजो मैली दान खाओ हार डोर रस पाठ पटंबर फिर लोड़ी सिंगारी नानक मेर लही गुरु अपने घर वर पाया नारी बेदस मारुति छिती वार भले घड़ी मूर्त पर

राखो खेती हर गुर हेती, जागर शोर न लागे। जम मगन जाओ ना दुख पाओ, जम का डर बहु भागे। राम सास दीपक गुरमत द्वारा, मन साचा मुख त्यावे। नानक मूर्ख अजो

सच संभालिया एनिस देख बिचारिया दावत पंच रहे घर जानिया काम क्रोध बिख मारिया अंतर जोत भई गुरु साखी चीने राम करमा नानक हो मैं मार पति ने तारा चढ़े आलमा गुरमुख जाग रहे चूकी अभमानी राम अनगिन पोर पया साच समानी राम साच समानी गुरमुख मन पानी गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुरु दिया हर चरणी लिव लागे प्रगटी जोत जोत मैं जाता मन मुग परम भुलानी नानक पोर पया मन मान्या जागत रहन विहानी अवगुण विसरिया गुणी घर किया राम एको रव रया अवर न दिया राम रव रया सोई अवर न कोई मन ही ते मन मान्या जिन जल था त्रिभुवन घट घट थापया सो प्रभु गुरमुख जान्या करण कारण समरथ अपारा त्रिबद मेट समाई नानक अवगुण गुण समाने ऐसी गुरमत पाई आवन जान रहे चूका भोला राम हो मैं मार मिले साचा चोला राम हो मैं गुर खोई प्रगट होई चूके सोग संतापे ज्योति अंदर ज्योत समानी आप पछाता आपे तेई अड़े घर सबद पति नी सावरड़ा तिर पानी नानक सतगुर मेल मिलाई चूकी कान लोकानी तुखारी महला पहला भोला बड़ा भुली भुल भुल कछो तानी फिर छोड़ी सुती फिर की सार न जानी फिर छोड़ी सुती अवगुण मुती किस दन विदन राते काम क्रोध अहंकार विगुति हो मैं लगी ताते उडर हंस चलिया फुरमाया बस मैं

वैच वै सवाया अपरंपर आपे था पो थापे तिस भाव सो हो वै नानक ही राही रह बेदया गुण कह हार करो वै गुण गुण समाने मस्तक नाम निशानो सच साच समाया चूका आवन जानो सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पावे साचे ऊपर अवरन दिसे साचे साच समावे मोहन मोलिया मन मेरा बंधन खोल निरारे नानक ज्योति ज्योत समानी जा मिलिया अत प्यारे सच दर खोज ले साचा गुर थानो मनमुख न पाई है गुरमुख ज्ञानो देव सजदानो सो परवानो सजदाता वडदाना अमर अजूनी अस्थिर जापै साचा महल सिराना दो तू चापक लेख न लिखिया प्रगति ज्योत मुरारी नानक साचा साचा राचा गुरमुख तरी है तारी सुखारी महला पहला ए मन मेरिया तू समझ अतीत आनिया राम ए मन मेरिया छड़ अवगुण गुणी समानिया राम बहु साध लुबाने किरत कमाने विसरिया नहीं मेला क्यों दुत्तर करिए जम डर मरिए जम का पंथ दुहेला मन राम नहीं जाता साज प्रभाता।

हर सिमर एक अंकार साचा सब जगत जिन्हें उपाया पौन पानी अगन बादे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम संयम जप तपो

ए मन मेरिया गुण गावे सहज समा वही राम, गुण गाए राम रसाए रसिया गुर जान अंजन सारहे, त्रै लोक दीपक शब्द चानन पंच दोष संगारहे। वह काज निर्भव तरह दुतर गुर मिले कारज सारे, रूप रंग प्यार हर स्यों हर आप कृपा तारे। ए मन मेरिया तू क्या ले आया क्या ले जाए श्री राम, ए मन मेरिया ता चुकती जा परम चुकाए श्री राम। धन संच हर हर नाम वखर गुण शब्द भाव पछान है, महल पर शब्द निर्मल महल घर सच जान है। पत नाम पावे घर सिदावे झोल अमृत पी रसो, हर नाम दियाई है शब्द रस पाई है वड पाग जती है हर जसो। ए मन मेरिया बिन कौड़िया मंदिर क्यों चढ़े राम, ए मन मेरिया बिन बेड़ी पार न अम्बड़े राम। पार साजन अपार प्रीतम गुर शब्द सुरत लंघावे, बिन साध संगत करे रलिया फिर न पछोतावे। कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो, नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

जग लग दर्श न होए क्यों अमृत पीवी है राम। क्यों अमृत पीवी है हर दिन जीवी है तिस दिन रह न जाए। हम दिन प्रो प्रो करे दिन राती फिर दिन प्यास न जाए। अपनी कृपा करो हर प्यारे हर हर नाम सब सारिया। गुर के शब्द मिलिया मैं प्रीतम हर सत गुर वित्तो वारिया। जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम। मेरे अंतर हुए विगास प्रियो प्रियो सत नित चवा राम। प्रियो चवा प्यारे शब्द निस्तारे बिन देखे तृप्त न आवे। शब्द सिगार होवे नित कामन हर हर नाम पे आवे। दया दान मंगत जन दी जय मैं प्रीतम देहो मिलाए। अन दिन गुरु गोपाल ते आई हम सतगुरु विट्टो कुमाए। हम पात्र गुरु नाव बिख पव जल कार्य राम। गुरुदेवो शब्द सुभाए मैं मूड निस्तारिय राम। हम मूड मुग्ध किछ मिट नहीं पाई तू अगम वड जानिया। तू आप दयाल दया कर मेले हम निर्गुणी निमाणिया। अनेक जन्म पाप कर परमे हुन तो शरणागत आए। दया करो रख ले वो हर जियो हम लागे सतगुर पाए। गुर पारस हम लोह मिल कंचन होया राम। ज्योति ज्योत मिलाए काया गढ़ सोया राम। काया गढ़ सोया मेरे प्रभ मोया क्यों साथ गिरास विसारिये। अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी हो सतगुर के बलिहारिये। सतगुर आगे शीश टेक दियो जे सतगुर साचे भावे। आपे दया करो प्रभ दाते नानक अंक समावे। सुखारी महला चौथा हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। जो तुम त्यावे जगदीश ते जन पाओ बिखम तरा। बिखम पाओ तिन तरया सुहेला जिन हर हर नाम ते आया। गुरवास सतगुर जो पाए चले तिन हर हर आप मिलाया। ज्योति ज्योत मिल ज्योत खवाणी हर कृपा कर तरणी तरा। हर हर अगम अगाध अपरंपर अपरपरा। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। तू अलख अपेयो अगम गुर सतगुर बचन लया। तन तन ते जन पुरख पूरे जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे। विवेक बुद्ध विचार गुरमुख गुर शब्द खिन खिन हर नित कवे। जा बह गुरमुख हर नाम बोले जा खड़े गुरमुख हर हर कया। तुम स्वामी अगम अथा तू कट कट पूर रहा। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेव्या गुरमत हरे। तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे। तिनके पाप दोख सब बिन से जिन मन चित एक अरा दिया। तिनका जन्म सफल्यो सब किया करते जिन गुर बचनी सच पाखिया। ते तन जन वड पुरख पूरे जो गुरमत हर जप पाओ बिखम तरे। सेवक जन सेवे ते परवान जिन सेविया गुरमत हरे। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। हमरे हाथ किचना है जा तू मेले ता हो आए मिला। जिनको तू हर मेले स्वामी सब तिन का लेखा छुटक गया। तिनकी गणत ना करो को भाई जो गुरबचनी हर मेल लया। नानक दयाल हुआ तिन ऊपर जिन गुर का पाना मनिया पला। तू अंतर जामी हर आप ज्यो तू चलावे प्यारे हो तिवे चला। सुखारी महला चौथा तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ। तिन तू त्याया मेरा राम जिन कै तुर लेख माथ। जिनको तुर हर लिख्या स्वामी तिन हर हर नाम आराध्या। तिनके पाप इक निमक सब लाथे जिन गुरु वचनी हर जापिया। तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया।
तिन देखे हो पया सनाथ। तू जग जीवन जगदीश सब करता सृष्ट नाथ, तू जल थल मई अल परपूर सब ऊपर साच धनी। जिन जपया हर मन चीत हर जप जप मुक्त कणी, जिन जपया हर ते मुक्त प्राणी तिनके उजल मुख हर द्वार। ओए हलत पलत जन पे सुहेले हर राख लिए रखन हार, हर संत संगत जन सुनो पाई गुरमुख हर सेवा सफल बनी। तू जल थल मैयल परपूर सब ऊपर साच धनी, तू थान सनम तर हर एको एक रव्या। वन त्रिन त्रिभवन सब श्रेष्ठ मुख हर हर नाम चवया, सब चवे हर हर नाम करते असंख अगणत हर त्यावे। सो तन तन हर संत साधु जो हर प्रभ करते भावे, सो सफल दर्शन देहो करते जिस हर हृदय नाम सब चवया। तू थान सनंतर हर एको एक रव्या, तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। जिस कै मस्तक गुर हाथ तिस हृदय हर गुण टिके, हर गुण हृदय टिके तिस कै। जिस अंतर पाव पावनी होई बिन पै किने ना प्रेम पाया, बिन पै पार ना उतरिया कोई। पाओ पाओ प्रीत नानक तिसे लागे जिस तू अपनी कृपा करे। तेरी भगत पंडार असंख जिस तू देवे मेरे स्वामी तिस मिले। तुखारी महला चौथा नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श पया, दुर्मत मैल हरी अज्ञान अंधेर गया। गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया अंतर ज्योत परगासी। जन्म मरण दुख खिन में बिनसे हर पाया प्रभ अविनाशी। हर आप करते पूर्व किया सतगुरु कुल खेत नावन गया। नावन पूर्व अभीच गुर सतगुर दर्श भया, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। अन दिन भगत बनी खिन खिन निमख विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखने आया। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर मेला आया। तीरथ उद्दम सतगुरु किया सब लोक उदरण अर्था, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व हुआ, खबर पई संसार आए त्रै लोआ। देखने आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसिया गुर सतगुरु पूरा तिनके किल विख नाश गवाया। जोगी दिगंबर सन्यासी खर दर्शन कर गए गोष्ट तोआ। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पूर्व होआ, दुतिया जमुन गए गुर हर हर जपन किया। जागाती मिले दे पेट गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम से आया। गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले तिन जम जागाती नेड़ ना आया। सब गुरु गुरु जगत बोले गुर के नाई ले सब छुटक गया। द्वितीया जमुन गए गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलक भया। सब मोही देख दर्शन गुर संत किने आड़ ना दाम लिया, आड़ दाम किच पया ना बोलक जागातिया। मोहन मुंडन पई पाई हम करें क्या किस पास मांगे, सब पाग सतगुर पिछे पई। जागातिया उपाव स्यान कर विचार डिठा, पन बोल का सब उठ गया। तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया, मिल आए नगर मां जना गुर सतगुर ओट गही। गुर सतगुर गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही, सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता। सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद ते आया, देही नगर कोट पंच चोर बटवारे तिनका छाओ थो गवाया। कीर्तन पुराण नित पुन होवे गुर बचन नानक हर भगत लही। मिल आए नगर महाजना गुर सतगुर ओट गही। सुखारी संत मैला पंजवा एक ओंकार।
सतगुर प्रसाद। कोल कुमाई लालना गुर मन दीना, सुन बचन तुम्हारा मेरा मन पीना। एहो मन पीना ज्यो जल मीना, लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई। ठाकुर तेरा महल अपारा, सगल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना। देहो दर्श नानक बलिहारी जीड़ा बल बल कीना। एहो तन मन तेरा सब गुण तेरे, खनिए वंजा दर्शन तेरे। दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे, निमख दृष्ट पेख जीवा। अमृत नाम सुनी जय तेरा, कृपा करे ता पीवा। आस प्यासी पिरके ताई, जो चात्रिक बूंदे रे। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, देहो दर्श प्रभ मेरे। तू साचा साहिब साओ अमिता, तू प्रीतम प्यारा प्राण हित चित्ता। प्राण सुख दाता गुरमुख जाता, सगल रंग बन आए। सोई कर्म कमावे प्राणी, जेहा तू फुरमाए। जाको कृपा करी जगदीशर, तिन साध संग मन जिता। कहो नानक जीड़ा बलिहारी, जियो पिंड तौ दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु टाक लिया मोह पापी पर्दा। ठाक नहारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते। अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पुरख विदाते। पुस्तक कहन न जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का। नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निंका।

मेरे मन राम नाम नित गाविए रे। अगम अगोचर न जाई हर लख्या गुर पूरा मिले लखाविए रे। रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लाविए रे। सबको भगत करे हर केरी, हर पावे सो थाए पाविए रे। हर हर नाम अमोलक हर पै, हर देवे ता नाम ते आविए रे। जिसनो नाम दे मेरा स्वामी, तिस लेखा सब छड़ाविए रे। हर नाम अराधे से तन जन कहिए, तिन मस्तक भाग सुर लिख पाविए रे। तिन देखे मेरा मन बिकसे, ज्यों सुत मिल मात दल लाविए रे। हम बारिक हर पिता प्रभ मेरे, मोको देहो मति जित हर पाविए रे। ज्यों बछरा देख गऊ सुख माने, त्यों नानक हर गल लाविए रे। किदारा महला चौथा कर पहला इको अंकार। सतगुर प्रसाद मेरे मन हर हर गुण कहो रे। सतगुरु के चरण तोय तोय पूजो, इन विद मेरा हर प्रभ लहो रे। रहाओ काम क्रोध लोभ मोह अभिमान बिखे रस, इन संगत ते तू रहो रे। मिल सत संगत की जय, हर गोष्ट साधु स्यों गोष्ट, हर प्रेम रसायन राम नाम रसायन, हर राम नाम राम रमो रे। अंतर का अभिमान जोर तू किछ किछ किछ जानता, इहो दूर करो आपन गौरे। जन नानक को हर दयाल हो स्वामी, हर संतन की तूर कर हरे। किदारा महला पंजवा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद माई संत संग जागी, प्रिय रंग देखे जपती नाम निधानी। रहाओ दर्शन प्यास लोचन तार लागी, बिसरी त्यास बिदानी। अब गुर पायो है सहज सुखदायक, दर्शन पेखत मन लपटानी। देख समोदर रहस मन उपजो, नानक प्रिय अमृत बानी। किदारा महला पंजवा कर कीजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दीन बिनो सुन दयाल, पंच दास तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ। राख हो कृपाल, रहाओ अनिक जतन गवन करो। खट कर्म जुगत ध्यान करो, उपाव सगल कर हारेओ। नह नह हुते बिकराल, शरण बंदन करुणा पते। पाव हरण हर हर हर हरे, एक तू ही दीन दयाल। प्रभ चरण नानक आसरो, उदरे प्रम मोह सागर। लग संतना पग पाल, किदारा महला पंजवा कर चौथा इको अंकार। सतगुर प्रसाद सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर। मांगन को हरदान, रहाओ सुखदाई पूरन परमेश्वर। कर कृपा राखो मान, देहो प्रीत साधु संग स्वामी। हर गुण रसन बखान, गोपाल दयाल गोविंद दमोदर। निर्मल कथा ज्ञान, नानक को हर कै रंग रागो। चरण कमल संग ध्यान, किदारा महला पंजवा। हर के दर्शन को मन चाहो, कर कृपा सत्संग मिलावो। तुम देवो अपनो नाओ, रहाओ करो सेवा सतपुरुष प्यारे। जब सुनिए तत मन रहसाओ, वारी फेरी सदा कुमाई। कवन अनूप तेरो ठाओ, सर्व प्रत पाले सगल संभाले। सगलिया तेरी छाओ, नानक के प्रभ पुरुष विधाते। काट काट तुझे दिखाओ, किदारा महला पंजवा।

कपट तपट बुझ तृष्णा जीवो पेख दरसारी कौन सो जतन उपाव कनेहा सेवा कौन बिचारी मान अभिमान मोह तज नानक संते संग उधारी किरारा महला पंजवा हर हर हर गुण गावो करो कृपा गोपाल गोविंदे अपना नाम जपावो रहाओ काड लिए प्रभ आन बिखेते साध संग मन लावो तंपो मोह कट्यो गुरु वचनी अपना दर्श दिखावो सबकी रेन होए मन मेरा अहं बुद्ध तजावो अपनी भगत देह दयाला वडपागी नानक हर पावो किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारत जात तज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाओ

मोह महा मद मोहत काम क्रोध के खात कर गए लिहो दास नानक को प्रभु जियो होए सात। केदारा महला पंजवा हर बिन कोए न चालस साथ दीना नाथ करना पत स्वामी अनाथा के नाथ राव सुत संपत बिख्या रस ओगवत नह निभत जम कै पात नाम निधान गाओ गुण गोविंद उदर सागर के खात करण समरथ अटक अगोचर हर सिमरत दुख लात नानक दीन तूर जन बाचत मिले लिखत तुर मात। केदारा महला पंजवा कर पंजवा इको अंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाहे मनते हरी अब एह प्रीत मां परबल कही आन बिखे जरी रहाओ बूंद कहा त्याग चात्रिक मीन रहत न करी गुण गोपाल उचार रसना देव ए परी महानाद कुरंक मोयो वेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध सरी। किदारा महला पंजवा प्रीतम बस्त रिद में खोर परम पीत निवार ठाकुर गह लियो अपनी ओर रहाओ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारो तोर संत संग हर चरण बोहत उदरते ले मोर गर्भ कुंट में जिने तारियो नहीं दिखे बन में होर हर सकत शरण समरथ नानक हान नहीं निहोर। किदारा महला पंजवा रसना राम राम बखान गुण गोपाल उचार दिन रैन पे कलमलहान रहाओ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मिथन मोह दुरंत आशा झूठ सर परमान सत पुरख अकाल मूर्त हृदय तारो त्यान नाम निधान लाभ नानक बस ए परवान। किदारा महला पंजवा हर के नाम को आधार कल कलेश ना कछ व्याप संत संग व्यवहार रहाओ कर अनग्रह आप राख्यो न उपजतो बेकार जिस परापत होए सिमरे तिस दहत नह संसार सुख मंगल आनंद हर हर प्रभ चरण अमृत सार नानक दास शरणागति तेरे संतना की चार। किदारा महला पंजवा हर के नाम बिन त्रिग स्रोत जीवन रूप विसार जीवे ते कत जीवन होत रहाओ खात पीत अनेक बिंजन जैसे पार बाहक खोत आठ पैर महाश्रम पाया जैसे बिरख जंती जोत तज गोपाल जे आन लागे ते बहु प्रकारी रोत कर जोर नानक दान मांगे हर रखो कंठ परोत। किदारा महला पंजवा संत तूर ले मुखमली गुणा अचुत सदा पूरन नह दोख व्यापे कली राव गुरु बचन कार्य सर्व पूरन ईत ऊत ना हली प्रभ एक अनक सर्वत पूरन दिखे अग्न ना जली जह पूजा लीनो दास अपनो ज्योति ज्योत रली प्रभ चरण शरण अनाथ आयो नानक हर संग चली। किदारा महला पंजवा हर के नाम की मन रुचे कोट सांत आनंद पूरन जलस छाती बुझे रहाओ संत मार्ग चलत प्राणी पतत उदरे मुचे रेन जन की लगी मस्तक अनक तीरथ सुचे चरण कमल त्यान पीतर कट कटे स्वामी सुजे शरण देव अपार नानक बहुर जम नहीं लुजे।

सुख विदाता, मार्ग प्रभु का हर किया संतन संग जाता, संतन संग जाता पुरुष विदाता, काट काट नजर निहालिया, जो सरनी आवे सर्व सुख पावे, तिल नहीं पन्ने कालिया, हर गुण निद गाए सहज सुभाए, प्रेम महारस माता, नानक दास तेरी शरणाई, तू पूरन पुरुष विदाता, हर प्रेम भगत जन बेदिया, से आन कत जाही, मीन बिछोहा ना सहे, जल बिन मर पाही, हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है, चात्रिक बूंद प्यासिया, कब रैन बिहावे चकवी सुख पावे, सूरज किरण परगासिया, हर दर्श मन लागा दिन सुसवागा, अन दिन हर गुण गाही, नानक दास कह बेनंती, कत हर बिन प्राण टिकाही, सास बिना ज्यो देहुरी कत तोबा पावे, दर्श बिहू ना साध जन खिन टिकना आवे, हर बिन जो रहना नरक सो सहना, चरण कमल मन बेदिया, हर रसक बैरागी नाम लिव लागी, कतो न जाए निखेदिया, हर क्यों जाए मिलना साध संग रहना, सो सुख अंक ना मावे, हो कृपाल नानक के स्वामी, हर चरण संग समावे, खोजत खोजत प्रभ मिले, हर करुणा तारे, निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख विचारे, नहीं दोख विचारे पूरन सुख सारे, पावन बिरद बखानिया, भगत वचल सुन अंचलो गया, कट कट पूर समानिया, सुख सागरो पाया सहज सुभाया, जन्म मरण दुख हारे, कर गए लीने नानक दास अपने, राम नाम उरहारे,

उस्तत निंदा दौ विवर्जत तजो मान अभिमाना, लोहा कंचन सम कर जाने ते मूरत पगवाना। तेरा जन एक आद कोई काम क्रोध लोभ मोह विवर्जित, हर पद चीने सोई रहाओ, रज गुण तम गुण सत गुण कही है ते तेरी सब माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन्ही परम पद पाया, तीर्थ व्रत नेम सुच संजम सदा रहने कामा। कृष्णा अर माया परम चूका चितवत आत्म रामा। जे मंदर दीपक प्रगासिया अंधकार कहनासा, निरपौ पूर रहे परम पादा कह कबीर जनदासा। किन्ही बन जिया कांसी तांबा किन्ही लौंग सुपारी, संतो बन जिया नाम गोविंद का ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक, छूट गई संसारी राव। साचे लाए तो सच लागे साचे के व्यवहारी, साची बस के पार चलाए पहुँचे जाए पंडारी। आपे रतन जवाहर मानक आपे है पासारी, आपे देह दिस आप चलावे नेचल है व्यापारी। मन कर बैल सुरत कर पेंडा ज्ञान गोन पर डारी, कहत कबीर सुनो रे संतो निधि खेप हमारी। रीकलवार गवार मूड मत उल्टो पवन फिरावो, मन मतवार मेर सर पाठी अमृत तार चुआवो। बोलो भैया राम की दुहाई पीवो संत सदा मत दुर्लभ, है जे प्यास बुझाई रहाओ। पै बिच पाओ पाए को बूझे हर रस पावे भाई, जेते कट अमृत सभी में पावे तिसे पियाई। नगरी एक नौ दरवाजे तावत बर्ज रहाई, त्रिपुटी छूटे दसवां दर फूले ता मन खीवा पाई। अबे पद पूर ताप तहना से कह कबीर बिचारी, उबट चलनते ए मद पाया जैसे खूंद।

राम न जपो कवन प्रम फूले, तुम ते काल न दूरे, अनेक जतन कर एहो तन राखो, रहे अवस्था पूरे। आपन किया कछु न होवे, क्या तो करे परानी, जात इस पावे सतगुरु पेटे, एको नाम बखानी, बलुआ के करुआ में बसे।

मन मनते मानिया मन सामने समाई मन जोगी मन बिनस दियोगी मन समझे गुण गाई गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया ते विरले संसारा नानक साहिब पर पुरलीना सात शब्द निस्तारा पैरों महला पहला नैनी दृष्ट नहीं तन ही ना जर जीत्या सिर कालो रूप रंग रहस नहीं साचा क्यों छोड़े जम जालो प्राणी हर जप जन्म गयो सात शब्द बिन कब होना छूटत बिरथा जन्म भयो रहाओ तन में काम क्रोध हो ममता कथन पीर अत भारी गुरमुख राम जपो रस रसना किन विद तर तू तारी बैरे करन अकल भई होची शब्द सहज नहीं बूझिया जन्म पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुर अंग न सूझिया रह उदास आस निराशा सहज ध्यान बैरागी प्रणवत नानक गुरमुख छूटस राम नाम निवलागी पैरों महला पहला पूंदी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी नेत्री तुंद करन पै बहरे मन मुख नाम न जानी अंगुले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस पशु पे कदे होए नानी के अमृत का रस विरली पाया सतगुरु मेल मिलाए जब लग शब्द पेद नहीं आया तब लग काल संताए अन को दर कर कब हूँ न जानस एक को दर्श प्यारा गुर प्रसाद परम पद पाया नानक कह विचारा पैरों महला पहला सगली रैन सोवत गलफाही दिनस जंजाल गवाया किन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूटस दुख पारी क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ ऊंदो कवल मन मुख मत होची मन अंधे सिर तंदा काल विकाल सदा सिर तेरे बिन नावे गल फंदा डगरी चाल नेत्र फुन अंधुले शब्द सुरत नहीं पाई शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंधलो तंद कमाई खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान विहूने शब्द विचार राम रस चाख्या नानक साच पति ने पैरों महला पहला गुर के संग रह दिन राती राम रसन रंग राता अवर न जानस शब्द पछाणस अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे आप मार अपरंपर राता गुर की कार कमावे रहाओ अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरख आदेशो कट कट अंतर सर्व निरंतर रव रहा सच वेशो साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई निर्मल नाम अमृत रस चाख्या शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरमुख नाम वडाई सगले दुख मिटे गुर सेवा नानक नाम सखाई पैरों महला पहला हृदय नाम सर्व तन तारण गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ से किरतार्थ सहज ध्यान लिवलाई है मन रे राम भगत चितलाई है गुरमुख राम नाम जप हृदय सहज खेती कर जाइए रहाओ परम पेद पाओ कभू न छूटस आवत जात न जानी बिन हर नाम को मुक्त न पावस डूब मुए बिन पानी तंदा करत सगली पत खोवस परम न मिटस गवारा बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंधले तंद पसारा अकुल निरंजन स्यों मन मानिया मन ही ते मन मुआ अंतर बाहर एक को जानिया नानक अवर न दुआ पैरों महला पहला जगन होम पुन तप पूजा देह दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त न पावत मुक्त नाम गुरमुख लह।

पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंड कमंडल शिखा सूत तोती तीरथ गवन अप प्रमन करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सोपार परे जटा मुकुट तन पखम लगाई वस्त्र छोड़ तन नगन भया राम नाम बिन तृप्त ना आवे किरत के बांधे पेख पाया जेते जी जंत जल फल महियल जत्र कत्र तू सर्व जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक चोल पिया।

होई, ब्रह्म बिन देसो ब्राह्मण होई, जात का गर्भ न कर मूर्ख गावारा। इस गर्भ से चले बहुत विकार आ रहा, चारे वर्ण आखे सब कोई, ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा, बोविद पांडे करे कुमारा, पंच तत् मिल देही काकारा, कट वद को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई, बिन सतगुर पेटे मुक्त न होई, पैरों मैला तीजा।

पर किरत छोड़े तत पछाणे चहो वरना विच जागे कोए जमे काले ते छूटे सोए कहत नानक जन जागे

किरम कसाई मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई पंत नानक करे क्या कोए जिसनो आप मिला वै सोए पैरों महला तीजा सो मुन जे मन की दुबदा मारे दुबदा मार ब्रह्म विचारे इस मन को कोई खोजो भाई मन खोजत नाम नौनिद पा।

नानक गुरमुख नाम प्यार पैरो मैला तीजा। कल युग में बहु कर्म कमाए नारुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार गुरमुख साचा लगे प्यार। रहाओ तन मन खोज करे मैं पाया गुरमुख राम नाम चितलाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए राम नाम रव रया ते लोए। कल युग में हर जियो एक होर रुत न काई नानक गुरमुख हृदय राम नाम लियो जमाई। पैरों मैला तीजा कर दूजा इको अंकार। सतगुर प्रसाद दुबदा मन मुख रोग व्यापे कृष्णा जले अधिकाई। मर मर जम में ठौर न पावे बिरथा जन

सतगुर तोते ता फल पाए, सच करनी सुख सार, से जन निर्मल जो हर लागे, हर नामे तरह प्यार, इनकी रेण मिले ता मस्तक लाई, जिन सतगुर पूरा त्याया, नानक तिनकी रेण पूरे पाग पाये, जिनी राम नाम चितलाया, पैरों महला तीजा, शब्द विचारे सोजन साचा, जिनके हृदय साचा सोई, साची पगत करे दिन राती, तां तन दुख न होई, पगत पगत कहे सब कोई, दिन सतगुर सेवे पगत न पाये, पूरे पाग मिले प्रभ सोई राव, मन मुख मूल गवावे।

हमें रोग न जाई, पर लूजे बाद वखाने, मिल माया सुरत गवाई, सतगुरु सेवे परम गत पावे, नाम मिले वडियाई, नानक नाम जिना मन।

कृष्णा अगन पचाए सदा आनंद राम रस राते। हृदय नाम दुबदा मन पागी हर हर अमृत की तृप्ता से रहाओ आपके पार ब्रह्म सृष्ट जिम साजी।

गुरमुख मन वसाई, आप तरे सगले कुल तारे, जिनी राम नाम लिवलाई। मेरा प्रभ है गुण का दाता,

गुर प्रसाद परम पद पाया, सब इच पुजावन हार राव, सब में एको रब रहा, गुर बिन बूझ न पाए, गुरमुख प्रगट होआ मेरा, हर प्रभ अंग दिन हर गुण गाए, सुखदाता हर एक है, होरथे सुख न पाए, सतगुरु जिनी न सेवया दाता, से अंत गए पछताए, सतगुरु सेव सदा सुख पाया, फिर दुख न लागे ताए, नानक हर भगत प्राप्त होई, ज्योति जोत समाए, पैरों महला तीजा, बाज गुरु जगत बौराना, फूला चोटा खाए, मर मर जमे सदा दुख पाए, डर की खबर न पाए, मेरे मन सदा रहो सत

चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिशा भूख अत बहुती पौकत फिरे दरबार गुर के शब्द मरे फिर जीवे तिनको मुक्त द्वार अंतर शांत सदा सुख होवे हर राख्या उदार ज्योतिष भावे तिवे चलावे करना तुसु न जाई नानक गुरमुख शब्द संभाले राम नाम वड्याई पैरों महला तीजा हों मैं माया मोह खुआया दुख खटे दुख खाए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए मन मुख त्रिग जीवन सहसार राम नाम सुपने नहीं चेतिया हर्षो कदे न लागे प्यार रहाओ पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमावे कूड़ो होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए हर हर नाम हृदय

आपके मार्ग पाए, आपके गुरुमुख देव दे आए, नानक नाम समाए पैरों महला तीजा। मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला, दूजे पाए फाके जमजाला। सतगुर करे मेरी प्रतपाला, हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे, सासना के बालक गम न करे। रहाओ माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो ले उबारे। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम न छोड़ा गुर दिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे, प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाकरे बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा होए रघुराया। हाथ खड़ग कर ताया अत अहंकार, हर तेरा कहां तुझले उबार। खिन में पयान रूप निक्षया थम उपार, हर नाकस नखी विदारिया। प्रहलाद लिया उबार, संत जना के हर जियो कार सवारे। प्रहलाद जन के इतनी कुले उदारे, गुर के शब्द हो मैं बिख मारे। नानक राम नाम संत निस्तारे, पैरों महला तीजा। आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई। जो तेरी सदा सरनाई, तिन मन दुख न होई। जुग जुग भगता की रखदा आया, दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री। तर्पण किछु न जाने, सबदे मेल मिलाया रहाओ। अन दिन पगत करे दिन राती, दुबदा सबदे खोई। सदा निर्मल है जो सच राते, सच वस्या मन सोई। मूरख दुबदा पने

सुकृत करनी सार जप माले, हृदय फेर चले तुझ नाले, हर हर नाम जपो बनवाले, कर कृपा मेलो सब संगते, टूट गई माया जमजाली राव, गुरुमुख सेवा काल जिन काली, तिस करिये सब सची टकसाली, हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्दा हर पाली, हम बारिक हर पिता तत पाली, जन नानक तारो नगर निहाली, पैरों महला चौथा सब कट तेरे तू सबना माहे, तुझते बाहर कोई ना है, हर सुखदाता मे

हर बाहर जो कुछ करे सोई पल होसी, हर क्या वो अंग दिन नाम मुरार, हर जो कुछ करे सो आते आते ओ पूछ ना किसे करे विचार, नानक सो प्रभु सदा त्याय है जिन मेलिया सतगुरु कृपा तार, पैरों महला चौथा ए साधु हर मेलो स्वामी, जिन जपिया गत होए हमारी, तिनका दर्श देख मन बिगसे, किन किन किन कहो हो बलिहारी, हर हृदय जप नाम मुरारी, कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी, हम दासन दास की जय पनिहारी रहो, तिन मत उत्तम तिन पत उत्तम, जिन हृदय वस्या बनवारी, तिन की सेवा लाए हर स्वामी, तिन सिमरत गत होए हमारी, जिन ऐसा सतगुरु साधना पाया, ते हर दरगे का दे मारी, ते नर निंदक सोग न पावे, तिन नक काटे सुजनहारी, हर आप बुलावे आप बोले।

नानक कह कर केवल नाम पैरों महला पंजवा। जे सो लोच लोच खाव आया साकत हर हर चीतना आया संत जना की लेहो मते साध संग पावो परम गते रहाओ पात्र को बो नीर पवाया। मैं पी गए अदुख सुकाया खट शास्त्र मूर्खे सुनाया।

तब आराधन निर्मल रीत साध संग बिनसी विपरीत नीत हीत तन ने पारणा तन तन मेरे नारायणा नानक बोले अमृत बाणी एक बिना दूजा नहीं जाने पैरों महला पंजवा आगे दे पाछे नारायण मद पाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सौन सुख सहज आनंद गृह पौन रहाओ रसना नाम करण सुन जीवे प्रभु सिमर सिमर अमृत पीवे जन्म जन्म के दुख निवारे अनहद शब्द वजे दरबारे कर कृपा प्रभु लिए मिलाए नानक प्रभु शरणागत आए पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवे।

है। जीवत बहुड़ न जोन परमाम रहाओ। पूजा जाप ताप स्नान सिमरत नाम पहने काम। राजमाल साधन दरबार सिमरत नाम पूरन आचार। नानक दास इहो किया विचार बिन हर नाम मिथ्या सब चार। पैरो महला पंजवा लेप न लागो तिलका मूल। दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कैसूल। हर जन राखे पार ब्रह्म आप। पापी मुआ गुर प्रताप। रहाओ अपना खसम।

हर जप जप उदरिया सगल जहान पैरों मैला पंजवा अपने दास को कंठ लगावे निंदक को अगन में पावे पापी के राखी नारायण पापी की गत कत हूँ नाही पापी पचिया आप समायन रहाओ दास राम जियो लागी प्रीत निंदक की होई विपरीत पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगताया दुखी अपना कीता पाया आए न जाई रहा समाई नानक दास हर की शरणाई राग पैरों मैला पंजवा चौप दे कर दूजा इको अंकार सतगुर प्रसाद श्री तर मोहन सगल उपावन निरंकार सुखदाता ऐसा प्रभु।

आओ। ठाकुर छोड़ दासी को सिमरे मन मुख अंध अज्ञाना, हर की पगत करे तिन निंदे निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभु का, साचत कहते मेरा अहं बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर पल जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तट तीरथ नहीं पाया। मिटिया आप पे शरणाई, गुरमुख नानक जगत कराया। पैरो महला पंजवा, बन में पेख्यो तृण में पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए। दंड तार जट तारे पेख्यो,

पहला पंजवा निकट बुझे सो बुरा क्यों करे बिसन के नित डरता फिरे है निकट अर्थ एक न पाया बिन सतगुरु सब

जन नानक अपर नफा चै कोय ठहरो मैला पंजवा तौ करिए जे होवे बाहर तौ करिए जे विसरे नर हर तौ करिए जे दूजा पाए क्या करिए जा रहा समाए माया मोह करे।

तौ करिए जे किछ होए सिंघाणे, तौ करिए जे फूल रंजाणे, गुर कहया जो होए सब प्रभु ते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभु तू है ठाकुर सबको तेरा, जो पावे त्यों करे निवेरा, दुतिया नासत इक रहा समाए, रातो पैज नानक शरणाए, पहरों मेला पंजवा, बिन बाजे कह

बिन अमरे कैसे राज मंडत, बिन बूझे कहां मन ठहराना, नाम बिना सब जग बोराना, बिन बैराग कहां बैरागी, बिन हो त्याग कहां को त्यागी, बिन बस पंच कहां मन चूरे, नाम बिना सब सद ही चूरे, बिन गुरु दीक्षा कैसे ज्ञान, बिन पेखे कहो कैसो ध्यान, बिन पै कथनी सर्व विकार, कहो नानक दर का विचार, पैरों मेला पंजवा, हो मैं रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गल बस लीना, दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाग रोग खप गए।

वासन रोग पवर विनसानो, एक रोग का सगल संसारा, त्रिविध रोग में बदे विकारा, रोगे मरता रोगे जन्मे, रोगे फिर जोनी पर में, रोग बंद रहन गति न पावे, बिन सतगुरु रोग कटे न जावे, पार ब्रह्म जिसकी दया, वहाँ पकड़ रोगों कद लया, टूटे बंधन साध संग पाया, कहो नानक गुरु रोग मिटाया, पैरों महला पंजवा, चीत आवे ता महा आनंद, चीत आवे ता सब दुख पांजे, चीत आवे ता सरदा पूरी, चीत आवे ता कभे न चूरी, अंतर

मन मानिया नानक भगवंता। कहरो महला पंजवा, बाप हमारा सद चरण जीवी, भाई हमारे सद ही जीवी, मीत हमारे सदा अविनाशी, कुटुंब हमारा निज करवासी, हम सुख पाया ता

सतगुरु पूरा हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दियार, हैरो महला पंजवा मोहे दुहागन आप सिगारी, रूप रंग दे नाम सवारी, मिट्यो दुख अर सगल।

जा को सतगुरु दियो नाम, जा को पेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभु पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा, चितवत पाप नालक आवे, बेसुआ भजत किसने शरमावे। सारो दिन मजूरी करे, हर सिमरन की वेला बजर सिर पर है।

पूरन होत न कार्य माया, काम क्रोध लोभ मन लीना, तरफ मुआ जो जल बिन मीना, जिसके राखे हुए हर आप, हर हर नाम सदा जप जाप, साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुरु पूरा पाया, पैरो मैला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए, हर का नाम मन वसाए, साच शब्द हृदय मन माहे, जन्म जन्म के चिल विख जाए, राम नाम जी को आधार, गुरु प्रसाद जपो नित पाए, तारले सागर संसार राव, जिनको लिखिया हर एहो निधान।

काश आओ नाम न विसरे संत प्रसाद नाम लेत अनहद पूरे नाद प्रभ कृपा ते नाम नौ निज पाई गुर कृपा ते नाम स्यो बने आई तनवंते सही प्रदान नानक जा कै नाम धान पैरो मैला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरे जीव प्राण सुखदाता तू मेरा ठाकुर हूँ दास तेरा तुझ बिन अवर नहीं को मेरा।

नाम तिस शरणाई सदा सुख होए, कर कृपा जाको मिले सोए रहाओ। जाके कर्तव्य लखे न जाए, जाका परवासा सब कट माए,

अनेक पाप जाए निर्मल मना, सगल मनोरथ पूरन काम, भगत अपने को देवो नाम, सफल सेवा गोपाल राय, करण करामन हार स्वामी।

ज्ञान मूर मुग्ध होए चतुर सुज्ञान सगल पयान का पौन से जन अपने के हर मन बसे पार ब्रह्म प्रभु सुख निदान तत् ज्ञान हर अमृत नाम कर कृपा संत टहले लाए नानक साधु संग समाए पैरो महला पंजवा संत मंडल में हर मन वसे संत मंडल में दुर्त सब नसे संत मंडल में निर्मल रीत संत संग होए एक प्रीत संत मंडल तहां का नाओ पार ब्रह्म केवल गुण गाओ रहाओ संत मंडल में जन्म मरण रहे संत मंडल में जम किछु ना कहे संत संग होए निर्मल बाणी संत मंडल में नाम वखाणी संत मंडल का नेचर आसन संत मंडल में पाप विनाशन संत मंडल में निर्मल कथा संत संग हो मैं दुख नसा संत मंडल का नहीं विनाश संत मंडल में हर गुण पास संत मंडल ठाकुर विश्राम नानक ओत पोत भगवान पैरों महला पंजवा रोग कवन जा राख है आप किस जन होए न दुख संताप जिस ऊपर प्रभु कृपा करे किस ऊपर ते काल पर हरे सदा सखाई हर हर नाम जिस चीत आवे तो सदा सुख होवे नित ना आवे ताके जाम रहाओ जब ए नासो तब किने उपाया कवन मूल के क्या प्रगटाया आपे मार आप जीवाले अपने भगत को सदा प्रति

कोए हर हर नाम जपै जन सोए रहाओ अहं बुद्ध का छोड़िया संग काम क्रोध का उतरिया रंग नाम तिराए हर हर हर

0: सोई भगत जपे नाम जाप मन पर दास गुते मत लई। कहो नानक ताकी पूरी पई।
1: पैरों महला पंजवा सुख नाही बहुते तन खाते सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख

सहो नानक प्रभु कृपा करी, सास गिरास जपो हर हरी, पैरों महला पंजवा, सबसे ऊंचा जाका नाओ, सदा सदा ताके गुण गाओ, जिस सिमरत सगला दुख जाए, सर्व सुख वसे मन आए, सिमर मना

नानक को गुरु तय दयाल पैरों मैला पंजवा जिस सिमरत मन होए प्रगास मिटे कलेश सुख सहज निवास तिसे प्राप्त।

सगल कटा के अंतर जामे, कर कृपा अपनी सेवा लाए, नानक दास तेरी शरणाए। पैरों महला पंजवा, लाज मरे जो नाम न ले वै, नाम विहून सुखी क्यों सोवे। हर सिमरन छाड़ परम गत चाहे, मूल बिना शाखा कत आहे। गुरु गोविंद मेरे मन त्याए, जन्म जन्म की मैल उतारे, बंधन काट हर संग मिलाए रहो।

सो तनवंता जिस बुद्ध विवेक, सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पछानी, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रैन ते आया, टूटे बंधन पूरन आसा, हर के चरण रिद माय निवासा, कहो नानक जाके पूरन कर्मा, सो जन आया प्रभु की शरणा, आप प्रेत पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने, पैरों महला पंजवा, नाम लैत किछ बिघन न लागे, नाम सुनत जम दूरों पागे, नाम लैत सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ, हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देओ न पोहे, हर सिमरत मोह मान न बद्दे, हर सिमरत गर्भ जोन न रुद्दे, हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माए अकेला, जात अजात जपे जन कोए, जो जापे तिसकी गत होए, हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूरन रंग, नानक को प्रभ कृपा तार, सास सास हर दियो चितार, पैरों महला पंजवा, आपे सासत आपे बेद, आपे कट कट जाने पेद, ज्योत स्वरूप जाकी सब वक्त, करण कारण पूरन समरथ, प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुख आरादो, दुश्मन दुख ना आवे नेरे, रहाओ आपे वन त्रिन त्रिभुवन सार, जा कै सूत परोया पार, आपे शिव शक्ति संजोगी, आपे निर्वाणी आपे पोगी, जत तत देखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए, सागर तरिये नाम के रंग, गुण गावे नानक साथ संग, मुक्त पुगत जुगत वस जाके, ऊना नाही किस जनता के, कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास से जनतन, पैरों मेला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद, अस्थित पये बिनसी सब चिंद, पै प्रम बिनस गए खिन माहे, पार ब्रह्म वसिया मनिया।

प्रतपाल प्रभ कृपाल कवन गुण गनी अनेक रंग बहुत रंग सर्व को तनी रहाओ अनेक ज्ञान अनेक ध्यान अनेक जाप जाप ताप अनेक गुणत तुनत ललित।

करते अपना रूप दिखाया, पैरों महला तीजा, गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हों मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन वस्या, मनसा मन समाई, हर जियो कृपा करू मेरे।

साचे हर प्रभ आप मिलाए गुर की वाणी शब्द पछाती साच रहे लिवलाए तू आप निर्मल तेरे जन है निर्मल।

तरतत्यान कोट तपी सर तप ही करते, कोट मुनि सर मौन में रहते, अवगत नाथ अगो

राम राजा नौनिद मेरे संपहेत कलत तन तेरे रहाओ आवत संग ना जात संग।

सोतर वर चंदन होय निबिरियो, पारस के संग तांबा बिगिरियो, सो तांबा कंचन होय निबिरियो, संतन संग कबीरा बिगिरियो, सो कबीर रामे होय निबिरियो, माथे तिलक हाथ मार

पहचाना, उलट जात कुल दो विसारी, सुन सहज मैं बुनत हमारी, हमरा झगड़ा रहा न को। पंडित मुला छाड़े दो रहाओ, बुन बुन

कह कबीर जिस उदर तिस माया, तब छूटे जब साधु पाया। जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे।

क्यों लीजे गड बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई। रहाओ 5-25 मोह मद मत्सर, आडी परबल माया, जन गरीब को जोर न पहुंचे।